90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के अश्विन मास की 22वीं तिथि, तदनुसार 14 अक्टूबर सन 2026। सुबह के 7 बज चुके हैं, अब हमारी आज की सभा आरंभ होती है। श्रोताओं, इस सभा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आपका आज का दिन मंगलमय हो, ऐसी हमारी कामना है।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं, आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ। आज सुबह की सभा में मैं हूं आपके साथ, आपके रेडियो मित्र पूर्वा खले। कीजिए स्वीकार मेरा नमस्कार। कार्यक्रमों का सिलसिला आरंभ हो, आइए इसके पहले मैं आपको बताई देती हूँ कि आज आप कौन कौन से कार्यक्रम हमारी सुबह की सभा में यानी दोपहर 12 बजे तक सुनने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे जीवन सौरभ। 7:13 से सुनिएगा कार्यक्रम अक्षय निधि, जिसमें आप सुनेंगे ऋग्वेद की ऋचाओं का पाठ। 7:20 से आनंद लीजिएगा भक्ति संगीत का मेरे साथ यानी आपकी अपनी पूर्वा के साथ। सुबह 8 बजे का वक्त होता है श्रोताओं वतन का राग इस कार्यक्रम का। आज ये कार्यक्रम आधारित होगा लाला हरदयाल पर, जिनकी आज जयंती भी है।

सुबह 8:30 का वक्त होता है श्रोताओं इतिहास के पन्नों से इस कार्यक्रम का। आज इस कार्यक्रम में आप रानी दुर्गावती के गोंड राज्य का इतिहास जानेंगे। इस कार्यक्रम में डॉक्टर पूजा सक्सेना से संदीप शर्मा की चर्चा आप सुनेंगे। सुबह 9:00 का वक्त होगा कार्यक्रम टेक गुरु का। आज इस कार्यक्रम में विषय रहेगा दृष्टिहीन जनों के लिए कंप्यूटर तकनीकी के फायदे। डॉक्टर रोहित त्रिवेदी से चर्चा की है फराज फयाज ने। सुबह 9:30 सुनिएगा हमारा विशेष कार्यक्रम जिसमें आप सुनेंगे वंदना सिन्हा का गायन। सुबह 10:00 पेश की जाएगी रेडियो रिपोर्ट जो कि आधारित होगी अंतर्राष्ट्रीय श्रीराम लीला उत्सव पर, और क्रमशः पेश की जाएगी नगर के साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों की जानकारी लेकर आती हुई हमारी पत्रिका परिक्रमा को। सुबह 10:30 सुनिएगा हमारा कार्यक्रम काव्य गुंजन। आज काव्य गुंजन में रश्मि रथी का भाग 18 सुनेंगे आप। दिन में 11:00 सुनिएगा हमारा कार्यक्रम हमारे वैज्ञानिक। आज के हमारे वैज्ञानिक इस कार्यक्रम में हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनकी 15 अक्टूबर यानी कल जयंती भी है। 11:30 सुनिएगा हमारा रेडियो रूपक युग प्रवर्तक विवेकानंद। तो श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे रेडियो आजाद हिंद से आज सुबह की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में जानकारी। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद को, देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए। आइए सुनते हैं जीवन सौरभ।

0: सौरभ।
1: मनुष्य का जीवन उसके विचारों का प्रतिबिंब है। जैसा वो सोचता है वैसा बनता है। अच्छे विचार जीवन में अच्छाई और सफलता लाते हैं, नकारात्मक विचार दुख और असफलता। जीवन की परिस्थितियाँ हमारे अंदर की सोच का परिणाम है। अपने मन को नियंत्रित करना सीख लें तो किस्मत बदल सकते हैं। विचार हमारी आदतों को, आदतें हमारे कर्मों को और कर्म हमारे भाग्य को आकार देते हैं। सही मानसिकता ही धन और सफलता का सूत्र है। धन और सफलता का विज्ञान केवल अवसर पर निर्भर नहीं करता, ये मानसिक दृष्टिकोण और कार्यशैली पर आधारित है। ये जरूरी है कि हम अपने मन को डर और संदेह से मुक्त रखें और विश्वास रखें कि हम वो सब हासिल कर सकते हैं जिसकी हम कल्पना करते हैं। लगातार प्रयास, सृजनात्मक दृष्टिकोण और सही मानसिकता धन और सफलता का वास्तविक सूत्र है। खुद को नियंत्रित करके ही हासिल होगी जीत। हार और जीत का निर्णय केवल शक्ति से नहीं बल्कि बुद्धि, योजना और अनुशासन से होता है। अपने लक्ष्य स्पष्ट रखें, अपने संसाधनों का मूल्य समझें और अवसर आने पर तुरंत कार्यवाही करें। धैर्य, अनुशासन और रणनीति ही किसी भी संघर्ष में जीत की कुंजी है। जो व्यक्ति अपने आप को नियंत्रित कर सकता है और परिस्थितियों का सही आकलन करता है वही वास्तविक जीत हासिल करता है। अपने धन को बुद्धिमानी से सही जगह निवेश करें। सफलता केवल मेहनत करने से नहीं समझदारी और अनुशासन के साथ काम करने से आती है। पैसा अपने आप नहीं आता, इसे बनाने के लिए स्पष्ट योजना और नियमित प्रयास की आवश्यकता होती है। हर दिन हर निर्णय का महत्व होता है, हर कदम सोच समझ कर उठाना चाहिए। धन को बुद्धिमानी से निवेश करना और उसे सही दिशा में काम में लगाना आवश्यक है।
0: जीवन सौरभ।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय।

0: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज सुनिए ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के सूक्त 42 से वाचन। ऋषि है ग्रत्स्मत एवं भार्गव शौनक, देवता है शकुंत एवं छंद है त्रिष्टुप।
1: कनिक्रद जनुषम प्रब्रुवाण इयर्ति वाच मरितेव नावम सुमंगलश्च शकुने भवासि मा त्वा का चिदभिभा विश्वाविदत्। जिस प्रकार मल्लाह नाव को चलाता है उसी प्रकार उपदेश देने वाला शकुनी बार बार उत्तम वाणी द्वारा प्रेरित करता है। हे शकुनी, आप सबके कल्याण करने वाले हों, आपको कोई आक्रमणकारी शत्रु किसी भी प्रकार का कष्ट न दे। मा त्वाश्येन उद्वधीन मा सुपर्णो मा त्वा विददि शुमान वीरो अस्ता पित्रया मनु प्रदिशम कनिक्रदत सुमंगलो भद्रवादी वदेह। हे शकुनी उपदेशक, आपको श्येन दुष्ट व्यक्ति न मारे और न ही गरुड़ पक्षी बलशाली तुम्हें मारे। कोई शस्त्राशस्त्रधारी आपको न प्राप्त कर सके। दक्षिण दिशा अर्थात विपरीत परिस्थितियों में भी कल्याणकारी वचनों का ही यहां उच्चारण करें। अवक्रंद दक्षिणतो ग्रहाणाम सुमंगलो भद्रवादी शकुंते मा नहस्तेन ईशत माघशंसो बृहद्वदेम विदथे सुवीराह। हे शकुनी, आप मंगलमय शब्दों को बोलने वाले हैं, अतः घर की दक्षिण दिशा में बैठकर भी कल्याणकारी प्रिय वचन बोलें। चोर तथा दुष्ट व्यक्ति हमारे ऊपर अधिकार न करें। सुसंतति युक्त होकर हम इस यज्ञ में आपका यशोगान करें।
0: अभी आप सुन रहे थे ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के सूक्त 42 से वाचन, प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम्बू त्रिपाठी।

90.1 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ। अब ये समय है भक्ति संगीत का। भक्ति संगीत लेकर उपस्थित हूँ श्रोताओं, मैं आपके बीच आपकी रेडियो मित्र पूर्वा खले। आइए कार्यक्रम को आरंभ करें इस प्रार्थना के साथ। असतो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर माम अमृतम गमय। हे प्रभु, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलें, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें, और हमारे कर्म ऐसे हों कि मृत्यु से हम अमरता को प्राप्त करें।

श्रोताओं, आप सभी जानते हैं नवरात्र का उत्सव चल रहा है, माँ अंबे की आराधना के दिन चल रहे हैं। आइए भक्ति संगीत को आरंभ करें माँ दुर्गा की इस आराधना से, जगत जननी की आराधना से। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।

न तातो न माता, न बंधुर न दाता, न पुत्रो न पुत्री, न भृत्योर न भर्ता, न जाया न विद्या न वृत्तिर ममैव, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। न ही माता और न पिता, न बंधु न कोई दाता, न मेरे कोई ये बेटा बेटी, न कोई मेरा मालिक, न ही मेरी माता, न विद्या, न ये मेरी वृत्ति, ये सब ही हे माँ आपको समर्पित है, क्योंकि आप ही सर्वो

न जानामि मी दानम न च ध्यान योगम न जानामि तंत्रम न च स्तोत्र मंत्रम न जानामि पूजाम न च न्यास योगम गतिस्त्वम गतिस्त्वम त्वमेका भवानी गतिस्त्वम गतिस्त्वम त्वमेका भवानी। हे माँ, न तो मैं दान करना जानता हूँ, न मुझे ध्यान और योग आता है, न तो मैं इन तंत्रों को जानता हूँ, ना आपका स्तोत्र या मंत्र ही ठीक से पढ़ पाता हूँ। मुझे न तो आपकी पूजा करना आती है, बस मैं तो बस यही जानता हूँ कि हे माँ, मैं तुझे समर्पित हूँ, मैं तेरे चरणों में हूँ।

कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि कुदासः कुलाचारहीनः कदाचारलीनः कुदृष्टि कुवाक्य प्रबंध सदाहम् गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। हे माँ, मुझ कुकर्मी कुसंगी और कुबुद्धि को आप अपनी शरण में ले लीजिए। मैं सही तरह से आचार करना नहीं जानता, सदाचार करना नहीं जानता और मेरा दृष्टिकोण भी स्पष्ट नहीं है माँ। हे माँ, मैं हमेशा कुवाक्यों में गलत विचारों में ही लगा रहता हूँ। बस एक तेरा ही तो सहारा है माँ, मैं तेरे चरणों में हूँ।

अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्षीण दीन सदा जाड्य वक्त्र विपत्तो प्रविष्ट प्रणष्ट सदाहम गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। हेमा, मैं आपके सामने अनाथ दरिद्र बीमारी से युक्त क्षीण और हमेशा ही परेशान इस तरह से खड़ा हूँ। हेमा, मुझे हर विपत्ति से बचाइए, मैं आपकी शरण में हूँ।

जब माँ की आराधना की बात हो और गरबा का जिक्र नहीं आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। आइए श्री कृष्ण और राधा के इस डांडिया रास का आनंद लें।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ और आनंद ले रहे हैं भक्ति संगीत का। आज का ये कार्यक्रम आइए इस प्रार्थना के साथ समाप्त करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यानी कि सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी कोई कष्ट न देखें, सभी को अच्छा देखने को मिले और हे प्रभु किसी को भी कोई दुख न हो। इस प्रार्थना के साथ ही दीजिए अनुमति भक्ति संगीत यही समाप्त करने की। पूर्वाखले को नमस्कार। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ। देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए।

नमस्कार, मैं हूँ मधुश्री और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूँ देश के सभी सैनिकों को जो हमारी देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

देश के वीर जवानों को समर्पित शौर स्मारक की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर संगीत संध्या का आयोजन। सुनिए मिलिट्री बैंड की सांगीतिक प्रस्तुति। इसके साथ ही आप देख सकते हैं शस्त्र प्रदर्शनी 14 अक्टूबर शाम 6 बजे शौर स्मारक अरेरा हिल्स भोपाल, स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन का प्रतिष्ठा आयोजन। आप सभी सादर आमंत्रित हैं।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद पर। मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: ये मेरा इंडिया।
0: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: नमस्कार, मैं हूं अनु कपूर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। मैं प्रणाम करता हूं, नतमस्तक हूं, सलाम करता हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए हरदम तैनात रहते हैं, तैयार रहते हैं। नतमस्तक हूं साथ ही उन सभी क्रांतिकारियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें ये आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग।

इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार। आज हम चर्चा कर रहे हैं महान क्रांतिकारी लाला हरदयाल की। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कभू न छाणे खेत। अर्थात जो दीन दुखियों शोषितों की हित रक्षा के लिए लड़ मरे लेकिन कभी पलायन न करे, वही सच्चा शूरवीर है। इस नारे के साथ भारत से अंग्रेजी राज को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिए गदर पार्टी की स्थापना की गई थी, जिसके संस्थापक सदस्यों में से एक थे महान क्रांतिकारी लाला हरदयाल। लाला हरदयाल उन वीर योद्धाओं में से थे जिन्होंने भारत की स्वाधीनता के लिए अपना संपूर्ण जीवन होम कर दिया। लाला हरदयाल केवल स्वाधीनता संग्राम के एक निर्भीक योद्धा ही नहीं थे, बल्कि वो एक ओजस्वी वाणी के प्रतिष्ठित लेखक और प्रखर पत्रकार भी थे। उन्होंने विदेशों में रह रहे भारतीयों को भारतीय स्वाधीनता संग्राम से जोड़ने का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया था। ये उनकी वाणी, विचार और व्यक्तित्व का ही प्रभाव था कि भारत से बाहर रह रहे अनगिनत युवा उनके आह्वान पर एकजुट हुए और स्वाधीनता समर में कूद पड़े। लाला हरदयाल का जन्म 14 अक्टूबर सन 1884 को दिल्ली में गुरुद्वारा शीशगंज के पीछे स्थित चीराखाना मोहल्ले में हुआ था। उनकी माता का नाम भोली रानी था और पिता गौरी दयाल माथुर दिल्ली के जिला न्यायालय में रीडर थे। उनके परिवार में शिक्षा का वातावरण था और आर्य समाज का गहरा प्रभाव था, इसलिए बचपन से ही लाला हरदयाल की विशेष रुचि पढ़ाई लिखाई की ओर हो गई थी। बचपन में ही उन्होंने श्री रामचरितमानस का अध्ययन कर उसे आत्मसात कर लिया था। धर्म के कर्मकांड में उनका विश्वास नहीं था, लेकिन भारतीय दर्शन और संस्कृति के प्रति उनके भीतर गहरी आस्था थी। लाला हरदयाल अत्यंत तीक्ष्ण मेधा के धनी थे। वो एक साथ कई किताबें पढ़ सकते थे और उसे अपनी विलक्षण स्मरण शक्ति के बल पर दूसरों को सुना भी दिया करते थे। उनके सहपाठी अक्सर उनसे शेक्सपियर के नाटक सुनाने का आग्रह करते और वो न केवल क्रमबद्ध रूप से नाटक सुनाते जाते बल्कि पृष्ठ संख्या भी बताते जाते थे। इस तरह माँ सरस्वती की उन पर विशेष कृपा थी और उन्हें कक्षा में 100% अंक मिला करते थे। उन दिनों दिल्ली में ही एक मास्टर अमीरचंद हुआ करते थे, जिन्होंने भारत की स्वाधीनता के लिए गुप्त क्रांतिकारी संस्था बनाई थी। इसी संस्था से क्रांति के बीज लाला हरदयाल के भीतर पड़े।

लाला हरदयाल की आरंभिक शिक्षा कैम्ब्रिज मिशन स्कूल में हुई। इसके बाद सेंट स्टीफन्स कॉलेज दिल्ली से उन्होंने संस्कृत में स्नातक किया। फिर पंजाब विश्वविद्यालय लाहौर से संस्कृत में ही एमए किया। लाला हरदयाल शुरू से ही भारतीय जीवन मूल्यों के प्रति अति आस्थावान और अत्यंत स्वाभिमानी व्यक्ति थे। लाहौर में यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन में उनका आना जाना था। एक बार इस संस्था के सचिव से उनका विवाद हो गया। इस बहस ने उन्हें अत्यंत आहत कर दिया और उन्होंने तय किया कि वो एक ऐसी ही भारतीय संस्था का गठन करेंगे। इस तरह उन्होंने यंग मैन इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की और दिखा दिया कि उनके लिए भारत और भारतीयता क्या है। अपनी शैक्षणिक योग्यता के बल पर उन्हें 200 पाउंड की छात्रवृत्ति दी गई। आगे की पढ़ाई के लिए वो लंदन चले गए और सन 1905 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में उन्होंने प्रवेश लिया। यहाँ उन्होंने 2 छात्रवृत्तियां और प्राप्त की। ये वो समय था जब भारत में बंग भंग आंदोलन शुरू हुआ और बहुत जल्द इसकी ज्वाला प्रचंड हो गई। भारत की राजनीतिक परिस्थितियों से लाला हरदयाल अत्यंत विचलित हुए। वो अत्यंत योग्य और प्रतिभाशाली युवा थे तथा इंडियन सिविल सर्विसेज यानी ICS के प्रबल दावेदार माने जाते थे। लेकिन अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध उनके भीतर आक्रोश इतना अधिक बढ़ा कि उन्होंने ICS भाड़ में जाए कहकर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय तत्काल छोड़ दिया और देश सेवा में जुट गए। उनका मानना था कि हम उनकी सेवा क्यों करें जिन्होंने हमें गुलाम बना रखा है। उन दिनों लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा भी रहते थे, जिन्होंने देशभक्ति का प्रचार करने के लिए वहीं इंडिया हाउस की स्थापना की थी। इंडिया हाउस से प्रेरित होते हुए लाला हरदयाल ने एक संस्था देशभक्त समाज की स्थापना की और इसमें करतार सिंह सराभा, विष्णु गणेश पिंगले जैसे 6 भारतीयों को पढ़ने के लिए बुलाया। यहां उनकी मदद तेजा सिंह और तारकनाथ दास जी ने की। इसके साथ ही गुरु गोविंद एजुकेशनल स्कॉलरशिप फंड बनाने के लिए एक अमीर किसान ज्वाला सिंह ने भी उनकी मदद की। श्यामजी कृष्ण वर्मा के संपादन में निकलने वाली पत्रिका इंडियन सोशलिस्ट में लाला हरदयाल ने सरकार के विरुद्ध बहुत कड़े लेख लिखे, जिससे प्रभावित होकर कई नवयुवक विद्रोह पर उतर आए।

सन 1908 में लाला हरदयाल भारत लौट आए। बौद्ध दर्शन से भी वो प्रभावित रहे। कुछ समय बाद वो लाहौर के अंग्रेजी दैनिक पंजाबी का संपादन करने लगे। ये लाला हरदयाल की प्रखर वाणी और ओजपूर्ण लेखनी का ही परिणाम था कि अनेक विद्यार्थी कॉलेज छोड़ने लगे और सरकारी कर्मचारी अपनी नौकरियों का त्याग करने लगे। इन परिस्थितियों से भयभीत अंग्रेजी सरकार उन्हें गिरफ्तार करने की योजना में जुट गई। ऐसे समय में लाला लाजपत राय ने उनसे कहा कि तुम्हारे जैसे प्रतिभाशाली युवा का जेल से बाहर रहकर राष्ट्र सेवा करना अत्यंत आवश्यक है, इसलिए तुम पेरिस चले जाओ। इस तरह लाला हरदयाल अब पेरिस आ गए, जहां भीकाजी कामा, श्यामजी कृष्ण वर्मा और विनायक दामोदर सावरकर जैसे महान देशभक्तों के साथ मिलकर वो काम करने लगे। यहां वंदे मातरम पत्रिका का कार्यभार उन्होंने संभाला। उन दिनों तलवार नाम से भी एक पत्रिका निकलती थी, उसमें भी लाला हरदयाल ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध बहुत कड़े लेख लिखे। लाला हरदयाल ने पेरिस में अपना प्रचार केंद्र बनाना चाहा, लेकिन संसाधनों की कमी से ये संभव नहीं हो सका। यहां से वो पुनः अध्यात्म की ओर मुड़ गए। पहले वो अल्जीरिया गए और फिर लामार्तनिक द्वीप में एकांतवास करते हुए वो तप करने लगे। लेकिन बहुत जल्द भाई परमानंद के कहने पर वो पुनः स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय हो गए। अब उन्होंने हिंदू धर्म दर्शन और संस्कृति के प्रचार प्रसार का बीड़ा उठाया। सन 1912 में वो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में हिंदू दर्शन और संस्कृत के व्याख्याता हुए। सरदार सोहन सिंह भाकना जैसे साथियों के साथ मिलकर लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की। लाला हरदयाल ने गदर पत्रिका भी निकाली, जिसका प्रभाव बहुत व्यापक रहा। उन्होंने अपने ओजस्वी व्याख्यान से विदेश में रह रहे युवाओं को भारत लौटने के लिए प्रेरित किया। उनके प्रभाव से लगभग 10,000 युवक भारत लौटे। कितने ही लोगों को रास्ते में गोली से उड़ा दिया गया और अनेक लोग सूली पर चढ़ा दिए गए। लाला हरदयाल ने भाई परमानंद के साथ मिलकर क्रांति की अग्नि को प्रचंड किया और परिणाम ये हुआ कि दोनों ही गिरफ्तार कर लिए गए। भाई परमानंद को पहले फांसी और बाद में काले पानी की सजा हुई, लेकिन लाला हरदयाल अपनी तीक्ष्ण बुद्धि के बल पर बच निकले और जर्मनी तथा स्वीडन में रहते हुए उन्होंने क्रांति की मशाल जलाए रखी। 13 भाषाओं के विद्वान लाला हरदयाल ने अनेक पुस्तकें लिखीं, जिनमें प्रमुख हैं थॉट्स ऑन एजुकेशन, डॉक्ट्रिन्स ऑफ बोधिसत्व, हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स आदि। एक लंबे विदेशी प्रवास के बाद लाला हरदयाल को अंततः सन 1938 में भारत वापस आने की अनुमति प्रदान की गई, लेकिन भारत भूमि के लिए विदेश में रहकर आजीवन संघर्ष करने वाले देश के इस वीर सपूत को जीते जी भारत आने का सौभाग्य नहीं मिल सका। 4 मार्च सन 1938 को फिलाडेल्फिया में उनका आकस्मिक निधन हो गया। नमन ऐसे महान देशभक्त को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम वतन का राग, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल देश के लिए। सुनते रहिए।

0: जिंदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद पर मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
3: ये मेरा इंडिया।
2: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8
1: देश का चैनल देश के लिए। हम हैं
0: रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई।
1: रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
0: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार। पर

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से।
1: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा और आज हम अपने कार्यक्रम इतिहास के पन्नों की 11वीं कड़ी में पहुंच गए।

0: राजा वीर नारायण के चाचा थे, यानी राजा दलपत शाह के छोटे भाई और वीरांगना रानी दुर्गावती के देवर। स्टूडियो में फिर से एक बार हमारे साथ मौजूद हैं प्रसिद्ध पुरातत्वविद डॉक्टर पूजा सक्सेना। पूजा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे स्टूडियो में।
1: नमस्कार।
0: 11वीं कड़ी में भी हमारे श्रोता राह देख रहे हैं कि आप उन्हें कितनी दिलचस्प जानकारियां देने वाली हैं। आपसे सुनना चाहेंगे कि आगे क्या हुआ।
1: रानी दुर्गावती के वीरांगना होने के बाद गढ़ा राज्य का इतिहास तो जैसे बदल ही गया। जैसा आपने कहा, उनके उत्तराधिकारी उनके देवर राजा चंद्र शाह हुए और मुगलों के बीच तो संधि हो ही चुकी थी
0: जी।
1: गढ़ा राज्य को अपने 10 गढ़ जो हैं मुगलों को देने पड़े। हालांकि बाद में अकबर ने वो 10 गढ़ गोंडों को ही वापस लौटा दिए। पर यहाँ गढ़ा में यानी जबलपुर में क्या हुआ, तो हम देखते हैं कि गोंड राजा चंद्रशाह का कुछ छोटा सा राज्य काल है और उसके बाद उनके उपरांत मधुकर शाह हुए और प्रेम शाह हुए, ये सभी गढ़ा के राजा रहे। यहाँ उल्लेखनीय राजा जो हैं वो हैं गढ़ा राज्य के गोंड राजा हृदय शाह। शायद आपने उनका नाम
0: बिल्कुल,
1: सुना
0: बिल्कुल।
1: होगा
0: जी।
1: हृदय शाह 1635 में सिंहासन पर बैठे
0: जी।
1: ये समय था रानी को वीरांगना हुए लगभग 70 वर्ष बीत चुके
0: हो चुके थे जी।
1: तो 1635 में जब हृदय शाह गद्दी पर बैठे, उनके लिए चौरागढ़ से शासन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था।
0: अच्छा।
1: कुछ यहाँ वहाँ से आक्रमण हो रहे थे और नरई के युद्ध के बाद अस्थिरता तो फैल ही गई थी
0: जी।
1: तो हृदय शाह ने एक नया निर्णय लिया और उन्होंने चौरागढ़ से अपनी राजधानी स्थानांतरित कर दी।
0: अच्छा।
1: ये 1651 की बात है
0: जी।
1: और उन्होंने जो अपनी नई राजधानी चुनी वो थी मंडला में ही, और आजकल उसे हम रामनगर के नाम से जानते हैं।
0: अच्छा।
1: तो रामनगर मंडला शहर से लगभग 20 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में है
0: जी।
1: और आजकल ये ऐतिहासिक स्थल है, पुरातात्विक स्थल है और पर्यटन का भी एक बड़ा जाना पहचाना केंद्र है
0: जी।
1: हम ये तो नहीं कह सकते कि रामनगर सामरिक दृष्टि से बहुत उचित स्थान था, लेकिन ये बहुत ही सुंदर जगह है
0: जी।
1: यहाँ नर्मदा नदी कलकल करके बहती है
0: जी, जी।
1: और दूसरी ओर से बंजर नदी का संगम होता है, तो ये दोनों नदियां मिलकर इस स्थान को दो ओर से घेर लेती हैं। हृदय शाह ने इन दोनों नदियों को जोड़ते हुए एक खाई बनवा दी
0: जी।
1: तो अब ये हुआ क्या कि ये जो यू शेप ये जगह थी
0: जी,
1: ये अब चारों ओर से पानी से घिर गई और एक टापू के समान बन गई।
0: वाह।
1: तो देखने में ये बहुत ही सुंदर लगती है, आप कभी जाएं तो यहाँ पर जाकर आपका
0: मतलब
1: दिल।
0: ये जगह हम अभी भी देख सकते हैं जो आप बता रही कि जो हृदय शाह ने बनवाई वो टापू अभी भी है वहाँ पर।
1: बिल्कुल, वो टापू है। हृदय शाह ने जो वहाँ पर बहुत सारी इमारतें बनवाई वो आज भी हम वहाँ पर देख सकते हैं
0: जी।
1: हम साधारणतः जिस तरीके के किलों की कल्पना करते हैं ये वैसा नहीं है। हम जानते हैं कि हृदय शाह जो थे वो एक जाने माने कवि भी थे, तो उनका कवि हृदय रहा होगा
0: जी।
1: और उन्होंने जब स्थान का चुनाव किया तो वो कुछ वैसा ही था जैसे कोई कवि चुनता है। उन्होंने जो उसमें इमारतें बनवाई वो भी बहुत सुंदर है।
0: ये भी सुनते जैसे आपने कहा कि हृदय शाह को कवि हृदय कहा जाता है, वो कविताएं करते थे, और इसके साथ ही कहीं कहीं उल्लेख मिलता है कि उन्हें संगीत का भी ज्ञान था।
1: बिल्कुल, हृदय शाह को तो संगीत का ज्ञाता कहा जाता है, बल्कि हृदय शाह की गणना 17वीं सदी के अच्छे संगीतकारों में होती है।
0: वाह।
1: वह न केवल अच्छे गायक थे, वो एक अच्छे वादक भी थे, और बल्कि उन्होंने संगीत पर 2 पुस्तकें भी लिखी। इन ग्रंथों में शास्त्रीय संगीत की सूक्ष्म विवेचना की गई है और ग्रंथों का नाम है हृदय कौतुक और हृदय प्रकाश।
0: तो लीजिए कितनी अच्छी बात निकल करके यहाँ पर सामने आई है। पूजा जी हमें इतनी अच्छी अच्छी जानकारियां दे रही हैं। हम बात तो कर रहे हैं गोंड राजवंश की, लेकिन उन्हीं के एक राजा जिन्हें आमतौर पर हृदय शाह कहा जाता है, खासतौर पर उस क्षेत्र विशेष में, उनका नाम था हृदय शाह। और वो ना सिर्फ कविताएं करते थे, संगीत के भी ज्ञाता थे, और उन्होंने हृदय कौतुक और हृदय प्रकाश इन 2 पुस्तकों को लिखा था शास्त्रीय संगीत पर जो आधारित हैं। और हमारे श्रोता उन पुस्तकों को यदि हासिल कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात होगी। पूजा जी, कुछ स्थापत्य कला में क्या योगदान दिया हृदय शाह ने, ये जानना चाहेंगे।
1: रामनगर को राजधानी बनाते हुए उन्होंने कुछ इमारतें बनाई जिन्हें आज भी देखा जा सकता है। जैसे रामनगर का विष्णु मंदिर बड़ा ही प्रसिद्ध है।
0: अच्छा।
1: ये गोंड कला का बड़ा सुंदर उदाहरण है। इसके अलावा यहाँ एक मोती महल है, एक राय भगत की कोठी है और एक रानी महल है
0: जी।
1: तो अगर कभी मंडला जाएं और रामनगर का विष्णु मंदिर देखें, बहुत ही सुंदर मंदिर है और गोंड कला का महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसको हृदय शाह की रानी थी सुंदरी देवी, उन्होंने बनाया था सन 1667 में।
0: अच्छा।
1: और मंदिर जब पूरा हो गया तो रानी ने उस मंदिर में एक शिलालेख भी लगवाया। इसी शिलालेख से हमको गढ़ा का जो गोंड राजवंश है उसके बारे में बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं, जैसे कि उनकी वंशावली क्या थी, उनकी उपलब्धियां क्या थी और उन्होंने क्या विशेष कार्य किए। यहाँ तक कि नरई के युद्ध का जो वर्णन है वो भी रामनगर के शिलालेख में किया गया है।
0: अरे वाह।
1: रामनगर का शिलालेख इसी मंदिर में स्थापित था और अभिलेख में ये भी जानकारी है कि इस मंदिर के जो प्रमुख कारीगर थे वो थे दयाराम और भागीरथ।
0: अच्छा।
1: उनको भी इस अभिलेख में पूरा क्रेडिट दिया गया
0: बहुत
1: है।
0: ये कितनी अच्छी बात है। देखिए, नहीं तो अक्सर ये हो जाता है कि इमारतें याद रह जाती हैं लेकिन शिल्पकारों का नाम कोई नहीं जानता।
1: अभी सुरक्षा की दृष्टि से इस अभिलेख को राम मंदिर से स्थानांतरित करके पास ही स्थित मोती महल में रख दिया गया है।
0: अच्छा।
1: इसे पर्यटक आज भी देख सकते हैं। जो ये विष्णु मंदिर है पांच देवताओं को समर्पित है
0: जी।
1: और इसमें शिव, गणेश, दुर्गा और सूर्य की प्रतिमाएं विष्णु के साथ में स्थापित
0: अच्छा।
1: थी
0: जी।
1: अब ये प्रतिमाएं मंदिर में नहीं है लेकिन इसका स्थापत्य जो है वो देखने लायक है। जैसा कि मैंने कहा कि मंदिर की स्थापना रानी सुंदरी देवी ने कराई थी, तो सुंदरी देवी कौन थी वो भी हमको जनश्रुतियों में और इतिहास में उसका भी वर्णन मिलता है
0: जी।
1: तो एक बार राजा हृदय शाह का दिल्ली जाना हुआ
0: जी।
1: और वो मुगल दरबार में रुके, वहां पर एक गायिका थी सुंदरी देवी।
0: अच्छा।
1: तो हृदय शाह भी गायक थे, हम सब जानते हैं, और दोनों का आपस में मिलना हुआ होगा
0: जी।
1: और कुछ ही समय में दोनों के बीच में अनुराग हो गया
0: जी।
1: जनश्रुति के अनुसार हमें पता चलता है कि एक दिन हृदय शाह उन सुंदरी देवी को लेकर मंडला आ गए।
0: अच्छा।
1: तो उन्होंने फिर यहाँ आकर उनसे विवाह किया और सुंदरी देवी ने गोंड राज्य के लिए बहुत सारे अच्छे कार्य करवाए, उसमें से एक है विष्णु मंदिर की स्थापना कराना।
0: तो इस प्रेम विवाह का जो आधार बना वो संगीत बना।
1: बिल्कुल, आधार इसका संगीत था और स्थापत्य में भी आप उसकी सुंदरता देख सकते हैं।
0: जी जी बिल्कुल।
1: ये पंचायतन शैली का मंदिर है, जैसे हम पहले भी वर्णन करते आ रहे थे कि गोंड काल में पंचायतन शैली का विकास हुआ और उसमें खासियत ये थी कि पांच गर्भगृह होते हैं
0: जी।
1: हमने उसको पचमठा नाम भी दिया
0: बिल्कुल,
1: था
0: बिल्कुल।
1: जिसमें कि एक मुख्य गर्भगृह और पांच देवकुलिकाएं होती हैं
0: जी।
1: तो चारों कोनों पर छोटे छोटे गर्भगृह होते हैं, इसको देवकुलिका बोलते हैं और एक गर्भगृह के चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ होता है। तो इस विष्णु मंदिर में भी एक मुख्य देवकुलिका है
0: जी।
1: और उसके चारों ओर छोटी छोटी चार देवकुलिकाएं हैं
0: जी।
1: तो ये चारों देवकुलिकाएं आयताकार जो कक्ष है
0: जी।
1: उसके चारों कोनों पर स्थित हैं
0: जी।
1: तो जब आप इसके चारों तरफ प्रदक्षिणा लेंगे तो इन चारों देवकुलिकाओं में जो स्थापित देवता थे उनके दर्शन किए जा सकते थे। वर्तमान में ये प्रतिमाएं अब नहीं है।
0: अब नहीं है जी, जी।
1: जो मंदिर की छत है वो गुंबजाकार है और छत के चारों तरफ से छज्जे निकले हुए हैं। तो छज्जों के नीचे जो तोड़े होते हैं यानी जो ब्रैकेट्स होते हैं वो बहुत ही सुंदर हैं इस मंदिर के। मंदिर के दरवाजे हैं वो मेहराबदार हैं और इस मंदिर का जो संरक्षण करता है वो मध्य प्रदेश का राज्य पुरातत्व विभाग है।
0: अच्छा। पूजा जी, आपने एक महल का भी जिक्र किया था इस एपिसोड में विष्णु मंदिर के पहले, तो उस महल के बारे में आपसे जानना चाहेंगे।
1: विष्णु मंदिर की तरह ही रामनगर में मोती महल भी देखने लायक है। ये जो महल है वो राज परिवार का निवास हुआ करता था।
0: अरे वाह।
1: इसलिए इसको राजा महल के नाम से भी जानते हैं। पर इसके लिए एक स्थानीय किंवदंती है और वो बड़ी मजेदार है
0: जी।
1: जैसा जानते हैं कि हृदय शाह एक बहुत अच्छे गायक कवि भी थे
0: जी।
1: लेकिन उन्हें तंत्र विद्या का भी ज्ञान था, ऐसा भी लोग कहते हैं। तो एक स्थानीय किंवदंती है जिसमें कहते हैं कि हृदय शाह ने तंत्र विद्या से इस मोती महल का निर्माण सिर्फ 2.5 दिन के अंदर कर लिया था। जो निर्माण के लिए पत्थर आए थे वो पास ही एक काला पहाड़ है वहां से उड़ उड़ कर आए थे।
0: ऐसी
1: जनश्रुति है।
0: जी, जी।
1: असल में क्या है कि रामनगर के निकट जो काला पहाड़ है वहाँ के अगर आप पत्थर देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तराशे हुए पत्थर हैं। मान लीजिए कि अष्टकोणीय ऑक्टोगोनल खंबे किसी ने तराशे हों।
0: अच्छा।
1: और बिल्कुल एक से और उन्हें बिल्कुल पास पास सटा के रख दिया हो
0: जी।
1: पूरा पहाड़ ही बन गया हो ऐसा दिखाई देता है ये काला पहाड़। लोगों का मानना है कि यहाँ जो अष्टकोणीय खंबे दिख रहे हैं वही उड़ उड़ कर यहाँ से गए और जल्दी से हृदय शाह ने मोती महल का निर्माण कर दिया
0: जी।
1: पर अगर हम इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो इन अष्टकोणीय खंबों का होना एक भूगर्भीय हलचल का परिणाम है।
0: बिल्कुल, क्योंकि जो मंडला घाटी नर्मदा घाटी जो है वहां पर भूगर्भीय हलचलें पहले भी होती थी और अभी भी हमेशा अंदेशा जो है वो मंडराता रहता है।
1: हाँ, ये जो अष्टपहलू पत्थर हैं ये प्राकृतिक हैं, इन्हें तराशा नहीं गया है। जब भूगर्भीय हलचल होती है और ज्वालामुखी से लावा बहकर किसी स्थान पर जमा हो जाता है और जरूरत से ज्यादा जल्दी यानी कि कम समय में ठंडा हो जाता है तब उस लावा में दरारें पड़ जाती हैं।
0: अच्छा।
1: और अष्ट फलकीय पत्थर में वो तब्दील हो जाती है।
0: अच्छा।
1: इस तरीके से दरारें पड़ती हैं कि अष्ट फलकीय संरचनाएं बन जाती
0: हैं। हाँ, प्राकृतिक रूप से तैयार हो जाती
1: बन जाती हैं। तो वो कुछ ऐसा लगता है जैसे ऑक्टोगोनल खंबे एक के बाद एकदम सटाकर लगा दिए गए हों। तो पूरा की पूरा काला पहाड़ ही ऐसा है।
0: अच्छा।
1: और क्योंकि इसी काले पहाड़ के पत्थरों का उपयोग मोती महल और अन्य इमारतों को बनाने में किया गया था तो ये जनश्रुति प्रचलित हो गई। तो मोती महल भी देखने में बड़ा सुंदर है। इसमें प्रवेश के लिए एक बड़ा सुंदर मेहराबदार द्वार है और आप जब अंदर जाएंगे तो एक बड़ा सा चौकोर प्रांगण है और इस प्रांगण के बीच में एक बड़ी सी हौज है जिसके अंदर पानी भरा रहता होगा, उसमें रंगीन मछलियां छोड़ते होंगे जो भी उस समय होता हो। और इस प्रांगण के चारों तरफ कई सारे कक्ष बने हुए हैं जो राजा रानी के निवास के लिए थे। उसी में दीवाने आम था, दीवाने खास था। और ये महल कई मंजिला है।
0: अच्छा।
1: अगर आप इसकी छत पर जाएंगे तो चारों कोनों पर चार ऐसे कक्ष हैं जिनकी छत गुंबजाकार है और इस पर जो चूने से स्टकोवर किया गया है, जो अलंकरण किया है वो भी बड़ा ही खूबसूरत लगता है। और कई बार तो लोग इसे खरबूजा गुंबज भी कह देते हैं।
0: अच्छा।
1: क्योंकि इसका आकार कुछ अलंकरण के कारण खरबूजे जैसा धारीदार दिखने लगता है तो खरबूजा अलंकरण के नाम से भी ये जाना जाता है। इसके पास ही अस्तबल है, हाथीशाला भी रही होगी।
0: अच्छा।
1: और खेल का कुछ मैदान भी रहा होगा। तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। और अगर आप मोती महल की छत पर से मंडला को देखते हैं, जो नर्मदा नदी दिखाई देती है, बंजारा नदी दिखाई देती है और दूर दूर तक जो जंगल दिखाई देते हैं वो बहुत ही खूबसूरत होते होंगे। जब हृदय शाह यहाँ गाते होंगे, जब महफिलें जमती होंगी तो ये देखने लायक दृश्य होता होगा।
0: निश्चित रूप से वहाँ स्वयं हृदय शाह भी गाते होंगे, उनकी पत्नी भी गाती होंगी और संगीत की बहुत सारी महफिलें, बहुत सारी सभाएं भी वहाँ पर आयोजित की गई होंगी।
1: जी हाँ, सुंदरी देवी तो खुद गाने की शौकीन थी।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैम, ये महल क्या आज भी पर्यटकों के लिए खुला है, जा सकते हैं?
1: बिल्कुल, ये राज्य पुरातत्व विभाग मध्य प्रदेश का संरक्षित स्मारक है। तो इन सभी में, चाहे मोती महल हो, चाहे विष्णु महल हो, और इसके पास ही एक राय भगत की कोठी भी है।
0: अरे वाह,
1: आपने स्टेशन भी सुना होगा, भगत की कोठी
0: सुना है। बिल्कुल। तो मैम, इस कोठी के बारे में जानना चाहेंगे कि जैसे मोती महल था वहाँ पे राज परिवार रहा करता था, तो राय भगत की कोठी इसे क्यों कहा जाता है, यहाँ कौन रहते थे?
1: राय भगत हृदय शाह के समय उनके खास मंत्री थे।
0: अच्छा।
1: और उन्हीं के एक विशाल महल है जिसको राय भगत की कोठी कहते हैं।
0: अच्छा।
1: मोती महल से लगभग आधा किलोमीटर आप जाएं अगर पूर्व की तरफ तो एक रामनगर धंधरी सड़क पड़ती है
0: जी।
1: और उसी पर एक ऊंचा सा टीला दिखाई देता है, वहां पर ये महल है। और ये राय भगत का महल भी कहलाता है, राय भगत की कोठी के नाम से भी जाना जाता है। राय भगत को भगत राय भी कहा जाता है
0: जी जी।
1: और जब भी हृदय शाह के प्रिय मित्रों की बात आती है तो भगत राय की बात जरूर आती है। कई किस्से भी इन दोनों के आपस में
0: जी।
1: बड़े लोग सुनाया करते हैं
0: जी।
1: और ये जो राय भगत थे ये पठारी या प्रधान जाति के थे, इसलिए इनके किस्से बड़े प्रधानों में मशहूर हैं दोनों की दोस्ती के
0: जी जी।
1: तो हृदय शाह के लिए ये राय भगत की कोठी बनाई गई
0: जी।
1: ये दक्षिण की तरफ मुंह करके बनी है और इसका भी जो प्रवेश द्वार है बड़ा ही भव्य है
0: जी।
1: बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि मोती महल से भी ज्यादा भव्य है।
0: अरे वाह।
1: और इसमें जो प्रवेश द्वार है उस पर संगमरमर का उपयोग किया गया है जो इस काल में बहुत कम होता था, खासकर मध्य भारत में। और प्रवेश द्वार के ऊपर नौबत खाना बना है। नौबत खाना जहाँ पर जब राजा का आगमन होता है तब नगाड़े बजाए जाते थे।
0: अच्छा।
1: फूलों की वर्षा होती थी
0: जी।
1: तो प्रवेश द्वार के दोनों ओर तीन तीन खिड़कियां भी बनी हुई हैं, बहुत बड़ी विशाल खिड़कियां हैं और दीवार के ऊपर कंगूरे बने हुए हैं। तो ऐसा कहीं कहीं आपको लगेगा कि ये महल है कि किला है। तो दोनों के जो आर्किटेक्चरल फीचर्स हैं दोनों को मिक्स किया है। और महल के जो कोने हैं वहाँ पर खासकर निकले हुए कक्ष भी बने हुए हैं जो बड़े आकर्षित लगते हैं अलंकरण के कारण। और इनकी छतें भी वैसी हैं जैसी मोती महल की गुंबजाकार छतें हैं, धारीदार छतें हैं, खरबूजे
0: अच्छा,
1: जैसी इनके भी गुंबज वैसे ही हैं। और जो राय भगत की कोठी की खास बात है वो यहाँ के भित्ति चित्र हैं।
0: अच्छा।
1: मतलब कि छत पर दीवारों पर बहुत सारा चित्रण किया गया है। खासकर जब हम प्रवेश करते हैं महल के अंदर तो जो मुख्य प्रवेश द्वार है उसकी जो छत है उस पर आज भी बड़ा सुंदर अलंकरण उस काल का देखा जा सकता है। इसमें लाल, हरा, नीला, पीला कई रंग यूज किए हैं। और जैसा हम जानते हैं कि उस समय रंगों के लिए खनिज पत्थरों का उपयोग किया जाता था। खासकर ये पत्थर जो हैं वो भारत में नहीं मिलते, ये मध्य एशिया से बुलाए जाते थे।
0: अच्छा।
1: और इन पत्थरों को घिसकर रंग तैयार किया जाता था। जहाँ कहीं भी इस तरीके की चित्रकारी करनी होती थी तो वहां पर फिर बहुत चिकना चूने का प्लास्टर तैयार किया जाता था, एकदम सफेद, खूबसूरत, चिकना। और उसके बाद अलंकरण जैसा भी तैयार किया गया हो तो फिर इन खनिजों को तैयार करके इनका पाउडर बनाकर इसमें जो प्राकृतिक गोंद होती है उसको मिक्स किया करते थे, उससे मिक्स करके उसको बना लिया करते थे, रंग पक्के हो जाया करते थे। और फिर इनको छतों पर लगाया जाता था, सुंदर ज्यामिति अलंकरण या फूल पत्तियों का अलंकरण इसमें किया जाता था। जैसा हम जानते हैं कि छत पर उल्टा ब्रश चलाना बड़ा मुश्किल है
0: जी।
1: लेकिन उसके बावजूद आप देखेंगे कि जो रंगों का संयोजन है, जो चित्रकारी है, वो देखते ही बनती है।
0: श्रोताओं को तो हमारे लग ही रहा होगा कि बिल्कुल अब वो भागकर बिल्कुल रामनगर जाएं, मंडला जाएं। और पूजा जी ने इतनी अच्छी अच्छी हमें जानकारियां दी हैं, ना सिर्फ ये इतिहास से संबंधित हैं, ना सिर्फ ये गोंड राजवंश से संबंधित हैं। आज का तो हमारा एपिसोड बिल्कुल पर्यटन और संगीत के लिए भी बहुत विशेष रूप से खास रहा है। पूजा जी, इतने सारे जो आज आपने हमें चीज़ें बताई कि राजा हृदय शाह ने मंडला में अपनी राजधानी यहाँ पर स्थापित की, दूसरी जगह लेकर के आए जिसे आज हम रामनगर के नाम से जानते हैं, वहाँ पर विष्णु मंदिर, मोती महल, राय भगत की कोठी और रानी महल का आपने जिक्र किया, लेकिन राजा हृदय शाह के बाद गढ़ा मंडला का क्या हुआ?
1: हृदय शाह का शासनकाल 1671 ईस्वी तक रहा।
0: अच्छा।
1: और उसके बाद उनके वंशजों ने शासन किया जिसमें छत्रशाह हुए, केसरी शाह, हरि सिंह, पड़ार सिंह और इसके बाद हम देखते हैं नरेंद्र शाह। तो नरेंद्र शाह ने भी अपने लिए मंडला में ही एक नई राजधानी बनाई।
0: अच्छा।
1: अब उसके अवशेष ना के बराबर हैं, केवल एक बुर्ज रह गया है
0: जी।
1: पर नरेंद्र शाह के बाद भी बहुत से राजा हुए और फिर 1780 ईस्वी में गढ़ा का यह क्षेत्र सागर के जो मराठा शासक थे उनके अधीन हो गया। यहाँ से फिर गढ़ा मंडला का इतिहास बदल गया।
0: मतलब 1780 तक गढ़ा मंडला पर गोंड राजवंश का शासन रहा।
1: जी हाँ, संग्राम शाह से लेकर और हम देखते हैं कि सुमेर शाह तक गढ़ा मंडला पर लंबे समय तक गोंड राजवंश ने अपना योगदान दिया।
0: अपना योगदान दिया। वाह, तो श्रोताओं आज बहुत अच्छी अच्छी हमें जानकारियां मिली हैं। राजवंश की हम पिछले अपने इतने सारे एपिसोड से बात कर रहे हैं, हमने कहानी देखी संग्राम शाह जी की, हमने बात की रानी दुर्गावती की जो कि गढ़ा राजवंश की सबसे मुख्य शासिका के रूप में भी जानी गई, बहुत सारे कार्य उनके हुए और मुगल दरबार तक उन्होंने हिला दिया था। उसके बाद हमने बात की हृदय शाह की और फिर उनके कुछ और उत्तराधिकारियों ने वहां पर राज किया, गढ़ा मंडला पर जाकर के गोंड राजवंश का शासन समाप्त हुआ। पूजा जी ने हमें ये जानकारियां दी, बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी इतनी अमूल्य जानकारियों के लिए। आगे भी अपने अगले एपिसोड में आपसे कुछ और जानकारियां आपसे चाहेंगे, इतिहास के पन्ने हम खोलते रहेंगे कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से में। अभी वक्त है आपसे विदा लेने का, मैं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा आपसे इजाजत लेता हूं। इस एपिसोड का ध्वनि अंकन और ध्वनि संपादन किया अमित कुंदानी ने, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ देश का चैनल, देश के लिए रेडियो आजाद हिंद। इतिहास के पन्नों से, इतिहास के पन्नों से।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए। अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।
3: देश के वीर जवानों को समर्पित शौर्य स्मारक की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर संगीत संध्या का आयोजन, सुनिए मिलिट्री बैंड की सांगीतिक प्रस्तुति। इसके साथ ही आप देख सकते हैं शस्त्र प्रदर्शनी 14 अक्टूबर शाम 6 बजे शौर्य स्मारक अरेरा हिल्स भोपाल, स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन का प्रतिष्ठा आयोजन। आप सभी सादर आमंत्रित हैं।

भूमध्य सागरीय मूर, मेडिटेरेनियन मूर्स, यानी वैश्विक अर्थव्यवस्था के असली उस्ताद। क्या आप जानते हैं कि जब वास्को डिगामा सन 1498 में कालीकट पहुंचा, तो उसका सामना आदिम आदिवासियों से नहीं बल्कि ऐसे व्यापारियों से हुआ जो उनसे कहीं अधिक भाषाएं जानते थे और वैश्विक अर्थव्यवस्था को बेहतर समझते थे। पुर्तगाली अपने साथ रिकॉन विस्टा की मानसिकता लेकर आए थे, जहां वे पूरी दुनिया को केवल ईसाई और मूर यानी मुसलमानों के द्विआधारी चश्मे से देखते थे। उनकी अज्ञानता का आलम यह था कि उन्होंने हिंदू मंदिरों को भी चर्च समझ लिया। अमले में शामिल जोआओ नुनेस एक डेग्रेडादो यानी निर्वासित अपराधी था। गामा, जो हमले के डर से खुद तट पर उतरने से घबरा रहा था, उसने नुनेस को एक प्रयोग के तौर पर कालीकट के हलचल भरे बंदरगाह में भेजा। नुनेस का सामना ट्यूनीशिया के दो व्यापारियों से हुआ जो उस समय के मुआरो ब्रोंकोस यानी सफेद मूर नेटवर्क का हिस्सा थे। ये व्यापारी सोना, चांदी और बेहतरीन कपड़ों का व्यापार करते थे। जैसे ही उन्होंने पुर्तगाली अपराधी को देखा, उन्होंने उसकी ही भाषा में कास्टेलियन और जेनाइस के मिश्रण में चिल्लाकर कहा, शैतान की कसम, तुम यहाँ क्या करने आए हो? इन ट्यूनीशियाई व्यापारियों का जीवन उस वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था का सबूत था जो पुर्तगालियों के आने से बहुत पहले से फल फूल रही थी। जब नुनेस ने कहा कि वे ईसाई और मसाले खोजने आए हैं, तो ट्यूनीशियाई डरे नहीं बल्कि उन्हें हंसी आ गई। उन्हें आश्चर्य इस बात पर था कि वेनिस, फ्रांस या स्पेन जैसी बड़ी शक्तियों ने पहले यहाँ अपने लोग क्यों नहीं भेजे। ये बिचौलिए एक ऐसे अंतरराष्ट्रीय कुलीन वर्ग का हिस्सा थे जो जितना लेवेंट यानी भूमध्य सागर का पूर्वी तट में सहज थे, उतने ही भारत के तटों पर भी। वे पुर्तगालियों की तरह स्थानीय रीति रिवाजों से भ्रमित नहीं थे, वे भू राजनीति के उस्ताद थे। उनमें से एक व्यापारी ने नुनेस पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें भगवान का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वे उन्हें ऐसी भूमि पर ले आए जहाँ इतनी दौलत है। इसका सीधा मतलब ये था कि पुर्तगाली किसी महान योजना के तहत नहीं बल्कि अंधे की तरह भाग्य के भरोसे इस खजाने तक पहुंच गए हैं। इन बहुभाषी ट्यूनीशियाई लोगों की मौजूदगी हमें ये याद दिलाती है कि खोजों का युग, जिसे हम एज ऑफ डिस्कवरी कहते हैं, अक्सर उन दुनियाओं के साथ आमना सामना था जो पश्चिम की भाषाओं और बाजारों से पहले से ही गहराई से परिचित थीं।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। आइए सुनते हैं कार्यक्रम टेक गुरु।
2: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर यह रेडियो आजाद हिंद है। अब वक्त है कार्यक्रम टेक गुरु का। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं डॉक्टर रोहित त्रिवेदी जी से,
3: जो इंग्लिश के प्रोफेसर हैं भोपाल स्थित सरोजनी नायडू गवर्नमेंट गर्ल्स पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में। टेक गुरु कार्यक्रम के तहत हमने उनसे बात की, तो आइए सुनते हैं डॉक्टर रोहित त्रिवेदी से ये बातचीत।
4: सर, सबसे पहले हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो लेकिन कुछ हम आपके बारे में जानना चाहते हैं। आप हमें अपनी जर्नी के बारे में बताइए। सर,
5: मैं यहाँ वर्तमान में प्रोफेसर हूँ सरोजनी नायडू गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज भोपाल में। और यदि बात करें तो बचपन से ही मैं दृष्टिहीन हूँ, और बाय बर्थ इनफैक्ट। और शुरू में मेरी पढ़ाई जो दृष्टिबाधित लोगों के लिए स्कूल्स होते हैं, स्कूल फॉर द ब्लाइंड, उसमें हुई। और फिर प्रयास किए कि कैसे, मैंने रेगुलर स्कूल्स में एडमिशन मिलने में बड़ी दिक्कत होती थी, पर फिर पढ़ाई हुई और उस टाइम पे किताबें वगैरह मिलती नहीं थी, तो बाद में तो शुरू में तो लोग सुनाते थे पढ़ के, बाद में फिर कैसेट रिकॉर्डर पे रिकॉर्ड कर करके अपने लेसन्स तैयारी वगैरह करी। 1989 में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ गवर्नमेंट पीएससी के थ्रू, और मैंने सिलेक्शन हुआ उसके बाद में, और मैं प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर बना कॉलेज में। तो 1993 में हम लोगों को पता पड़ा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में एक इनोवेशन हुआ है, और उन्होंने कोई स्पीच सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जिसको कंप्यूटर पे लगा के, एक बॉक्स को जो कुछ कंप्यूटर स्क्रीन पे है उसको हम स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं कंप्यूटर पे जो कुछ भी है। तो ऐसे हम लोगों ने यहाँ पे एक वर्कशॉप कराई ब्लाइंड लोगों के लिए, और इस तरह से कंप्यूटर पे फिर मैंने अपना खुद का कंप्यूटर लिया और कंप्यूटर सीखना शुरू किया। और फिर हम लोगों ने एक संस्था है यहाँ पे आरुषि करके, तो उसमें हम लोगों ने कंप्यूटर सेंटर शुरू किया जहाँ हमने ब्लाइंड बच्चों को कंप्यूटर सिखाना शुरू किया। तो कंप्यूटर सीखने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि अभी तक बच्चे जो थे वो अपनी पढ़ाई के लिए ऑडियो पे डिपेंडेंट थे या ब्रेल पे डिपेंडेंट थे, ब्रेल में किताबें होती नहीं थी। और दूसरी बात यह है कि अगर उनको अपने लिख कर कोई चीज़ कम्युनिकेट करना है तो उनके पास कोई साधन नहीं था। तो ये इट वाज अ बिग रेवोल्यूशन इन दोज डेज कि अब चाहो तो आप अपनी बात कंप्यूटर पे लिख सकते हो और प्रिंट करके अपने बात भेज सकते हो या मेल के माध्यम से भेज सकते हो। तो ऐसे हम लोगों ने शुरुआत करी टेक्नोलॉजी की।
4: तो सर, इस तरह से टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई, अपने पढ़ाई की, और इतना आपने सारा अपनी जर्नी हमसे शेयर की, तो वो बीच में सर और कौन कौन सी टेक्नोलॉजी से आपका जुड़ाव होता रहा?
5: देखिए, अगर जहाँ तक हम दृष्टिबाधित लोगों के लिए कहें तो हम टेक्नोलॉजी को 3-4 तरह से समझ सकते हैं। एक तो हमारे पास में कंप्यूटर पे टेक्स्ट टू स्पीच स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर होता है। इसका मतलब ये है कि जो जो कुछ कंप्यूटर के स्क्रीन पे दिखता है स्क्रीन टेक्स्ट, उस वो पूरा स्पीच में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो टेक्स्ट टू स्पीच स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर का काम ये होता है कि जो कुछ कंप्यूटर की स्क्रीन पे अवेलेबल है वो टेक्स्ट में, इन स्पीच में कन्वर्ट कर दे। साथ ही साथ, क्योंकि मान लीजिए उसमें ये भी फैसिलिटी होती है कि जो आपको छोटी छोटी जो बारीकियाँ होती हैं वो भी आपको कमांड दे के आप उससे इन्फॉर्मेशन ले सकते हो सॉफ्टवेयर के माध्यम से। फ़र्ज़ कीजिए हम एक डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं और उस डॉक्यूमेंट में मान लीजिए कुछ हमको चीज़ें बोल्ड में करना है, इटैलिक्स में करना है, उसका कलर चेंज करना है, तो सॉफ्टवेयर में अगर हम एक कमांड देंगे कि उसमें ये फॉन्ट कौन सा है, उसका टाइप क्या है, उसका कलर कौन सा है, कित लाइन स्पेसिंग क्या है आपकी, सिंगल स्पेसिंग है कि डबल स्पेसिंग है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको सॉफ्टवेयर में कमांड के माध्यम से स्पीच में मिल जाएगी। तो इससे क्या है कि जो ब्लाइंड व्यक्ति है वो इंडिपेंडेंटली अपना पूरा काम कंप्यूटर पे कर सकता है। तो एक तो ये टेक्स्ट टू स्पीच स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर हो गया। इसके अलावा जो लोग थोड़ा देख सकते हैं तो उनके लिए मैग्निफिकेशन की फैसिलिटीज़ है या मैग्नीफाइंग सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर स्क्रीन पे है उसको बड़ा करके देख सकते हैं, लार्ज फॉन्ट में आ जाता है। और ऐसे ही अगर आपको कंप्यूटर के आने के बाद में लार्ज प्रिंट की बुक्स निकालना भी बड़ा सरल हो गया है कि अगर आप चाहें तो जो बच्चे कम देख पाते हैं और वो बड़े अक्षर पढ़ सकते हैं तो हम किताबों को लार्ज फॉन्ट में तैयार कर सकते हैं। फिर किताबों को में जो अक्षर लिखे हैं उसको मैग्नीफाई करने के लिए मैग्नीफायर्स आ गए हैं काफ़ी सारे, तो वो मैग्नीफाई कर देते हैं। लो विजन वाले लोगों के लिए एक एडवांटेजेस चीज़ हो जाती है। दूसरा एक चीज़ और है, उसको बोलते हैं रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले। तो रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले में क्या होता है, इसको हम अपने कंप्यूटर से लगाते हैं, तो कंप्यूटर में अगर लगा दिया तो जो कुछ कंप्यूटर स्क्रीन पे है वो ब्रेल में सीधे आ जाएगा, ठीक है। तो ये ब्रेल डिस्प्ले कहलाता है। और उसमें ब्रेल डिस्प्ले के का अगर हम आप बताएं तो ब्रेल में 6 डॉट्स होते हैं, तो वो पूरी एक लाइन जो है वो टेक्स्ट जो है वो ब्रेल में कन्वर्ट हो जाएगा अलग अलग। तो ये एक चीज़ हो गई। और तीसरा ये है कि हम एक और टेक्नोलॉजी है जिसको बोलते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर मान लीजिए हमारे पास में कोई इमेज फाइल है, तो इमेज फाइल को हम टेक्स्ट में कन्वर्ट करके टेक्स्ट टू स्पीच स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से कंप्यूटर या फ़ोन के माध्यम से हम उसको सुन सकते हैं। तो मान लीजिए आपने कोई चीज़ की फ़ोटो खींची, किताब को पूरा स्कैन कर लिया, स्कैन करके उसको इमेज में कन्वर्ट कर लिया, इमेज को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लिया और टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट कर लिया। अब ये सारे सॉफ्टवेयर जो पहले कंप्यूटर में थे वो कंप्यूटर से मोबाइल पे भी आ गए। तो अगर आपके पास में एंड्रॉयड फ़ोन है तो हर एंड्रॉयड फ़ोन में एक अंदर एक सेटिंग के अंदर एक फीचर होता है एक्सेसिबिलिटी करके। एक्सेसिबिलिटी में अलग अलग डिसेबिलिटी वाले लोगों के लिए क्या क्या अकोमोडेशन हो सकते हैं, तो खास तौर पे एक सॉफ्टवेयर होता है टॉकबैक। तो टॉकबैक को अगर आप चालू करेंगे तो कोई भी मोबाइल फ़ोन बोल पाएगा, स्पीच में कन्वर्ट हो जाए। तो मोबाइल का सारा काम जो है वो इंडिपेंडेंटली ब्लाइंड व्यक्ति कर सकता है। किताबों को सुनना है पढ़ना है तो वो मोबाइल फ़ोन से ही अपनी किताबों को सुन सकता है। तो इसलिए टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुकी है अभी। अब इस पूरे इको सिस्टम का यूज़ करते हुए अब क्या किया है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने, जैसे हमारे यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है डेजी फोरम ऑफ इंडिया। तो डेजी फोरम ऑफ इंडिया इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कि 100 से अधिक ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि ब्लाइंड बच्चों के लिए किताबों को एक्सेसिबल फॉर्मेट में तैयार करते हैं। तो उन्होंने क्या किया है, अपनी सारी किताबों को एक वेबसाइट बनाई और उस पर अपलोड कर दिया। उसका नाम है सुगम्य पुस्तकालय। तो सुगम्य पुस्तकालय के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं कि किताबों को लोगों तक पहुंचाने के लिए हम उसको अपलोड कर दिया ई टेक्स्ट फॉर्मेट में, या फिर इवन ऑडियो बुक्स को भी हम उसमें अपलोड कर सकते हैं किताबों को रिकॉर्ड करके। तो और फिर जो बच्चे हैं अपने मोबाइल पे उनके ऐप होगा और वो ऐप के माध्यम से या उसको हम लोग मोबाइल पे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर स्पेसिफिक इन किताबों को सुनने के लिए प्लेयर्स बने हैं जिनको बोलते हैं डेजी प्लेयर। डेजी मतलब होता है डिजिटल एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम, DAISY। तो इसके माध्यम से हम डेजी प्लेयर के माध्यम से किताबों को सुन सकते हैं। और ये जो है स्पेसिफाइड फॉर्मेट में किताबें तैयार होती हैं, जैसे कि आम बच्चा जो है साइटेड बच्चा है किताब को पेज वाइज हेडिंग वाइज सब अंदर के सब हेडिंग्स वो आराम से सुन देख सकता है पढ़ने पलट के। तो हम किताब में भी ये फैसिलिटी है, ऑडियो बुक में भी या ई टेक्स्ट में भी, कि उसको हम इस तरह से फॉर्मेट डिज़ाइन करते हैं कि वो किताब मान लीजिए मुझे 115 पेज पे जाना है तो मैंने बस टाइप किया 115 तो किताब का 115वां पेज से आप पढ़ना शुरू करोगे। तो इससे जो एक कैसेट रिकॉर्डर जब हम रिकॉर्ड को रिकॉर्ड करते थे उसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या होता था कि मान लीजिए अगर एक बार कैसेट रिकॉर्ड किए तो वो या लीनियर रिकॉर्डिंग होती थी तो कि आपको पता नहीं होता था कि कौन सी आपका मान ली किताब जो है 12 घंटे की किताब है तो आपका जो चैप्टर वो दूसरे नंबर के कैसेट में है कि 5वें नंबर के कैसेट में है कि 8वें नंबर के कैसेट में है। और फिर हमको उस चैप्टर के भी पार्टिकुलर सब सेक्शन में जाना है या हमको सिर्फ उसकी क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने क्वेश्चंस देखने, तो वो हमको पता नहीं होता था। पर यहाँ पर ये फैसिलिटी है कि हम स्किप कर सकते हैं या नेविगेट कर सकते हैं अपने स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए।
4: सर, आपने इतनी डिटेल में हमें बताया और सवाल और मेरे मन में उठा कि आपने इतनी कंप्यूटर और मोबाइल में सब तमाम तरह की टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, आज लोग जो यूज़ करते हैं इस टेक्नोलॉजी को, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा उनको मिल रहा होगा।
5: जी, उनका जो
4: हर क्षेत्र में,
5: हाँ, लोगों पे डिपेंडेंस ख़त्म हो गया है। बच्चे जो है वो अपने आप अपना पढ़ाई कर लेते हैं, अपने आप लिख लेते हैं। अब तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी CBSE ने अलाउ कर दिया है लोगों को कि ब्लाइंड बच्चे कंप्यूटर पे अपना एग्ज़ाम खुद इंडिपेंडेंटली दे सकते हैं। अभी तक उनको लिखना अपने राइटर पे डिपेंड करना होता था कि राइटर जो लिखेगा वो उनको डिपेंडेंट होना पड़ता था उनको राइटर पे। अब उनको राइटर पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता, वो चाहें तो अपना अगर उनमें प्रैक्टिस कर ली है तो वो इंडिपेंडेंटली अपना एग्ज़ाम कंप्यूटर पे खुद दे सकते हैं। तो एक वो कॉन्फिडेंस, कई लोगों के तो 90% से ऊपर 98% तक मार्क्स आए कंप्यूटर पे एग्ज़ाम देने के बाद में, तो वो एक फ्रीडम मिल गई है। फिर ऐसे फील्ड्स जहाँ पे वो अभी तक काम नहीं कर पाते थे, पढ़ाई नहीं करते थे, उन फील्ड्स में उनकी पढ़ना शुरू कर दिया। लोग IT के फील्ड में जा रहे हैं, विजुअली इम्पेयर्ड पीपल दे आर गोइंग IT का जो फील्ड है, कंप्यूटर साइंस है, मैनेजमेंट है, MBA कर कर के लोग आगे निकल रहे हैं और कॉरपोरेट सेक्टर्स में उनको एम्प्लॉयमेंट्स मिल रहे हैं, फाइनेंस में, HR में, मार्केटिंग में। वो सब लोग जो हैं, अगर आप अपने आप को इक्विप रखेंगे, अपने आप को अप टू डेट रखेंगे, पढ़ाई अच्छी करेंगे और सबसे बड़ी बात है इंडिपेंडेंटली काम कर पाएंगे, तो आप बहुत सारे फील्ड्स में अब उनके लिए ओपनिंग्स शुरू खुल गई हैं, नौकरियाँ मिलने लगी हैं लोगों को और लोग इंडिपेंडेंटली काम करने लगे। पिछले 2 साल में इतना ज़बरदस्त फिर से क्रांति आई है IT फील्ड में, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी उपयोग करके बहुत सारे काम हो सकते हैं। मान लीजिए किसी के सामने कोई इमेज है, तो इमेज को वो जो मोबाइल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पूरे के माध्यम से पूरा डिस्क्राइब कराया जा सकता है कि किस चीज़ की इमेज है, फ़ोटो में क्या हुआ है, अगर किसी व्यक्ति की फ़ोटो है तो उसने कौन सी ड्रेस पहनी हुई है, उसका उसके आसपास का बैकग्राउंड क्या है, या मान लीजिए मैं इस रूम में आपको बैठ बात कर रहा हूँ तो मैंने इस रूम की फ़ोटो खींची, तो इस रूम में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, तो वो सारा कुछ जो है वो मोबाइल के माध्यम से और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हम तक पहुंच सकता है। तो हम अपने मोबाइल के माध्यम से पूरी दुनिया को बिना किसी और की मदद से जान सकते हैं।

0: सर, हम अक्सर असिस्टिव टेक्नोलॉजी के बारे में सुनते हैं काफ़ी, हमें क्या आप उस पर कुछ रोशनी डालेंगे?
1: देखिए, असिस्टिव टेक्नोलॉजी और कुछ नहीं है, जो टेक्नोलॉजी जो है वो अगर किस तरह से एक पर्सन विद डिसेबिलिटी को, एक किसी एक दिव्यांग व्यक्ति को कैसे टेक्नोलॉजी की मदद से कैसे मदद मिल सकती है, ऐसी टेक्नोलॉजी को हम असिस्टिव टेक्नोलॉजी बोलते हैं। वो आपको ऑडियो में फीडबैक दे सकती है, वो आपको हैप्टिक फीडबैक मतलब वाइब्रेशन के माध्यम से फीडबैक दे सकती है, वो आपको वॉइस क्लूज के माध्यम से फीडबैक दे सकती है, वो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मदद करके आप उसकी मदद ले सकते हैं, आप उसका यूज़ अपने मूवमेंट के लिए कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्हीलचेयर यूज़ कर रहा है, मोटराइज्ड व्हीलचेयर, तो वो उसका यूज़ ऐसे कर सकता है। वो हियरिंग एड हो सकती है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो सुन नहीं पाता है, जैसे मैंने आपको बताया कोई टेक्टाइल क्लू, जैसे मैंने आपको बताया ब्रेल डिस्प्ले आता है। तो ऐसी सारी टेक्नोलॉजी जो किसी पर्सन विद डिसेबिलिटी को असिस्ट करती है अपने काम को इंडिपेंडेंटली करने में और अच्छे से करने के लिए करने में, और उसकी जो डिसेबिलिटी को ओवरकम करने में उसकी मदद करती है, ऐसी टेक्नोलॉजी को हम लोग बोल सकते हैं कि वो असिस्टिव टेक्नोलॉजी।
0: सर, एक बात तो, और ये टेक्नोलॉजीज जो आ रही हैं, लोग इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग इससे अवेयर नहीं होते, मालूम नहीं होता, सर उसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है?
1: इसके लिए आप जैसे लोग जो हैं, जो हम लोगों की बातों को और जगह तक पहुंचाएंगे, जहां तक बहुत सारे लोग सुनेंगे इस बात को, तो उन तक तो रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, सोशल मीडिया, इसके माध्यम से बात पहुंच सकती है। और हम लोग कोशिश भी करते हैं कि सोसाइटी में भी अवेयरनेस प्रोग्राम्स हम लोग करें, टीचर्स के साथ में, अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ में, डिसेबल्ड लोगों के साथ में, उनको बताएं जा जाके कि भाई देखो ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, उनकी ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ट्रेनिंग दें उनको कि कैसे उसका यूज़ करना है और कैसे उसको मैक्सिमम उसका यूटिलाइजेशन करना है इस टेक्नोलॉजी का, और कहाँ कहाँ वो अपने आप को, अपने डिसेबिलिटी को कैसे ओवरकम कर सकते हैं ये यूज़ करके, तो वो काम है लोगों का जो कर सकते हैं। तो ट्रेनिंग और अवेयरनेस, इससे मदद मिल पाएगी।
0: अक्टूबर के सेकंड थर्सडे जो होता है उसमें विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है, तो इस पर और कौन कौन से सर कुछ कार्यक्रम वगैरह होते हैं स्पेशल? क्योंकि पहले और अब में तो काफ़ी डिफरेंस आया ही है, आप जो बता रहे हैं टेक्नोलॉजी आ गई, लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं।
1: देखिए, ऐसे जो ओकेजन्स होते हैं जी, इनका पर्पज़ यही है कि अधिक से अधिक लोगों तक इस बात की अवेयरनेस पहुँच पाए कि नंबर एक की दृष्टि साइट को प्रोटेक्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, नंबर दूसरी बात कि अगर साइट लॉस हो रहा है और वो क्योरेबल है तो उसको पहले क्योर करना, तीसरी बात यह कि जो लोग साइट लूज़ कर चुके हैं उनको सही गाइडेंस मिले, और वो अपने अगर लेट साइट लूज़ होती है, या एक कहना चाहिए कि एक उम्र के बाद अगर साइट लूज़ होती है तो एक ट्रॉमा सा आ जाता है। मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है, उसका फाइनल ईयर, और धीरे धीरे करके उसकी साइट जा रही है, तो वो एक ट्रॉमा के स्टेट में पहुंच जाता है और वो डिप्रेशन के स्टेट में, तो उसको निकालना उस स्टेज से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उसको ये कॉन्फिडेंस देना कि नहीं, तुम बिना आँख के भी सब कुछ कर सकते हो, चल सकते हो, काम कर सकते हो, पैसे कमा सकते हो, इंडिपेंडेंट लाइफ लीड कर सकते हो, तो वो कॉन्फिडेंस दिलवाना लोगों को, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ों में इस तरह के फेस्टिवल्स, ओकेजन्स मदद करते हैं।
0: तो सोसाइटी इसमें किस तरह से हेल्प कर सकती
1: है? सोसाइटी इस तरह से हेल्प कर सकती है कि अगर हम इस बात पे विश्वास करें, या इस बात को हम कम्युनिकेट करें, या इस बात को समझें कि हर आदमी हर काम को कर सकता है, उसको काम करने का तरीका अलग हो सकता है, पर कैसे करेगा वो हमको फिर फिगर आउट करना होगा। तो हम लोग, सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों को नौकरियां नहीं देते कि अरे ये ब्लाइंड है, अरे ये काम कैसे करेगा, अरे ये यहाँ पे वहाँ पे जाएगा कैसे लोगों से मिलने के लिए, अरे पहले नौकरी तो दो आप उसको, तो और फिर उसको उस प्रकार की ट्रेनिंग दो। तो वो अगर हम आपको इस बात में अगर हम लोगों को समझा पाएँ कि हर व्यक्ति, और कई बार क्या है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ने कैसे लोगों की लाइफ को चेंज किया है, डिसेबल्ड लोगों की, ये लोगों को पता नहीं है, और इसीलिए उनको लोगों को काम देने में डरते हैं, लोगों पर उनका कॉन्फिडेंस नहीं होता है और उनको दया की दृष्टि से देखते हैं, उनको मदद करना चाहिए वो मदद नहीं मिल पाती जो एक्चुअल उनको एम्पावर करने में करा जाए लोगों को और उनको सपोर्ट करें तो वो इंडिपेंडेंट लाइफ लीड कर सकते हैं। तो सोसाइटी का कई काम है कि उसमें आपकी हेल्प करें।
0: सर आपने बहुत अच्छी बात की कि लोग ट्रस्ट नहीं करते, ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सर आखिर में आप कुछ कहना चाहेंगे उन लोगों से जो टेक्नोलॉजी पे हमने बात की कि किस तरह से आखिर में फिर से आप उनसे ये कहेंगे कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करें और अपनी जो पढ़ाई को ना रुकने दें और अपने भविष्य को बनाएं?
1: सबसे बड़ी बात है कि हमको जो इनक्विजिटिवनेस है या हमारी जिज्ञासा है अगर लोगों में बनी रहेगी और वो एक उनमें डिटर्मिनेशन रहेगा कि हमको अपने आगे बढ़ना है तो लोग उनकी डिसेबल्ड लोगों की मदद करेंगे। तो पहले तो स्टेप दिव्यांग को खुद को लेना है, विकलांग व्यक्ति को, कि वो आगे बढ़े और फिर समाज भी उनको मदद करे। दोनों एक बड़ा पारस्परिक सा है ये संबंध, तो एक दूसरे की मदद से लोग आगे बढ़ सकते हैं और एक इंक्लूसिव सोसाइटी को हम लोग आगे की परिकल्पना कर सकते हैं कि एक अच्छी सोसाइटी बन जाएगी। और आई थिंक ये एक बात है।
0: इतना टाइम हो गया पहले और अब में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गया होगा
1: जी,
0: मतलब एक पॉजिटिव ये चेंज है। आप जो कह रहे हैं टेक्नोलॉजी आ गई है, सब लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, तो मतलब हर तरह से लोग इसमें आगे बढ़ रहे हैं और लोग भी हेल्प कर रहे हैं
1: जी। हाँ, लोग हेल्प कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, पर एक जो एक जुनून होना चाहिए कि हम लोग मिलके एक ऐसा माहौल क्रिएट करें या एक ऐसा वातावरण क्रिएट करें कि अधिक से अधिक लोगों को एक एम्पावरमेंट हो पाए, उनको एजुकेशन मिल पाए। तो वो सारी चीज़ें जब तक टेक्नोलॉजी है, मगर टेक्नोलॉजी को हार्नेस करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है और टेक्नोलॉजी का पूरा उपयोग करके उसका एडवांटेज लोगों तक पहुंचाना उनके भले के लिए, उनके अध्ययन अध्यापन के लिए, उनके रोज़गार में उनको बढ़ावा देने के लिए, उस पर काम होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा एक चीज़ ये है कि एक आस्पेक्ट बहुत है कि अब सारा जो दुनिया है वो इंटरनेट पे डिपेंडेंट है और इंटरनेट पे कुछ गाइडलाइंस हैं कि वेबसाइट्स कैसी हों कि जो ब्लाइंड बच्चा जो है, व्यक्ति है, वो स्क्रीन रीडर के माध्यम से सारी इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव कर पाए
0: जी।
1: है ना, पर वो उनको बोलते हैं वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस, WCAG गाइडलाइंस कहलाती हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी बड़े क्लियर इंस्ट्रक्शन है। एक एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन शुरू हुई थी जिसमें कि ना केवल फिजिकल एक्सेसिबिलिटी की बात कही थी कि भाई रैंप, रेलिंग, पाथवे टाइल्स, एक्सेसिबल टॉयलेट्स, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी होनी चाहिए, पर इसके अलावा जितनी सर्विसेज हैं वो भी एक्सेसिबल होनी चाहिए। मान लीजिए आपने एक रेलवे स्टेशन पे टच स्क्रीन लगा रखा है तो वो ब्लाइंड व्यक्ति तो नहीं कर पाएगा उससे काम। अगर वो टॉकिंग होता, स्पीच होता उसके अंदर, तो ब्लाइंड व्यक्ति भी टच स्क्रीन का यूज़ करके टाइम टेबल पता कर लेता। या मान लीजिए आप POS मशीन है तो वहाँ पर वो ब्लाइंड व्यक्ति जो है क्योंकि टच स्क्रीन पर टाइप करके नंबर टाइप करके पेमेंट नहीं कर पाएगा। तो वेबसाइट्स, ऐप्स और डिवाइसेस, इनको एक्सेसिबल बनाना, या माइक्रोवेव ओवन है उसमें टच स्क्रीन है या वॉशिंग मशीन में टच स्क्रीन है तो वो ब्लाइंड व्यक्ति काम उसको यूज़ नहीं कर पाएगा। तो उसको सोसाइटी का काम ये है कि हम ऐसा माहौल क्रिएट करें जहाँ पर हर व्यक्ति उसका टेक्नोलॉजी का उपयोग कर पाए।
0: इंस्टीट्यूट्स भी होंगे जो ट्रेनिंग देते होंगे?
1: हाँ, इंस्टीट्यूट्स ट्रेनिंग दे रहे हैं असिस्टिव टेक्नोलॉजी का यूज़ करने में। जैसे भोपाल में मैं जानता हूँ कि एक संस्था है जहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है कंप्यूटर सिखाने में, मोबाइल का यूज़ करने में ब्लाइंड बच्चों को, तो वो लोग करते हैं। कई और संस्थाएं भी हैं जो कि इसमें काम लोग लगी हुई हैं। बहुत सारे डिवाइस आने लगे हैं आजकल, जैसे मान लीजिए ब्लड प्रेशर मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें भी आजकल वॉइस आने लगी है, तो आपको सुन के पता पड़ेगा कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है, पल्स रेट कितना है। हम लोगों को बहुत दिक्कत हुई कोविड के टाइम पे, जब मान लीजिए क्योंकि अगर उस टाइम पे टॉकिंग थर्मामीटर होता या टॉकिंग ऑक्सीमीटर होता तो लोगों को डर नहीं होता कि अगर किसी ब्लाइंड को कोविड हुआ है तो वो क्या करेगा, वो सामने सोशल डिस्टेंसिंग के कारण कोई बुखार लेने को तैयार नहीं था कि कितना बुखार है भाई इनको। तो इस तरह की दिक्कतें आती हैं, तो सोसाइटी से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई ये इस बात का ध्यान रखें कि कोई चीज़ बन रही है तो उसको ऐसा बनाएं कि डिसेबल्ड लोग भी उसका यूज़ कर पाएं।
0: सर आखिर में कोई आप संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से?
1: संदेश ये है कि बस कुल मिला के अगर सब लोग एक दूसरे का सपोर्ट करें तो बहुत सारे ऐसे काम हो सकते हैं जो अभी तक नहीं हुए हैं।
0: सर आपने रेडियो आज़ाद हिंद से बात की, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद सर।
1: जी थैंक यू।
0: कार्यक्रम टेक गुरु में आप सुन रहे थे डॉक्टर रोहित त्रिवेदी से बातचीत, जिसमें उन्होंने अपने अनुभव हमसे साझा किए। इस कार्यक्रम की परिकल्पना सुश्री अदिति गौड़ की थी। ये थी रेडियो आजाद हिंद की प्रस्तुति। हमें उम्मीद है आपको यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम टेक गुरु। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल देश के लिए। सुनते रहिए अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

0: दोपहिया वाहन की सवारी करते समय हेलमेट जरूर पहने। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी।
1: देश के वीर जवानों को समर्पित शौर स्मारक की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर संगीत संध्या का आयोजन। सुनिए मिलिट्री बैंड की सांगीतिक प्रस्तुति। इसके साथ ही आप देख सकते हैं शस्त्र प्रदर्शनी 14 अक्टूबर शाम 6 बजे शौर स्मारक अरेरा हिल्स भोपाल, स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन का प्रतिष्ठा आयोजन। आप सभी सादर आमंत्रित हैं।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। धुलकर

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना, नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ। आइए सुनते हैं हमारा आज का विशेष कार्यक्रम।

दूसरा गीत मैं एक लोक भजन जो शिव जी का है, बड़ा ही सरल लोक जो कि हमेशा से सरल ही होता है, तो शिव जी को क्या लेके मनाए, ये भोजपुरी भजन है, लोक भजन है कि शिव तो कुछ भी मानते नहीं, तो क्या लेके मनाए उनको, ये वो भजन है, आपको याद आ जाएगा।

विवाह का के रस्म में विवाह का ये गीत है जिसमें उठंगर कहते हैं, जो धान कूटने का वक्त जब आता है, जब श्री राम विवाह के लिए आए थे तो भगवान श्री राम जब आए तो उन्हें भी ये रस्म निभाना पड़ा मिथिला के आंगन में।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा आज का विशेष कार्यक्रम। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ। देश का चैनल देश के लिए, सुनते रहिए।
1: नमस्कार आदाब, मैं हूँ पिनाज मसानी और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद।
2: दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको, दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको।

देश के वीर जवानों को समर्पित शौर स्मारक की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर संगीत संध्या का आयोजन। सुनिए मिलिट्री बैंड की सांगीतिक प्रस्तुति। इसके साथ ही आप देख सकते हैं शस्त्र प्रदर्शनी 14 अक्टूबर शाम 6 बजे शौर स्मारक अरेरा हिल्स भोपाल, स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन का प्रतिष्ठा आयोजन। आप सभी सादर आमंत्रित हैं।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ। लीजिए श्रोताओं, पेश है आज की रेडियो रिपोर्ट।

रेडियो रिपोर्ट में हम आपको लिए चल रहे हैं रविंद्र भवन के मुक्ताकाश मंच पर, जहां सोमवार से 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्री रामलीला उत्सव की शुरुआत हुई। पहले दिन मणिपुर के कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी।

0: आइए चलते हैं कुछ पलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्री रामलीला उत्सव में।
1: करतल ध्वनि से आइए इस प्रस्तुति का हम सब मिलकर स्वागत करें, अभिनंदन करें।

0: अमल कमल नेत्र जानकी सुप्रेम पात्र कुबलय जल दीप्यम चारु चंद्र मुखाज दशरथ नेत्र पुत्र राम चंद्र नटुस
1: जय प्रभु राम चंद्र की जय जय प्रभु राम चंद्र की जय जय

चतुर्वद समस्तं चतुर्विद कृतं निर्दिजस्ते सत्कर्म शक्तिर् ब्रह्मणि नमः। गृहे सुदाटं वारिक संतकनानं समासतं गर्भधनादि संस्कार भक्ति श्रगुनंदनं तत्ते सर्वे जामसुक्ति।

कौशल्यागी मचानुपारामना अयोध्यागी निंथौ हाखिगदौरे हायरिबसे तारवर नंबु करीगी कनाना कमदौना कानरोय कानरोय अदुंगै ममांगै बोर अनिदो निज हौरुचो दशरथ निंथौदगी चलो चलो थिंथरगनु

देश के वीर जवानों को समर्पित शौर्य स्मारक की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर संगीत संध्या का आयोजन। सुनिए मिलिट्री बैंड की सांगीतिक प्रस्तुति। इसके साथ ही आप देख सकते हैं शस्त्र प्रदर्शनी 14 अक्टूबर शाम 6 बजे शौर्य स्मारक अरेरा हिल्स भोपाल, स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन का प्रतिष्ठा आयोजन। आप सभी सादर आमंत्रित हैं।

नगर के साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों की जानकारी लेकर हाजिर हूँ श्रोताओं, मैं आपके साथ आपकी रेडियो मित्र पूर्वा खले। कीजिए स्वीकार एक बार फिर मेरा नमस्कार। पूरे शहर में क्या पूरे देश में नवरात्र की धूम मची है। जगह जगह लगे हैं गरबा और डांडिया के समारोह और मेले और पांडाल दुर्गा माता के सजे हुए। ऐसा लगता है जैसे पूरा शहर पूरा देश श्रद्धा और भक्ति भाव में डूब गया है। तो जब बात शारदीय नवरात्र की होती है तो साथ में जुड़ा होता है रामलीला का समारोह भी। श्रोताओं, हमारे शहर में भी रामलीला का आयोजन कई जगह किया जा रहा है। सबसे बड़ा श्री रामलीला उत्सव जिसके बारे में आप अभी रेडियो रिपोर्ट में भी सुन रहे थे, आइए सबसे पहले उसी का जिक्र करते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय श्री रामलीला उत्सव के दूसरे दिन मंगलवार को यानी कल शिव धनुष भंग होते ही लक्ष्मण परशुराम संवाद और उससे पहले पुष्प वाटिका में श्री राम सीता का प्रथम मिलन, इन प्रसंगों को पूर्वोत्तर भारत की 15वीं शताब्दी की सत्रीय नृत्य शैली में प्रस्तुत किया गया। ये बात कर रहे हैं हम श्री रामलीला उत्सव की। श्रोता, गुवाहाटी के सत्रिया केंद्र के कलाकारों ने 90 मिनट तक नृत्य नाटिका श्री राम पर्व में अहिल्या उद्धार, सीता स्वयंवर और राम के करुणा, मर्यादा व विनम्रता जैसे गुणों को नृत्य, संगीत और अभिनय से इस उत्सव में अभिव्यक्त किया।

वहीं श्री रामलीला उत्सव में अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक सम्मेलन में ऑस्ट्रेलिया की शोधकर्ता मित्रा देसाई ने रामायण के भौगोलिक साक्ष्यों पर चर्चा की। पद्मश्री डॉक्टर भगवतीलाल राजपुरोहित ने राम कथा को गहराई से समझने की जरूरत बताई। वहीं पर्यावरणविद पवन सिंह सारस्वत ने नदियों और मानव सभ्यता का आपस में संबंध समझाया। श्रीलंका के शोधकर्ता महिल भंडारा ने भूमिगत सुरंगों की लोक कथाएं बताई। वहीं आचार्य मिथिलेश ने राम के नेतृत्व और सुशासन पर अपने विचार रखे। श्री रामलीला उत्सव में कठपुतली प्रदर्शन, राघव के रंग चित्रकला शिविर और कलाकृतियों की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। स्वरांकन के अंतर्गत क्षिप्रा सुल्लेरे के भजनों पर जबलपुर के विद्यार्थियों ने चित्र बनाए।

श्रोताओ, आज है विश्व मानक दिवस यानी वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे। यह दिवस वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता, सुरक्षा, विश्वसनीयता और उत्कृष्टता के मानकों को अपनाने का दिवस है। श्रोताओ, वैश्विक अर्थव्यवस्था के मानकीकरण के महत्व के रूप में नियामकों, उद्योग और उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता बढ़ाने का संकल्प लेते हुए स्वैच्छिक रूप से तकनीकी सहमतियां विकसित करने वाले हजारों विशेषज्ञों के संयुक्त प्रयास के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है आज का विश्व मानक दिवस। तो हम उपभोक्ता के तौर पर एक संकल्प ले सकते हैं कि जिन वस्तुओं पर मानक है, जैसे कि सोने पर हॉलमार्क का निशान या उपभोग की जाने वाली वस्तुओं पर ISI का निशान, इसे देखकर ही हम वस्तुओं को खरीदें।

और श्रोताओं बात कर लेते हैं हमारे शौर्य स्मारक के 10वें वर्षगांठ समारोह की। तो 14 अक्टूबर को यानी आज शाम को 6 बजे शौर्य स्मारक अरेरा हिल्स में आप सेना के शस्त्रों की प्रदर्शनी देख सकते हैं, साथ ही मिलिट्री बैंड के धुनों का आनंद ले सकते हैं, क्योंकि ये आयोजन किया जा रहा है 10वीं वर्षगांठ पर। और इस आयोजन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। यह आयोजन स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन की अंतर्गत किया जा रहा है।

फिर त्योहारों की इस धूम में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना ना भूलिएगा। रहिए स्वस्थ और मस्त, रखिए अपना और अपनों का ख्याल। इसी इल्तिजा के साथ दीजिए अनुमति परिक्रमा यहीं संपन्न करने की। आपकी अपनी पूर्वा खले को नमस्कार। ₹90.8 MHz पर श्रोताओं, आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ। देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए।

0: अगला कार्यक्रम कला कल्लोलिनी बस थोड़ी ही देर में।
1: देश के वीर जवानों को समर्पित शौर्य स्मारक की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर संगीत संध्या का आयोजन। सुनिए मिलिट्री बैंड की सांगीतिक प्रस्तुति। इसके साथ ही आप देख सकते हैं शस्त्र प्रदर्शनी 14 अक्टूबर शाम 6 बजे शौर्य स्मारक अरेरा हिल्स भोपाल, स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन का प्रतिष्ठा आयोजन। आप सभी सादर आमंत्रित हैं।

नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिजीत दा, अभिजीत भट्टाचार्य, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। देश को आजादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराया। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम काव्य गुंजन।
2: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। आज का हमारा कार्यक्रम है काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा। काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा। इस गुच्छे में आज हम आपके लिए ऐसा काव्य विन्यास लेकर आए हैं जहां पंखुड़ियां रण की चमक से नहीं, तप की शांति से दमकती हैं। यहां कविताएं केवल सुनाई नहीं जाती, वे समय के बंद कपाट खोलकर मनुष्य को उसके भीतर छिपे सत्य से मिला देती हैं।
3: श्रोताओं, पिछले भाग में आपने सुना वह हृदय स्पर्शी प्रसंग जहां भीष्म और कर्ण आमने सामने थे। एक ओर थे कुरुकुल के वृद्ध पितामह, जिनकी आंखों में आने वाले विनाश की छाया थी, और दूसरी ओर था राधेय कर्ण, जिसके हृदय में मित्रता का ऋण और अपने वचन की ज्वाला प्रज्वलित थी। भीष्म ने उसे युद्ध की अग्नि से दूर शांति का मार्ग दिखाया, परंतु

0: चुकाने का साहस भी। दोस्तों, कभी कभी जीवन भी कितना विचित्र खेल खेलता है। जिन दो व्यक्तियों को संसार जीवन भर विरोधी समझता रहा, विदा की घड़ी में वही एक दूसरे के लिए सम्मान और स्नेह से भर उठते हैं। अभी अभी भीष्म ने कर्ण को आशीर्वाद दिया और कर्ण ने झुककर उनके चरणों की धूल अपने मस्तक पर रख ली। युद्ध अपनी जगह था, मतभेद अपनी जगह थे, लेकिन भारतीय संस्कृति का ये सौंदर्य देखिए, विचार अलग हो सकते हैं, संस्कार नहीं। अब कथा वहां से आगे बढ़ती है जहां शब्दों का स्थान शौर्य लेने वाला है। सूर्य पुत्र कर्ण अपने रथ की ओर बढ़ चुके हैं। दूर कहीं रणभेरी बज उठी है, घोड़ों की टापें धरती को जगा रही हैं और कुरुक्षेत्र जैसे अपनी सांस रोककर किसी असाधारण क्षण की प्रतीक्षा कर रहा है। आइए सुनते हैं रश्मि रथी के षष्ठ सर्ग के भाग 7 और 8, जहां कर्ण का तेज केवल रणभूमि को ही नहीं श्रोताओं के हृदय को भी आलोकित करने वाला है।
1: पाकर प्रसन्न आलोक नया, कौरव सेना का शोक गया। आशा की नवल तरंग उठी, जन जन में नई उमंग उठी। मानो वाणों को छोड़ शयन, आ गए स्वयं गंगा नंदन। सेना समग्र हुंकार उठी, जय जय राधेय पुकार उठी। उल्लास मुक्त हो छहर उठा, रणजलधि घोष में घर उठा। बज रही समर भेरी भीषण, हो गया शुरू संग्राम गहन। सागर सागर जित क्षुभित घोर, विकराल दंड धर सा कठोर। अरिदल पर कुपित कर्ण टूटा, धनु पर चढ़ महामरण छूटा। ऐसी पहली ही आग चली, पांडव की सेना भाग चली। झंझा की घोर झकोर चली, डालों को तोड़ मरोड़ चली। पेड़ों की जड़ टूटने लगी, हिम्मत सबकी छूटने लगी। ऐसा प्रचंड तूफान उठा, पर्वत का भी हिल प्राण उठा। प्लावन का पा दुर्जय प्रहार, जिस तरह कांपती है कगार। या चक्रवात में यथा कीर्ण, उड़ने लगते पत्ते विशीर्ण। त्यों उठा कांप थर थर अरिदल, मच गई बड़ी भीषण हलचल। सब रथी व्यग्र बिलबिलाते थे, कोलाहल रोक न पाते थे। सेना को यूं बेहाल देख, सामने उपस्थित काल देख। गर्जे अधीर हो मधुसूदन, बोले पार्थ से निगूढ़ वचन। दे अचिर सैन्य का अभय दान।
0: श्रोताओं, षष्ठ सर्ग का ये प्रसंग युद्ध भूमि के उस निर्णायक क्षण को हमारे सामने सजीव कर देता है, जब कर्ण के रण में उतरते ही मानो कौरव सेना की बुझी हुई आशा फिर से प्रज्वलित उठती है। अभी तक जो सेना निराशा के बोझ तले झुकी हुई थी, वही अब जय जय राधे के घोष से आकाश गुंजायमान कर देती है। दिनकर जी ने कर्ण को केवल एक योद्धा के रूप में नहीं, बल्कि पराजय के अंधकार में आशा का दीप बनाकर चित्रित किया है। उनके रण में उतरते ही ऐसा प्रतीत होता है मानो किसी प्रचंड तूफान ने युद्ध भूमि को अपने आगोश में ले लिया हो। उनके बाण केवल शत्रु के कवच को नहीं, उनके साहस को भी भेदने लगते हैं। कवि ने प्रकृति के विराट बिंबों, झंझावात, समुद्र चक्रवात और प्रलयंकारी बाढ़ के माध्यम से कर्ण के पराक्रम को ऐसी ऊंचाई दी है कि उनका व्यक्तित्व किसी साधारण मनुष्य का नहीं, बल्कि प्रकृति की अनियंत्रित शक्ति का प्रतीक बन जाता है। यही कारण है कि पांडवों जैसी विशाल और प्रशिक्षित सेना भी एक क्षण के लिए विचलित हो उठती है।
1: यहाँ दिनकर जी हमें ये भी बताते हैं कि एक महान सेना नायक केवल शस्त्रों से नहीं लड़ता, वह अपने साहस से पूरी सेना में प्राण फूंक देता है। सच ही कहा गया है, जहाँ सिंह अग्रसर होता है वहाँ वन के प्राणी भी निर्भय हो उठते हैं। कर्ण का रण प्रवेश उसी सिंहनाद की भांति है, जिसने कौरवों के मन में नव जीवन भर दिया और शत्रु पक्ष को पहली बार ये अनुभव करा दिया कि अब उनके सामने कोई साधारण धनुर्धर नहीं, बल्कि सूर्य के समान तेजस्वी और प्रलय के समान प्रचंड राधेय खड़ा है। उधर भगवान कृष्ण अर्जुन को सावधान करते हुए कह रहे हैं।
0: अर्जुन अर्जुन हो सावधान, तू नहीं जानता है यह क्या, करता न शत्रु पर कर्ण दया, दाहक प्रचंड इसका बल है, यह मनुज नहीं कालानल है, बलवानल यम या काल पवन, करते जब कभी कोप भीषण, सारा सर्वस्व न लेते हैं, उच्छिष्ट छोड़ कुछ देते हैं, पर इसे क्रोध जब आता है कुछ भी ना शेष रह पाता है, बाणों का अप्रतिहत प्रहार, अप्रतिम तेज पौरुष अपार, क्यों गर्जन पर गर्जन निर्भय, आ गया स्वयं सामने प्रलय, तू इसे रोक भी पाएगा या खड़ा मूक रह जाएगा, या महामत मानव कुंजर कैसे अशंक हो रहा विचर, कर को जिस ओर बढ़ाता है पथ उधर स्वयं बन जाता है, तू नहीं शरासन तानेगा, अंकुश किसका यह मानेगा।
1: जिसे संसार शत्रु समझकर देखता है कभी कभी वही हृदय में सम्मान का स्थान बना लेता है। इस प्रसंग में श्री कृष्ण के शब्दों में केवल एक योद्धा के प्रति सावधानी नहीं है बल्कि एक महान आत्मा को पहचान लेने की पीड़ा भी छिपी हुई है। कृष्ण जानते हैं कि सामने खड़ा कर्ण कोई साधारण धनुर्धर नहीं है, वह वही पुरुष है जिसके भीतर सूर्य का तेज, तपस्वी का धैर्य और दानवीर का हृदय बसता है। इसीलिए जब वे अर्जुन को सावधान करते हैं तो उनके स्वर में भय कम और कर्ण के विराट व्यक्तित्व की स्वीकृति अधिक दिखाई देती है। मधुसूदन जानते हैं कि कर्ण का क्रोध विनाश कर सकता है, पर वे ये भी जानते हैं कि उस क्रोध के पीछे वर्षों की उपेक्षा, तिरस्कार और अपने अस्तित्व को सिद्ध करने की अग्नि भी है। कृष्ण की दृष्टि केवल रणभूमि को नहीं देखती, वह मनुष्य के अंतरतम को पढ़ती है। वे समझते हैं कि यह युद्ध दो शत्रुओं का नहीं, दो महाशक्तियों का टकराव है। एक ओर धर्म की स्थापना का भार है और दूसरी ओर वह कर्ण है जिसने अपने जीवन की हर पीड़ा को पुरुषार्थ में बदल दिया।
0: दिनकर जी ने इस प्रसंग में कृष्ण के माध्यम से कर्ण की महत्ता को और ऊंचा कर दिया है, क्योंकि महानता की पहचान यही है कि विरोधी भी जिसके गुणों को नकार ना सके। कृष्ण के मुख से निकला कर्ण का वर्णन मानो स्वयं समय की वाणी है, एक ऐसा योद्धा जो गलत पक्ष में खड़ा होकर भी अपने तेज से छोटा नहीं होता।
1: कर्ण जब रण में उतरता है तो उसके हाथों में केवल धनुष नहीं होता, उसके साथ उसका पूरा जीवन जलता है। राधा का स्नेह, दुर्योधन के उपकार, कुंती का सत्य और अपने वचन की वह अग्नि जिसे उसने अंतिम श्वास तक निभाने का प्रण लिया था। यही कारण है कि रश्मिरथी का कर्ण केवल युद्ध का पात्र नहीं, मानव हृदय की सबसे जटिल और करुण गाथाओं में से एक बन जाता है। आइए अब सुनते हैं इसी सर्ग से भाग 8 का काव्य पाठ।
0: अर्जुन, विलंब पातक होगा, शैथिल्य प्राण घातक होगा, उठ जाग वीर, मूर्ता छोड़, धर धनुष बाण अपना कठोर, तू नहीं जोश में आएगा, आज ही समर चुक जाएगा।
1: केशव का सिंह दहाड़ उठा, मानो चिघार पहाड़ उठा, बाणों की फिर लग गई झड़ी, भागती फौज हो गई खड़ी, जूझने लगे कौंतेय कर्ण, जो लड़े परस्पर दो सुपर्ण, एक ही ब्रह्मत के दो कुम्मल, एक ही कुक्षी के दो कुमार, एक ही वंश के दो भूषण, विभ्राट वीर पर्वताकार, बेधने परस्पर लगे सहज सोदर शरीर में प्रखर बाण, दोनों की किंक्षुक देह हुई, दोनों के पावक हुए प्राण, अंधड़ बनकर उन्माद उठा, दोनों दिश जय जय कार हुई, दोनों पक्षों के वीरों पर मानो भैरवी सवार हुई, कट कट कर गिरने लगे क्षिप्र, रुंडों से मुंड अलग होकर, बह चली मनुज के शोणित की धारा पशुओं के पग धोकर, लेकिन था कौन हृदय जिसका कुछ भी यह देख दहलता था, था कौन नरों की लाशों पर जो नहीं पांव धर चलता था, तन्वी करुणा की झलक झीन किसको दिखलाई पड़ती थी, किसको कटकर मरने वालों की चीख सुनाई पड़ती थी। केवल अलात का घूर्ण चक्र, केवल वज्रायुध का प्रहार, केवल विनाशकारी नर्तन, केवल गर्जन केवल पुकार, केवल गर्जन केवल पुकार।
0: है कथा द्रोण की छाया में, यूं 5 दिनों तक युद्ध चला, क्या कहें धर्म पर कौन रहा या उसके कौन विरुद्ध चला। था किया भीष्म पर पांडव ने जैसे छल छंदों से प्रहार, कुछ उसी तरह निष्ठुरता से हत हुआ वीर अर्जुन कुमार। फिर भी भावुक कुरुवृद्ध भीष्म थे युग पक्षों के लिए शरण, कहते हैं होकर विकल मृत्यु का किया उन्होंने स्वयं वरण। अर्जुन कुमार की कथा किंतु अब तक भी हृदय हिलाती है, सभ्यता नाम लेकर उसका अब भी रोती पछताती है। पर हाय युद्ध अंतक स्वरूप, अंतक साही दारुण कठोर, देखता नहीं ज्यायान युवा, देखता नहीं बालक किशोर। सुत के वध की सुन कथा पार्थ का, दहक उठा शोकांत हृदय। फिर किया क्रुद्ध होकर उसने तब महा लोम हर्षक निश्चय। कल अस्त काल के पूर्व जयद्रथ को ना मार पाऊं यदि मैं, सौगंध धर्म की मुझे आग में स्वयं कूद जल जाऊं मैं, स्वयं कूद जल जाऊं।
1: श्रोताओं, छठवें सर्ग का यह प्रसंग केवल 2 महारथियों का युद्ध नहीं, बल्कि नियति द्वारा एक ही माँ की कोख से जन्मे 2 वीरों की सबसे करुण परीक्षा है। श्री कृष्ण के उद्बोधन से अर्जुन का सुप्त तेज जाग उठता है और फिर रणभूमि पर 2 ऐसे धनुर्धर आमने सामने आते हैं जिनकी तुलना स्वयं दिनकर जी आकाश में उड़ते 2 महाबलशाली सुपर्णों से करते हैं। एक ही वंश के 2 गौरव, एक ही रक्त की 2 धाराएं अब एक दूसरे पर बाण चला रही हैं। यह दृश्य केवल शौर्य का नहीं बल्कि उस विडंबना का भी है जहां जब घर के दीपक एक दूसरे को जलाने लगे तब अंधेरा बाहर से नहीं आता। युद्ध की उन्मत्त गति ऐसी हो उठती है कि मनुष्य की करुणा, संवेदना और रिश्तों की पहचान सब कुछ धूल में दब जाती है। दिनकर जी बार बार हमें ये सोचने के लिए विवश करते हैं कि युद्ध का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है, वह शत्रु का चेहरा नहीं देखता, केवल लक्ष्य देखता है।
0: मित्रों, इसीलिए कवि आगे युद्ध की विभीषिका का ऐसा चित्र उपस्थित करते हैं कि वीरता भी मौन हो जाती है। रक्त की धाराएं बह रही हैं, मस्तक धड़ों से अलग हो रहे हैं, चीखें आकाश में विलीन हो रही हैं, पर किसी के पास ठहर कर शोक मनाने का समय नहीं। युद्ध में तलवारें नहीं रोती, केवल माताओं की गोद सूनी होती है। यही कारण है कि दिनकर जी कहते हैं उस समय किसी को न करुणा दिखाई देती है, न किसी की अंतिम पुकार सुनाई देती है, ये केवल विनाश का नृत्य रह जाता है। और इसी विनाश के बीच अभिमन्यु का वध मानवता के हृदय पर सबसे गहरा घाव बनकर उभरता है। एक किशोर जिसने अद्भुत साहस दिखाया छल पूर्वक मार दिया जाता है। दिनकर जी यहां स्पष्ट संकेत करते हैं, जहां युद्ध में नीति मर जाती है वहां विजय भी कलंकित हो जाती है। सच ही कहा गया है, अन्याय से प्राप्त विजय पराजय से भी अधिक पीड़ादायक होती है। मानो कर्ण के मन की टीस हम तक पहुंच रही हो, वो हमसे कह रही हो।
2: हे वीर अभिमन्यु, तेरी वीरता को सादर प्रणाम। धन्य है तेरी माता जिसने तुझ जैसे महावीर को जन्म दिया। आज कुरुक्षेत्र की धूल केवल रक्त से नहीं, एक अधखिले जीवन की असमय विदाई से भी लाल हो गई है। युद्ध में शत्रु और मित्र के बीच भेद करना सरल होता है, किंतु जब सामने यौवन का प्रथम उषाकाल खड़ा हो, तब धनुष उठाने से पहले हृदय भी एक क्षण के लिए कांप उठता है। वीरता का अर्थ कभी असहाय का अंत नहीं होता, वो तो समर भूमि में समान पराक्रम का सम्मान है। पर आज नियति ने ऐसा चाल बुना कि धर्म, नीति और युद्ध तीनों एक दूसरे से उलझ गए। मैं जानता हूं कल जब ये समाचार अर्जुन तक पहुंचेगा तब एक पिता का हृदय धनुर्धर से कहीं अधिक आहत होगा और शायद यही युद्ध का सबसे बड़ा अभिशाप है। यह विजय का मार्ग दिखाते दिखाते मनुष्य से उसकी करुणा भी छीन लेता है। हाय, काश रणभूमि केवल वीरों के शौर्य की साक्षी होती, किसी मां की सूनी गोद और किसी पिता के टूटे हुए हृदय की नहीं।
1: अभिमन्यु के वध का समाचार सुनकर अर्जुन का हृदय केवल एक पिता का हृदय रह जाता है। उस क्षण ना तो वह महाधनुर्धर है ना विजेता, वह अपने पुत्र के वियोग में तड़पता हुआ पिता है। उसी पीड़ा से जन्म लेती है जयद्रथ वध की वह भयंकर प्रतिज्ञा जो महाभारत के युद्ध को एक नया मोड़ देती है। दिनकर जी इस प्रसंग के माध्यम से ये बताते हैं कि प्रतिशोध की अग्नि कभी अकेले नहीं जलती, वह एक पीड़ा से जन्म लेकर अनेक जीवनों को अपनी लपटों में समेट लेती है। यही कारण है कि छठवें सर्ग का यह भाग केवल युद्ध का वर्णन नहीं करता बल्कि यह चेतावनी भी देता है कि जब क्रोध विवेक पर अधिकार कर लेता है तब इतिहास वीरों की गाथा से अधिक अपनों के बिछोह की कथा बन जाता है।
0: जहां वीरता की अग्नि प्रज्वलित होती है वहां स्वयं समय भी कुछ क्षण ठहर कर उस तेज का दर्शन करता है। रश्मिरथी का यह प्रसंग उसी महाक्षण का चित्र है जहां रणभूमि केवल शस्त्रों का क्षेत्र नहीं रहती बल्कि पुरुषार्थ, संकल्प और नियति का विराट मंच बन जाती है। केशव की दृष्टि अत्यंत गहरी है, वे जानते हैं कि सामने खड़ा राधे कोई साधारण धनुर्धर नहीं, वो वर्षों के अपमान, तप, साधना और आत्मसम्मान से निर्मित वो महायोद्धा है जिसकी भुजाओं में केवल बल नहीं एक जीवन भर का संघर्ष धड़क रहा है। इसलिए कृष्ण अर्जुन को केवल युद्ध के लिए प्रेरित नहीं करते बल्कि उसे उस विराट शक्ति का बोध कराते हैं जो उसके सामने खड़ी है। उनकी चेतावनी में भय नहीं बल्कि सत्य का उद्घोष है, क्योंकि जब कर्ण का धनुष उठता है तो मानो रणभूमि में प्रलय की आहट सुनाई देने लगती है।
1: और दूसरी ओर कर्ण वह योद्धा जिसके लिए रणभूमि केवल विजय का स्थान नहीं अपने अस्तित्व की अंतिम परीक्षा है। दिनकर जी कर्ण के माध्यम से दिखाते हैं कि मनुष्य जब अपने संकल्प के साथ खड़ा होता है तो उसके सामने देवताओं का वैभव भी छोटा पड़ जाता है। श्री कृष्ण जानते हैं कि अर्जुन के सामने केवल कौरव सेना नहीं बल्कि एक ऐसा पुरुष खड़ा है जिसने जीवन भर परिस्थितियों से युद्ध किया है। यही कारण है कि यह द्वंद्व केवल दो धनुषों का टकराव नहीं दो महाशक्तियों और दो महान जीवन यात्राओं का संग्राम बन जाता है। श्रोताओं, रश्मि रथी का यही सौंदर्य है कि यहाँ शत्रु भी सम्मान के योग्य है। दिनकर जी ने कर्ण के तेज को इस ऊंचाई तक पहुँचाया है कि स्वयं माधव की वाणी में भी उसके पराक्रम की गंभीरता दिखाई देती है। यह प्रसंग हमें बताता है कि सच्चा वीर वही है जो विपत्ति के महासागर में भी अपने आत्मसम्मान और धर्म की नौका को डूबने नहीं देता। कर्ण का पराक्रम और अर्जुन का संकल्प दोनों महान हैं, पर दोनों के पीछे एक ऐसी नियति खड़ी है जो रिश्तों को युद्ध की अग्नि में झोंक देती है।
0: मित्रों, कहते हैं सूर्य चाहे अस्त हो जाए पर उसका प्रकाश आकाश में अपनी छाप छोड़ जाता है, ठीक वैसे ही कर्ण का तेज भी समय की सीमाओं से परे है। दिनकर जी ने जिस अद्भुत भाव भूमि पर इस चरित्र को रचा है वहां कर्ण केवल एक योद्धा नहीं रह जाता, वो उस मनुष्य का प्रतीक बन जाता है जो टूट कर भी झुकता नहीं, जो हार की छाया में भी अपने स्वाभिमान का दीप जलाए रखता है। श्रोताओं, अब हम साहित्य जगत में रश्मिरथी की हुंकार और दिनकर जी की कलम को सम्मान देते हुए कई शीर्ष कवियों ने काव्य पंक्तियां जो लिखी हैं, वो भी आपसे साझा करना चाहेंगे।
1: जी हाँ, महाकवि हरिवंश राय बच्चन जी ने दिनकर जी की मृत्यु पर और उनके काव्य विशेषकर रश्मिरथी और कुरुक्षेत्र जैसी वीर रस की रचनाओं के प्रभाव को याद करते हुए लिखा था कि दिनकर के ओज की जो आग थी वह देश के दिल की धड़कन और राग थी। उनकी लेखनी से जो अंगारे बरसे थे उन्हें सुनने को तो सदियों से कान तरसे थे।
0: और डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन का काव्यात्मक नमन कुछ इस प्रकार है। जब जब देश की सोई आत्मा को जगाना होगा, तब तब दिनकर की पंक्तियों को दोहराना होगा। वह सूर्य का सारथी रश्मिरथी बन जो आलोक दे गया, हिंदी साहित्य का मस्तक हमेशा के लिए ऊंचा कर गया। शब्दों को अंगारा कर दे, ऐसी तासीर कहां लाओगे, दिनकर जैसा महामानव तुम ढूंढे से ना ढूंढ पाओगे। कर्ण की पीड़ा को जिसने रश्मिरथी में अमर किया, उस राष्ट्र कवि के चरणों में साहित्य ने शत शत नमन किया।
1: और राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त उम्र और अनुभव में दिनकर जी से काफी बड़े थे। जब दिनकर जी की रश्मिरथी और कुरुक्षेत्र जैसी रचनाओं ने देश में धूम मचाई तो गुप्त जी ने बड़े भाई और एक वरिष्ठ कवि के रूप में दिनकर जी के ओज का स्वागत करते हुए ये कहा था कि मुझसे भी आगे बढ़कर जो गाता है वह देश के यौवन का स्वर बन जाता है। जिसकी वाणी में कुरुक्षेत्र और रश्मिरथी की हुंकार है, उस दिनकर की लेखनी को मेरा बार बार नमस्कार है।
3: और श्रोताओं, आधुनिक हिंदी कविता के पुरोधा और तार सप्तक के संपादक अज्ञेय जी ने रश्मिरथी के शिल्प और दिनकर जी की भाषा पर टिप्पणी करते हुए लिखा था, दिनकर जी ने रश्मिरथी में शब्दों को केवल पिरोया नहीं है बल्कि उन्हें दहकाया है। कर्ण के चरित्र को उन्होंने जिस ओज और सामाजिक विद्रोह के साथ प्रस्तुत किया है वो हिंदी साहित्य में अप्रतिम है। दिनकर जी की कविता पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे पाठक स्वयं युद्ध भूमि में खड़ा होकर सत्य और न्याय का साक्षात्कार कर रहा हो।
1: और श्रोताओं, ये कथा अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां रण का स्वर और अधिक तीव्र होगा, जहां शौर्य की अग्नि और प्रचंड होगी। जी हाँ, अगले भाग में अब हम सुनेंगे छठवें सर्ग के भाग 9 और 10 का काव्य पाठ, जहाँ कर्ण और अर्जुन के इस महासंग्राम की गाथा और भी विराट रूप धारण करेगी। और अब जाते जाते हम आपको बताना चाहेंगे, इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना थी अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग मिला सतीश बाथम से, मूल रचना राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की, रेडियो प्रस्तुति लेखन दीपक नेमा का। आपके साथ मैं थी भगवती सक्सेना,
0: मैं संदीप शर्मा
3: और मैं दीपक नेमा।
1: तो श्रोताओं, इसी के साथ शब्दों और संवेदनाओं की ये यात्रा अब यहीं पर लेती है विराम। हम फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए हमें दीजिए आज्ञा, नमस्कार।
0: काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा।

अभी आप सुन रहे थे भारतीय साहित्य के प्रख्यात कवियों की अनुपम और कालातीत रचनाओं की रचनात्मक प्रस्तुति कार्यक्रम काव्य गुंजन में। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए।

0: मैं हूँ मधुश्री, सुनते रहिए 90.8 रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: झूलोट के घर न आए।
2: देश के वीर जवानों को समर्पित शौर्य स्मारक की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर संगीत संध्या का आयोजन। सुनिए मिलिट्री बैंड की सांगीतिक प्रस्तुति। इसके साथ ही आप देख सकते हैं शस्त्र प्रदर्शनी 14 अक्टूबर शाम 6 बजे शौर्य स्मारक अरेरा हिल्स भोपाल, स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन का प्रतिष्ठा आयोजन। आप सभी सादर आमंत्रित हैं।

नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम हमारे वैज्ञानिक।
2: नमस्कार श्रोताओं, 90.8 MHz पर रेडियो आजाद हिंद से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमारे महान वैज्ञानिक। श्रोताओं, मैं हूं आपकी दोस्त कंचन।
3: और मैं दीपक।
2: स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।
3: नमस्कार।
2: श्रोताओं, हम अपने इस कार्यक्रम में हर हफ्ते आपको बताते हैं हमारे देश के एक महान वैज्ञानिक के जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातें। तो आज के हमारे वैज्ञानिक हैं जिन्हें पूरा देश और ये दुनिया ही मिसाइल मैन के नाम से जानती है। जी हाँ श्रोताओं, उन्होंने भारत देश के राष्ट्रपति पद को भी विभूषित किया है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। सही अर्थों में वे एक महान वैज्ञानिक हैं और मिसाइलों के सृजक के रूप में विख्यात हैं।
3: श्रोताओं, डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में प्रसिद्ध तीर्थ स्थान रामेश्वरम में 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। उनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। वे APJ अब्दुल कलाम के नाम से विख्यात हैं। उनका जन्म एक गरीब पर ईमानदार और सुसंस्कृत परिवार में हुआ था। वे रामेश्वरम की मस्जिद गली में अपने पुरखों के पुराने मकान में रहते थे। उनके पिता अधिक पढ़े लिखे नहीं थे, पर अत्यंत कुशल, दक्ष और व्यवहारिक व्यक्ति थे। उनके पिता के लिए अपने बड़े परिवार का भरण पोषण करना आसान काम नहीं था, पर वे विनम्र और परिश्रमी व्यक्ति थे। वे अपनी नाव पर तीर्थयात्रियों को एक किनारे से दूसरे किनारे पर ले जाने और लाने का काम करते थे। आर्थिक परेशानियों के बावजूद उन्होंने प्रतिभाशाली बालक अब्दुल कलाम को रामेश्वरम के प्राइमरी स्कूल में भर्ती करा दिया।
2: डॉक्टर अब्दुल कलाम के एक लेख के अनुसार उनके घर के पास कुछ सुसंस्कृत हिंदू परिवार रहते थे। इन्हीं में रामेश्वरम के मुख्य मंदिर के पुजारी का परिवार भी था। इस पुजारी परिवार के मानवीय मूल्यों ने कुछ हद तक कलाम साहब को प्रभावित किया। भगवद गीता में कही गई गूढ़ बातों और उनके संदर्भ को उन्होंने समझा। वे आज भी शुद्ध शाकाहारी और गीता से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। बाल्यावस्था में उन्हें इस सुसंस्कृत पड़ोसी से बहुत प्रेम और स्नेह मिला। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद 13 वर्ष के अब्दुल कलाम ने रामेश्वरम जिला मुख्यालय के सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने के लिए अपने पिता से अनुमति मांगी। पिता ने उन्हें अनुमति दे दी और उन्हें छोड़ने के लिए स्टेशन तक उनके साथ भी गए। उन्होंने कलाम को आशीर्वाद दिया और उन्हें आगे बढ़ने की शुभकामनाएं दी।
3: डॉक्टर कलाम ने शॉर्ट्स हाई स्कूल में प्रवेश लिया। इस स्कूल का संचालन रामेश्वरम के ईसाई मिशनरी द्वारा किया जाता था। वहां वे छात्रावास में रहे। आर्थिक परेशानियों के बावजूद अब्दुल कलाम के माता पिता ने उनकी इच्छाओं का ध्यान रखा। पढ़ाई करने के लिए वे उन्हें हमेशा प्रोत्साहित करते रहे। प्रतिभाशाली और बुद्धिमान होने के कारण उन्होंने अपने अध्यापकों का भी दिल जीत लिया था। हाई स्कूल के बाद आगे पढ़ाई के लिए सन 1950 में वे समीप के नगर तिरुचिरापल्ली गए और वहाँ सेंट जोसेफ कॉलेज में प्रवेश लिया। अब उनका आत्मविश्वास बढ़ गया था। डॉक्टर कलाम वहाँ 4 वर्ष तक रहे। अपने कॉलेज के आखिरी दिनों में उनकी रुचि भौतिकी में हो गई। BSc उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने मद्रास प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रवेश लिया और वैमानिक अभियांत्रिकी पाठ्यक्रम यानी एविएशन इंजीनियरिंग कोर्स का चुनाव किया। उन्होंने मनी मन ठान लिया था कि वे विमान चालक बनेंगे। 3 वर्ष पढ़ाई करने के बाद अंत में परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर उन्होंने DMIT की डिग्री प्राप्त की।
2: मद्रास का DMIT कोर्स पूरा करने के बाद डॉक्टर कलाम ने प्रशिक्षणार्थी के रूप में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलुरु में प्रवेश लिया। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन और प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त कर लेने के बाद उनके सामने 2 अवसर थे। दोनों उनकी पसंद के थे। पहला था वायुसेना में भर्ती होकर पायलट के रूप में आगे बढ़ना और दूसरा था रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत तकनीकी विकास और उत्पादन निदेशालय यानी डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन यानी DTDAP में निदेशक का कार्यभार संभालना। उन्होंने दोनों पदों के लिए आवेदन पत्र भेजे और दोनों ही स्थानों पर उन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। दिल्ली पहुंचने के बाद वे समय पर वायुसेना के साक्षात्कार के लिए गए और साक्षात्कार उनकी आशा के अनुकूल हुआ। इस साक्षात्कार के एक सप्ताह बाद उन्हें देहरादून में वायुसेना चयन समिति के समक्ष स्वयं उपस्थित होना था। यहाँ शारीरिक योग्यता के साथ साथ अन्य अनेक पहलुओं को भी ध्यान में रखा जाना था। ये थोड़ा सा अलग तरह का साक्षात्कार था। 25 उम्मीदवारों में से 8 उम्मीदवारों का चयन किया जाना था और डॉक्टर कलाम 9वें स्थान पर थे। उन्हें लगा कि वे वायुसेना में जाने का अवसर गंवा चुके हैं। उन्हें दुख भी था। फिर उसके बाद वहां से वे ऋषिकेश गए। पावन गंगा में डुबकी लगाने के बाद उन्हें आत्म शांति का अनुभव हुआ। उसके बाद वे पास ही स्थित शिवानंद आश्रम में गए। स्वामी जी के दर्शन कर वे बेहद प्रभावित हुए। वे स्वामी शिवानंद जी से मिले। स्वामी जी ने उनसे उनकी उदासी का कारण पूछा तो उन्होंने स्वामी जी को बताया कि वायुसेना में काम करने का अवसर खो देने के कारण वे दुखी हैं। तब स्वामी जी ने उनसे कहा, भाग्य को कोई भी नहीं बदल सकता। जो कुछ तुम्हारे भाग्य में होना था वो हो चुका है, इसलिए निराश मत हो। हो सकता है कि ये बेहतरी और उत्तम काम के लिए हुआ है। अपने आप को ईश्वर की इच्छा पर छोड़ दो। स्वामी जी की ये बातें सुनकर डॉक्टर कलाम जी को शांति मिली। इसके बाद वो वहां से चल दिए और दिल्ली आ गए।
3: कुछ समय पश्चात ही उन्हें 250 रुपए मासिक वेतन पर वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक के रूप में कार्यभार संभालने के लिए नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ। शायद उनके भाग्य में यही काम करना लिखा था। वे 3 वर्ष उत्तर भारत में ही रहे। इस दौरान 1 वर्ष तक वे औद्योगिक नगरी कानपुर में भी रहे। अलग अलग लोगों से उनका संपर्क हुआ, पर उनका मन हमेशा रामेश्वरम की शांति के लिए लालायित रहता था।
2: इसके बाद उनका स्थानांतरण बेंगलुरु में नव स्थापित वैमानिक विकास प्रतिष्ठान यानी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट में हुआ। डॉक्टर कलाम कार्यभार संभालने के लिए बेंगलुरु गए। कुछ समय बाद उनके अधीन 4 वैज्ञानिकों का एक दल बनाया गया। इस दल को 3 वर्ष में पूर्ण रूप से स्वदेशी हॉवरक्राफ्ट बनाने का दायित्व सौंपा गया। तत्कालीन रक्षा मंत्री V.K. कृष्णमेनन ये काम शीघ्र अतिशीघ्र पूरा कराना चाहते थे। वे जब भी बेंगलुरु का दौरा करते तब इस परियोजना की प्रगति को अवश्य देखते थे। हॉवरक्राफ्ट का नाम भगवान शिव के वाहन के नाम पर नंदी रखा गया था।
3: उसके बाद कृष्णमेनन ने रक्षा मंत्रालय छोड़ दिया और यह परियोजना भी ताक पर रख दी गई। एक बार वैमानिक विकास प्रतिष्ठान के प्रमुख ने कलाम से कहा कि एक उच्चाधिकारी इस परियोजना को देखने आ रहे हैं। वे उच्चाधिकारी नियत दिन आए। उन्होंने परियोजना और उसकी प्रगति के विषय में पूछताछ की और कई सवाल भी किए। डॉक्टर कलाम को यह पता नहीं था कि वे सज्जन कौन हैं। वास्तव में वे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यानी TIFR के निदेशक प्रोफेसर M.G. के मेनन थे।
2: कुछ समय बाद अंतरिक्ष अनुसंधान संबंधी भारतीय समिति ने डॉक्टर कलाम को रॉकेट इंजीनियर के पद हेतु एक साक्षात्कार के लिए मुंबई बुलाया। डॉक्टर विक्रम साराभाई और प्रोफेसर मेनन ने कलाम का साक्षात्कार लिया और फिर उनको अंतरिक्ष अनुसंधान विभाग में कार्य करने के लिए आमंत्रित किया। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने जिस तरीके से साक्षात्कार किया, डॉक्टर कलाम उनसे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अंतरिक्ष अनुसंधान विभाग का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उन्हें बताया गया कि उन्हें अंतरिक्ष अनुसंधान विभाग में रॉकेट इंजीनियर के रूप में चुन लिया गया है। अगले दिन से TIFR यानी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के कंप्यूटर विभाग में उनका प्रशिक्षण प्रारंभ हो गया। उनके अनुसार अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का माहौल बहुत ही अच्छा और अनुकूल था और सरकार के अन्य विभागों से पूरी तरह से अलग।
3: सन 1962 में भारत सरकार ने केरल के थुम्बा नामक स्थान में एक रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर स्थापित करने का निर्णय किया। इसके लिए डॉक्टर कलाम को रॉकेट लॉन्चिंग में 6 महीने के प्रशिक्षण के लिए अमेरिका के नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर में जाने के लिए चुना गया। पूरे परिवार को यह सुनकर बहुत खुशी हुई कि डॉक्टर कलाम को विदेश जाने का अवसर मिला है। 6 महीने बाद कलाम भारत लौटे। देश का प्रथम रॉकेट नाइक अपाशे विदेश से उपहार में मिला। इसे 21 नवंबर 1963 को अंतरिक्ष में भेजने का निर्णय किया गया। डॉक्टर कलाम ने इसके तमाम तकनीकी दायित्वों को संभाला था। उसकी सफलता के बाद वैज्ञानिक और तकनीशियनों का मनोबल बहुत ऊंचा हो गया। इसके बाद डॉक्टर साराभाई द्वारा बुलाई गई एक बैठक में यह निर्णय किया गया कि उपग्रह विमोचन यान यानी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल SLV और कृत्रिम उपग्रहों के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ा जाए। उसके बाद 20 नवंबर 1967 को रोहिणी 75 नामक रॉकेट थुम्बा स्टेशन से अंतरिक्ष में भेजा गया।
2: और इसी बीच सन 1968 में भारतीय रॉकेट समिति यानी इंडियन रॉकेट सोसाइटी की स्थापना की गई। भारत के पूर्वी किनारे पर मद्रास से लगभग 100 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में श्री हरिकोटा द्वीप में देश का दूसरा रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर स्थापित किया गया। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति यानी इंडियन नेशनल रिसर्च कमेटी का पुनर्गठन किया गया और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो नामक एक नई सरकारी एजेंसी की स्थापना की गई। इसके बाद फरवरी 1969 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए थुम्बा में विषुवतीय यानी इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग केंद्र का उद्घाटन किया। इससे किसी भी देश के वैज्ञानिक के लिए इस प्रयोगात्मक स्टेशन की सुविधा का उपयोग करना और उसका लाभ उठाना सुनिश्चित हो गया।
3: स्वतंत्रता प्राप्ति के शुरुआती 15-20 वर्षों के दौरान हमारी सेना को अतिरिक्त पुर्जे और अन्य रक्षा सामग्री के लिए पूरी तरह से विदेशी सहायता पर निर्भर रहना पड़ता था। विदेशी शक्तियां अपनी पुरानी और अप्रचलित सैन्य सामग्री हमारे जैसे विकासशील देशों को देकर यह जताती थी जैसे वे हम पर कृपा कर रही हों। विदेशी इन उपकरणों की आपूर्ति कर विकासशील देशों से बहुत अधिक धन कमाते थे। इस कमी को दूर करने और इस पर काबू पाने के लिए एकीकृत नियंत्रित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम यानी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रारंभ किया गया। इसका पूरा उत्तरदायित्व डॉक्टर कलाम को सौंपा गया। प्रोग्राम के सामने आने वाली आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद 12 से 15 घंटे तक प्रतिदिन काम करके डॉक्टर कलाम ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। इसके लिए उन्होंने मिसाइलों का जब गहन और विस्तृत अध्ययन शुरू किया तब उन्हें पता चला कि 4 प्रकार की मिसाइलें बहुत ही आवश्यक हैं।
2: पहली है जमीन से जमीन पर मार करने वाली और दुश्मन के टैंकों जहाजों और सैन्य सामग्रियों को नष्ट करने वाली मिसाइल।
3: दूसरी है जमीन से आकाश में निर्धारित स्थल पर वार करने वाली मिसाइल। इस प्रकार की मिसाइल दुश्मन के हवाई हमलों का कारगर ढंग से सामना कर सकती है।
2: और तीसरी है आकाश से आकाश में मार करने वाली ऐसी मिसाइल जो आकाश में आने वाले दुश्मन के बम वर्षक विमानों और मिसाइलों की टोह लगाकर उन्हें रास्ते में ही नष्ट कर सके। और चौथी मिसाइल है श्रोताओं ऐसी मिसाइल जिन्हें लड़ाकू विमानों से दाग कर दुश्मन के ठिकानों और उनकी सैन्य सामग्रियों का सफाया किया जा सके।
3: इसके बाद रोहिणी परियोजना के प्रमुख के रूप में डॉक्टर कलाम ने प्रशंसनीय कार्य किया। इस कार्यक्रम के दौरान उन्हें अलग अलग विषयों के विशेषज्ञों से विचार विमर्श करने और मिलने जुलने का अवसर मिला। इसरो में उन्होंने उपग्रह प्रमोचन यान यानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के निर्माण का कार्य किया और SLV-3 की सफल उड़ान में कामयाब रहे। डॉक्टर कलाम को महसूस हुआ कि प्रौद्योगिकी का उपयोग मिसाइलों के विकास को और आगे बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। डॉक्टर विक्रम साराभाई द्वारा किए गए मार्गदर्शन और सहयोग के लिए डॉक्टर कलाम आज भी उनके कृतज्ञ हैं।
2: अंतरिक्ष विभाग में कार्यभार संभाल लेने के बाद भी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने डॉक्टर कलाम की सेवाओं का लाभ उठाया। वे संगठन के निकट संपर्क में रहे। वहां पर वैज्ञानिकों के समूह ने मिसाइलों को विकसित करने में उनकी सहायता की थी। मिसाइलों के विकास में डॉक्टर कलाम ने सबसे अधिक योगदान दिया था। उनके अनुसार अग्रभाग यानी कि सामने के हिस्से पर बम लगे रॉकेट को मिसाइल कहते हैं। मिसाइल वास्तव में एक विध्वंसक हथियार है। अंतरिक्ष उड़ान में प्रयोग किए जाने वाले रॉकेट से इसका कोई संबंध नहीं है। मिसाइलों को वायुयानों, पनडुब्बियों और भूमि से दागा जा सकता है। जिन मिसाइलों को रेडियो तरंगों द्वारा या किसी आंतरिक क्रिया या यंत्र विधि के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है, उन्हें नियंत्रित मिसाइल कहते हैं। ये मिसाइल निश्चित स्थान पर अपने निर्धारित लक्ष्य का पता लगा सकती हैं। मिसाइल भेदी मिसाइलों का प्रयोग दागी गई मिसाइलों को उनके मार्ग में ही रोककर नष्ट करने के लिए किया जाता है। प्रारंभ में जर्मनी, अमेरिका, रूस और चीन देश मिसाइलों का उत्पादन करते थे। भारत ने पृथ्वी, आकाश, नाक, अग्नि जैसी अलग अलग मिसाइलों के उत्पादन और निर्माण का कार्य आरंभ कर दिया है। श्रोताओं, भारत विश्व में छठा मिसाइल उत्पादक देश है।
3: एक दिन 30 दिसंबर 1971 को दिल्ली में एक विशिष्ट समिति की बैठक में भाग लेने के बाद डॉक्टर कलाम थुम्बा वापस लौट रहे थे। उस दिन डॉक्टर विक्रम साराभाई थुम्बा में ही थे। डॉक्टर कलाम ने दिल्ली से उन्हें टेलीफोन कर बैठक के बारे में जानकारी दी। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने उनसे कहा कि वे मुंबई जा रहे हैं। डॉक्टर कलाम ने डॉक्टर साराभाई से थुम्बा हवाई अड्डे पर मिलने की इच्छा जाहिर की। परंतु डॉक्टर कलाम जब थुम्बा पहुंचे तो उन्हें पता चला कि कुछ घंटे पहले डॉक्टर साराभाई का स्वर्गवास हो गया है। इस घटना से डॉक्टर कलाम को बहुत गहरा दुख पहुंचा। इसके बाद अंतरिक्ष विभाग का कार्यभार डॉक्टर सतीश धवन को सौंपा गया। डॉक्टर धवन ने SLV-3 की व्यवस्था डॉक्टर कलाम के हाथों सौंप दी।
2: इसके बाद सन 1975 में इसरो एक सरकारी संगठन बन गया और उसे अंतरिक्ष विभाग के अधीन कर दिया गया। सन 1976 में 102 वर्ष की आयु में डॉक्टर कलाम के पिता का निधन हो गया और कुछ समय बाद ही उनकी माताजी का भी देहांत हो गया। इन विपरीत परिस्थितियों में भी डॉक्टर कलाम ने अपने आप को संभाले रखा। इसके बाद एक बार फिर डॉक्टर कलाम को इसरो से रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला यानी DRDL में ले जाने की योजना शुरू हो गई। इसी बीच 18 जुलाई 1980 को 8:03 पर भारतीय उपग्रह प्रमोचन यान यानी SLV-3 श्रीहरिकोटा रेंज से सफलतापूर्वक छोड़ा गया। समस्त चरणों को सही ढंग से कार्यान्वित किया गया और रोहिणी उपग्रह को निर्धारित समय पर कक्षा में स्थापित कर दिया गया। जब डॉक्टर कलाम केंद्र के परिसर से बाहर आए तो लाश से भरे उनके सहकर्मियों ने उन्हें कंधों पर उठा लिया। प्रोजेक्ट की सफलता की घोषणा तत्काल रेडियो और टीवी पर कर दी गई।
3: तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने सफलता पर पूरे दल को बधाई दी। भारत इस प्रकार की असाधारण सफलता प्राप्त करने वाला विश्व में 5वां देश बन गया। 26 जनवरी 1981 को डॉक्टर कलाम को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके बाद जून 1982 से डॉक्टर कलाम ने अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला DRDL के निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। कुछ समय पश्चात उनकी सेवाओं के लिए चेन्नई के अन्ना विश्वविद्यालय ने उन्हें डॉक्टरेट की मानद डिग्री प्रदान की। इसके बाद संशोधित ASLV का निर्माण किया गया जिसमें पेलोड 40 किलोग्राम से बढ़ाकर 150 किलोग्राम कर दिया गया। 26 जून 1984 को डॉक्टर कलाम के नेतृत्व में विशेष रूप से सेना के लिए विकसित डेविल मिशन का सफल परीक्षण किया गया।
2: इसकी प्रगति देखने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी परीक्षण स्थल पर गए थे। अगस्त 1985 में डॉक्टर कलाम को अमेरिकी वायुसेना ने अपनी निपुणताओं का परीक्षण करने के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया। उनके साथ उनके 3 अन्य सहकर्मियों को भी आमंत्रित किया गया। इसी बीच 16 सितंबर 1985 को श्रीहरिकोटा परीक्षण रेंज से त्रिशूल मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। इसके बाद 25 फरवरी 1988 को सुबह 11:23 पर श्रीहरिकोटा रेंज से पृथ्वी मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। ये मिसाइल 1000 किलोग्राम भार वाले बम ले जा सकती है और इसकी मारक क्षमता 150 किलोमीटर है। पश्चिमी राष्ट्रों ने सफलता पर चिंता प्रकट की और 7 देशों ने भारत को आवश्यक कच्चा माल नहीं देने का निर्णय किया। परंतु इसके बाद भी अपनी क्षमता को सिद्ध करते हुए भारत ने 22 मई 1989 को सुबह 7:10 पर अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। इसके बाद 26 जनवरी 1990 को गणतंत्र दिवस पर डॉक्टर कलाम को पद्म विभूषण प्रदान किया गया। साथ ही जादवपुर विश्वविद्यालय और उसके बाद आईआईटी मुंबई ने उनको डॉक्टरेट की मानद डिग्रियां प्रदान की। इसके बाद उन्हें रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया और 25 नवंबर 1999 को उन्हें केंद्र सरकार का प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। इसके कुछ वर्षों बाद उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया और उसके बाद डॉक्टर कलाम प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार बने। वे प्रधानमंत्री को अलग अलग विभागों के लिए अलग अलग वैज्ञानिक और तकनीकी नीतियों और साथ ही वैज्ञानिक विकास के संबंध में परामर्श देते और उनका मार्गदर्शन करते रहते।
3: केंद्र सरकार ने डॉक्टर कलाम की सेवाओं के लिए उन्हें भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया। उन्होंने भारतीय नौसेना के लिए सतह से सतह तक मार करने वाली पृथ्वी मिसाइल विकसित की। ये 250 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है और इसकी माल वाहन क्षमता 1000 किलोग्राम है। इसका प्रयोग एक युद्ध अस्त्र के रूप में किया जा सकता है। डॉक्टर कलाम ने पराध्वनि प्रणाली यानी सुपरसोनिक सिस्टम विकसित किया जो शत्रु के युद्ध पोतों को नष्ट कर सकती है। वायुसेना के लिए भी डॉक्टर कलाम ने एक शक्तिशाली मिसाइल विकसित की है। यह मिसाइल आकाश से जमीन पर मार कर सकती है। अब वे इसे राडार प्रणाली से जोड़कर और अधिक प्रभावी बना रहे हैं। इस प्रकार चालक रहित विमान स्वयं ही शत्रु के विमानों का पता लगाकर उन्हें निशाना बना सकते हैं।
2: श्रोताओ, सन 2020 तक की योजना बनाकर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने इंडिया 2020 नामक एक पुस्तक भी प्रकाशित की है और इसके बाद डॉक्टर कलाम ने कुछ वर्षों बाद प्रधानमंत्री के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के पद से त्याग पत्र दे दिया और विज्ञान की सेवा करने की योजना बनाई। उन्होंने तमिलनाडु के अन्ना विश्वविद्यालय में कार्यभार संभाला और इसी बीच नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी NDA ने उनसे राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने का अनुरोध किया। 15 जुलाई 2002 को काफी बहुमत से डॉक्टर कलाम हमारे देश के राष्ट्रपति चुने गए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश BN कृपाल द्वारा उन्हें भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। और इस प्रकार श्रोताओं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमारे देश के 12वें राष्ट्रपति बने। उन्होंने सन 2020 तक की योजना बनाकर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने इंडिया 2020 नामक एक पुस्तक भी प्रकाशित की है। श्रोताओं,
3: सदैव मुस्कुराते रहने वाले डॉक्टर कलाम सरल, विनम्र और मृदुभाषी व्यक्ति हैं। वे मित्रों और सहकर्मियों की बात शांतिपूर्वक सुनते हैं और उन्हें सरल ढंग से समझाते हैं। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि ऐसे सरल और महान वैज्ञानिक अपने प्रयासों में प्रगति करते हुए अपेक्षित सफलता प्राप्त करें।
2: श्रोताओं, इसी के साथ अब हमारे ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
3: नमस्कार।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारे वैज्ञानिक, जो आज केंद्रित था हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवन पर। अब ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम हमारे वैज्ञानिक 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल, देश के लिए। सुनते रहिए।
4: देश के वीर जवानों को समर्पित शौर्य स्मारक की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर संगीत संध्या का आयोजन। सुनिए मिलिट्री बैंड की सांगीतिक प्रस्तुति। इसके साथ ही आप देख सकते हैं शस्त्र प्रदर्शनी 14 अक्टूबर शाम 6 बजे, शौर्य स्मारक, अरेरा हिल्स, भोपाल। स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश शासन का प्रतिष्ठा आयोजन। आप सभी सादर आमंत्रित हैं।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है।

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8
1: देश का चैनल देश के लिए। हम हैं
0: रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई।
1: रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
0: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ। आइए सुने कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।
1: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: विभिन्न विषयों पर स्वामी विवेकानंद जी के व्याख्यानों से हमें पता चलता है कि उनके ज्ञान भंडार का कोई छोर नहीं था। सभी विषयों पर वे धारा प्रवाह बोल सकते थे और उनकी बातें हमेशा सारगर्भित होती थीं। बड़े बड़े विद्वान एवं मनीषियों के साथ बैठकर बिना हिचक वे बातें किया करते थे। केवल अपने देश में ही नहीं, विदेशों में उनके दिए गए भाषणों की सराहना होती थी। वहां वे विद्वानों के सम्मुख भारत की एक नई छवि प्रस्तुत करने में सक्षम हुए थे। सभी चिंताशील श्रोता उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुना करते थे। उनके आंखों के सामने एक नया जगत, नई सोच और नया दृष्टिकोण उन्मोचित होता था।
1: ऐसी ही कुछ बातचीतों के अंश हमें अमेरिका की श्रीमती राइट के संस्मरणों से प्राप्त होते हैं। वहाँ वे अंग्रेजों की बर्बरता की कहानी सुना रहे थे, उनकी राज्य लिप्सा और दमन की कथा कह रहे थे। अमेरिका वासी स्तंभित होकर इन इतिहासों को सुन रहे थे।
0: सन 1893 के अगस्त मास के अंत में स्वामी विवेकानंद अमेरिका के एनिस्क्वाम में जे एच राइट के मकान पर ठहरे। न्यू इंग्लैंड के इस शांत ग्राम में स्वामी जी को देखकर वहां के निवासियों को इतना आश्चर्य हुआ कि तुरंत लोगों में इस बात की अटकलबाजी होने लगी कि ये भव्य और आकर्षक व्यक्ति है कौन, ये कहां से आया है। पहले वे इस निश्चय पर पहुंचे कि ये भारत का कोई ब्राह्मण होगा, किंतु उनका व्यवहार उनकी धारणाओं से

0: अंग्रेज केवल कुछ समय पूर्व वे बर्बर थे, स्त्रियों के शरीर पर कीड़े रेंगते थे और अपने शरीर की घिनौनी दुर्गंध छिपाने के लिए वे सुगंध लगाती थी, अत्यंत विभत्स। अब भी वे केवल उस बर्बरता से बाहर निकल भर रहे हैं।
1: उन श्रोताओं में से एक ने कहा,
2: गलत, ये तो कम से कम 500 वर्ष पहले की बात है।
0: और क्या, मैंने नहीं कहा जरा देर पहले, यानी 400-500 साल पहले। मनुष्य की आत्मा की प्राचीनता को दृष्टि में रखने पर इन कुछ सौ वर्षों की क्या गिनती है।
1: उन्होंने कुछ अधिक भावना के साथ तेजी से कहा,
0: वे नितांत बर्बर हैं। वो भयानक शीत और वे उत्तरी जलवायु जन्य अभाव और कष्ट, इस परिस्थिति ने उन्हें जंगली बना डाला है। वे केवल मार डालने की बात सोचते हैं, उनका धर्म कहाँ है। वे उस पवित्र पुरुष का नाम लेते हैं, वे अपने मनुष्य भाइयों से प्रेम करने का दावा करते हैं, फिर वे सभ्य बनते हैं, क्या इसी धर्म के द्वारा? नहीं, ये तो उनकी भूख है जिसने उन्हें सभ्य बनाया है, उनके ईश्वर ने नहीं। मानव प्रेम तो केवल उनकी जिह्वा पर है, उनके हृदय में और कुछ नहीं, केवल बुराई और हर प्रकार की हिंसा ही हिंसा है। मेरे भाई, मैं तुमको प्यार करता हूं, मैं तुम्हें प्यार करता हूं। और निरंतर वे उसका गला काटते रहते हैं, उनके हाथ खून से लाल हैं।
1: धीरे धीरे उनका स्वर और गंभीर होता गया और वे ईश्वर और प्रकृति की प्रतिशोध की बातें करने लगे।
0: किंतु उन्हें ईश्वर के दंड का भागी बनना पड़ेगा। प्रभु कहते हैं कि प्रतिशोध मेरा है, मैं उसे चुकाऊंगा। और विनाश आ रहा है। तुम्हारे ईसाई कितने हैं? दुनिया के एक तिहाई भी नहीं। उन कोटि कोटि चीनियों को देखो, वे ईश्वर का प्रतिशोध हैं जो तुम्हारे ऊपर उद्दीप्त हो उठेगा। हूणों का एक और आक्रमण होगा, वे समस्त यूरोप को पद दलित कर देंगे। वे एक भी ईंट साबुत नहीं छोड़ेंगे, पुरुष स्त्रियां और बच्चे सभी चल बसेंगे और अंध युग फिर आएगा।
3: उनका स्वर करुणा पूर्ण हो गया, उनकी आंखें जैसे भविष्य को निहार रही थीं।
0: मुझे कोई चिंता नहीं है, दुनिया इससे और अच्छी होकर निकलेगी। किंतु ये सब आ रहा है, ईश्वर का वो प्रतिशोध शीघ्र आ रहा है।
1: शीघ्र? उन सब लोगों ने पूछा।
0: हाँ, इसके होने में 1000 वर्ष भी ना लगेंगे।
3: ओह, 1000 साल! लोगों ने निश्चिंतता की सांस ली। ये सब अभी निकट भविष्य में नहीं होगा, वे कहते गए।
0: ईश्वर प्रतिशोध अवश्य लेगा। तुम्हें ये बात धर्म और राजनीति में भले ही ना दिखाई पड़े, किंतु इतिहास में अवश्य ही दृष्टिगत होगी। और जैसा होता रहा है वैसा ही होगा। यदि तुम लोगों को पीसोगे तो तुम्हें भी भुगतना पड़ेगा। भारत में हम लोग ईश्वर के प्रतिशोध को भोग रहे हैं। उन घटनाओं को देखो, उन लोगों ने अपने निजी लाभ के लिए गरीबों को पीसा, उन्होंने उनकी कातर ध्वनि नहीं सुनी। जब जनता रोटी के लिए पुकार रही थी तब वे सोने और चांदी के पात्रों में खाते थे, और इसके बाद ही आक्रांताओं ने वध और हत्या करते हुए आक्रमण किया, वध और हत्या करते हुए उन्हें पराभूत कर दिया।
1: श्रोतागण अवाक होकर स्वामी जी की बातों को सुन रहे थे। वे भावावेग में बोलते गए,
0: वर्षों तक भारत बार बार पराजित होता रहा और उन सब के अंत में तथा सबसे बुरे अंग्रेज आए। तुम भारत में देखो, हिंदुओं ने क्या छोड़ा? चारों ओर आश्चर्यजनक मंदिर। मुस्लिमों ने क्या छोड़ा? भव्य भवन। अंग्रेजों ने क्या छोड़ा? शराब की टूटी बोतलों के टीलों के अतिरिक्त और कुछ नहीं। ईश्वर ने मेरे देशवासियों के ऊपर दया नहीं की, क्योंकि स्वयं उनमें दया नहीं थी। अपनी निष्ठुरता से उन्होंने जनता को नीचे गिराया, और जब उन्हें उनकी आवश्यकता पड़ी तब उस जनता में उनकी सहायता करने के निमित्त कुछ भी शेष नहीं रह गया था। मनुष्य को ईश्वर के प्रतिशोध में भले ही विश्वास न हो सके, किंतु वो इतिहास के प्रतिशोध को कदापि अस्वीकार नहीं कर सकता।
3: स्वामी जी भावुक हो चले, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे।
0: यही अंग्रेजों के ऊपर भी बीतेगा। वे हमारी गर्दन पर सवार हैं। उन्होंने अपने सुख भोगों के लिए हमारे रक्त की अंतिम बूंद भी चूस ली है। हमारी करोड़ों की संपत्ति अपहरण कर ले गए, जबकि गांव और प्रांत के प्रांत भूखों मर रहे थे। अब उनके ऊपर चीनियों के प्रतिशोध की बौछार होगी। यदि आज चीनी उठें और अंग्रेजों को समुद्र में डुबो दें, जिसके की वे पात्र हैं, तो ये न्याय के अतिरिक्त और कुछ ना होगा।
1: इसके पश्चात अपने कथन को समाप्त कर स्वामी जी चुप हो गए। धीमे स्वर में उनके संबंध में लोगों की बड़बड़ाहट शुरू हो गई। वे बाहर से उदासीन से सुनते रहे। कभी कभी वे ऊपर छत की ओर दृष्टि निक्षेप करते और धीरे धीरे शिव शिव दोहराते थे। वो छोटा सा एकत्र समुदाय इस अद्भुत व्यक्ति के शांत धरातल से निकलकर गर्म लावा के समान उबलते हुए विचलित मन से विदा हुआ।
3: वे कई दिन, वस्तुतः केवल एक लंबे सप्ताहांत भर ठहरे। सदैव उनके प्रवचन सजीव उदाहरणों और सुंदर कथाओं से परिपूर्ण रहते थे। उन्होंने एक व्यक्ति की सुंदर कहानी सुनाई, जिसकी पत्नी उसके कष्टों के लिए उसे ही दोषी ठहराया करती, दूसरों की सफलता को देखकर उसे कोसती और उसकी समस्त असफलताओं के कारण उसे ही बताया करती थी। उसने अपने पति से कहा,
4: तुमने इतने वर्षों से ईश्वर की सेवा की है, उसके निमित्त तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारे लिए यही किया है।
5: क्या मैं धर्म का व्यापारी हूं? उस पर्वत को देखो, वो मेरे लिए क्या करता है और मैंने उसके लिए क्या किया है? तो भी तुझे उससे प्रेम है, क्योंकि मेरी रचना ही सुंदरता से प्रेम करने के लिए हुई है। इसी प्रकार मैं ईश्वर से प्रेम करता हूं।
1: एक दूसरी कहानी उन्होंने एक राजा की सुनाई, जिसने एक ऋषि को एक भेंट देने की इच्छा प्रकट की। ऋषि ने अस्वीकार कर दिया, किंतु राजा ने आग्रह किया और साथ चलने की प्रार्थना की। जब वे महल में आए तो ऋषि ने राजा को प्रार्थना करते हुए सुना। राजा ने ईश्वर से धन, शक्ति और दीर्घायु की याचना की। ऋषि ने आश्चर्य से सुना और अंत में अपना आसन उठाकर चल देने को तत्पर हुए। उसी समय राजा ने अपनी प्रार्थना समाप्त कर आंखें खोली और उन्हें देखा। उसने पूछा, आप क्यों जा रहे हैं? आपने अपनी भेंट के लिए नहीं कहा?
6: मैं एक भिखारी से क्या भेंट मांगूं? आप तो खुद ही याचना कर रहे हैं।
3: स्वामी जी राइट महोदय के घर पर कुछ मिलने वालों से बात कर रहे थे। उनमें से किसी ने कहा,
7: आप कुछ भी कहें, ईसाई धर्म महान है, वह पीड़ितों का उद्धार करता है।
3: स्वामी जी ने उसकी ओर देखा और शांत भाव से बोले,
0: अंग्रेज तो ईसाई हैं, वो अफ्रीका के अबिसीनिया वासियों पर क्या अत्याचार कर रहे हैं आपको नहीं मालूम? अगर ईसाई धर्म में उद्धारक शक्ति है, तो उन्होंने वहां के लोगों का उद्धार क्यों नहीं किया?
1: उक्त श्रोता जवाब सुनकर चुप हो गए। फिर स्वामी जी ने भारत में अंग्रेज द्वारा किए जाने वाले अत्याचार की कहानियां सुनाई। अंत में उन्होंने कहा,
0: पर वे मेरे जैसे सन्यासी के साथ ऐसा अन्याय करने का साहस नहीं कर पाएंगे। मैं तो चाहता हूं कि अंग्रेज सरकार मुझे पकड़कर गोली मार दे, ये उनकी ताबूत की पहली कील होगी। मेरी मृत्यु भारत भूमि पर एक भीषण आग के समान फैल जाएगी।
1: उनकी आदर्श भारतीय सिपाही विद्रोह की वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, जिन्होंने स्वयं अपनी सेना का संचालन किया था। उन्होंने बताया,
0: बहुत से विद्रोही अपने को छिपाने के लिए साधु हो गए थे, और इसलिए जो भी साधु हो वही उग्र विचारों वाला होगा, ये धारणा फैल गई थी। उन विद्रोहियों में से एक था जो अपने चार पुत्रों को खोकर भी उनके संबंध में संयत होकर बात कर सकता था, किंतु जब कभी वो रानी का नाम लेता तो रोने लगता, उसके मुख पर आंसुओं की धारा प्रवाहित हो जाती। वे कहते, वो स्त्री देवी थी, जब हार गई तो अपनी तलवार के घाट उतर गई और एक पुरुष की भांति मरी।
3: स्वामी जी ने सिपाही विद्रोह के बारे में अनेकों अनजाने तथ्यों से अमेरिका वासियों को अवगत कराया। उनके सामने विद्रोह का एक दूसरा पक्ष उजागर हुआ।
1: अमेरिका वासियों को भारत के बारे में अनेक भ्रांत धारणाएं थीं। उन बैठकों में वे स्वामी जी से अनेकों प्रश्न करते और स्वामी जी अपने जवाबों से उन्हें नई नई जानकारी देकर संतुष्ट करते थे। अक्सर इन सभाओं में पत्रकार भी उपस्थित रहते थे और दूसरे ही दिन अमेरिकी अखबारों में स्वामी जी के वक्तव्य प्रकाशित होते। ऐसी ही एक रपट 21 जनवरी 1894 ईस्वी को प्रकाशित हुई। ये बैठक लॉ सेलेट एकेडमी मेम्फिस नगर में हुई थी। वहां स्वामी जी ने कहा था,
5: मैं सन्यासी हूँ, पुरोहित नहीं। अपने देश में जगह जगह घूमता हूँ, जिन गांव और शहरों से होकर निकलता हूँ वहां के लोगों को उपदेश देता हूँ। अपने भरण पोषण के लिए मैं उनके ऊपर निर्भर हूँ, क्योंकि मुझे पैसा स्पर्श करने की आज्ञा नहीं है।
3: एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा,
5: मेरा जन्म बंगाल में हुआ था और मैंने अपनी इच्छा से अविवाहित रहकर सन्यासी का जीवन स्वीकार किया। मेरे जन्म पर मेरे पिता ने मेरी जन्म पत्री बनवाई थी, किंतु उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया कि उसमें क्या था। अपने पिता की मृत्यु के कुछ दिन बाद जब मैं अपने घर गया, तब मैंने अपनी माँ के पास रखे हुए कागजों में वो पत्री देखी। उसमें मैंने जाना कि मेरे भाग्य में पृथ्वी पर विचरण करना लिखा था।
3: एक श्रोता ने प्रश्न किया,
6: यदि आपका धर्म जो कुछ आप दावा करते हैं वैसा ही है, यदि वो सच्चा धर्म है, तो क्या कारण है कि आपके देशवासी जितने सभ्य हैं उससे अधिक सभ्य नहीं हो सके? उस धर्म ने दुनिया के राष्ट्रों के बीच उनको ऊंचा क्यों नहीं उठा दिया?
5: क्योंकि वो किसी भी धर्म का क्षेत्र नहीं है। मेरे देशवासी दुनिया में सबसे अधिक या किसी भी जाति के समतुल्य नैतिक हैं। वे अपने मानव भाइयों के अधिकारों के प्रति, मूक पशुओं तक के प्रति कहीं अधिक ध्यान देते हैं, परंतु वे भौतिकवादी नहीं हैं। किसी भी धर्म ने कभी किसी राष्ट्र या जाति के विचार या प्रेरणा को आगे नहीं बढ़ाया। वास्तव में इतिहास में कभी भी ऐसी कोई महान सफलता प्राप्त नहीं की गई जिसको धर्म ने बाधा नहीं पहुंचाई हो। आपके ईसाई धर्म ने भी अपने को इसका अपवाद सिद्ध नहीं किया। आपके डार्विन, मिल, हूम आदि को आपके धर्माधिकारियों का समर्थन नहीं प्राप्त था, तब इसके लिए मेरे धर्म की आलोचना क्यों?
6: परंतु आप कुछ भी कहें, मैं उस धर्म को एक कानी कौड़ी भी नहीं दूंगा जो मानव जाति के भौतिक जीवन और आध्यात्मिक दशा दोनों के उत्थान के लिए सचेष्ट ना हो, और इसी कारण मैं आपके वक्तव्यों की सत्यता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूँ। ईसाई धर्म ने कॉलेज और अस्पतालों की स्थापना की और पतितों को उठाया, उसने दलितों का उत्थान किया और अपने अनुयायियों को जीवन बसर करने में मदद की।
1: सन्यासी ने शांत भाव से कहा,
5: कुछ हद तक तो आप ठीक कहते हैं, फिर भी इससे ये सिद्ध नहीं हो जाता कि ये सीधे आपके ईसाई धर्म के परिणाम हैं। पश्चिम में अनेक कारण विद्यमान रहे हैं और ये सब उन्हीं के परिणाम हैं।
3: उन्होंने इसी बात को और भी समझाकर कहा,
5: धर्म का प्रयोग मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष का विकास करने में होना चाहिए। विज्ञान, कला, दार्शनिक अनुसंधान सभी का जीवन में अलग अलग कार्य है, किंतु यदि तुम इनका मिश्रण करना चाहो तो तुम उनकी अलग अलग विशेषताओं को नष्ट कर दोगे। जैसे अंततः कुछ दिनों में तुम लोग धर्म से आध्यात्मिकता को बिल्कुल ही निकाल बाहर करोगे। तुम अमेरिकन लोग किसकी उपासना करते हो? डॉलर की। स्वर्ण के पीछे पागल होकर भागते हुए तुम आध्यात्म को भूल रहे हो और अंततः तुम भौतिकता परायण बन गए हो। अपनी जाति के इतिहास में एक भी ऐसा व्यक्ति बताओ जिसने वैसा आध्यात्मिक जीवन बिताया हो जैसे हमारे देश में लोगों ने बिताया, और जिनके की मैं नाम गिना सकता हूं। ऐसे लोग कहां हैं जो मृत्यु के आने पर कह सकते हो, ओ बंधु मृत्यु, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं। तुम्हारा धर्म फेरिस चक्रों और आड़ फेल मीनारों के निर्माण में मदद देता है, पर क्या वो तुम्हारे आंतरिक जीवन के विकास में भी तुम्हारी सहायता करता है?
1: सन्यासी गंभीरता पूर्वक बोल रहे थे और उनका मधुर तथा सुनियंत्रित स्वर उस कमरे में छाए हुए धुंधलेपन से छनकर आ रहा था, और कुछ आरोप युक्त। 6000 वर्ष पुराने इतिहास वाले देश के इस नवागंतुक के द्वारा की गई 19वीं शताब्दी के अमेरिका की समालोचना में कुछ अलौकिकता थी।
7: किंतु आध्यात्म की साधना में आप वर्तमान की मांगों के प्रति आंखें बंद कर लेते हैं। आपका सिद्धांत मनुष्य को अच्छी तरह जीवित रहने में सहायता नहीं देता।
5: वो उन्हें अच्छी तरह मरने में सहायता देता है।
2: हम वर्तमान के प्रति विश्वस्त नहीं हैं।
5: आप किसी चीज के प्रति विश्वस्त नहीं हैं। मेरा विश्वास है कि हिंदू धर्म ने भौतिक मूल्य चुकाकर अपने साधकों में अध्यात्म का विकास किया है, और मैं सोचता हूं कि पश्चिमी दुनिया में सत्य इसके विपरीत है। मेरा विश्वास है कि पश्चिम के भौतिकवाद और पूर्व के समन्वय से बहुत कुछ किया जा सकता है। ये हो सकता है कि इस प्रयत्न में हिंदू धर्म अपने वैशिष्ट्य को बहुत कुछ खो देगा।
2: जो कुछ आप करने की आशा करते हैं, क्या उससे भारत के समस्त सामाजिक व्यवस्था में क्रांति न करनी होगी?
5: हाँ, शायद। फिर भी धर्म अक्षुण्य बना रहेगा।
3: अब बातचीत का रुख हिंदुओं की उपासना विधि की ओर बदला, और विवेकानंद ने इस विषय पर बहुत सी बातें बतलाई। भारत में तथा अन्यत्र सभी जगह अज्ञेयवादी और नास्तिक हैं। ब्रह्म के अनुयायियों के जीवन में अनुभूति एक आवश्यक वस्तु है, श्रद्धा आवश्यक नहीं है। थियोसॉफी एक ऐसा विषय है जिसमें विवेकानंद की रुचि नहीं है, वो अलग अध्ययन का विषय है।
1: विवेकानंद कभी मैडम ब्लॉवस्की से नहीं मिले, किंतु अमेरिकन थियोसॉफिक सोसाइटी के कर्नल ऑलकट से उनकी भेंट हुई थी। वे एनी बेसेंट से भी परिचित हैं। भारत के फकीरों, प्रसिद्ध मदारियों अथवा जादूगरों जिनके चमत्कारों की विश्व में प्रसिद्धि है, उनकी चर्चा करते हुए विवेकानंद ने कुछ ऐसी घटनाएं सुनाई जो उन्होंने स्वयं देखी थी और जो विश्वास से परे थी।
3: इस विषय पर प्रश्न पूछे गए तो उन्होंने कहा,
5: 5 मास पूर्व और इस देश के लिए भारत से प्रस्थान करने के ठीक 1 मास पूर्व मुझे 25 व्यक्तियों के दल के साथ देश के भीतर स्थित एक नगर में कुछ समय तक ठहरना पड़ा। वहां पर हमने इन भ्रमणशील जादूगरों में से एक के आश्चर्यजनक चमत्कारों के विषय में सुना और उसे अपने सामने बुलाया। उसने हमें बताया कि हम जिस वस्तु की इच्छा करें वो उसे उपस्थित कर देगा। हमने उसके कहने के अनुसार उसके वस्त्रों को उतारा, यहां तक कि वो बिल्कुल नग्न हो गया और उसे कमरे के कोने में बैठा दिया। मैंने अपनी यात्रा के कंबल को उसके ऊपर डाल दिया और तब हमने उससे अपने वादे के अनुसार कार्य करने को कहा। उसने पूछा कि आप लोग क्या चाहते हैं। मैंने काबुली अंगूरों का एक गुच्छा देने के लिए कहा और तुरंत उस व्यक्ति ने उन्हें कंबल के नीचे से बाहर निकाला। संतरे और दूसरे फल निकाले और अंत में निकाली गरम भात की बड़ी बड़ी थालियां।
1: अपना वक्तव्य जारी रखते हुए सन्यासी ने कहा,
5: मेरी 1/6 इंद्रिय में और सुदूर अवस्थित 2 व्यक्तियों के मन में एक साथ एक ही विचार का उदय हो सकता है। मुझे इस बात में विश्वास है।
3: उन्होंने फकीरों के चमत्कारों की व्याख्या नहीं की, केवल यही कहा कि वे अत्यंत आश्चर्यजनक थे। मूर्ति पूजा के विषय में भी चर्चा हुई और सन्यासी ने बताया कि केवल प्रतीक के रूप में ही मूर्ति हमारे धर्म का अंग है।
5: आप किसकी उपासना करते हैं? ईश्वर के संबंध में आपकी क्या धारणा है?
1: आत्मा, एक महिला ने धीरे से कहा।
5: आत्मा क्या है? तुम प्रोटेस्टेंट लोग बाइबल के शब्दों की उपासना करते हो अथवा उनके परे किसी और चीज की उपासना करते हो? हम लोग प्रतिमा द्वारा ईश्वर की उपासना करते हैं।
4: अर्थात आप अंतरस्थित वस्तु को ब्रह्म सहायता द्वारा प्राप्त करते हैं?
5: हाँ, ठीक यही।
3: विवेकानंद उसी स्वर में आगे बात करते रहे और उनके भाषण का समय समीप होने के कारण इस गोष्ठी का अंत हुआ। इसी तरह की एक सभा में स्वामी जी ने अमेरिकी जनता को सम्राट अशोक के बारे में बताया, उनके शिलालेखों का वर्णन किया, कहा,
5: उसी बुद्धिमान राजा ने जिसने ये राजाज्ञा खुदवाई थी युद्ध करने से मना किया था क्योंकि इसकी विभीषिकाएं
0: सभी महान सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों के प्रतिकूल होती हैं। इसी कारण भारत ने भौतिक पक्ष में हानि उठाई है, जहां पाशविक शक्ति और रक्तपात ने दूसरे राष्ट्रों को आगे बढ़ाया है। भारत ने इस प्रकार के पाशविक प्रदर्शन का प्रत्याख्यान किया है और योग्यतम की विजय के नियम के अनुसार जो राष्ट्रों और व्यक्तियों दोनों के लिए लागू होता है, वो भौतिक अर्थ में दुनिया की एक शक्ति के रूप में बहुत पीछे रह गया है।
1: इसी क्रम में उन्होंने कहा कि संभवतः भविष्य में पूर्व और पश्चिम का समन्वय होने को है, एक ऐसा समन्वय जिसके परिणाम अद्भुत होंगे। पश्चिमी राष्ट्रों की प्रकृति को प्रशंसा का पात्र बनाने वाला उनका एक गुण है, और वो है स्त्रियों के प्रति अत्यंत आदर भाव तथा उनके साथ सहृदयतापूर्ण व्यवहार।
3: विभिन्न मतवादों की दोषान्वेषण की प्रवृत्ति के संबंध में उन्होंने जो कहानी कही वो ऐसी थी।
0: एक कुएं में एक मेंढक रहता था। वो वहां बहुत दिन से रहता था, वहीं पैदा हुआ और वहीं बड़ा हुआ। वो एक छोटा नन्हा सा मेंढक था। एक दिन एक दूसरा मेंढक जो समुद्र में रहता था आया और कुएं में गिर पड़ा। तुम कहां से आए हो? समुद्र से। समुद्र? वो कितना बड़ा है? क्या वो मेरे कुएं के बराबर है? और उसने कुएं के एक किनारे से दूसरे किनारे तक छलांग मारी। मेरे मित्र, समुद्र के मेंढक ने कहा, तुम अपने छोटे से कुएं से समुद्र की तुलना कैसे कर सकते हो? तब मेंढक ने दूसरी छलांग मारी और पूछा, क्या तुम्हारा समुद्र इतना बड़ा है? समुद्र से अपने कुएं की तुलना करके तुम कैसे मूर्खता की बात कर रहे हो? कुएं के मेंढक ने कहा, अच्छा तब क्या तुम कहते हो कि तुम्हारा समुद्र मेरे कुएं से बड़ा है? ये हो ही नहीं सकता, ये झूठा है, इसे बाहर निकालो। यही कठिनाई सदा से चली आ रही है। मैं हिंदू हूं, मैं अपने छोटे से कुएं में बैठा हूं और मैं सोचता हूं कि मेरा कुआं ही दुनिया है। ईसाई अपने छोटे से कुएं में बैठा है और वो कुआं उसकी दुनिया है। मुसलमान अपने कुएं में बैठा है और उसी को संपूर्ण दुनिया समझता है। मैं तुम अमेरिकनों को धन्यवाद देता हूं कि तुम हमारी छोटी दुनिया की दीवारों को तोड़ने का प्रयत्न कर रहे हो, और आशा करता हूं कि भविष्य में प्रभु तुम्हें इस उद्देश्य की पूर्ति में सहायता प्रदान करेंगे।
1: इसी कहानी के साथ उस दिन सभा का अंत हुआ।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल, देश के लिए। सुनते रहिए।
1: सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

देश के वीर जवानों को समर्पित शौर्य स्मारक की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर संगीत संध्या का आयोजन। सुनिए मिलिट्री बैंड की सांगीतिक प्रस्तुति। इसके साथ ही आप देख सकते हैं शस्त्र प्रदर्शनी 14 अक्टूबर शाम 6 बजे शौर्य स्मारक अरेरा हिल्स भोपाल, स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन का प्रतिष्ठा आयोजन। आप सभी सादर आमंत्रित हैं।

नमस्कार, मैं हूँ हर्षदीप कौर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। हमें नाज है देश के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भारत माता के सभी महान सच्चे सपूतों को हर्षदीप का शत शत नमन।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से सुबह की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल, देश के लिए। मिक्सलर पर हमारे कार्यक्रम यूं ही जारी रहेंगे। बने रहिए रेडियो आजाद हिंद के साथ 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल, देश के लिए। सुनते रहिए।
2: आपने ट्यून इन किया है रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए प्रस्तुत है देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम तराने आजादी। तराने आजादी सुनने वाले सभी श्रोताओं को दीप्ति का बहुत बहुत नमस्कार।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम तराने आजादी।
1: सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नब्बे दशमलव 8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम तराने आजादी।

0: सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नब्बे दशमलव 8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम तराने आजादी।

0: अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीप्ति को दें इजाजत। नमस्कार, सुनते रहे 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए।
1: अगर आपको दो हफ्तों से ज्यादा खांसी है तो इसे हल्के में ना लें, ये टीबी भी हो सकता है। तुरंत डॉक्टर से मिलें और बलगम की जांच कराएं। टीबी किसी को भी हो सकता है। अगर आपको टीबी हो गया है तो बिना भूले पूरा कोर्स करें।
2: कोई भी टीबी मरीज इलाज से छूटे नहीं, इसके लिए हमने नई रणनीति पर काम किया। हमने आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा है। हम टीबी की रोकथाम के लिए 6 महीने के कोर्स की जगह केवल 3 महीने का ट्रीटमेंट भी शुरू कर रहे हैं। अब नई व्यवस्था में मरीज को हफ्ते में केवल 1 बार दवा लेनी होगी। भारत अब वर्ष 2025 तक टीबी खत्म करने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का कैपेसिटी एनहेंसमेंट किया है। हम ट्रेस, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एंड टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है हमारा ये संकल्प जरूर सिद्ध होगा। यस वी कैन एंड टीबी। टीबी हारेगा, भारत जीतेगा।
1: दो हफ्तों से ज्यादा खांसी हो सकती है टीबी की बीमारी। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: देश के वीर जवानों को समर्पित शौर्य स्मारक की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर संगीत संध्या का आयोजन। सुनिए मिलिट्री बैंड की सांगीतिक प्रस्तुति। इसके साथ ही आप देख सकते हैं शस्त्र प्रदर्शनी 14 अक्टूबर शाम 6 बजे शौर्य स्मारक अरेरा हिल्स भोपाल, स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन का प्रतिष्ठा आयोजन। आप सभी सादर आमंत्रित हैं।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है कार्यक्रम भारत भारती। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम भारत भारती में हम आपको सुनवा रहे हैं गायन। फनकार हैं पंडित राजन साजन मिश्र।
1: एक प्राचीनतम राग से शुरू किया जाए जो ईश्वर की आराधना के लिए है, राग श्री। राग श्री का मतलब है विष्णु, श्री का मतलब है भगवान। और इसमें दो तीन रचनाएं हम लोग गाएंगे। पहली रचना झप ताल में है, 10 मात्रा, जिसके बोल हैं प्रभु के चरण कमल निस दिन सुमरिए।

0: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भारत भारती में गायन। कलाकार थे पंडित राजन साजन मिश्र। अब दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत। नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: देश के वीर जवानों को समर्पित शौर्य स्मारक की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर संगीत संध्या का आयोजन। सुनिए मिलिट्री बैंड की सांगीतिक प्रस्तुति। इसके साथ ही आप देख सकते हैं शस्त्र प्रदर्शनी 14 अक्टूबर शाम 6 बजे, शौर्य स्मारक अरेरा हिल्स भोपाल, स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन का प्रतिष्ठा आयोजन। आप सभी सादर आमंत्रित हैं।

0: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम
1: अतुल्य भारत।
0: हाँ, घूमना किसे पसंद नहीं, नई नई जगहें देखना, नए नए लोगों से मिलना, एक अलग तरह की संस्कृति और एक अलग तरह का नजारा।
2: हाँ, बिल्कुल ठीक कहा तुमने भाई, मैं तो हमेशा तैयार रहता हूँ घूमने फिरने के लिए।
0: और इन सब का अपना एक अलग ही आनंद होता है।
2: हो भी क्यों ना,
0: एक अलग ही रोमांच है। इस रोमांच की तमन्ना हमें मजबूर करती है कि हम अपने खोल से बाहर निकले और देखें कि दुनिया कितनी बड़ी और कितनी विविध है।
2: बिल्कुल ठीक कहा कंचन तुमने, वरना हमारी जिंदगी तो ऐसी हो जाएगी जैसे कुएं के अंदर एक मेंढक, अगर हम घूमने नहीं निकले। एक बात बताऊं तुम्हें?
0: हाँ?
2: प्रसंगवश हमें 14वीं सदी के एक यात्री इब्न बतूता की याद आती है। मोरक्को के टेंजियर शहर का वो रहने वाला था।
0: हाँ?
2: और पैदाइशी तौर पर उसे घूमने का जबरदस्त जज्बा था। वह कहता था कि मुझे वो ज्ञान बिल्कुल नहीं चाहिए जो किताबों में लिखा है भाई, मैं तो चीजों को अपनी आंखों से देखना, उन्हें महसूस करने में ज्यादा विश्वास रखता हूँ।
0: हाँ, मैंने भी सुना है उनके बारे में।
2: अच्छा?
0: वो कहते थे कि मैं दुनिया देखने के लिए उतावला हो रहा हूँ, और घुमक्कड़पन के इसी उन्माद में 22 साल का ये युवक अकेले ही अपने घर से निकल पड़ा, ऐसे जैसे चिड़िया का बच्चा अपना घोंसला छोड़कर निकल पड़ता है।
2: बिल्कुल ठीक।
0: 14वीं सदी का माहौल आज जैसा तो नहीं होगा तब। उस जमाने में अकेले तो क्या, कारवा के साथ चलने पर भी जान की कोई गारंटी नहीं होती थी।
2: हाँ, आपको घर बैठे घुमाने का रोमांच अनुभव कराने के लिए चलो आज हम आपको सैर पर ले चलते हैं, एक रेडियो यात्रा पर। इस कड़ी में सबसे पहले हम चलते हैं बाबा भोलेनाथ की नगरी वाराणसी में।
0: वाह, वाराणसी से मुझे कहावत याद आ गई।
2: कौन सी?
0: शाम अवध सुबह काशी, यानी अवध की शाम और काशी की सुबह बड़ी ही सुहानी होती है।
2: ये तो ठीक है।
0: सच बात है, काशी यानी कि वाराणसी में सुबह मुंह अंधेरे ही हर हर गंगे हर हर महादेव करती टोलियां जब गंगा तट की तरफ बढ़ती हैं, तो मन एक बार की भक्तिमय हो उठता है। सूरज के जगने से पहले ही ये शहर जग पड़ता है, मंदिरों की घंटियां बजने लगती हैं और गंगा का घाट चहल पहल से भर जाता है।
2: काशी नगरी पूरी दुनिया में सबसे निराली है, भगवान शिव ने इसे अपने त्रिशूल पर धारण किया हुआ है, और मानता तो यह भी है कि यह शहर दुनिया में होकर भी मानो दुनिया में नहीं है, और इसलिए जब पूरा विश्व प्रलय में डूब जाएगा तो कहते हैं तब काशी ही अपनी जगह पर कायम रहेगी, ऐसी मान्यता लोगों में आदि काल से चली आ रही।
0: और काशी को वाराणसी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वरुणा और असी नदियों के बीच बसा हुआ है। श्रोताओं, यहाँ पर हम आपको बता दें कि ये दोनों ही नदियाँ गंगा की सहायक नदियाँ हैं। इन नदियों ने अपने प्यार भरे आलिंगन में इस शहर को ऐसे पाला है जैसे दो माताएं किसी बच्चे को पालती हैं।
2: वाह वाह, क्या कल्पना करिए तुमने। दुनिया के इतिहास में अनेक नगरों का उत्थान और पतन होता रहा है। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो व हड़प्पा को ही ले लो। आज से 5000 साल पहले बसे इन शहरों में अब केवल मलबे ही मलबे बचे हैं, लेकिन वाराणसी शायद पूरी दुनिया का ऐसा सबसे पुराना शहर है जो लगातार जिंदा है, अनवरत धड़क रहा है। और हो भी क्यों ना, शिव जी की खास पसंद जो है ये काशी।
0: हाँ, और इसके बारे में मार्क ट्विन ने तो ये भी कहा था कि ये शहर ओल्डर देन हिस्ट्री है। वे लिखते हैं कि ये शहर इतिहास से भी पुराना है, परंपरा से भी पुराना है, पुराणों से भी पुराना है, और इन सब की आयु को अगर एक साथ जोड़ लिया जाए तो ये शहर इससे भी दुगना पुराना है।
2: वाराणसी शहर इतना पुराना है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि विश्व के सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख है। इस ग्रंथ में इसे काशी कहकर के पुकारा गया है। काशी शब्द का अर्थ होता है सिटी ऑफ लाइट, प्रकाश का शहर या ज्योति का शहर।
0: और प्रकाश ज्ञान का भी प्रतीक होता है, धर्म का भी और जागरण का भी।
2: बिल्कुल,
0: ये हम नहीं कहते, हमारे पुराने श्लोक कहते हैं।
2: कौन से श्लोक?
0: अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, यानी हे ईश्वर, हमें असत्य से सत्य की ओर और अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। आपको बता दें कि ये पंक्तियां वृदारण्यक उपनिषद के नवरस मंत्र से ली गई हैं।
2: बिल्कुल, लेकिन वाराणसी के संदर्भ में प्रकाश का अर्थ ज्ञान नहीं, जागरण नहीं, बल्कि कुछ और ही है, और वो क्या है ये हम आपको बताएंगे थोड़ी देर में। अभी आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
0: ऋग्वेद के बाद अगला महत्वपूर्ण ग्रंथ स्कंद पुराण है, जिसमें पूरा का पूरा एक काशी खंड ही है।
2: अच्छा।
0: और इस खंड में 15,000 श्लोक हैं। इनमें से एक श्लोक में भगवान शंकर कहते हैं,
2: क्या?
0: अखिल विश्व के तीनों लोकों में केवल एक ही शहर मेरा है और वो है काशी।
2: भाई वाह, क्या बात है।
0: और इसी शहर में मेरा शाही महल भी है।
2: श्रोताओं, अगर आप भूल रहे हो तो हम आपको याद दिला दें कि गंगा भी शिव की जटा से ही निकली है, यानी हर तरह से वाराणसी शिव में है। तभी तो हर हर गंगे यहाँ का सबसे बड़ा मंत्र है।
0: और रामायण व महाभारत ग्रंथों में भी वाराणसी की चर्चा बारंबार मिलती है। गौतम बुद्ध की बात करें तो उनका समय भी आज से लगभग 2,500 साल पहले का है।
2: बिल्कुल।
0: ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने अपना पहला उपनिषद ऋषिपत्तन में दिया था। ये ऋषिपत्तन ही आज सारनाथ है, जो वाराणसी से ही लगा हुआ है, जैसे कि भोपाल और बैरागढ़।
2: हाँ, गौतम बुद्ध बोधगया से ज्ञान प्राप्ति के बाद जब यहाँ आए, तब यहाँ पर एक बगीचा हुआ करता था, जिसे मृगार्दव कहा जाता था। इस शब्द का मतलब होता है कि ऐसा बगीचा जिसमें हिरण रहते हों। आज भी यह बगीचा है, जिसे डेयर पार्क कहा जाता है, और आज भी यहाँ पे हिरण रहते हैं।
0: और इस बगीचे में ही गौतम बुद्ध जी ने 5 ब्राह्मणों को अपना पहला धर्म उपदेश दिया था। बौद्ध परंपरा में ये घटना धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाती है, जिसका मतलब होता है धर्म के पहिए का गतिशील होना।
2: हाँ, बुद्ध के निर्वाण के बाद सारनाथ में धमेक स्तूप बनाया गया, जिसके आज केवल अवशेष ही मिलते हैं। यहाँ मुलागन गुटी नाम का एक विहार भी हुआ करता था। कहा जाता है कि बुद्ध ने अपना पहला वर्षाकाल यहीं व्यतीत किया था, और अब इस विहार को श्रीलंका की महाबोधि सोसाइटी द्वारा पुनर्निर्मित किया गया है।
0: इस तरह बुद्ध से संबंधित होने के कारण सारनाथ आज दुनिया भर के बौद्ध लोगों के लिए एक पवित्र स्थान है। और यहाँ हर समय पर जापान, थाईलैंड, तिब्बत, श्रीलंका और म्यांमार देशों के तीर्थयात्रियों का मेला लगा रहता है।
2: बिल्कुल ठीक कहा तुमने। सारनाथ का एक और महत्व है, और वह यह है कि यहाँ से प्राप्त अशोक की लाट से भारत सरकार का राज्य चिन्ह लिया गया है, जिसमें 4 सिंह एक दूसरे की ओर पीठ करके बैठे हुए हैं।
0: बौद्ध धर्म के समान ही जैन धर्म से भी वाराणसी का गहरा रिश्ता रहा है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म भी यही हुआ था। उनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे।
2: वाराणसी अपने खूबसूरत घाटों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यूं तो गंगा हर जगह मनोहारी है, पर काशी में तो इसकी छटा निराली है। मॉडर्न एज के जाने माने पेंटर मकबूल फिदा हुसैन को तो बनारस व यहाँ का गंगा तट इतना भाया कि उनकी पेंटिंग में अनेकों रंग इसमें बिखरे हुए हैं।
0: यहाँ इसके किनारों पर कुल 80 घाट बने हुए हैं, जो राजघाट से शुरू होकर 80 घाट तक फैले हैं। इन्हीं में से एक घाट का नाम मणिकर्णिका घाट है। राम जी के पूर्वज राजा हरिश्चंद्र ने जब अपने सपने में अपना राज्य दान दे दिया था, तब वे यहीं आकर एक डोम के दास बने थे।
2: लाइफ का कंट्रास्ट अगर देखना हो तो मणिकर्णिका घाट और दशाश्वमेध घाट देखें। एक मृत्यु का प्रतीक है तो दूसरा जीवन का। एक पर दाह संस्कार के लिए शवों की लाइन लगी रहती है तो दूसरी तरफ शादी विवाह की मन्नतें पूरी करने वालों से अटा पड़ा रहता है। पूरा का पूरा वातावरण जीवन की किलकारियों से भरा रहता है।
0: उस क्षेत्र के वरवधु शादी के बाद दशाश्वमेघ अवश्य आते हैं। गंगा माँ को चुनर चढ़ाई जाती है, दीपदान चलता रहता है, मंदिरों के घंटे जीवन का उद्घोष करते रहते हैं। घाट क्या है, पूरा एक शहर है। विदेशी यात्रियों का सबसे ज्यादा जमावड़ा भी यहीं दिखाई देता है। घाट की सीढ़ियों पर वे ऐसे शांति से बैठे रहते हैं जैसे यहाँ विद्यमान आध्यात्मिक ऊर्जा को चुपचाप आत्मसात कर रहे हो।
2: हाँ, और दूसरी ओर मणिकर्णिका, कुछ और नहीं बस मौत का सन्नाटा है यहाँ। यहाँ आकर के कबीर का दोहा याद आता है।
0: कौन सा?
2: पानी केरा बुलबुला असमानस की जात, देखत ही छुप जाएगा जो तारा प्रभात।
0: यानी मनुष्य का शरीर और क्या है, बस पानी का एक बुलबुला ही तो है। यहाँ से लौटने के बाद हफ्तों तक जीवन की निसारता पीछा करती रहती है। वैराग्य अनुराग पर चोट करता रहता है, पर अंत में जीत अनुराग की ही होती है। ऐसा ना हो तो सब सन्यासी ही हो जाएं।
2: बिल्कुल ठीक कहा तुमने। जब काशी की बात चले तो काशी विश्वनाथ मंदिर की चर्चा भला कैसे ना हो। यह मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। आपको बता दे कि इनमें से 2 ज्योतिर्लिंग हमारे मध्य प्रदेश में भी है, महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर। श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें कि वाराणसी को सिटी ऑफ लाइट्स भी कहते हैं और यह लाइट कुछ और नहीं ज्योतिर्लिंग ही है।
0: दरअसल ज्योतिर्लिंग उस देव स्थान को कहते हैं जहां शिव मूर्ति की नहीं बल्कि शिवलिंग की उपासना होती है।
2: श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें कि शिव सनातन है, निराकार है। सबसे पहले उन्होंने स्वयं को अरिद्र नक्षत्र की एक रात्रि में एक अग्नि शिखा के रूप में प्रकट किया जो धरती को फाड़ करके बाहर निकल रही थी। इस अग्नि शिखा को ही प्रतीकात्मक रूप से शिवलिंग के रूप में प्रकट किया जाता है।
0: श्रोताओं, 3 ज्योतिर्लिंग के नाम तो आपने सुन ही लिए, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर और काशी विश्वनाथ। चलिए अब आपको शेष 9 नाम भी बताए देते हैं। केदारनाथ, वैद्यनाथ, सोमनाथ, नागेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, घुश्मेश्वर, भीमाशंकर, मल्लिकार्जुन और रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग।
2: श्रोताओं, काशी के विश्वनाथ मंदिर को कभी कभी गोल्डन टेम्पल भी कहा जाता था। वजह यह थी कि इस मंदिर के शिखर पर 50 फीट ऊंचा सोने का पत्थर चढ़ा हुआ था। क्या आप जानते हैं कि यह पत्थर किसने चढ़ाया था? पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने।
0: इस मंदिर का कुछ रिश्ता हमारे मध्य प्रदेश से भी है।
2: हाँ।
0: राजमाता अहिल्याबाई होलकर कितनी शिव भक्त थी ये तो सभी जानते हैं।
2: बिल्कुल।
0: उन्होंने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और गंगा के कुछ घाटों को भी पक्का करवाया था। कहते हैं कि कोई व्यक्ति यदि गंगा में डुबकी लगाकर बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर ले तो मोक्ष का द्वार उसके लिए स्वयमेव खुल जाता है।
2: और शायद यही वजह है कि आदि शंकराचार्य से लेकर के गुरु नानक, तुलसीदास, स्वामी विवेकानंद आदि कितने ही महापुरुषों ने इस मंदिर के दर्शन किए, स्वयं को धन्य किया। इतिहास के लंबे दौर में अनेक बार इस मंदिर को हमलों का सामना करना पड़ा, लेकिन हर बार दुगनी शानो शौकत के साथ इसका पुनर्निर्माण किया गया।
0: श्रोताओं, वाराणसी शहर धर्म और आध्यात्म की एक गंगा है। तभी तो यहाँ एक से बढ़कर एक पवित्र स्थल है। अब संकट मोचन को ही ले लीजिए। उल्लेख मिलता है कि वाराणसी में असी नदी के पास एक जगह पर हनुमान जी ने गोस्वामी तुलसीदास को साक्षात दर्शन दिए थे। सो उन्होंने उस जगह पर संकट मोचन हनुमान मंदिर की स्थापना की।
2: लेकिन आज जो मंदिर का ढांचा है उसका निर्माण पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा करवाया गया था। इस मंदिर में बंदरों के झुंड मिलते हैं, इतने कि आप हैरान हो जाएं। ऐसा लगता है कि हम वानर लोक में आ गए हैं। पता नहीं जाने कैसे मालूम पड़ जाता है कि ये उनके राजा का मंदिर है।
0: जरा याद करें यहाँ पर हनुमान चालीसा की पंक्तियाँ।
2: कौन सी?
0: जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। यानी यहाँ हनुमान जी को कपिश कहा गया है।
2: बिल्कुल,
0: इसका अर्थ है कपि, यानी बंदरों के ईश और लौकिक अर्थ में राजा। प्रसंगवश आपको बता दें कि हनुमान चालीसा की रचना भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने ही की है और उसकी भाषा भी अवधी है।
2: हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि संकट मोचन मंदिर के बंदर भी बड़े नटखट और शरारती होते हैं। हो सकता है कि ये आपकी कोई कीमती चीज उठा ले जाएं, लेकिन केवल बार्गेनिंग के लिए नहीं, आप उनसे अपनी चीज को वापस लेना चाहते हैं तो आपको कुछ ना कुछ चीज उनको देनी पड़ेगी अदला बदली के लिए। बंदरों को आप कुछ खाने पीने की चीज दे दीजिए, वापस बदले में वो आपकी चीज आपको वापस लौटा देंगे।
0: संकट मोचन का रुतबा अगर आपको देखना हो तो जरा कभी मंगलवार या शनिवार को पधार कर देखिए। घंटों के पहले अगर दर्शन करने की आपकी बारी आ जाए तो कहिएगा। कहते हैं अगर किसी की कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी ना हो तो उसका सबसे प्रभावशाली उपाय है संकट मोचन के दर्शन करना।
2: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद। कार्यक्रम है अतुल्य भारत। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज। आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, हम वाराणसी की बात करें और वाराणसी के शिल्प की बात ना करें ये तो हो ही नहीं सकता। वाराणसी का शिल्प बहुत मशहूर है पूरी दुनिया में, खासकर यहाँ की बनी हुई बनारसी साड़ियाँ। इन साड़ियों का भारतीय लोगों के लिए क्या दर्जा है, इसका अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हर दुल्हन की यह अभिलाषा होती है कि वह अपने विवाह के अवसर पर बनारसी साड़ी जरूर पहने।
0: ये साड़ियाँ होती तो सिल्क की है पर इन पर सोने और चांदी की जरी की जाती है। एम्ब्रॉयडरी इतनी जबरदस्त होती है कि साड़ियां भारी भरकम हो जाती हैं, इसलिए ये केवल खास अवसरों पर ही पहनी जाती हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में इन्हें पहनना संभव ही नहीं।
2: भारत की बात छोड़ दें तो विदेशों में भी इन साड़ियों के प्रति भारी दीवानगी देखने को मिलती है। अगर आपने अपने किसी एनआरआई दोस्त की पत्नी को बनारसी साड़ी भेंट कर दी तो समझ लीजिए कि जिंदगी भर के लिए वह आपका हो गया। वास्तव में शादी विवाह के मौके पर इस साड़ी का तोहफा देना एक बड़ी ही महानता मानी जाती है।
0: यहाँ आपको बता दें कि सिल्क की बनी बनारसी साड़ियाँ बनारस की प्राचीन संस्कृति का अंग नहीं रही हैं। लंदन का एक व्यापारी रॉल्फ फिच 16वीं शताब्दी में भारत आया। उस समय भारत पर सम्राट अकबर की हुकूमत थी। फिच ने भारत के अनेक शहर घूमे जिनमें वाराणसी भी था। उसने लिखा है कि वाराणसी सूती कपड़ों का एक प्रमुख केंद्र था।
2: श्रोताओं, एक बात हम आपको बता दें, सम्राट अकबर के काल तक वाराणसी सिल्क टेक्सटाइल के लिए नहीं जाना जाता था। वास्तव में बनारस की साड़ियां तो गुजरात के बुनकरों की देन है। 17वीं शताब्दी के बाद गुजरात में भयानक अकाल पड़ा और वहां से बहुत सारे बुनकर पलायन करके बनारस में आ गए और इन्हीं लोगों ने बनारसी साड़ियों की नींव डाली।
0: बनारस की बात चले तो यहाँ की गलियाँ कैसे छूट सकती हैं? पूरी दुनिया में मशहूर हैं यहाँ की गलियाँ।
2: बिल्कुल ठीक कहा आपने, मैं तो कई बार भटक चुका हूँ इन गलियों में।
0: बाहर वालों के लिए तो भूल भुलैया ही है, तो यहाँ वालों के लिए तोहफा, सड़क पर जाम लगा है कोई बात नहीं, भीतर ही भीतर गलियों से निकल जाइए।
2: आप पूरा का पूरा शहर इन गलियों के सहारे नाप सकते हैं। करोड़ों का व्यापार इन गलियों में होता है। बनारसी साड़ियों की अच्छी से अच्छी दुकानें इन्हीं गलियों में हैं। बनारस के नायाब हैंडीक्राफ्ट आइटम्स भी इन्हीं गलियों में मिलते हैं।
0: श्रोताओं, विश्वनाथ मंदिर की चर्चा तो हो ही चुकी है। दशाश्वमेध घाट की सड़क से इस मंदिर को जोड़ने का काम भी एक गली ही करती है।
2: बिल्कुल,
0: जिसे विश्वनाथ गली कहा जाता है। गली क्या है, पूरा एक शहर है, मिनी वाराणसी आप देख सकते हैं यहाँ पर।
2: हाँ, एक से बढ़कर एक हैंडीक्राफ्ट के सामान, भगवान की अद्भुत मूर्तियां, राजा और सिपाही, पर्स, साड़ियां, गहने, ऐसा लगता है कि सपनों की गलियों में तैर रहे हैं आप। विदेशी पर्यटकों की तो भरमार रहती है इस गली में, लेकिन बार्गेनिंग बड़ी जबरदस्त होती है। कुछ खरीदना हो तो होशियार रहिएगा आप।
0: अरे हाँ, बनारस जाइएगा तो बनारसी लस्सी पीना मत भूलिएगा।
2: अच्छा,
0: वो स्वाद, वो सुगंध, आहा, वो स्टाइल आप कहीं और पा ही नहीं सकते। ताजी मलाईदार दही आपके सामने ही फेंटी जाएगी। और बर्फ का चूरा मिलाया जाएगा, शक्कर मिलाई जाएगी और ऊपर से गुलाब जल डालकर आपको सर्व की जाएगी मलाई की परत के साथ
2: जी।
0: मिट्टी के ये बड़े बड़े कुल्हड़ में देखते ही बस मुंह में पानी आ जाएगा।
2: अरे मुझे तो सोच कर ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। लस्सी बनाने की परंपरागत कला और पूरी तरह से हैंडमेड काम, ना मिक्सी ना फ्रिज और लस्सी की लस्सी।
0: लस्सी के अलावा एक और भी चीज मशहूर है बनारस की।
2: मुझे पता है आपका इशारा क्या है, बनारसी पान की तरफ ना।
0: हाँ बनारसी पान भी बनारस की एक पहचान है। यूं तो कलकतिया पान भी मशहूर है
2: हाँ।
0: पर बनारसी पान की बात ही कुछ और है। क्या आप जानते हैं कि इन दोनों में बेसिकली क्या अंतर है?
2: भाई कलकतिया पान बिल्कुल पक्का हरा होता है और बनारसी पान हल्का सा पीलापन लिए हुए होता है, मुझे तो इतना ही पता है। और इसीलिए इस कलकतिया पान की तुलना में इनमें कड़वापन कम होता है। बनारस के लोगों की कमजोरी है यह पान और शायद बनारस के बाहर के लोगों की भी। तभी तो डॉन फिल्म का यह गाना कि खाए के पान बनारस वाला आज भी जब बजता है ना तो लोग झूम उठते हैं। श्रोता बनारसी पान के बाद आपको याद दिला दे कि भारतीय शास्त्रीय संगीत का बनारसी घराना बड़ा प्रसिद्ध है और यह घराना तबला वादन में महारत रखता है।
0: धर्म प्राण वाराणसी को भारत के 7 मोक्षदायी स्थलों में एक माना जाता है।
2: बिल्कुल
0: गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है कि अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका व द्वारवती स्थल मोक्षदायक हैं।
2: भारतीय उपमहाद्वीपों के शक्तिपीठों के बारे में आपने तो सुना ही होगा। ये वे स्थल है जहां पर दक्ष की पुत्री तथा भगवान शिव की पत्नी के विभिन्न अंग कट करके गिरे थे। इन सभी स्थलों पर आज शक्तिपीठों की स्थापना की गई है और ये पीठ अत्यंत पवित्र माने जाते हैं। और वाराणसी में सती के कान की बाली गिरी थी, इस स्थान पर ही आज विशालाक्षी मंदिर बना हुआ है। श्रोताओं आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, कार्यक्रम है अतुल्य भारत। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, आजाद हिंद देश का चैनल देश के लिए।
0: चलिए श्रोताओं अब हम बात करते हैं वाराणसी से संबंधित कुछ महापुरुषों की।
2: बिल्कुल
0: वाराणसी असाधारण नगर है। यहाँ के वातावरण में चैतन्य लहरियाँ बहुत होती हैं। शायद यही वजह है कि यहाँ आने वाले व्यक्ति को एक अजीब सी शांति का अनुभव होता है
2: हाँ।
0: ऐसे लोगों का नाम गिनाने बैठे जो वाराणसी के दीवाने रहे हैं तो एक पूरा ही एपिसोड नाकाफी रहेगा, लेकिन हम कुछ चुनिंदा लोगों की बात करते हैं।
2: चलो शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं महाकवि तुलसीदास से। इन्होंने अपना अंतिम जीवन वाराणसी के एक गंगा घाट पर व्यतीत किया और अंत में देह त्याग भी यहीं किया। इस घाट का नाम तुलसी घाट कहलाता है।
0: गोस्वामी तुलसीदास जी की तरह कबीर दास जी का भी वाराणसी से गहरा संबंध है। उनका पालन पोषण यहाँ के एक जुलाहा दंपत्ति नीरू और नीमा ने किया था। जिस जगह पर कबीर रहे और पले वो आज कबीर चौरा कहलाता है।
2: अब हम बात करते हैं महामना मदन मोहन मालवीय की। इनका जन्म तो इलाहाबाद में ही हुआ था पर इनकी असली कर्मभूमि रही वाराणसी, जहां बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी के BHU की स्थापना करके वे अमर हो गए।
0: श्रोताओं आपको ये बता दें कि ये यूनिवर्सिटी न केवल भारत बल्कि पूरे एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी है। इसका केवल मुख्य कैंपस ही 1300 एकड़ में फैला हुआ है।
2: हाँ, तो मदन मोहन मालवीय जो पेशे से वकील थे, भारत की गरीबी का सबसे प्रमुख कारण अशिक्षा मानते थे, सो उन्होंने वाराणसी में एक रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी की स्थापना करने की ठान ली।

0: स्कूल स्थापना कर चुकी थी। यह स्कूल ही बीएचयू के लिए आधारशिला बन गया और इस तरह जनता के पैसे से जनता की ताकत पर सन 1916 में भारत का पहला रेसिडेंशियल विश्वविद्यालय अस्तित्व में आ गया।
1: जो रोल डॉक्टर हरि सिंह गौर का सागर विश्वविद्यालय की स्थापना में था, उससे भी बढ़कर मदन मोहन मालवीय जी का बीएचयू की स्थापना में रहा, क्योंकि मदन मोहन मालवीय जी के सामने पैसे की जबरदस्त तंगी थी।
0: मदन मोहन केवल एक शिक्षा शास्त्री ही नहीं थे, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी महान सेनानी थे। कांग्रेस में उनका क्या स्थान था, यह इस बात से ही प्रमाणित होता है कि एक दो नहीं बल्कि कुल 4 बार वे इस संस्था के प्रेसिडेंट चुने गए। इसी संस्था के मंच पर सबसे पहले 1905 में बनारस अधिवेशन के दौरान ही उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की कि वे इस शहर में एक यूनिवर्सिटी की स्थापना करना चाहते हैं।
1: भारत के सबसे सरल, नेक और ईमानदार प्रधानमंत्रियों में जिनका नाम सबसे पहले जुमा पर आता है, वे हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी भी बनारस के ही लाल थे, जो गंगा उस पार के गांव में रहते थे।
0: गरीबी बेइंतहा थी, पढ़ने के लिए गंगा पार करके शहर आना पड़ता था, पर नाव का किराया देने के लिए पैसा नहीं होता था, तो वे तैर करके गंगा पार करते थे। बनारस की गंगा कोई मामूली गंगा नहीं है, इसे पार करना एक जीवट का काम है, और जिसे लाल बहादुर शास्त्री ने किया, दुबले पतले कमजोर से इंसान ने।
1: लेकिन पढ़ाई का जज्बा भुजाओं में बल बनकर नदी पार कराता रहता। शायद ये गंगा जल के स्पर्श का ही प्रभाव रहा होगा कि उनकी रग रग में ईमानदारी और सच्चाई भर गई। कहते हैं कि प्रधानमंत्री होने के बावजूद जब उनका देहांत हुआ तो वे अपने पीछे संपत्ति नहीं बल्कि कर्ज छोड़ गए थे।
0: हाँ, मुझे याद है, वाराणसी शहर बड़ी शिद्दत से अपने इस लाल को याद करता है। यहाँ के हवाई अड्डे का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया है, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मध्य प्रदेश के खुजराव हवाई अड्डे से यहाँ के लिए सीधी उड़ान भी मिलती है।
1: हम वाराणसी के कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं है, पर इच्छा रखते हैं कि अगर आपने वाराणसी न देखा हो तो एक बार यहाँ जरूर जाएं।
0: बिल्कुल श्रोताओं, अब वाराणसी की यात्रा हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले सप्ताह आपको फिर ले चलेंगे किसी दूसरे नगर की यात्रा पर। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, सुनते रहिए 90.8 MHz पर रेडियो आजाद हिंद। इस कार्यक्रम का आलेख तैयार किया था श्रीमती पूनम जायसवाल ने और प्रस्तुत किया था प्रमोद शर्मा और
1: कंचन राजानी ने।
0: सुनते रहिए 90.8 MHz पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: देश के वीर जवानों को समर्पित शौर्य स्मारक की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर संगीत संध्या का आयोजन। सुनिए मिलिट्री बैंड की सांगीतिक प्रस्तुति। इसके साथ ही आप देख सकते हैं शस्त्र प्रदर्शनी 14 अक्टूबर शाम 6 बजे, शौर्य स्मारक अरेरा हिल्स भोपाल, स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन का प्रतिष्ठा आयोजन। आप सभी सादर आमंत्रित हैं।

सुनो कहानी, कहानी जो बचपन में नानी दादी सुनाया करती थी, कहानी जो हमें स्वप्न लोक और काल्पनिक लोक में ले जाया करती हैं, कहानी जिनको सुनते सुनते हम बड़े हो गए, कहानी जो मन को छू लेती हैं, दिल में उतर जाती हैं, जीवन के अनछुए मार्मिक और ज्ञानवर्धक पहलुओं पर प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम सुनो कहानी।

नमस्कार श्रोताओं, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। सुनो कहानी कार्यक्रम लेकर मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो मित्र भारती। श्रोताओं, कहानी बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सबको पसंद होती है, और उस पर मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी बिल्कुल ऐसी लगती है कि जैसे कि हमारे आसपास की ही कोई बात हो, कोई कहानी हो। तो आज कार्यक्रम सुनो कहानी में हम आपको कहानी सुनाएंगे पिसनहारी का कुआं।

मृत्युशैया पर पड़ी गोमती ने चौधरी विनायक सिंह से कहा, चौधरी मेरे जीवन की बस यही लालसा थी। तो चौधरी ने भी गंभीर होकर कहा, चिंता ना करो काकी, तुम्हारी लालसा भगवान पूरी करेंगे। हाँ, मैं आज ही मजदूरों को बुलाता हूँ और काम पर लगा देता हूँ। भगवान ने चाहा तो तुम अपने कुएं का पानी पियोगी, लेकिन हाँ, रुपए तो गिने ना, कितने हैं? गोमती ने एक क्षण आंखें बंद की, बिखरी हुई स्मृति को इकट्ठा किया और धीरे से कहा, भैया मैं क्या जानूं कितने रुपए हैं, जो कुछ है इसी हंडी में है। इतना करना कि इतने में ही काम चल जाए, किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। चौधरी ने बंद हांडी को उठाकर हाथों से तौलते हुए कहा, ऐसा तो करेंगे ही काकी, कौन देने वाला है? एक चुटकी भीख तो किसी के घर से निकलती नहीं, कुआं बनवाने को कौन देगा? धन्य हो तुम काकी, अपनी उम्र भर की कमाई इस धर्म काज के लिए दे रही हो। गोमती ने गर्व से कहा, भैया तुम तो तब बहुत छोटे थे, तुम्हारे काका चले गए, मेरे हाथ में एक कौड़ी नहीं थी, दिन दिन भर भूखी रहती थी, जो कुछ उनके पास था उनकी बीमारी में लग गया। भगवान के बड़े भक्त थे, भगवान ने उन्हें भी जल्दी बुला लिया। उस दिन से आज तक तुम देख रहे हो ना कि किस तरह दिन काट रही हूँ। मैंने एक एक रात में एक एक मन अनाज पीसा है बेटा, देखने वाले तो खूब अचरज करते थे, न जाने कितनी ताकत हो जाती थी मेरी। बस यही लालसा है कि उनके नाम का एक छोटा सा कुआं गांव में बन जाए। नाम तो चलना चाहिए भैया, इसलिए तो आदमी बेटे बेटी को रोता है। इस तरह चौधरी विनायक सिंह को वसीयत करके उसी रात को बुजुर्ग गोमती परलोक से धार गई। मरते समय अंतिम शब्द जो उनके मुख से निकले वो यही थे, कुआं बनवाने में देर ना करना भैया। उनके पास धन है ये तो लोगों का अनुमान है, लेकिन 2000 है इसका किसी को अनुमान नहीं था। बुढ़िया अपने धन का ऐब छुपा लेती थी, चौधरी गांव का मुखिया और नियत का साफ था, इसलिए गोमती ने उनसे ये अंतिम आदेश किया था। चौधरी ने गोमती के क्रिया कर्म में बहुत रुपए खर्च नहीं किए। ज्यों ही संस्कारों से छुट्टी मिली, अपने बेटे हरनाथ सिंह को बुलाकर ईंट चूना पत्थर का तखमीना करने लगे। हरनाथ अनाज का व्यापार करता था, कुछ देर तक तो चुपचाप सुनता रहा, फिर बोला, अभी 2-4 महीने कुआं ना बने तो कोई हर्ज है क्या? चौधरी ने कहा, नहीं हर्ज तो कुछ नहीं, लेकिन देर करने का काम ही क्या, रुपए उन्हें दे ही दिए हैं, हमें तो सैंत में यश मिलेगा, और गोमती ने मरते मरते जल्दी कुआं बनवाने को भी तो कहा है, याद है? तब हरनाथ ने कहा, हाँ कहा तो था, लेकिन आजकल देखो बाजार अच्छा है, 2-3 हजार का अनाज भर लिया जाए तो अघन पूस तक सवाया हो जाएगा, मैं आपको सूद भी दे दूंगा। अब चौधरी का मन शंका और भय से दुविधा में पड़ गया, 2000 के कहीं 2500 हो गए तो, जगमोहन में कुछ बेल बूटे बनवा दूंगा, लेकिन भय था कि कहीं घाटा हो गया तो। इस शंका को वो छिपा ना सका और बोल दिया, और कहीं घाटा हो गया हरनाथ तो? हरनाथ ने ताड़कर कहा, घाटा क्या हो जाएगा, कोई बात नहीं, मान लो घाटा हो गया तो। हरनाथ ने उत्तेजित होकर कहा, ये कहो कि तुम रुपए नहीं देना चाहते, बड़े धर्मात्मा बने फिरते हो, नहीं चाहिए। अन्य वृद्धजनों की भांति चौधरी भी बेटे से दबते थे, कातर स्वर में बोले, मैं ये कब कहता हूँ कि रुपए नहीं दूंगा, लेकिन पराया धन है बेटा, सोच समझ कर ही उसमें हाथ लगाना चाहिए। बनिज व्यापार का हाल कौन जानता है, कहीं भाव गिर जाए या उठ जाए, अनाज में घुन लग जाए, कोई मुद्दई घर में आग लगा दे, ये सब बातें सोच लो अच्छी तरह। तब हरनाथ ने व्यंग से कहा, इस तरह सोचना है तो ये क्यों नहीं सोचते कि कोई चोर ले जाए, बनी बनाई दीवार बैठ जाए, ये भी तो हो सकता है। चौधरी के पास अब और कोई दलील नहीं थी, कमजोर सिपाही ने ताल तो ठोकी, अखाड़े में उतर पड़ा, पर तलवार की चमक देखते ही हाथ पांव फूल गए। बगले झांक कर चौधरी ने कहा, तो कितना लोगे? हरनाथ भी कुशल योद्धा की भांति शत्रु को पीछे हटता देखकर बिफर गया, सबका सब दो
150 रुपए में क्या खिलवाड़ करूंगा। चौधरी जी राजी हो गए। गोमती को उन्हें रुपए देते किसी ने नहीं देखा था। लोक निंदा की संभावना नहीं थी। हरनाथ ने अनाज भर लिया, अनाजों के बोरों का ढेर हो गया। आराम की मीठी नींद सोने वाले चौधरी अब सारी रात बोरों की रखवाली करते। मजाल थी कि कोई चूहिया भी बोरे में घुस जाए। चौधरी इस तरह झपटते थे कि बिल्ली भी हार मान ले। 6 महीने बीत गए। पौष में अनाज बिका और 500 रुपए का लाभ हुआ। हरनाथ ने कहा, इसमें से 50 रुपए तुम ले लो। तब चौधरी ने झल्ला कर कहा, 50 रुपया क्या खैरात ले लूं? किसी महाजन से इतने रुपए लिए होते तो कम से कम 200 रुपए सूद होता। मुझे तो 2-4 रुपए कम दे दो, और क्या करोगे। हरनाथ ने ज्यादा बतखाव नहीं किया, 150 रुपया चौधरी को दे दिया। चौधरी की आत्मा इतनी प्रसन्न कभी ना हुई थी। रात को वो अपनी कोठी में सोने गया तो उसे ऐसा लगा कि बुढ़िया गोमती मुस्कुरा रही है। चौधरी का कलेजा धक हो गया। वो नींद में नहीं था और ना कोई नशा किए हुए था। गोमती अभी भी सामने खड़े मुस्कुरा रही थी। हाँ, उस मुरझाए हुए मुख पर एक विचित्र स्फूर्ति थी। कई साल बीत गए। चौधरी बराबर इसी फिक्र में रहते कि हरनाथ से रुपए निकाल लें, लेकिन हरनाथ हमेशा की तरह हीला हवाली करता। साल में थोड़ा सा ब्याज दे देता और मूल के लिए 1000 बातें। आखिरकार एक दिन चौधरी ने उसे साफ साफ कह दिया कि तुम्हारा काम चले या डूबे, मुझे रुपए चाहिए। हरनाथ ने झुंझला कर कहा, कहता हूं ना, 2 महीने और ठहरो, माल बिकते ही दे दूंगा। अब चौधरी ने दृढ़ता से कहा, तुम्हारा माल कभी नहीं बिकेगा और न तुम्हारे 2 महीने, मुझे आज ही पैसा चाहिए। हरनाथ उसी वक्त क्रोध में भर उठा। 2000 रुपए लाकर चौधरी के सामने उसने जोर से पटक दिए। चौधरी ने झेंप कर कहा, रुपए तो तुम्हारे पास थे, और क्या बातों से रोजगार होता है क्या। तो मुझे इस समय 500 रुपए दे दो, बाकी 2 महीने में दे देना, सब आज ही तो खर्च नहीं हो जाएंगे। हरनाथ ने ताव दिखाकर कहा, आप चाहे खर्च करो चाहे जमा, मुझे रुपए का अब काम नहीं। दुनिया में क्या महाजन नहीं है जो आपकी धौंस सहूं। चौधरी ने भी रुपए उठाए, ताक पर रख लिए। कुएं की दाग बिल डालने का सारा उत्साह उनका ठंडा पड़ गया। हरनाथ ने रुपए लौटा तो दिए, पर मन में कुछ और चल रहा था। आधी रात को सन्नाटा था घर में। हरनाथ चौधरी की कोठरी में धीरे से घुस गया। चौधरी बेखबर सोए थे। हरनाथ ने चाहा कि दोनों थैलियां उठाकर बाहर निकल जाए, लेकिन देखा कि सामने गोमती खड़ी है। दोनों थैलियों को दोनों हाथ से पकड़े। हरनाथ भयभीत हो गया और पीछे हटकर भाग गया। फिर ये सोचा कि शायद उसे धोखा हुआ। उसने फिर हाथ बढ़ाया, पर अब की बार वो मूर्ति भयंकर हो गई और हरनाथ अचेत होकर बरामदे में गिर गया। हरनाथ ने चारों तरफ से अपने रुपए वसूल करके व्यापारियों को देने के लिए जमा कर रखे थे। चौधरी ने आंखें दिखाई तो वही रुपए लाकर पटक दिया। दिल में उसी वक्त सोच लिया था कि रात को रुपए उड़ा लूंगा, झूठ मूठ चोर का गुल मचा दूंगा और मेरी तरफ संदेह नहीं होगा। रात को व्यापारी के एक चपरासी ने चौधरी के द्वार पर आकर 1000 गालियां सुनाई थी। चौधरी को बार बार क्रोध आता था, लेकिन वो मन को समझा देता था, हमसे मतलब ही क्या है, बेटे का कर्ज चुकाना बाप का धर्म नहीं है। जब भोजन करने गए तो पत्नी ने कहा, क्या उपद्रव मचा के रखा है जी। चौधरी ने भी कहा, मैंने नहीं मचाया है, तुम्हारे बेटे ने ही किया है। तब स्त्री ने कहा, ये नाक कटाई अच्छी लगती है। तब चौधरी ने कहा, तो मेरा क्या बस है भाई, कभी कुआं बनेगा कि नहीं, 5 साल हो गए हैं, तुमने समझाकर खिलाया नहीं, दाना पानी छोड़ देने से रुपए ना मिलेंगे, तुम क्यों नहीं जाकर समझाते। तब स्त्री ने कहा था। चौधरी ने कहा, मुझे तो इस वक्त वो अपना दुश्मन समझता है। तब स्त्री ने कहा, मैं रुपए ले जाकर बच्चे को दे देती हूँ, हाथ में जब रुपए आ जाएंगे तो कुआं बनवा देना। तब चौधरी ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा गजब ना करना, मैं इतना बड़ा विश्वासघात नहीं करूंगा, चाहे घर मिट्टी में मिल जाए। लेकिन स्त्री ने बातों पर ध्यान नहीं दिया, लपक कर सीधे अंदर चली गई। थैलियों में उसने जैसे ही हाथ डालना चाहा, चीख मार कर पीछे हट गई। उसकी सारी देह सितार के तारों की भांति झनझना उठी। चौधरी ने घबरा के पूछा, क्या हुआ, चक्कर तो नहीं आया। स्त्री ने ताक की ओर भय भरे नेत्रों से कहा, चुड़ैल खड़ी है वहां पर। चौधरी ने देखा,
कौन चुड़ैल, मुझे तो नहीं दिखता। तब स्त्री ने कहा, देखो तो, बुढ़िया ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने साफ देखा है, वो वहीं थी। बच्चे भी कहते हैं रात को थैलियों पर उसके हाथ रखे रहते हैं। तुमसे कुछ रुपए के विषय ही में कहना था। चौधरी ने कहा, वो रात को मेरी कोठी में कब आया था, तुम ये बताओ पहले। तब स्त्री ने कहा, तुमसे कुछ रुपए के विषय में ही कहने आया था और उसे देखते ही भाग गया। तब चौधरी ने कहा, ठीक है, तुम अंदर जाओ। स्त्री ने कान में हाथ रख लिया, नहीं बाबा, मैं उस कमरे में नहीं जाऊंगी। तब चौधरी ने कहा, ठीक है, मैं जाकर देखता हूं। चौधरी ने कोठरी में जाकर दोनों थैलियां ताक पर से उठा ली। किसी प्रकार की शंका नहीं हुई, गोमती की छाया का कहीं नाम नहीं था और स्त्री द्वार पर खड़ी उसे झांक रही थी। चौधरी ने गर्व से आकर कहा, मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दिया, वहां होती तो कहां गई, बताओ। क्या जाने तुम्हें क्यों नहीं दिखती, तुमसे उसे स्नेह था, इसी से हट गई होगी, तुम्हें भ्रम था, कुछ नहीं हुआ, चौधरी ने समझाया। हरनाथ ने कहा, किसी अच्छे ओझा को बुला लो, उसे मार भगाएंगे। क्या रात को तुम्हें भी दिखाई दी थी, तब चौधरी ने पूछा। हरनाथ ने कहा, हाँ, मैं तुम्हारे पास एक मामले के सलाह के लिए आया था। जैसे ही अंदर कदम रखा वो चुड़ैल खड़ी थी, मैं तो भाग गया और मैं अब नहीं जाऊंगा कहीं, मगर मुझे कुछ नहीं दिखाई देता, क्या बात है। क्या जाने आपसे डरती हो, हरनाथ ने कहा। चौधरी ने कहा, कुछ समझ में नहीं आता क्या माजरा है, क्या हुआ बेजू पांडे की डिग्री का। हरनाथ इन दिनों चौधरी से इतना जलता था कि अपनी दुकान के विषय में कोई भी बात नहीं करता था। आंगन की तरफ ताकता मानो हवा में बोला, जो होना होगा वो होगा, मेरी जान के सिवा और क्या लेगा, जो खा गया हूँ वो तो उगल नहीं सकता मैं। तो कहीं उसने डिग्री जारी कर दी तो क्या, दुकान में 400-500 का माल है, वो नीलाम हो जाएगा। तब चौधरी ने कहा, कारोबार तो चौपट हो जाएगा। अब कारोबार के नाम में कहाँ रोऊं, अगर पहले से मालूम होता कुआं बनवाने की इतनी जल्दी है तो ये काम छेड़ता ही क्यों, रोटी दाल तो पहले भी मिल जाती, पर होता 4 महीने हवालात में रहता, इसके सिवा और क्या है। तब माँ ने कहा, जो तुम्हें हवालात में ले जाए उसका मुंह झुलसा दूंगी, हमारे जीते जी तुम हवालात में नहीं जाओगे बेटा। हरनाथ ने दार्शनिक बनकर कहा, माँ बाप जन्म के साथ ही होते हैं, कर्म के नहीं। चौधरी को पुत्र से बहुत प्रेम था, उन्हें शंका हो गई थी कि हरनाथ रुपए हजम करने के लिए टाल मटोल कर रहा है, इसलिए उन्होंने आग्रह करके रुपए वसूल कर लिए। अब उन्हें अनुभव हुआ कि हरनाथ के प्राण सचमुच संकट में हैं। सोचा, अगर लड़के को हवालात हो गई, दुकान पर कुर्की हो गई तो कुल मर्यादा धूल में मिल जाएगी, क्या हरज है अगर गोमती के रुपए दे दूं, आखिर दुकान चलती ही है, कभी न कभी तो रुपए हाथ में आ ही जाएंगे। अचानक बाहर से पुकार हुई, हरनाथ सिंह। हरनाथ के मुख की हवाइयां उड़ गईं। चौधरी ने पूछा, कौन। बाहर से आवाज आई, कुर्क अमीन। हाँ, मालूम तो होता है, 1200 रुपए की डिग्री है। कुर्क अमीन कुछ लेन देन से नहीं टलेगा। टल तो जाता, पर महाजन भी तो साथ है, उसे तो कुछ देना है। 1200 रुपए गोमती के हैं, दे दो। उसके रुपए कौन छुएगा, ना जाने घर पे क्या आफत आ जाए, उसके रुपए कोई हजम थोड़े ही कर लेगा, चलो मैं दे देता हूँ। चौधरी को इस समय भय हुआ, कहीं मुझे भी ना दिखाई दे, लेकिन उसकी शंका निर्मूल थी। उन्होंने एक थैली से 220 रुपए निकाले और दूसरी थैली में रखकर हरनाथ को दे दिए। संध्या तक इन 2000 रुपयों में से एक भी ना बचा। 12 साल गुजर गए हैं, न चौधरी संसार में है न हरनाथ। चौधरी जब तक जिए कुएं की चिंता थी, यहाँ तक कि मरते दम भी उनकी जुबान पर कुएं की रट थी, लेकिन दुकान में सदैव रुपए का तोड़ा रहा। चौधरी के मरते ही सारा कारोबार चौपट हो गया। हरनाथ ने लाभ से संतुष्ट ना होकर दूने तिगुने लाभ पर हाथ मारा, जुआ खेला, लेकिन फायदा नहीं। साल भी गुजर नहीं पाया कि दुकान बंद हो गई, गहने पाते बर्तन भांडे सब मिट्टी में मिल गए। चौधरी की मृत्यु के ठीक साल भर बाद हरनाथ ने भी इस हानि लाभ के साथ संसार से पलायन कर लिया। माता के जीवन का कोई सहारा ना था, बीमार पड़ी रही और वो भी चली गई। केवल बहू है,
वो भी गर्भिणी है। उस बेचारे के लिए अब कोई आधार नहीं। इस दशा में मजदूरी भी नहीं कर सकती थी। पड़ोसियों के कपड़े सीकर उसने किसी तरह 5-6 महीने काटे। लड़का होगा, सारे लक्षण बालक के थे, यही एक जीवन का आधार था, और हुई कन्या। माता ने अपना हृदय इतना कठोर कर लिया कि नवजात शिशु को छाती से भी नहीं लगाया। पड़ोसियों के बहुत समझाने बुझाने पर छाती से लगा तो लिया, छाती में लेकिन दूध की एक बूंद नहीं थी। उस समय अभागिन माता के हृदय में करुणा, वात्सल्य और मोह का एक भूकंप था। अगर किसी उपाय से उसके स्तन की अंतिम बूंद दूध बन जाती तो वो अपने को धन्य मान लेती। बालिका भी भोली, दीन, याचनामय, संतुष्ट छवि देखकर उसका मातृ हृदय सहस्त्र नेत्रों से रुदन करता था। कुछ ऊपर का दूध पिलाकर उसे जिला लिया, लेकिन उसकी दशा दिनों दिन जीर्ण होती जा रही थी। एक दिन लोगों ने जाकर देखा तो वो भूमि पर पड़ी थी। बालिका उसकी छाती से चिपटी स्तनों को चूस रही थी। शोक और दरिद्रता से आहा शरीर में रक्त कहाँ था कि जिससे दूध बनता। वहीं बालिका पड़ोसियों की दया भिक्षा से पल पल कर एक दिन घास खोदती हुई उस स्थान पर पहुंच गई जहां बुढ़िया गोमती का घर था। छप्पर पंचभूत में मिल चुका था, दीवारों के चिन्ह बाकी थे। बालिका न जाने क्या सोचती, खुरपी से गड्ढा खोदना शुरू कर देती। दोपहर से सांझ तक वो गड्ढा खोदती। ना खाने की सुध, ना पीने की, ना शंका, ना भय। अंधेरा हो गया तो गड्ढे में बैठ गई। उस समय किसान लोग भूलकर भी उधर से नहीं निकलते थे, पर बालिका निशंक बैठी भूमि से मिट्टी निकालती थी। जब अंधेरा होता तो कहीं चली जाती। दूसरे दिन फिर उसका वही नित्यक्रम हो जाता। 2 बालक भी साथ हो गए उसके। तीनों वहां सांझ तक कुआं कुआं खेलते। बालिका गड्ढे के अंदर खोदती थी, दोनों बालक मिट्टी निकालकर बाहर फेंकते। तीसरे दिन 2 लड़के और आए, और मिल गया खेल। शाम तक खेल होता, गड्ढा 2 हाथ गहरा हो गया। गांव के बालक बालिकाओं में इस विलक्षण खेल ने अभूतपूर्व उत्साह से काम लिया। 4थे दिन और बालक आ गए। सलाह हुई कौन अंदर जाएगा, कौन मिट्टी उठाए और कौन खींचेगा। गड्ढा 4 हाथ का हो गया, पर अभी तक बालकों के सिवा और किसी को खबर ना थी। एक दिन रात को किसान अपनी खोई हुई भैंस ढूंढता हुआ उस खंडर में जा पहुंचा। अंदर मिट्टी का ऊंचा ढेर था और एक बड़ा सा गड्ढा। टिमटिमाता हुआ दीपक देखा तो डर के भाग गया। और उन्होंने भी आके देखा, कई आदमी थे, कोई शंका नहीं थी। पास जाकर देखा तो बालिका बैठी थी। तब एक आदमी ने पूछा, अरे क्या तूने ये गड्ढा खोदा। बालिका ने कहा, हाँ। क्या करोगी गड्ढा खोदकर। कुआं बनाऊंगी, बड़ी खुशी से बालिका ने कहा। कुआं कैसे बनाओगी। बिल्कुल वैसे जैसे इतना खोदा है, और खोद लूंगी। गांव के सब लड़के खेलने आते हैं। मालूम होता है तू अपनी जान देगी और अपने 7 लड़कों को भी मारेगी। खबरदार जो कल से गड्ढा खोदा। दूसरे दिन और लड़के नहीं आए। बालिका भी दिन भर मजदूरी करती रही, लेकिन संध्या समय वहां फिर दीपक जला और खुरपी हाथ में लिए वो बैठी रही। गांव वालों ने उसे मारा पीटा, कोठरी में बंद कर दिया, पर अवकाश पाते ही वो वहीं पहुंच जाती। गांव के लोग श्रद्धालु होते हैं। बालिका के इस अलौकिक अनुराग ने आखिर उन पर भी अनुराग उत्पन्न कर दिया। कुआं खोदने लगा। इधर कुआं खोद रहा था, उधर बालिका मिट्टी से ईंट बनाती। इस खेल में सारे गांव के लड़के शामिल हो गए। उजाली रातों में जब सब लोग सो जाते तब भी वो ईंटें थापती। ना जाने इतनी लगन उसमें कहां से आ गई। 7 साल की उम्र कोई उम्र होती है भला, लेकिन 7 साल की वो लड़की बुद्धि और बातचीत में अपनी तिगुनी उम्र वालों के कान काटती थी। आखिरकार वो दिन आ गया जब कुआं बंध गया, उसकी पक्की जगह तैयार हो गई। उस दिन बालिका उसी जगह पर सोई। आज उसके हर्ष की सीमा नहीं थी, वो गा रही थी, चहक रही थी। लेकिन प्रातःकाल उस जगह पर केवल उसका मृत शरीर मिला। उस दिन लोगों ने कहना शुरू कर दिया, ये वही बुढ़िया घूमती है। और उस कुएं का नाम रखा गया पिसनहारी का कुआं।

तो श्रोताओं, आज आपने सुनी मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी पिसनहारी का कुआं। अब अपने रेडियो मित्र भारती को दीजिए अनुमति और सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: तो दोस्तों, ये था आज का कार्यक्रम सुनो कहानी। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए लेखक की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: देश के वीर जवानों को समर्पित शौर्य स्मारक की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर संगीत संध्या का आयोजन। सुनिए मिलिट्री बैंड की सांगीतिक प्रस्तुति। इसके साथ ही आप देख सकते हैं शस्त्र प्रदर्शनी 14 अक्टूबर शाम 6 बजे, शौर्य स्मारक अरेरा हिल्स भोपाल, स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन का प्रतिष्ठा आयोजन। आप सभी सादर आमंत्रित हैं।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: देश के वीर जवानों को समर्पित शौर्य स्मारक की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर संगीत संध्या का आयोजन। सुनिए मिलिट्री बैंड की सांगीतिक प्रस्तुति। इसके साथ ही आप देख सकते हैं शस्त्र प्रदर्शनी 14 अक्टूबर शाम 6 बजे शौर्य स्मारक अरेरा हिल्स भोपाल, स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन का प्रतिष्ठा आयोजन। आप सभी सादर आमंत्रित हैं।

90.8 MHz पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो मित्र प्रमिला, लेकर आई हूँ आज का भारत भारती कार्यक्रम। श्रोताओ, इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं डॉक्टर तृप्ति नागर और फूल सिंह मांडरे का लोक गायन।

0: सुश्री तृप्ति नागर। और आइए अब हम आनंद लेते हैं बुंदेली वर्षा गीतों का। आमंत्रित करते हैं हम श्री फूल सिंह मांडरे को और उनके संगत कलाकारों को। आज आपके साथ जो अन्य सहयोगी कलाकार बतौर शामिल हो रहे हैं उसमें कोरस में सुश्री नीता झा और श्रीमती सीमा सक्सेना, ढोलक वादन करने के लिए मोहम्मद शबीर खान, तबले पर संजीव नागर, सिंथेसाइज़र पर भगवान दास माहौर और मंजीरे पर राम लखन श्रीवास।
1: सबसे पहले मैं एक मल्हार पेश कर रहा हूँ। प्रेमी प्रेमिका पति पत्नी, जब वियोग होता है, बरसात का समय है, तो अपने पति के वियोग में वो महसूस करती है, काक को भेजती है, उस पर आधारित ये गीत है।

रक्त रहजन कृष्ण जी का जन्म होता है जेल में, कारागृह में। वासुदेव जी टोकरी में लेकर उनको चलते हैं। जब यमुना जी के पास पहुंचते हैं तो पानी उनके चरण छूने के लिए आती है और शेषनाग छाया करते हैं।

एक ऐसी चीज पेश करने का प्रयास कर रहा हूं जो लुप्त होने के कगार पे है, रैया। बड़ा मार्मिक प्रसंग है। पहले रैया सतह हुआ करती थी, दो चार कोस चले जाते थे कि तो विदेश गए। एक राजा की फौज दूसरे राजा के दरबार में खड़ी है, ललकार रही है, तो राजा जाता है, रानी कहती नहीं आज रुक जाओ, देखिएगा।

एक जस रामचंद्र जी के वनवास जाने से सभी लोग दुखी थे। नर नारी पशु पक्षी सभी उनका इंतजार कर रहे हैं। बरसात का समय है, सावन का महीना है, आरती लेके खड़े हैं।

आज के भारत भारती कार्यक्रम में आपने डॉक्टर तृप्ति नागर और फूल सिंह मांडरे का लोक गायन सुना। अब ये कार्यक्रम खत्म होता है। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आज़ाद हिंद को, देश का चैनल देश के लिए। सुनते रहिए।

देश के वीर जवानों को समर्पित शौर्य स्मारक की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर संगीत संध्या का आयोजन। सुनिए मिलिट्री बैंड की सांगीतिक प्रस्तुति। इसके साथ ही आप देख सकते हैं शस्त्र प्रदर्शनी 14 अक्टूबर शाम 6 बजे शौर्य स्मारक अरेरा हिल्स भोपाल, स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन का प्रतिष्ठा आयोजन। आप सभी सादर आमंत्रित हैं।

नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: तो ये था श्रोताओं आज का हमारा दोपहर का प्रसारण 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। हमारा प्रसारण यूं ही रात्रि 10 बजे तक जारी रहेगा, दीजिए अनुमति पूर्वक हले को। और सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर।
1: शाम की सभा में आपका स्वागत है, मैं हूं आपका रेडियो दोस्त रत्नेश सोनी। आपने ट्यून किया FM 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। शाम के 5 बज रहे हैं, अब हमारी शाम की सभा आरंभ होती है। आइए सबसे पहले आपको बताए थे आज की सभा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में। सबसे पहले सुनिए कार्यक्रम अक्षय निधि मंडल 2 सूक्त 41 और उसके ठीक बाद सुनिएगा भक्ति संगीत। रोजाना की तरह शाम 6 बजे का समय होगा कार्यक्रम वतन की राग का, लाला हरदयाल जयंती। लाला हरदयाल जी की जयंती पर आधारित होगा आज का कार्यक्रम। कार्यक्रम में स्वर होगा सुनीता सिंह का। इतिहास के पन्नों से ये कार्यक्रम सुनिए शाम 6:30 पर। रानी दुर्गावती की गौण राज्य का इतिहास इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे। डॉक्टर पूजा सक्सेना से संदीप शर्मा की चर्चा। दृष्टिहीन जनों के लिए कंप्यूटर तकनीकी के फायदे, इस विषय पर सुनिए हमारा कार्यक्रम टेक गुरु शाम 7 बजे। डॉक्टर रोहित त्रिवेदी जी से फराज फैयाज की चर्चा इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे। हमारा विशेष कार्यक्रम सुनिए गायन पार्ट 1 वंदना सिन्हा का। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग की है फराज फैयाज ने। यह कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 7:30 पर।

0: रात 8 बजे सुनिएगा रेडियो रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय श्री राम लीला उत्सव पर, जिसके प्रस्तुत करता है फराज फैयाज। काव्य गुंजन, यह कार्यक्रम सुनिए रात 8:30 पर। कार्यक्रम में कलाकारों के स्वर होंगे भगवती सक्सेना, संदीप शर्मा, दीपक नेमागे। हमारे वैज्ञानिक, यह कार्यक्रम सुनिए रात 9:00। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर आधारित होगा आज का कार्यक्रम हमारे वैज्ञानिक। आप देश के राष्ट्रपति रहे हैं। युग प्रवर्तक विवेकानंद, यह कार्यक्रम सुनी रात 9:30 पर। अब से लेकर रात 10 तक बने रहिए मेरे यानी रतनीश के साथ और आनंद लीजिए विभिन्न कार्यक्रमों का। और आइए अब सुनते हैं अक्षय निधि एक अंतराल के बाद।
1: देश के वीर जवानों को समर्पित शौर्य स्मारक की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर संगीत संध्या का आयोजन। सुनिए मिलिट्री बैंड की सांगीतिक प्रस्तुति। इसके साथ ही आप देख सकते हैं शस्त्र प्रदर्शनी 14 अक्टूबर शाम 6:00 शौर्य स्मारक अरेरा हिल्स भोपाल, स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन का प्रतिष्ठा आयोजन। आप सभी सादर आमंत्रित हैं।

0: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज सुनिए ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के सूक्त 42 से वाचन। ऋषि है ग्रत्समत एवं भार्गव शौनक, देवता है शकुंत एवं छंद है त्रिष्टुप।
1: कनिक्रद जनुषम प्रब्रुवाण इयर्ति वाच मरितेव नावम सुमंगलश्च शकुने भवासि मा त्वा का चिदभिभा विश्वाविदत। जिस प्रकार मल्लाह नाव को चलाता है उसी प्रकार उपदेश देने वाला शकुनी बार बार उत्तम वाणी द्वारा प्रेरित करता है। हे शकुनी, आप सबके कल्याण करने वाले हों, आपको कोई आक्रमणकारी शत्रु किसी भी प्रकार का कष्ट न दे। मा त्वाश्येन उद्वधीन मा सुपर्णो मा त्वा विददि शुमान वीरो अस्ता पित्रया मनु प्रदिशम कनिक्रदत सुमंगलो भद्रवादी वदेह। हे शकुनी उपदेशक, आपको श्येन दुष्ट व्यक्ति न मारे और न ही गरुड़ पक्षी बलशाली तुम्हें मारे। कोई शस्त्राशस्त्रधारी आपको न प्राप्त कर सके। दक्षिण दिशा अर्थात विपरीत परिस्थितियों में भी कल्याणकारी वचनों का ही यहां उच्चारण करें। अवक्रंद दक्षिणतो ग्रहाणाम सुमंगलो भद्रवादी शकुंते मा नहस्तेन ईशत माघशंसो बृहद्वदेम विदथे सुवीराह। हे शकुनी, आप मंगलमय शब्दों को बोलने वाले हैं, अतः घर की दक्षिण दिशा में बैठकर भी कल्याणकारी प्रिय वचन बोलें। चोर तथा दुष्ट व्यक्ति हमारे ऊपर अधिकार न करें। सुसंतति युक्त होकर हम इस यज्ञ में आपका यशोगान करें।
0: अभी आप सुन रहे थे ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के सूक्त 42 से वाचन, प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम्ब त्रिपाठी।
2: आप सुन रहे थे कार्यक्रम अक्षय निधि 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए।
3: देश के वीर जवानों को समर्पित शौर्य स्मारक की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर संगीत संध्या का आयोजन। सुनिए मिलिट्री बैंड की सांगीतिक प्रस्तुति। इसके साथ ही आप देख सकते हैं शस्त्र प्रदर्शनी 14 अक्टूबर शाम 6 बजे शौर्य स्मारक अरेरा हिल्स भोपाल, स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन का प्रतिष्ठा आयोजन। आप सभी सादर आमंत्रित हैं।

श्रोताओं, ये तो सर्वविदित है कि ईश्वर के बिना हम कुछ नहीं हैं। अंततः उसी ने हमें गढ़ा है, उसी ने बनाया है और हमें भी उसी की शरण में जाना होता है। या यूं कहें कि सब कुछ होने के बाद भी अंततः है हरि शरण ही।

श्रोताओं, हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, करते भी हम हैं, हर कोई करता है, आप भी करते हैं, वो भी करता है, हर इंसान उसकी जितनी क्षमता है उससे कार्य करता है, प्रयास करता है, फल भी पाता है। लेकिन हम कोई ना कोई एक ताकत है जिसके भरोसे ये करते हैं, जो हमसे करवाता है, जो कार्य हम करते हैं उसका फल हमें मिलता है। तो हम सब के मन में एक भरोसा है, उस भरोसे के सहारे हम अपने प्रयास करते हैं,

श्रोता, हम प्रयास करते हैं, हमारा प्रयास कितना सफल होगा, क्या उसके परिणाम होंगे, परिणाम जो भी हो, अंततः हम जाते हरि शरण में ही हैं। सफल हो तो भी, असफल हो तो भी, सफल हो तो आगे का मार्गदर्शन, असफल हो तो आगे का मार्गदर्शन, जाते हरि शरण में ही हैं।

देश के वीर जवानों को समर्पित शौर्य स्मारक की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर संगीत संध्या का आयोजन। सुनिए मिलिट्री बैंड की सांगीतिक प्रस्तुति। इसके साथ ही आप देख सकते हैं शस्त्र प्रदर्शनी 14 अक्टूबर शाम 6 बजे शौर्य स्मारक अरेरा हिल्स भोपाल, स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन का प्रतिष्ठा आयोजन। आप सभी सादर आमंत्रित हैं।

0: मित्रों, ये था भक्ति संगीत। आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। बने रहिए हमारे साथ अगले कार्यक्रमों के लिए।
1: जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। ओ लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, प्यार की एक घड़ी है बड़ी।

0: नमस्कार, मैं नितिन मुकेश। आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद
1: मित्रों। आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। अब वक्त हो चला है कार्यक्रम वतन का राग का, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग।

इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार। आज हम चर्चा कर रहे हैं महान क्रांतिकारी लाला हरदयाल की। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कभू न छाणे खेत। अर्थात जो दीन दुखियों शोषितों की हित रक्षा के लिए लड़ मरे लेकिन कभी पलायन न करे, वही सच्चा शूरवीर है। इस नारे के साथ भारत से अंग्रेजी राज को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिए गदर पार्टी की स्थापना की गई थी, जिसके संस्थापक सदस्यों में से एक थे महान क्रांतिकारी लाला हरदयाल। लाला हरदयाल उन वीर योद्धाओं में से थे जिन्होंने भारत की स्वाधीनता के लिए अपना संपूर्ण जीवन होम कर दिया। लाला हरदयाल केवल स्वाधीनता संग्राम के एक निर्भीक योद्धा ही नहीं थे, बल्कि वो एक ओजस्वी वाणी के प्रतिष्ठित लेखक और प्रखर पत्रकार भी थे। उन्होंने विदेशों में रह रहे भारतीयों को भारतीय स्वाधीनता संग्राम से जोड़ने का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया था। ये उनकी वाणी, विचार और व्यक्तित्व का ही प्रभाव था कि भारत से बाहर रह रहे अनगिनत युवा उनके आह्वान पर एकजुट हुए और स्वाधीनता समर में कूद पड़े। लाला हरदयाल का जन्म 14 अक्टूबर सन 1884 को दिल्ली में गुरुद्वारा शीशगंज के पीछे स्थित चीराखाना मोहल्ले में हुआ था। उनकी माता का नाम भोली रानी था और पिता गौरी दयाल माथुर दिल्ली के जिला न्यायालय में रीडर थे। उनके परिवार में शिक्षा का वातावरण था और आर्य समाज का गहरा प्रभाव था, इसलिए बचपन से ही लाला हरदयाल की विशेष रुचि पढ़ाई लिखाई की ओर हो गई थी। बचपन में ही उन्होंने श्री रामचरितमानस का अध्ययन कर उसे आत्मसात कर लिया था। धर्म के कर्मकांड में उनका विश्वास नहीं था, लेकिन भारतीय दर्शन और संस्कृति के प्रति उनके भीतर गहरी आस्था थी। लाला हरदयाल अत्यंत तीक्ष्ण मेधा के धनी थे। वो एक साथ कई किताबें पढ़ सकते थे और उसे अपनी विलक्षण स्मरण शक्ति के बल पर दूसरों को सुना भी दिया करते थे। उनके सहपाठी अक्सर उनसे शेक्सपियर के नाटक सुनाने का आग्रह करते और वो न केवल क्रमबद्ध रूप से नाटक सुनाते जाते बल्कि पृष्ठ संख्या भी बताते जाते थे। इस तरह माँ सरस्वती की उन पर विशेष कृपा थी और उन्हें कक्षा में 100% अंक मिला करते थे। उन दिनों दिल्ली में ही एक मास्टर अमीरचंद हुआ करते थे जिन्होंने भारत की स्वाधीनता के लिए गुप्त क्रांतिकारी संस्था बनाई थी। इसी संस्था से क्रांति के बीज लाला हरदयाल के भीतर पड़े।

लाला हरदयाल की आरंभिक शिक्षा कैम्ब्रिज मिशन स्कूल में हुई। इसके बाद सेंट स्टीफन्स कॉलेज दिल्ली से उन्होंने संस्कृत में स्नातक किया। फिर पंजाब विश्वविद्यालय लाहौर से संस्कृत में ही एमए किया। लाला हरदयाल शुरू से ही भारतीय जीवन मूल्यों के प्रति अति आस्थावान और अत्यंत स्वाभिमानी व्यक्ति थे। लाहौर में यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन में उनका आना जाना था। एक बार इस संस्था के सचिव से उनका विवाद हो गया। इस बहस ने उन्हें अत्यंत आहत कर दिया और उन्होंने तय किया कि वो एक ऐसी ही भारतीय संस्था का गठन करेंगे। इस तरह उन्होंने यंग मैन इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की और दिखा दिया कि उनके लिए भारत और भारतीयता क्या है। अपनी शैक्षणिक योग्यता के बल पर उन्हें 200 पाउंड की छात्रवृत्ति दी गई। आगे की पढ़ाई के लिए वो लंदन चले गए और सन 1905 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में उन्होंने प्रवेश लिया। यहाँ उन्होंने 2 छात्रवृत्तियां और प्राप्त की। ये वो समय था जब भारत में बंग भंग आंदोलन शुरू हुआ और बहुत जल्द इसकी ज्वाला प्रचंड हो गई। भारत की राजनैतिक परिस्थितियों से लाला हरदयाल अत्यंत विचलित हुए। वो अत्यंत योग्य और प्रतिभाशाली युवा थे तथा इंडियन सिविल सर्विसेज यानी ICS के प्रबल दावेदार माने जाते थे, लेकिन अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध उनके भीतर आक्रोश इतना अधिक बढ़ा कि उन्होंने ICS भाड़ में जाए कहकर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय तत्काल छोड़ दिया और देश सेवा में जुट गए। उनका मानना था कि हम उनकी सेवा क्यों करें जिन्होंने हमें गुलाम बना रखा है। उन दिनों लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा भी रहते थे, जिन्होंने देशभक्ति का प्रचार करने के लिए वहीं इंडिया हाउस की स्थापना की थी। इंडिया हाउस से प्रेरित होते हुए लाला हरदयाल ने एक संस्था देशभक्त समाज की स्थापना की और इसमें करतार सिंह सराभा, विष्णु गणेश पिंगले जैसे 6 भारतीयों को पढ़ने के लिए बुलाया। यहां उनकी मदद तेजा सिंह और तारकनाथ दास जी ने की। इसके साथ ही गुरु गोविंद एजुकेशनल स्कॉलरशिप फंड बनाने के लिए एक अमीर किसान ज्वाला सिंह ने भी उनकी मदद की। श्यामजी कृष्ण वर्मा के संपादन में निकलने वाली पत्रिका इंडियन सोशलिस्ट में लाला हरदयाल ने सरकार के विरुद्ध बहुत कड़े लेख लिखे, जिससे प्रभावित होकर कई नवयुवक विद्रोह पर उतर आए।

सन 1908 में लाला हरदयाल भारत लौट आए। बौद्ध दर्शन से भी वो प्रभावित रहे। कुछ समय बाद वो लाहौर के अंग्रेजी दैनिक पंजाबी का संपादन करने लगे। ये लाला हरदयाल की प्रखर वाणी और ओजपूर्ण लेखनी का ही परिणाम था कि अनेक विद्यार्थी कॉलेज छोड़ने लगे और सरकारी कर्मचारी अपनी नौकरियों का त्याग करने लगे। इन परिस्थितियों से भयभीत अंग्रेजी सरकार उन्हें गिरफ्तार करने की योजना में जुट गई। ऐसे समय में लाला लाजपत राय ने उनसे कहा कि तुम्हारे जैसे प्रतिभाशाली युवा का जेल से बाहर रहकर राष्ट्र सेवा करना अत्यंत आवश्यक है, इसलिए तुम पेरिस चले जाओ। इस तरह लाला हरदयाल अब पेरिस आ गए, जहां भीकाजी कामा, श्यामजी कृष्ण वर्मा और विनायक दामोदर सावरकर जैसे महान देशभक्तों के साथ मिलकर वो काम करने लगे। यहां वंदे मातरम पत्रिका का कार्यभार उन्होंने संभाला। उन दिनों तलवार नाम से भी एक पत्रिका निकलती थी, उसमें भी लाला हरदयाल ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध बहुत कड़े लेख लिखे। लाला हरदयाल ने पेरिस में अपना प्रचार केंद्र बनाना चाहा, लेकिन संसाधनों की कमी से ये संभव नहीं हो सका। यहां से वो पुनः अध्यात्म की ओर मुड़ गए। पहले वो अल्जीरिया गए और फिर लामार्तनीक द्वीप में एकांतवास करते हुए वो तप करने लगे। लेकिन बहुत जल्द भाई परमानंद के कहने पर वो पुनः स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय हो गए। अब उन्होंने हिंदू धर्म दर्शन और संस्कृति के प्रचार प्रसार का बीड़ा उठाया। सन 1912 में वो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में हिंदू दर्शन और संस्कृत के व्याख्याता हुए। सरदार सोहन सिंह भाकना जैसे साथियों के साथ मिलकर लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की। लाला हरदयाल ने गदर पत्रिका भी निकाली, जिसका प्रभाव बहुत व्यापक रहा। उन्होंने अपने ओजस्वी व्याख्यान से विदेश में रह रहे युवाओं को भारत लौटने के लिए प्रेरित किया। उनके प्रभाव से लगभग 10,000 युवक भारत लौटे। कितने ही लोगों को रास्ते में गोली से उड़ा दिया गया और अनेक लोग सूली पर चढ़ा दिए गए। लाला हरदयाल ने भाई परमानंद के साथ मिलकर क्रांति की अग्नि को प्रचंड किया और परिणाम ये हुआ कि दोनों ही गिरफ्तार कर लिए गए। भाई परमानंद को पहले फांसी और बाद में काले पानी की सजा हुई, लेकिन लाला हरदयाल अपनी तीक्ष्ण बुद्धि के बल पर बच निकले और जर्मनी तथा स्वीडन में रहते हुए उन्होंने क्रांति की मशाल जलाए रखी। 13 भाषाओं के विद्वान लाला हरदयाल ने अनेक पुस्तकें लिखीं, जिनमें प्रमुख हैं थॉट्स ऑन एजुकेशन, डॉक्ट्रिन्स ऑफ बोधिसत्व, हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स आदि। एक लंबे विदेशी प्रवास के बाद लाला हरदयाल को अंततः सन 1938 में भारत वापस आने की अनुमति प्रदान की गई, लेकिन भारत भूमि के लिए विदेश में रहकर आजीवन संघर्ष करने वाले देश के इस वीर सपूत को जीते जी भारत आने का सौभाग्य नहीं मिल सका। 4 मार्च सन 1938 को फिलाडेल्फिया में उनका आकस्मिक निधन हो गया। नमन ऐसे महान देशभक्त को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

0: ये रेडियो आजाद हिंद है 90.8 मेगाहर्ट्ज देश का चैनल देश के लिए। अभी आपने सुना कार्यक्रम वतन का राग।
1: देश के वीर जवानों को समर्पित शौर्य स्मारक की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर संगीत संध्या का आयोजन। सुनिए मिलिट्री बैंड की सांगीतिक प्रस्तुति। इसके साथ ही आप देख सकते हैं शस्त्र प्रदर्शनी 14 अक्टूबर शाम 6 बजे शौर्य स्मारक अरेरा हिल्स भोपाल, स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन का प्रतिष्ठा आयोजन। आप सभी सादर आमंत्रित हैं।

0: द्विधातु जाल और ईस्ट इंडिया कंपनी। 17वीं शताब्दी के एक बंदरगाह पर खड़े होने की कल्पना कीजिए, जहां एक जहाज पर चमकदार सोने से भरे एक के बाद एक संदूक लादे जा रहे हैं। 1670 के दशक में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए यह केवल धन का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि ये एक हताश कर देने वाला वित्तीय दाव था। लंदन में चांदी, जो वैश्विक व्यापार का मानक थी, खतरनाक रूप से दुर्लभ और महंगी होती जा रही थी। व्यापार को चालू रखने के लिए कंपनी ने सोने का रुख किया। शुरुआत में यह रणनीति शानदार लगी। भारत में चांदी की कीमत गिर रही थी, जिसका अर्थ था कि वहां सोने का व्यापार भारी प्रीमियम पर हो रहा था। लेकिन तभी बाई मेटालिक रिश्यो ट्रैप, यानी दो धातुओं के मूल्य का जाल, अचानक बंद हो गया। साल 1676 था और भारतीय बुलियन बाजार अचानक चरमरा कर गिर गया। बिना किसी चेतावनी के सोने की चांदी में आकी जाने वाली कीमत धराशायी हो गई। सोने के सिक्के, जो दशकों से 15 रुपए में बिकते थे, गिरकर केवल 11 या 12 रुपए पर आ गए। कंपनी की सूरत फैक्ट्री पूरी तरह तबाह हो गई, जिसने अपने सोने के शिपमेंट पर अत्यधिक भारी नुकसान की रिपोर्ट दी। इस अचानक गिरावट का कारण क्या था? बाजार की अफवाहों का दावा था कि तत्कालीन मुगल शासक औरंगजेब ने अफगानिस्तान और दक्कन में अपने भीषण युद्धों के वित्त पोषण के लिए अपने विशाल पैतृक सोने के भंडार को बाजार में उतार दिया था। अपने सैनिकों को भुगतान करने के लिए अर्थव्यवस्था में शाही सोने की बाढ़ लाकर सम्राट ने अनजाने में कंपनी के मुनाफे को पूरी तरह खत्म कर दिया। कंपनी ने लंदन में चांदी की कमी से बचने की कोशिश की थी, लेकिन भारत में सोने की अधिकता, यानी गोल्ड ग्लट, ने उन्हें कुचल दिया। 17वीं सदी की इस आपदा ने कंपनी को वापस चांदी की ओर लौटने पर मजबूर कर दिया। इसने साबित कर दिया कि वैश्विक मुद्रा के इस उच्च जोखिम वाले खेल में एक सम्राट की कलम का एक वार सबसे शक्तिशाली कॉरपोरेशन को भी घुटनों पर ला सकता है।
1: क्या दिल ने कहा, क्या तुमने सुना?
2: हाय, मैं हूँ ईशा और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
3: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा और आज हम अपने कार्यक्रम इतिहास के पन्नों की 11वीं कड़ी में पहुंच गए हैं।

0: हमने इसकी 10वीं कड़ी यानी पिछली कड़ी में सुना था। सन 1564 ईस्वी में चौरागढ़ पर अधिकार करने के उपरांत आसफ खां को अपरिमित धन मिला। इसके बाद मुगल दरबार और गढ़ा राज्य के बीच हुए नरई युद्ध के उपरांत की संधि हुई। गढ़ा राज्य की ओर से अपना अगला उत्तराधिकारी चंद्र शाह को घोषित किया गया। चंद्र शाह राजा वीर नारायण के चाचा थे, यानी राजा दलपत शाह के छोटे भाई और वीरांगना रानी दुर्गावती के देवर। स्टूडियो में फिर से एक बार हमारे साथ मौजूद हैं प्रसिद्ध पुरातत्वविद डॉक्टर पूजा सक्सेना। पूजा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे स्टूडियो में।
1: नमस्कार।
0: 11वीं कड़ी में भी हमारे श्रोता राह देख रहे हैं कि आप उन्हें कितनी दिलचस्प जानकारियां देने वाली हैं। आपसे सुनना चाहेंगे कि आगे क्या हुआ।
1: रानी दुर्गावती के वीरांगना होने के बाद गढ़ा राज्य का इतिहास तो जैसे बदल ही गया। जैसा आपने कहा, उनके उत्तराधिकारी उनके देवर राजा चंद्र शाह हुए, और मुगलों के बीच तो संधि हो ही चुकी थी
0: जी।
1: गढ़ा राज्य को अपने 10 गढ़ जो हैं मुगलों को देने पड़े। हालांकि बाद में अकबर ने वो 10 गढ़ गोंडों को ही वापस लौटा दिए। पर यहाँ गढ़ा में यानी जबलपुर में क्या हुआ, तो हम देखते हैं कि गोंड राजा चंद्रशाह का कुछ छोटा सा राज्य काल है, और उसके बाद उनके उपरांत मधुकर शाह हुए
0: जी।
1: और प्रेम शाह हुए, ये सभी गढ़ा के राजा रहे। यहाँ उल्लेखनीय राजा जो हैं वो हैं गढ़ा राज्य के गोंड राजा हृदय शाह
0: जी।
1: शायद आपने उनका नाम
0: बिल्कुल,
1: सुना
0: बिल्कुल।
1: होगा
0: जी।
1: हृदय शाह 1635 में सिंहासन पर बैठे
0: जी।
1: ये समय था रानी को वीरांगना हुए लगभग 70 वर्ष बीत चुके
0: हो चुके थे जी।
1: तो 1635 में जब हृदय शाह गद्दी पर बैठे, उनके लिए चौरागढ़ से शासन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था।
0: अच्छा।
1: कुछ यहाँ वहाँ से आक्रमण हो रहे थे, और नरई के युद्ध के बाद अस्थिरता तो फैल ही गई थी
0: जी।
1: तो हृदय शाह ने एक नया निर्णय लिया, और उन्होंने चौरागढ़ से अपनी राजधानी स्थानांतरित कर दी।
0: अच्छा।
1: ये 1651 की बात है
0: जी।
1: और उन्होंने जो अपनी नई राजधानी चुनी वो थी मंडला में ही, और आजकल उसे हम रामनगर के नाम से जानते हैं।
0: अच्छा।
1: तो रामनगर मंडला शहर से लगभग 20 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में है
0: जी।
1: और आजकल ये ऐतिहासिक स्थल है, पुरातात्विक स्थल है, और पर्यटन का भी एक बड़ा जाना पहचाना केंद्र है
0: जी।
1: हम ये तो नहीं कह सकते कि रामनगर सामरिक दृष्टि से बहुत उचित स्थान था, लेकिन ये बहुत ही सुंदर जगह है
0: जी।
1: यहाँ नर्मदा नदी कलकल करके बहती है
0: जी, जी।
1: और दूसरी ओर से बंजर नदी का संगम होता है, तो ये दोनों नदियां मिलकर इस स्थान को दो ओर से घेर लेती हैं। हृदय शाह ने इन दोनों नदियों को जोड़ते हुए एक खाई बनवा दी
0: जी।
1: तो अब ये हुआ क्या कि ये जो यू शेप ये जगह थी
0: जी।
1: ये अब चारों ओर से पानी से घिर गई और एक टापू के समान बन गई।
0: वाह।
1: तो देखने में ये बहुत ही सुंदर लगती है, आप कभी जाएं तो यहाँ पर जाकर आपका
0: मतलब
1: दिल।
0: ये जगह हम अभी भी देख सकते हैं जो आप बता रही हैं कि जो हृदय शाह ने बनवाई, वो टापू अभी भी है वहाँ पर।
1: बिल्कुल, वो टापू है। हृदय शाह ने जो वहाँ पर बहुत सारी इमारतें बनवाई वो आज भी हम वहाँ पर देख सकते हैं
0: जी।
1: हम साधारणतः जिस तरीके के किलों की कल्पना करते हैं ये वैसा नहीं है। हम जानते हैं कि हृदय शाह जो थे वो एक जाने माने कवि भी थे, तो उनका कवि हृदय रहा होगा
0: जी।
1: और उन्होंने जब स्थान का चुनाव किया तो वो कुछ वैसा ही था जैसे कोई कवि चुनता है। उन्होंने जो उसमें इमारतें बनवाई वो भी बहुत सुंदर है।
0: ये भी सुनते, जैसे आपने कहा कि हृदय शाह को कवि हृदय कहा जाता है, वो कविताएं करते थे, और इसके साथ ही कहीं कहीं उल्लेख मिलता है कि उन्हें संगीत का भी ज्ञान था।
1: बिल्कुल, हृदय शाह को तो संगीत का ज्ञाता कहा जाता है, बल्कि हृदय शाह की गणना 17वीं सदी के अच्छे संगीतकारों में होती है।
0: वाह।
1: वह न केवल अच्छे गायक थे, वो एक अच्छे वादक भी थे, और बल्कि उन्होंने संगीत पर 2 पुस्तकें भी लिखी। इन ग्रंथों में शास्त्रीय संगीत की सूक्ष्म विवेचना की गई है, और ग्रंथों का नाम है हृदय कौतुक और हृदय प्रकाश।
0: तो लीजिए कितनी अच्छी बात निकल करके यहाँ पर सामने आई है। पूजा जी हमें इतनी अच्छी अच्छी जानकारियां दे रही हैं। हम बात तो कर रहे हैं गोंड राजवंश की, लेकिन उन्हीं के एक राजा जिन्हें आमतौर पर हृदय शाह कहा जाता है, खासतौर पर उस क्षेत्र विशेष में, उनका नाम था हृदय शाह। और वो ना सिर्फ कविताएं करते थे, संगीत के भी गाते थे, और उन्होंने हृदय कौतुक और हृदय प्रकाश इन दो पुस्तकों को लिखा था शास्त्रीय संगीत पर जो आधारित हैं, और हमारे श्रोता उन पुस्तकों को यदि हासिल कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात होगी। पूजा जी, कुछ स्थापत्य कला में क्या योगदान दिया हृदय शाह ने, ये जानना चाहेंगे।
1: रामनगर को राजधानी बनाते हुए उन्होंने कुछ इमारतें बनाई जिन्हें आज भी देखा जा सकता है। जैसे रामनगर का विष्णु मंदिर बड़ा ही प्रसिद्ध है।
0: अच्छा।
1: ये गोंड कला का बड़ा सुंदर उदाहरण है। इसके अलावा यहाँ एक मोती महल है, एक राय भगत की कोठी है और एक रानी महल है
0: जी।
1: तो अगर कभी मंडला जाएं और रामनगर का विष्णु मंदिर देखें, बहुत ही सुंदर मंदिर है और गोंड कला का महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसको हृदय शाह की रानी थी सुंदरी देवी, उन्होंने बनाया था सन 1667 में।
0: अच्छा।
1: और मंदिर जब पूरा हो गया तो रानी ने उस मंदिर में एक शिलालेख भी लगवाया। इसी शिलालेख से हमको गढ़ा का जो गोंड राजवंश है उसके बारे में बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं, जैसे कि उनकी वंशावली क्या थी, उनकी उपलब्धियां क्या थी और उन्होंने क्या विशेष कार्य किए। यहाँ तक कि नरई के युद्ध का जो वर्णन है वो भी रामनगर के शिलालेख में किया गया है।
0: अरे वाह।
1: रामनगर का शिलालेख इसी मंदिर में स्थापित था और अभिलेख में ये भी जानकारी है कि इस मंदिर के जो प्रमुख कारीगर थे वो थे दयाराम और भागीरथ।
0: अच्छा।
1: उनको भी इस अभिलेख में पूरा क्रेडिट दिया गया
0: बहुत
1: है।
0: ये कितनी अच्छी बात है। देखिए, नहीं तो अक्सर ये हो जाता है कि इमारतें याद रह जाती हैं लेकिन शिल्पकारों का नाम कोई नहीं जानता।
1: अभी सुरक्षा

0: साहित्यों में और इतिहास में उसका भी वर्णन मिलता है
1: जी।
0: तो एक बार राजा हृदय शाह का दिल्ली जाना हुआ
1: जी।
0: और वो मुगल दरबार में रुके, वहां पर एक गायिका थी सुंदरी देवी।
1: अच्छा,
0: तो हृदय शाह भी गायक थे, हम सब जानते हैं, और दोनों का आपस में मिलना हुआ होगा
1: जी।
0: और कुछ ही समय में दोनों के बीच में अनुराग हो गया
1: जी।
0: जनश्रुति के अनुसार हमें पता चलता है कि एक दिन हृदय शाह उन सुंदरी देवी को लेकर मंडला आ गए।
1: अच्छा,
0: तो उन्होंने फिर यहाँ आकर उनसे विवाह किया और सुंदरी देवी ने गोंड राज्य के लिए बहुत सारे अच्छे कार्य करवाए, उसमें से एक है विष्णु मंदिर की स्थापना कराना।
1: तो इस प्रेम विवाह का जो आधार बना वो संगीत बना।
0: बिल्कुल, आधार इसका संगीत था और स्थापत्य में भी आप उसकी सुंदरता देख सकते हैं।
1: जी जी बिल्कुल,
0: ये पंचायतन शैली का मंदिर है। जैसे हम पहले भी वर्णन करते आ रहे थे कि गोंड काल में पंचायतन शैली का विकास हुआ और उसमें खासियत ये थी कि 5 गर्भगृह होते हैं
1: जी।
0: हमने उसको पचमठा नाम भी दिया था, जिसमें कि एक मुख्य गर्भगृह और 5 देव कुलकाएं होती हैं
1: जी।
0: तो चारों कोनों पर छोटे छोटे गर्भगृह होते हैं, इसको देवकुलिका बोलते हैं, और एक गर्भगृह के चारों तरफ प्रदक्षिणापथ होता है। तो इस विष्णु मंदिर में भी एक मुख्य देवकुलिका है
1: जी।
0: और उसके चारों ओर छोटी छोटी 4 देवकुलिकाएं हैं
1: जी।
0: तो ये चारों देवकुलिकाएं आयताकार जो कक्ष है
1: जी,
0: उसके चारों कोनों पर स्थित हैं
1: जी।
0: तो जब आप इसके चारों तरफ प्रदक्षिणा लेंगे तो इन चारों देवकुलिकाओं में जो स्थापित देवता थे उनके दर्शन किए जा सकते थे। वर्तमान में ये प्रतिमाएं अब नहीं है,
1: अब नहीं है जी, जी।
0: जो मंदिर की छत है वो गुंबजाकार है और छत के चारों तरफ से छज्जे निकले हुए हैं। तो छज्जों के नीचे जो तोड़े होते हैं यानी जो ब्रैकेट्स होते हैं वो बहुत ही सुंदर है इस मंदिर के। मंदिर के दरवाजे हैं वो मेहराबदार हैं और इस मंदिर का जो संरक्षण करता है वो मध्य प्रदेश का राज्य पुरातत्व विभाग है।
1: अच्छा पूजा जी, आपने एक महल का भी जिक्र किया था इस एपिसोड में विष्णु मंदिर के पहले, तो उस महल के बारे में आपसे जानना चाहेंगे।
0: विष्णु मंदिर की तरह ही रामनगर में मोती महल भी देखने लायक है। ये जो महल है वो राज परिवार का निवास हुआ करता था।
1: अरे वाह,
0: इसलिए इसको राजा महल के नाम से भी जानते हैं। पर इसके लिए एक स्थानीय किंवदंती है और वो बड़ी मजेदार है
1: जी।
0: जैसा जानते हैं कि हृदय शाह एक बहुत अच्छे गायक कवि भी थे
1: जी।
0: लेकिन उन्हें तंत्र विद्या का भी ज्ञान था, ऐसा भी लोग कहते हैं। तो एक स्थानीय किंवदंती है जिसमें कहते हैं कि हृदय शाह ने तंत्र विद्या से इस मोती महल का निर्माण सिर्फ 2.5 दिन के अंदर कर लिया था। जो निर्माण के लिए पत्थर आए थे वो पास ही एक काला पहाड़ है वहां से उड़ उड़ कर आए थे।
1: ऐसी
0: जनश्रुति है। असल में क्या है कि रामनगर के निकट जो काला पहाड़ है वहाँ के अगर आप पत्थर देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तराशे हुए पत्थर हैं। मान लीजिए कि अष्टकोणीय ऑक्टोगोनल खम्बे किसी ने तराशे हों।
1: अच्छा।
0: और बिल्कुल एक से, और उन्हें बिल्कुल पास पास सटा के रख दिया हो
1: जी।
0: पूरा पहाड़ ही बन गया हो, ऐसा दिखाई देता है ये काला पहाड़। लोगों का मानना है कि यहाँ जो अष्टकोणीय खंभे दिख रहे हैं वही उड़ उड़ कर यहाँ से गए और जल्दी से हृदय शाह ने मोती महल का निर्माण कर दिया
1: जी।
0: पर अगर हम इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो इन अष्टकोणीय खंभों का होना एक भूगर्भीय हलचल का परिणाम
1: बिल्कुल,
0: है
1: बिल्कुल, क्योंकि जो मंडला घाटी नर्मदा घाटी जो है वहां पर भूगर्भीय हलचलें पहले भी होती थी और अभी भी हमेशा अंदेशा जो है वो मंडराता रहता है।
0: हाँ, ये जो अष्टपहलु पत्थर हैं ये प्राकृतिक हैं, इन्हें तराशा नहीं गया है। जब भूगर्भीय हलचल होती है और ज्वालामुखी से लावा बहकर किसी स्थान पर जमा हो जाता है और जरूरत से ज्यादा जल्दी यानी कि कम समय में ठंडा हो जाता है, तब उस लावा में दरारें पड़ जाती हैं।
1: अच्छा।
0: और अष्ट फलकीय पत्थर में वो तब्दील हो जाती है।
1: अच्छा।
0: इस तरीके से दरारें पड़ती हैं कि अष्ट फलकीय संरचनाएं बन जाती
1: हैं, अपने आप ही प्राकृतिक रूप से तैयार हो जाती
0: बन जाती हैं। तो वो कुछ ऐसा लगता है जैसे ऑक्टोगोनल खंभे एक के बाद एक के बाद एकदम सटाकर लगा दिए गए हों, तो पूरा की पूरा काला पहाड़ ही ऐसा है।
1: अच्छा।
0: और क्योंकि इसी काले पहाड़ के पत्थरों का उपयोग मोती महल और अन्य इमारतों को बनाने में किया गया था, तो ये जनश्रुति प्रचलित हो गई।
1: जी।
0: तो मोती महल भी देखने में बड़ा सुंदर है। इसमें प्रवेश के लिए एक बड़ा सुंदर मेहराबदार द्वार है।
1: जी।
0: और आप जब अंदर जाएंगे तो एक बड़ा सा चौकोर प्रांगण है, और इस प्रांगण के बीच में एक बड़ी सी हौज है जिसके अंदर पानी भरा रहता होगा, उसमें रंगीन मछलियां छोड़ते होंगे जो भी उस समय होता हो। और इस प्रांगण के चारों तरफ कई सारे कक्ष बने हुए हैं जो राजा रानी के निवास के लिए थे। उसी में दीवाने आम था, दीवाने खास था।
1: जी, जी।
0: और ये महल कई मंजिला है।
1: अच्छा।
0: अगर आप इसकी छत पर जाएंगे तो चारों कोनों पर चार ऐसे कक्ष हैं जिनकी छत गुंबजाकार है, और इस पर जो चूने से स्टको वर्क किया गया है, जो अलंकरण किया है, वो भी बड़ा ही खूबसूरत लगता है। और कई बार तो लोग इसे खरबूजा गुंबज भी कह देते हैं।
1: अच्छा।
0: क्योंकि इसका आकार कुछ अलंकरण के कारण खरबूजे जैसा धारीदार दिखने लगता है, तो खरबूजा अलंकरण के नाम से भी ये जाना जाता है। इसके पास ही अस्तबल है, हाथीशाला भी रही होगी।
1: अच्छा।
0: और खेल का कुछ मैदान भी रहा होगा, तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। और अगर आप मोती महल की छत पर से मंडला को देखते हैं, जो नर्मदा नदी दिखाई देती है, बंजारा नदी दिखाई देती है, और दूर दूर तक जो जंगल दिखाई देते हैं, वो बहुत ही खूबसूरत होते होंगे। जब हृदय शाह यहाँ गाते होंगे, जब महफिलें जमती होंगी, तो ये देखने लायक दृश्य होता होगा।
1: निश्चित रूप से वहाँ स्वयं हृदय शाह भी गाते होंगे, उनकी पत्नी भी गाती होंगी, और संगीत की बहुत सारी महफिलें, बहुत सारी सभाएं भी वहाँ पर आयोजित की गई होंगी।
0: जी हाँ, सुंदरी देवी तो खुद गाने की शौकीन थी।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैम, ये महल क्या आज भी पर्यटकों के लिए खुला है, जा सकते हैं?
0: बिल्कुल, ये राज्य पुरातत्व विभाग मध्य प्रदेश का संरक्षित स्मारक है।
1: जी।
0: तो इन सभी में, चाहे मोती महल हो, चाहे विष्णु महल हो, और इसके पास ही एक राय भगत की कोठी भी है।
1: अरे वाह,
0: आपने स्टेशन भी सुना होगा, भगत की कोठी।
1: भगत की कोठी सुना है, बिल्कुल। तो मैम, इस कोठी के बारे में जानना चाहेंगे कि जैसे मोती महल था, वहाँ पे राज परिवार रहा करता था, तो राय भगत की कोठी इसे क्यों कहा जाता है, यहाँ कौन रहते थे?
0: राय भगत हृदय शाह के समय उनके खास मंत्री थे।
1: अच्छा।
0: और उन्हीं के एक विशाल महल है जिसको राय भगत की कोठी कहते हैं।
1: अच्छा।
0: मोती महल से लगभग आधा किलोमीटर आप जाएं अगर पूर्व की तरफ, तो एक रामनगर धंधरी सड़क पड़ती है
1: जी।
0: और उसी पर एक ऊंचा सा टीला दिखाई देता है, वहां पर ये महल है। और ये राय भगत का महल भी कहलाता है, राय भगत की कोठी के नाम से भी जाना जाता है। राय भगत को भगत राय भी कहा जाता है
1: जी, जी।
0: और जब भी हृदय शाह के प्रिय मित्रों की बात आती है तो भगत राय की बात जरूर आती है। कई किस्से भी इन दोनों के आपस में बड़े लोग सुनाया करते हैं
1: जी।
0: और ये जो राय भगत थे, ये पठारी या प्रधान जाति के थे, इसलिए इनके किस्से बड़े प्रधानों में मशहूर हैं दोनों की दोस्ती के
1: जी। जी।
0: तो हृदय शाह के लिए ये राय भगत की कोठी बनाई गई
1: जी।
0: ये दक्षिण की तरफ मुंह करके बनी है, और इसका भी जो प्रवेश द्वार है बड़ा ही भव्य है
1: जी।
0: बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि मोती महल से भी ज्यादा भव्य है।
1: अरे वाह।
0: और इसमें जो प्रवेश द्वार है उस पर संगमरमर का उपयोग किया गया है, जो इस काल में बहुत कम होता था, खासकर मध्य भारत में। और प्रवेश द्वार के ऊपर नौबत खाना बना है, नौबत खाना जहाँ पर जब राजा का आगमन होता है तब नगाड़े बजाए जाते थे।
1: अच्छा।
0: फूलों की वर्षा होती थी
1: जी।
0: तो प्रवेश द्वार के दोनों ओर तीन तीन खिड़कियां भी बनी हुई हैं, बहुत बड़ी विशाल खिड़कियां हैं, और दीवार के ऊपर कंगूरे बने हुए हैं। तो ऐसा कहीं कहीं आपको लगेगा कि ये महल है कि किला है, तो दोनों के जो आर्किटेक्चरल फीचर्स हैं दोनों को मिक्स किया है। और महल के जो कोने हैं वहाँ पर खासकर निकले हुए कक्ष भी बने हुए हैं जो बड़े आकर्षित लगते हैं अलंकरण के कारण। और इनकी छतें भी वैसी हैं जैसी मोती महल की गुंबजाकार छतें हैं, धारीदार छतें हैं, खरबूजे जैसी, इनके भी गुंबज वैसे ही हैं। और जो राय भगत की कोठी की खास बात है वो यहाँ के भित्ति चित्र है।
1: अच्छा।
0: मतलब कि छत पर, दीवारों पर बहुत सारा चित्रण किया गया है। खासकर जब हम प्रवेश करते हैं महल के अंदर, तो जो मुख्य प्रवेश द्वार है उसकी जो छत है उस पर आज भी बड़ा सुंदर अलंकरण उस काल का देखा जा सकता है। इसमें लाल, हरा, नीला, पीला कई रंग यूज किए हैं। और जैसा हम जानते हैं कि उस समय रंगों के लिए खनिज पत्थरों का उपयोग किया जाता था, खासकर ये पत्थर जो है वो भारत में नहीं मिलते, ये मध्य एशिया से बुलाए जाते थे।
1: अच्छा।
0: और इन पत्थरों को घिसकर रंग तैयार किया जाता था। जहाँ कहीं भी इस तरीके की चित्रकारी करनी होती थी तो वहां पर फिर बहुत चिकना चूने का प्लास्टर तैयार किया जाता था, एकदम सफेद, खूबसूरत, चिकना। और उसके बाद अलंकरण जैसा भी तैयार किया गया हो तो फिर इन खनिजों को तैयार करके इनका पाउडर बनाकर इसमें जो प्राकृतिक गोंद होती है उसको मिक्स किया करते थे, उससे मिक्स करके उसको बना लिया करते थे, रंग पक्के हो जाया करते थे। और फिर इनको छतों पर लगाया जाता था, सुंदर ज्यामिति अलंकरण या फूल पत्तियों का अलंकरण इसमें किया जाता था। जैसा हम जानते हैं कि छत पर उल्टा ब्रश चलाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन उसके बावजूद आप देखेंगे कि जो रंगों का संयोजन है, जो चित्रकारी है, वो देखते ही बनती है।
1: श्रोताओं को तो हमारे लग ही रहा होगा कि बिल्कुल अब वो भागकर बिल्कुल रामनगर जाएं, मंडला जाएं, और पूजा जी ने इतनी अच्छी अच्छी हमें जानकारियां दी हैं। ना सिर्फ ये इतिहास से संबंधित हैं, ना सिर्फ ये गोंड राजवंश से संबंधित हैं, आज का तो हमारा एपिसोड बिल्कुल पर्यटन और संगीत के लिए भी बहुत विशेष रूप से खास रहा है। पूजा जी, इतने सारे जो आज आपने हमें चीज़ें बताई कि राजा हिरदेशाह ने मंडला में अपनी राजधानी यहाँ पर स्थापित की, दूसरी जगह लेकर के आए जिसे आज हम रामनगर के नाम से जानते हैं, वहाँ पर विष्णु मंदिर, मोती महल, राय भगत की कोठी और रानी महल का आपने जिक्र किया, लेकिन राजा हिरदेशाह के बाद गढ़ा मंडला का क्या हुआ?
0: हिरदेशाह का शासनकाल 1671 ईस्वी तक रहा।
1: अच्छा।
0: और उसके बाद उनके वंशजों ने शासन किया जिसमें छत्रशाह हुए, केसरी शाह, हरि सिंह, पडार सिंह, और इसके बाद हम देखते हैं नरेंद्र शाह। तो नरेंद्र शाह ने भी अपने लिए मंडला में ही एक नई राजधानी बनाई।
1: अच्छा।
0: अब उसके अवशेष ना के बराबर हैं, केवल एक बुर्ज रह गया है
1: जी।
0: पर नरेंद्र शाह के बाद भी बहुत से राजा हुए और फिर 1780 ईस्वी में गढ़ा का यह क्षेत्र सागर के जो मराठा शासक थे उनके अधीन हो गया। यहाँ से फिर गढ़ा मंडला का इतिहास बदल गया।
1: मतलब 1780 तक गढ़ा मंडला पर गोंड राजवंश का शासन रहा।
0: जी हाँ, संग्राम शाह से लेकर और हम देखते हैं कि सुमेर शाह तक गढ़ा मंडला पर लंबे समय तक गोंड राजवंश ने अपना योगदान दिया।
1: वाह। तो श्रोताओं, आज बहुत अच्छी अच्छी हमें जानकारियां मिली हैं राजवंश की। हम पिछले अपने इतने सारे एपिसोड से बात कर रहे हैं, हमने कहानी देखी संग्राम शाह जी की, हमने बात की रानी दुर्गावती की जो कि गढ़ा राजवंश की सबसे मुख्य शासिका के रूप में भी जानी गई, बहुत सारे कार्य उनके हुए और मुगल दरबार तक उन्होंने हिला दिया था। उसके बाद हमने बात की हिरदेशाह की और फिर उनके कुछ और उत्तराधिकारियों ने वहां पर राज किया, गढ़ा मंडला पर जाकर के गोंड राजवंश का शासन समाप्त हुआ। पूजा जी ने हमें ये जानकारियां दी, बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी इतनी अमूल्य जानकारियों के लिए। आगे भी अपने अगले एपिसोड में आपसे कुछ और जानकारियां आपसे चाहेंगे, इतिहास के पन्ने हम खोलते रहेंगे कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से। में अभी वक्त है आपसे विदा लेने का, मैं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा आपसे इजाजत लेता हूँ। इस एपिसोड का ध्वनि अंकन और ध्वनि संपादन किया अमित कुंदानी ने। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज देश का चैनल, देश के लिए रेडियो आजाद हिंद। इतिहास के पन्नों से।

देश के वीर जवानों को समर्पित शौर स्मारक की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर संगीत संध्या का आयोजन। सुनिए मिलिट्री बैंड की सांगीतिक प्रस्तुति। इसके साथ ही आप देख सकते हैं शस्त्र प्रदर्शनी 14 अक्टूबर शाम 6 बजे शौर स्मारक अरेरा हिल्स भोपाल, स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन का प्रतिष्ठा आयोजन। आप सभी सादर आमंत्रित हैं।

0: जैक्स स्पेक्स और जापानी मर्सेनरी, एक साम्राज्यवादी सैन्य प्रयोग 1615। 1615 में हेराडो के संकरे और व्यस्त बंदरगाह में डच ईस्ट इंडिया कंपनी के मुख्य व्यापारी जैक्स स्पेक्स ने भटकते हुए लोगों की एक बेचैन भीड़ को देखा और उसमें एक साम्राज्य के उद्धार का रास्ता पाया। उस समय VOC सैन्य जनशक्ति के पुराने संकट से जूझ रही थी। यूरोपीय सैनिक महंगे थे, देरी से पहुंचते थे और अक्सर 8 महीने की लंबी समुद्री यात्रा के दौरान ही दम तोड़ देते थे। स्पेक्स को जिम्मेदारी सौंपी गई कि वे दक्षिण पूर्व एशिया में कंपनी के मोहरे के रूप में काम करने के लिए साहसी पुरुषों की एक व्यवस्थित भर्ती शुरू करें। यह कोई गुप्त अभियान नहीं था। टोकुगावा शोगुन की स्पष्ट सहमति के साथ स्पेक्स ने हेराडो की लड़खड़ाती फैक्ट्री को एक रणनीतिक भर्ती केंद्र में बदल दिया। जॉन पीटरजून कोएन जैसे उच्च पदस्थ अधिकारी जापानियों को एक विशेष मार्शल रेस यानी लड़ाकू प्रजाति के रूप में देखते थे, जिनका मानना था कि ये योद्धा केवल अपनी प्रतिष्ठा के बल पर स्थानीय आबादी को शांत कर सकते हैं। स्पेक्स का नवाचार उन कठोर अनुबंधों में था जो उन्होंने इन उत्तेजित जुझारू रंगरूटों को भरोसेमंद सैनिक बनाने के लिए तैयार किए थे। 31 दिसंबर 1615 को उन्होंने 59 रंगरूटों के एक दल को 3 साल के पूर्ण आज्ञा पालन के लिए बाध्य किया, जिसमें उन्होंने डच अधिकारियों को कभी भी जवाब न देने का संकल्प लिया। ये समझौते विशेष रूप से डरावने थे क्योंकि इनमें सामूहिक दंड का प्रावधान था। यदि कोई सैनिक विद्रोह करता तो VOC जापान में मौजूद उसके माता पिता, पत्नी, बच्चों और गारंटरों को सजा देने का अधिकार रखती थी। स्पेक्स ने सैन्य दल को विशेष हथियारों से लैस रखा था। जापानी आग्नेयास्त्र, धनुष बाण, अलग अलग लंबाई के अनेक भाले, ये दस्ता फॉर्च्यून नामक एक स्थानीय जहाज पर सवार हुआ जिसे स्पेक्स ने विशेष रूप से इस यात्रा के लिए खरीदा और मरम्मत करवाया था। हालांकि पेशेवर भाड़े के सैनिकों का सपना जल्द ही एक कड़वी हकीकत में बदल गया। 4 महीनों तक रंगरूट हेराडो में ही रहे, जहां शहर के शराब खानों और जुआ घरों ने उनके बीच असंतोष पैदा कर दिया। ओसाका से भर्ती किए गए कप्तान कुस्नुकिजी इत्सिमोन के अकुशल नेतृत्व में बाटन की 51 दिनों की कठिन यात्रा के दौरान ये दल विद्रोह के करीब पहुंच गया। स्पेक्स ने खुद बाद में तर्क दिया कि तलवार ही एकमात्र दवा थी जिसे ये सैनिक वास्तव में समझते थे। हालांकि इन सैनिकों ने बांदा द्वीपों के क्रूर दमन और बाजार की झड़पों में असाधारण निडरता का प्रदर्शन किया, लेकिन कई डच अधिकारियों की नजर में वे हमेशा एक विद्रोही भीड़ ही रहे। ये प्रयोग अंततः 1623 के अम्बोइना साजिश के बाद पूरी तरह विफल हो गया, जिसके बाद VOC ने जापानी सैनिकों पर हमेशा अविश्वास रखने का फैसला किया। भले ही जैक्स स्पेक्स का डच झंडे के नीचे जापानी सैनिकों की लंबी कतारें मार्च कराने का सपना कभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने एशियाई सैनिकों की व्यवस्थित भर्ती का वो बुनियादी ढांचा तैयार कर दिया जिसने अंततः पूर्व में यूरोपीय साम्राज्यों की सफलता को परिभाषित किया।
1: नमस्कार, मैं हूं गोविंद नामदेव और आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: जॉन अंडरहिल और 1644 का नरसंहार। जब भाड़े के सैनिकों ने लिखी साम्राज्य की पटकथा। 1644 की कड़ाके की ठंड में डच वेस्ट इंडिया कंपनी ने एक ऐसे व्यक्ति की ओर रुख किया जिसकी निर्दयी कार्य कुशलता की प्रतिष्ठा अटलांटिक सीमाओं के पार तक फैली हुई थी। कैप्टन जॉन अंडरहिल एक अमेरिकी मर्सिनरी यानी भाड़े का सैनिक थे जिनका विवाह एक डच महिला से हुआ था। अंडरहिल ने न्यू इंग्लैंड के पेकोट युद्ध के दौरान इतिहास में अपना नाम पहले ही खूनी अक्षरों में दर्ज कर लिया था। वह 1637 में मिस्टिक रिवर पर हुए उस कुख्यात नरसंहार के मुख्य सूत्रधार थे जहां उनके आदेश पर एक पूरे पेकोट गांव का विनाश कर दिया गया था। अब वे पूर्ण विनाश की वही भूख लेकर प्रथम डच मुंसी युद्ध के दौरान WIC की सेवा में आए। हडसन की घाटी में संघर्ष के ऐसे मोड़ पर पहुंच गया था जहां डच बसने वाले और मुंसी समूह हत्याओं और प्रतिशोध के अंतहीन चक्र में फंस गए थे। स्वदेशी प्रतिरोध को हमेशा के लिए कुचलने के इरादे से अंडरहिल ने फरवरी 1644 में WIC सैनिकों के एक दल का नेतृत्व करते हुए एक कुख्यात अभियान चलाया। उनका लक्ष्य आधुनिक न्यूयॉर्क के पाउंड रिज के पास स्थित एक किलाबंद टैंक टेकेस गांव था। अंडरहिल की रणनीति अधिकतम आतंक फैलाने के लिए सोची समझी थी। उन्होंने रात के अंधेरे में बस्ती के चारों ओर अपनी सेना तैनात की और उन पर गोलियां चलाने का आदेश दिया। जब कोने में घिरे इंडियंस ने बाहर आकर लड़ने से इनकार कर दिया तो अंडरहिल ने भीषण अंत का रास्ता चुना। उन्होंने अपने आदमियों को पूरे गांव को आग लगाने का आदेश दिया। ये जानते हुए कि निवासी अपने ही लकड़ी के लॉन्ग हाउस के भीतर फंसे हुए थे, वह दृश्य अकल्पनीय भयावहता का था क्योंकि ग्रामीणों ने WIC सैनिकों के हाथों मारे जाने के बजाय आग की लपटों में जलकर मरना बेहतर समझा। जब तक आग शांत हुई 500 से अधिक इंडियंस लोग मारे जा चुके थे। ये घटना न्यू नीदरलैंड के इतिहास के सबसे क्रूर अत्याचारों में से एक थी जिसने 5 साल तक चले पूरे संघर्ष में खोए अनुमानित 1600 स्वदेशी जीवन का लगभग एक तिहाई हिस्सा ले लिया था। अंडरहिल की भाड़े की सेवा का प्रभाव केवल शवों की संख्या तक सीमित नहीं था। उनके अभियान के निचली हडसन घाटी में जनसांख्यिकी तबाही और स्वदेशी राजनीतिक संरचनाओं के पतन को तेज कर दिया। जीवित बचे मुंसी समूह के लिए डच कंपनी का वह दावा जो कभी यूरोपीय दस्तावेजों में केवल एक कानूनी कल्पना थी अब एक भयानक वास्तविकता बन गया। 1650 के दशक तक इंडियन समुदाय के नेता स्टेटन आइलैंड जैसी जगहों के लिए संपत्ति के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर रहे थे और अपनी जमीन अभी और हमेशा के लिए सौंप रहे थे। अंडरहिल की कहानी इस बात की याद दिलाती है कि कंपनी राज्य का विस्तार केवल व्यापार और संधियों का मामला नहीं था बल्कि यह अक्सर हिंसा के पेशेवर एजेंटों की विशेषज्ञता पर बनाया गया था। 17वीं शताब्दी के सीमांत क्षेत्रों में एक भाड़े के सैनिक की मशाल किसी भी व्यापारी के बही खाते की तुलना में संप्रभुता के नक्शे को अधिक प्रभावी ढंग से फिर से लिख सकती थी। अंडरहिल जैसे क्रूर पुरुषों के माध्यम से WIC समुद्री घुसपैठियों के एक समूह से बदलकर देश के निर्विवाद मालिक में बदल गई।
3: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर यह रेडियो आजाद हिंद है। अब वक्त है कार्यक्रम टेक गुरु का। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं डॉक्टर रोहित त्रिवेदी जी से,
4: जो इंग्लिश के प्रोफेसर हैं भोपाल स्थित सरोजनी नायडू गवर्नमेंट गर्ल्स पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में। टेक गुरु कार्यक्रम के तहत हमने उनसे बात की, तो आइए सुनते हैं डॉक्टर रोहित त्रिवेदी से ये बातचीत।
5: सर, सबसे पहले हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो लेकिन कुछ हम आपके बारे में जानना चाहते हैं। आप हमें अपनी जर्नी के बारे में बताइए। सर,
6: मैं यहाँ वर्तमान में प्रोफेसर हूँ सरोजनी नायडू गवर्नमेंट गर्ल्स PG कॉलेज भोपाल में। और यदि बात करें तो बचपन से ही मैं दृष्टिहीन हूँ और बाय बर्थ इनफैक्ट। और शुरू में मेरी पढ़ाई जो दृष्टिबाधित लोगों के लिए स्कूल्स होते हैं, स्कूल फॉर द ब्लाइंड, उसमें हुई। और फिर प्रयास किए कि कैसे, मैंने रेगुलर स्कूल्स में एडमिशन मिलने में बड़ी दिक्कत होती थी, पर फिर पढ़ाई हुई और उस टाइम पे किताबें वगैरह मिलती नहीं थी, तो वहाँ बाद में तो शुरू में तो लोग सुनाते थे पढ़ के, बाद में फिर कैसेट रिकॉर्डर पे रिकॉर्ड कर करके अपने लेसन्स तैयारी वगैरह करी। 1989 में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ गवर्नमेंट पीएससी के थ्रू और मैंने सिलेक्शन हुआ उसके बाद में, और मैं प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर बना कॉलेज में। तो 1993 में हम लोगों को पता पड़ा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में एक इनोवेशन हुआ है और उन्होंने कोई स्पीच सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जिसको कंप्यूटर पे लगा के एक बॉक्स को जो कुछ कंप्यूटर स्क्रीन पे है उसको हम स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं कंप्यूटर पे जो कुछ भी है। तो ऐसे हम लोगों ने यहाँ पे एक वर्कशॉप कराई ब्लाइंड लोगों के लिए और इस तरह से कंप्यूटर पे फिर मैंने अपना खुद का कंप्यूटर लिया और कंप्यूटर सीखना शुरू किया। और फिर हम लोगों ने एक संस्था है यहाँ पे आरुषि करके, तो उसमें हम लोगों ने कंप्यूटर सेंटर शुरू किया जहाँ हमने ब्लाइंड बच्चों को कंप्यूटर सिखाना शुरू किया। तो कंप्यूटर सीखने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि अभी तक बच्चे जो थे वो अपनी पढ़ाई के लिए ऑडियो पर डिपेंडेंट थे या ब्रेल पर डिपेंडेंट थे, ब्रेल में किताबें होती नहीं थी। और दूसरी बात यह है कि अगर उनको अपने लिख कर कोई चीज़ कम्युनिकेट करना है तो उनके पास कोई साधन नहीं था। तो ये इट वॉज़ अ बिग रेवोल्यूशन इन दोज डेज कि अब चाहो तो आप अपनी बात कंप्यूटर पर लिख सकते हो और प्रिंट करके अपने बात भेज सकते हो या मेल के माध्यम से भेज सकते हो। तो ऐसे हम लोगों ने शुरुआत करी टेक्नोलॉजी की।
5: तो सर, इस तरह से टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई, आपने पढ़ाई की और इतना आपने सारा अपनी जर्नी हमसे शेयर की, तो वो बीच में सर और कौन कौन सी टेक्नोलॉजी से आपका जुड़ाव होता रहा?
6: देखिए, अगर जहाँ तक हम दृष्टिबाधित लोगों के लिए कहें तो हम टेक्नोलॉजी को 3-4 तरह से समझ सकते हैं। एक तो हमारे पास में कंप्यूटर पे टेक्स्ट टू स्पीच स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर होता है। इसका मतलब ये है कि जो जो कुछ कंप्यूटर के स्क्रीन पे दिखता है स्क्रीन टेक्स्ट, उस वो पूरा स्पीच में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो टेक्स्ट टू स्पीच स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर का काम ये होता है कि जो कुछ कंप्यूटर के स्क्रीन पे अवेलेबल है वो टेक्स्ट में इन स्पीच में कन्वर्ट कर दे। साथ ही साथ क्योंकि मान लीजिए उसमें ये भी फैसिलिटी होती है कि जो आपको छोटी छोटी जो बारीकियां होती हैं वो भी आपको कमांड देके आप उससे इंफॉर्मेशन ले सकते हो सॉफ्टवेयर के माध्यम से। फर्ज़ कीजिए हम एक डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं और उस डॉक्यूमेंट में मान लीजिए कुछ हमको चीज़ें बोल्ड में करना है, इटैलिक्स में करना है, उसका कलर चेंज करना है, तो सॉफ्टवेयर में अगर हम एक कमांड देंगे कि उसमें ये फॉन्ट कौन सा है, उसका टाइप क्या है, उसका कलर कौन सा है, कित लाइन स्पेसिंग क्या है आपकी, सिंगल स्पेसिंग है कि डबल स्पेसिंग है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको सॉफ्टवेयर में कमांड के माध्यम से स्पीच में मिल जाएगी। तो इससे क्या है कि जो ब्लाइंड व्यक्ति है वो इंडिपेंडेंटली अपना पूरा काम कंप्यूटर पे कर सकता है। तो एक तो ये टेक्स्ट टू स्पीच स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर हो गया जी। इसके अलावा जो लोग थोड़ा देख सकते हैं तो उनके लिए मैग्निफिकेशन की फैसिलिटीज़ है या मैग्नीफाइंग सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर स्क्रीन पे है उसको बड़ा करके देख सकते हैं, लार्ज फॉन्ट में आ जाता है। और ऐसे ही अगर आपको कंप्यूटर के आने के बाद में लार्ज प्रिंट की बुक्स निकालना भी बड़ा सरल हो गया कि अगर आप चाहें तो जो बच्चे कम देख पाते हैं और वो बड़े अक्षर पढ़ सकते हैं तो हम किताबों को लार्ज फॉन्ट में तैयार कर सकते हैं। फिर किताबों को में जो अक्षर लिखे हैं उसको मैग्नीफाई करने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लासेस मैग्नीफायर्स आ गए हैं काफ़ी सारे, तो वो मैग्नीफाई कर देते हैं। लो विजन वाले लोगों के लिए एक एडवांटेजेस चीज़ हो जाती है। दूसरा एक चीज़ और है, उसको बोलते हैं रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले। तो रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले में क्या होता है, इसको हम अपने कंप्यूटर से लगाते हैं तो कंप्यूटर में अगर लगा दिया तो जो कुछ कंप्यूटर स्क्रीन पे वो ब्रेल में सीधे आ जाएगा, ठीक है। तो ये ब्रेल डिस्प्ले कहलाता है। और उसमें ब्रेल डिस्प्ले के का अगर हम आप बताएं तो ब्रेल में 6 डॉट्स होते हैं, तो वो पूरी एक लाइन जो है वो टेक्स्ट जो है वो ब्रेल में कन्वर्ट हो जाएगा अलग अलग। तो ये एक चीज़ हो गई। और तीसरा ये है कि हम एक और टेक्नोलॉजी है जिसको बोलते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। तो ऑप्टिकल करेक्टर रिकग्निशन का सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि अगर मान लीजिए हमारे पास में कोई इमेज फाइल है तो इमेज फाइल को हम टेक्स्ट में कन्वर्ट करके टेक्स्ट टू स्पीच स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से कंप्यूटर या फ़ोन के माध्यम से हम उसको सुन सकते हैं। तो मान लीजिए आपने कोई चीज़ की फ़ोटो खींची, किताब को पूरा स्कैन कर लिया, स्कैन करके उसको इमेज में कन्वर्ट कर लिया, इमेज को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लिया और टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट कर लिया। अब ये सारे सॉफ्टवेयर जो पहले कंप्यूटर में थे वो कंप्यूटर से मोबाइल पे भी आ गए। तो अगर आपके पास में एंड्रॉयड फ़ोन है तो हर एंड्रॉयड फ़ोन में एक सेटिंग के अंदर एक फीचर होता है एक्सेसिबिलिटी करके। एक्सेसिबिलिटी में अलग अलग डिसेबिलिटी वाले लोगों के लिए क्या क्या अकोमोडेशन हो सकते हैं, तो खास तौर पे एक सॉफ्टवेयर होता है टॉकबैक। तो टॉकबैक को अगर आप चालू करेंगे तो कोई भी मोबाइल फ़ोन बोल पाएगा, स्पीच में कन्वर्ट हो जाए। तो मोबाइल का सारा काम जो है वो इंडिपेंडेंटली ब्लाइंड व्यक्ति कर सकता है। किताबों को सुनना है, पढ़ना है, तो वो मोबाइल फ़ोन से ही अपने किताबों को सुन सकता है। तो इसलिए टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुकी है अभी। अब इस पूरे इको सिस्टम का यूज़ करते हुए अब क्या किया है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने, जैसे हमारे यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है डेजी फोरम ऑफ इंडिया। तो डेजी फोरम ऑफ इंडिया इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कि 100 से अधिक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ब्लाइंड बच्चों के लिए किताबों को एक्सेसिबल फॉर्मेट में तैयार करते हैं। तो उन्होंने क्या किया है, अपनी सारी किताबों को एक वेबसाइट बनाई और उस पर अपलोड कर दिया। उसका नाम है सुगम्य पुस्तकालय। तो सुगम्य पुस्तकालय के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं कि किताबों को लोगों तक पहुंचाने के लिए हम उसको अपलोड कर दिया ई टेक्स्ट फॉर्मेट में, या फिर इवन ऑडियो बुक्स को भी हम उसमें अपलोड कर सकते हैं किताबों को रिकॉर्ड करके। तो और फिर जो बच्चे हैं अपने मोबाइल पे उनके ऐप होगा और वो ऐप के माध्यम से या उसको हम लोग मोबाइल पे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर स्पेसिफिक इन किताबों को सुनने के लिए प्लेयर्स बने हैं जिनको बोलते हैं डेजी प्लेयर। डेजी मतलब होता है डिजिटल एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम, DAISY। तो इसके माध्यम से हम डेजी प्लेयर के माध्यम से किताबों को सुन सकते हैं। और ये जो है स्पेसिफाइड फॉर्मेट में किताबें तैयार होती हैं, जैसे कि आम बच्चा जो है साइटेड बच्चा है किताब को पेज वाइज, हेडिंग वाइज, सब अंदर के सब हेडिंग्स वो आराम से सुन देख सकता है पढ़ने पलट के। तो हम किताब में भी ये फैसिलिटी है, ऑडियो बुक में भी या ई टेक्स्ट में भी, कि उसको हम इस तरह से फॉर्मेट डिज़ाइन करते हैं कि वो किताब, मान लीजिए मुझे 115 पेज पे जाना है तो मैंने बस टाइप किया 115, तो किताब का 115वां पेज से आप पढ़ना शुरू करोगे। तो इससे जो एक कैसेट रिकॉर्डर जब हम रिकॉर्ड को रिकॉर्ड करते थे उसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या होता था कि मान लीजिए अगर एक बार कैसेट रिकॉर्ड किए तो वो या लीनियर रिकॉर्डिंग होती थी तो कि आपको पता नहीं होता था कि कौन सी आपका, मान लीजिए किताब जो है 12 घंटे की किताब है तो आपका जो चैप्टर वो दूसरे नंबर के कैसेट में है कि पाँचवें नंबर के कैसेट में है कि आठवें नंबर के कैसेट में है, और फिर हमको उस चैप्टर के भी पर्टिकुलर सब सेक्शन में जाना है या हमको सिर्फ उसकी क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने क्वेश्चंस देखने, तो वो हमको पता नहीं होता था। पर यहाँ पर ये फैसिलिटी है कि हम स्किप कर सकते हैं या नेविगेट कर सकते हैं अपने स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए।
5: सर, आपने इतनी डिटेल में हमें बताया और सवाल और मेरे मन में उठा कि आपने इतनी कंप्यूटर और मोबाइल में सब तमाम तरह की टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, आज लोग जो यूज़ करते हैं इस टेक्नोलॉजी को, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा उनको मिल रहा होगा।
6: जी, उनका जो
5: हर क्षेत्र में,
6: हाँ, लोगों पे डिपेंडेंस ख़त्म हो गया है। बच्चे जो है वो अपने आप अपना पढ़ाई कर लेते हैं, अपने आप लिख लेते हैं। अब तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी CBSE ने अलाउ कर दिया है लोगों को कि ब्लाइंड बच्चे कंप्यूटर पे अपना एग्ज़ाम खुद इंडिपेंडेंटली दे सकते हैं। अभी तक उनको लिखना अपने राइटर पे डिपेंड करना होता था कि राइटर जो लिखेगा वो उनको डिपेंडेंट होना पड़ता था उनको राइटर पे। अब उनको राइटर पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता, वो चाहें तो अपना अगर उनमें प्रैक्टिस कर ली है तो वो इंडिपेंडेंटली अपना एग्ज़ाम कंप्यूटर पे खुद दे सकते हैं। तो एक वो कॉन्फिडेंस, कई लोगों के तो 90% से ऊपर 98% तक मार्क्स आए कंप्यूटर पे एग्ज़ाम देने के बाद में, तो वो एक फ्रीडम मिल गई है। फिर ऐसे फील्ड्स जहाँ पे वो अभी तक काम नहीं कर पाते थे, पढ़ाई नहीं करते थे, उन फील्ड्स में उनकी पढ़ना शुरू कर दिया। लोग आईटी के फील्ड में जा रहे हैं, विजुअली इम्पेयर्ड पीपल दे आर गोइंग आईटी का जो फील्ड है, कंप्यूटर साइंस है, मैनेजमेंट है, एमबीए कर कर के लोग आगे निकल रहे हैं और कॉरपोरेट सेक्टर्स में उनको एम्प्लॉयमेंट्स मिल रहे हैं, फाइनेंस में, एचआर में, मार्केटिंग में, वो सब लोग जो हैं, अगर आप अपने आप को इक्विप रखेंगे, अपने आप को अप टू डेट रखेंगे, पढ़ाई अच्छी करेंगे और सबसे बड़ी बात है इंडिपेंडेंटली काम कर पाएंगे, तो आप बहुत सारे फील्ड्स में अब उनके लिए ओपनिंग्स शुरू खुल गई हैं, नौकरियां मिलने लगी हैं लोगों को और लोग इंडिपेंडेंटली काम करने लगे हैं। पिछले 2 साल में इतना ज़बरदस्त फिर से क्रांति आई है आईटी फील्ड में, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी उपयोग करके बहुत सारे काम हो सकते हैं। मान लीजिए किसी के सामने कोई इमेज है तो इमेज को वो जो मोबाइल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से पूरा डिस्क्राइब कराया जा सकता है कि किस चीज़ की इमेज है, फ़ोटो में क्या हुआ है, अगर किसी व्यक्ति की फ़ोटो है तो उसने कौन सी ड्रेस पहनी हुई है, उसका वो का उसके आसपास का बैकग्राउंड क्या है, या मान लीजिए मैं इस रूम में आपको बैठ बात कर रहा हूँ तो मैंने इस रूम की फ़ोटो खींची, तो इस रूम में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, तो वो सारा कुछ जो है वो मोबाइल के माध्यम से और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हम तक पहुँच सकता है। तो हम अपने मोबाइल के माध्यम से पूरी दुनिया को बिना किसी और की मदद से जान सकते हैं।

0: सर, हम अक्सर असिस्टिव टेक्नोलॉजी के बारे में सुनते हैं काफ़ी, हमें क्या आप उस पर कुछ रोशनी डालेंगे?
1: देखिए, असिस्टिव टेक्नोलॉजी और कुछ नहीं है, जो टेक्नोलॉजी जो है वो अगर किस तरह से एक पर्सन विद डिसेबिलिटी को, एक किसी एक दिव्यांग व्यक्ति को कैसे टेक्नोलॉजी की मदद से कैसे मदद मिल सकती है, ऐसी टेक्नोलॉजी को हम असिस्टिव टेक्नोलॉजी बोलते हैं। वो आपको ऑडियो में फीडबैक दे सकती है, वो आपको हैप्टिक फीडबैक मतलब वाइब्रेशन के माध्यम से फीडबैक दे सकती है, वो आपको वॉइस क्लूज के माध्यम से फीडबैक दे सकती है, वो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मदद करके आप उसकी मदद ले सकते हैं, आप उसका यूज़ अपने मूवमेंट के लिए कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्हील चेयर यूज़ कर रहा है, मोटराइज्ड व्हील चेयर, तो वो उसका यूज़ ऐसे कर सकता है। वो हियरिंग एड हो सकती है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो सुन नहीं पाता है, जैसे मैंने आपको बताया कोई टेक्टाइल क्लू, जैसे मैंने आपको बताया ब्रेल डिस्प्ले आता है, तो ऐसी सारी टेक्नोलॉजी जो किसी पर्सन विद डिसेबिलिटी को असिस्ट करती है अपने काम को इंडिपेंडेंटली करने में और अच्छे से करने के लिए करने में, और उसकी जो डिसेबिलिटी को ओवरकम करने में उसकी मदद करती है, ऐसी टेक्नोलॉजी को हम लोग बोल सकते हैं कि वो असिस्टिव टेक्नोलॉजी।
0: सर, एक बात और, ये टेक्नोलॉजीज जो आ रही हैं लोग इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग इससे अवेयर नहीं होते, मालूम नहीं होता, सर उसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है?
1: इसके लिए आप जैसे लोग जो हैं, जो अपने हम लोगों की बातों को और जगह तक पहुंचाएंगे, जहां तक बहुत सारे लोग सुनेंगे इस बात को, तो उन तक तो रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, सोशल मीडिया, इसके माध्यम से बात पहुंच सकती है। और हम लोग कोशिश भी करते हैं कि सोसाइटी में भी अवेयरनेस प्रोग्राम्स हम लोग करें, टीचर्स के साथ में, अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ में, डिसेबल्ड लोगों के साथ में, उनको बताएं जा जाके कि भाई देखो ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, उनकी ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ट्रेनिंग दें उनको कि कैसे उसका यूज़ करना है और कैसे उसको मैक्सिमम उसका यूटिलाइजेशन करना है इस टेक्नोलॉजी का, और कहाँ कहाँ वो अपने आप को, अपने डिसेबिलिटी को कैसे ओवरकम कर सकते हैं ये यूज़ करके, तो वो काम है लोगों का जो कर सकते हैं। तो ट्रेनिंग और अवेयरनेस, इससे मदद मिल पाएगी।
0: अक्टूबर के सेकंड थर्सडे जो होता है उस पर विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है, तो इस पर और कौन कौन से सर कुछ कार्यक्रम वगैरह होते हैं स्पेशल? क्योंकि पहले और अब में तो काफ़ी डिफरेंस आया ही है, आप जो बता रहे हैं टेक्नोलॉजी आ गई, लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं।
1: देखिए, ऐसे ऐसे जो ओकेजन्स होते हैं इनका पर्पज़ यही है कि अधिक से अधिक लोगों तक इस बात की अवेयरनेस पहुँच पाए कि नंबर एक कि दृष्टि साइट को प्रोटेक्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, नंबर दूसरी बात कि अगर साइट लॉस हो रहा है और वो क्योरेबल है तो उसको पहले क्योर करना, तीसरी बात यह कि जो लोग साइट लूज कर चुके हैं उनको सही गाइडेंस मिले, और वो अपने अगर लेट साइट लूज होती है, या एक कहना चाहिए कि एक उम्र के बाद अगर साइट लूज होती है तो एक ट्रॉमा सा आ जाता है। मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है, उसका फाइनल ईयर, और धीरे धीरे करके उसकी साइट जा रही है, तो वो एक ट्रॉमा के स्टेट में पहुंच जाता है और वो डिप्रेशन की स्टेट में, तो उसको निकालना उस स्टेज से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उसको ये कॉन्फिडेंस देना कि नहीं, तुम बिना आँख के भी सब कुछ कर सकते हो, चल सकते हो, काम कर सकते हो, पैसे कमा सकते हो, इंडिपेंडेंट लाइफ लीड कर सकते हो, तो वो कॉन्फिडेंस दिलवाना बच्चों लोगों को, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ों में इस तरह के फेस्टिवल्स ओकेजन्स मदद करते हैं।
0: तो सोसाइटी इसमें किस तरह से हेल्प कर सकती
1: है? सोसाइटी इस तरह से हेल्प कर सकती है कि अगर हम इस बात पे विश्वास करें या इस बात को हम कम्युनिकेट करें या इस बात को समझें कि हर आदमी हर काम को कर सकता है, उसको काम करने का तरीका अलग हो सकता है, पर कैसे करेगा वो हमको फिर फिगर आउट करना होगा। तो हम लोग, सबसे बड़ी बात यह कि हम लोगों को नौकरियां नहीं देते कि अरे ये ब्लाइंड है, अरे ये काम कैसे करेगा, अरे ये यहाँ पे वहाँ पे जाएगा कैसे लोगों से मिलने के लिए, अरे पहले नौकरी तो दो आप उसको, तो और फिर उसको उस प्रकार की ट्रेनिंग दो। तो वो अगर हम आपको इस बात में अगर हम लोगों को समझा पाएं कि हर व्यक्ति, और कई बार क्या है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ने कैसे लोगों की लाइफ को चेंज किया है, डिसेबल्ड लोगों की, ये लोगों को पता नहीं है, और इसीलिए उनको लोगों को काम देने में डरते हैं, लोगों पर उनका कॉन्फिडेंस नहीं होता है और उनको दया की दृष्टि से देखते हैं, उनको मदद करना चाहिए वो मदद नहीं मिल पाती जो एक्चुअल उनको एम्पावर करने में करा जाए लोगों को और उनको सपोर्ट करें तो वो इंडिपेंडेंट लाइफ लीड कर सकते हैं। तो सोसाइटी का कई काम है कि उसमें आपकी हेल्प करें।
0: सर आपने बहुत अच्छी बात की कि लोग ट्रस्ट नहीं करते, ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सर आखिर में आप कुछ कहना चाहेंगे उन लोगों से जो टेक्नोलॉजी पे हमने बात की कि किस तरह से आखिर में फिर से आप उनसे ये कहेंगे कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करें और अपनी जो पढ़ाई को ना रुकने दें और अपने भविष्य को बनाएं?
1: सबसे बड़ी बात है कि हमको जो इनक्विजिटिवनेस है या हमारी जिज्ञासा है अगर लोगों में बनी रहेगी और वो एक उनमें डिटर्मिनेशन रहेगा कि हमको अपने आगे बढ़ना है तो लोग उनकी डिसेबल्ड लोगों की मदद करेंगे। तो पहले तो स्टेप दिव्यांग को खुद को लेना है, विकलांग व्यक्ति को, कि वो आगे बढ़े और फिर समाज भी उसको उनको मदद करे। दोनों एक बड़ा पारस्परिक सा है ये संबंध, तो एक दूसरे की मदद से लोग आगे बढ़ सकते हैं और एक इंक्लूसिव सोसाइटी को हम लोग आगे की परिकल्पना कर सकते हैं कि एक अच्छी सोसाइटी बन जाएगी। और आई थिंक ये एक बात है।
0: इतना टाइम हो गया पहले और अब में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गया होगा
1: जी,
0: मतलब एक पॉजिटिव ये चेंज है। आप जो कह रहे हैं टेक्नोलॉजी आ गई है, सब लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, तो मतलब हर तरह से लोग इसमें आगे बढ़ रहे हैं और लोग भी हेल्प कर रहे हैं
1: जी। हाँ, लोग हेल्प कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, पर एक जो एक जुनून होना चाहिए कि हम लोग मिल के एक ऐसा माहौल क्रिएट करें या एक ऐसा वातावरण क्रिएट करें कि अधिक से अधिक लोगों को एक एम्पावरमेंट हो पाए, उनको एजुकेशन मिल पाए। तो वो सारी चीज़ें जब तक टेक्नोलॉजी है, मगर टेक्नोलॉजी को हार्नेस करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है और टेक्नोलॉजी का पूरा उपयोग करके उसका एडवांटेज लोगों तक पहुंचाना उनके भले के लिए, उनके अध्ययन अध्यापन के लिए, उनके रोज़गार में उनको बढ़ावा देने के लिए, उस पर काम होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा एक चीज़ ये है कि एक आस्पेक्ट बहुत है कि अब सारा जो दुनिया है वो इंटरनेट पे डिपेंडेंट है और इंटरनेट पे कुछ गाइडलाइंस हैं कि वेबसाइट्स कैसी हों कि जो ब्लाइंड बच्चा जो है, व्यक्ति है, वो स्क्रीन रीडर के माध्यम से सारी इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव कर पाए
0: जी।
1: है ना, पर वो उनको बोलते हैं वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस, WCAG गाइडलाइंस कहलाती हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी बड़े क्लियर इंस्ट्रक्शन है। एक एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन शुरू हुई थी जिसमें कि न केवल फिजिकल एक्सेसिबिलिटी की बात कही थी कि भाई रैंप, रेलिंग, पाथवे टाइल्स, एक्सेसिबल टॉयलेट्स, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी होनी चाहिए, पर इसके अलावा जितनी सर्विसेज हैं वो भी एक्सेसिबल होनी चाहिए। मान लीजिए आपने एक रेलवे स्टेशन पे टच स्क्रीन लगा रखा है तो वो ब्लाइंड व्यक्ति तो नहीं कर पाएगा उससे काम। अगर वो टॉकिंग होता, स्पीच होता उसके अंदर, तो ब्लाइंड व्यक्ति भी टच स्क्रीन का यूज़ करके टाइम टेबल पता कर लेता। या मान लीजिए आप POS मशीन है तो वहाँ पर वो ब्लाइंड व्यक्ति जो है क्योंकि टच स्क्रीन पर टाइप करके नंबर टाइप करके पेमेंट नहीं कर पाएगा। तो वेबसाइट्स, ऐप्स और डिवाइसेस, इनको एक्सेसिबल बनाना, या माइक्रोवेव ओवन है उसमें टच स्क्रीन है या वॉशिंग मशीन में टच स्क्रीन है, तो वो ब्लाइंड व्यक्ति काम उसको यूज़ नहीं कर पाएगा। तो उसको सोसाइटी का काम ये है कि हम ऐसा माहौल क्रिएट करें जहाँ पर हर व्यक्ति उसका टेक्नोलॉजी का उपयोग कर पाए।
0: इंस्टीट्यूट्स भी होंगे जो ट्रेनिंग देते होंगे?
1: हाँ, इंस्टीट्यूट्स ट्रेनिंग दे रहे हैं असिस्टिव टेक्नोलॉजी का यूज़ करने में। जैसे भोपाल में मैं जानता हूँ कि एक संस्था है जहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है कंप्यूटर सिखाने में, मोबाइल का यूज़ करने में ब्लाइंड बच्चों को, तो वो लोग करते हैं। कई और संस्थाएं भी हैं जो कि इसमें काम लोग लगी हुई हैं। बहुत सारे डिवाइस आने लगे हैं आजकल, जैसे मान लीजिए ब्लड प्रेशर मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें भी आजकल वॉइस आने लगी है, तो आपको सुन के पता पड़ेगा कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है, पल्स रेट कितना है। हम लोगों को बहुत दिक्कत हुई कोविड के टाइम पे, जब मान लीजिए क्योंकि अगर उस टाइम पे टॉकिंग थर्मामीटर होता या टॉकिंग ऑक्सीमीटर होता तो लोगों को डर नहीं होता कि अगर किसी ब्लाइंड को कोविड हुआ है तो वो क्या करेगा, वो सामने सोशल डिस्टेंसिंग के कारण कोई बुखार लेने को तैयार नहीं था कि कितना बुखार है भाई इनको। तो इस तरह की दिक्कतें आती हैं, सोसाइटी से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई भाई ये इस बात का ध्यान रखें कि कोई चीज़ बन रही है तो उसको ऐसा बनाएं कि डिसेबल्ड लोग भी उसका यूज़ कर पाएं।
0: सर आखिर में कोई आप संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से?
1: संदेश ये है कि बस कुल मिला के अगर सब लोग एक दूसरे का सपोर्ट करें तो बहुत सारे ऐसे काम हो सकते हैं जो अभी तक नहीं हुए हैं।
0: सर आपने रेडियो आज़ाद हिंद से बात की, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद सर।
1: जी जी थैंक यू।
0: कार्यक्रम टेक गुरु में आप सुन रहे थे डॉक्टर रोहित त्रिवेदी से बातचीत, जिसमें उन्होंने अपने अनुभव हमसे साझा किए। इस कार्यक्रम की परिकल्पना सुश्री अदिति गौड़ की थी। ये थी रेडियो आजाद हिंद की प्रस्तुति। हमें उम्मीद है आपको यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: देश के वीर जवानों को समर्पित शौर स्मारक की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर संगीत संध्या का आयोजन। सुनिए मिलिट्री बैंड की सांगीतिक प्रस्तुति। इसके साथ ही आप देख सकते हैं शस्त्र प्रदर्शनी 14 अक्टूबर शाम 6 बजे शौर स्मारक अरेरा हिल्स भोपाल, स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन का प्रतिष्ठा आयोजन। आप सभी सादर आमंत्रित हैं।

लश्कर और सीधी स्टीमशिप युग का मानवीय ईंधन। 1880 के दशक में एक P&O स्टीमशिप भाप के जहाज के डेक पर खड़े होने की कल्पना कीजिए। डेक के ऊपर का दृश्य अविनाशी आकर्षण और गहरी संतुष्टि से भरा है। अमीर यात्री शामियाने के नीचे आराम कर रहे हैं, चाय की चुस्कियां ले रहे हैं, जबकि जहाज हिंद महासागर के शांत पानी को चीरते हुए आगे बढ़ रहा है। ऐसा लगता है जैसे जहाज उन मानसूनी हवाओं से बेपरवाह है जो कभी यहाँ के जीवन को नियंत्रित करती थी। लेकिन पॉलिश किए हुए टी की लकड़ी के नीचे जहाज के दम घोटने वाले भीतरी हिस्सों में एक अलग ही दुनिया मौजूद है। ये लश्करों और सीधियों की दुनिया है। वे गुमनाम समुद्री मजदूर जिन्होंने हिंद महासागर को ब्रिटिश झील बनाना संभव बनाया। जैसे जैसे 19वीं शताब्दी आगे बढ़ी, औद्योगिक क्रांति ने हिंद महासागर को बदल दिया। 1869 में स्वेज नहर के खुलने और भाप तकनीक के उदय का मतलब था कि जहाज अब हवाओं के गुलाम नहीं रहे। हालांकि इन नए यांत्रिकी दिग्गजों को चलाने के लिए भारी मात्रा में मानवीय श्रम की आवश्यकता थी। 1914 तक ब्रिटिश व्यापारिक बेड़े में 51,600 से अधिक लश्कर कार्यरत थे। लश्कर मुख्य रूप से भारतीय नाविक थे, हालांकि वे बेड़े के संचालन के लिए अनिवार्य थे, लेकिन वे एक सख्त नौसैनिक पदानुक्रम में सबसे निचले पायदान पर थे। उनका जीवन एशियाटिक आर्टिकल्स द्वारा शासित था, एक कानूनी ढांचा जो बंधुआ मजदूरी के रूप में कार्य करता था। इसे विशेष रूप से यूरोपीय नाविकों को दिए जाने वाले अनुबंधों से अलग और कम सुरक्षात्मक बनाया गया था। ये वे डेक हैंड और विशेषज्ञ थे जिन्होंने पारंपरिक डाउ और जंग जहाजों से निकलकर भाप युग के जटिल रखरखाव और संचालन को संभाला था। जहाज के निचले हिस्से में और भी गहराई पर सीधी काम करते थे। ये अफ्रीकी मजदूर थे जिनमें से कई गुलाम मूल के थे या वे स्वतंत्र लोग थे जिन्होंने बॉम्बे या जंजीबार जैसे बंदरगाहों में नए जीवन की तलाश की थी। उनका काम शायद समुद्र के इतिहास में सबसे कठिन था। वे फायरमैन थे। उष्णकटिबंधीय हिंद महासागर की तीव्र गर्मी में सीधी अपनी शिफ्ट कोयले को उन दहकती भट्टियों में झोंकने में बिताते थे जो बॉयलरों को चालू रखती थी। ये कमर तोड़ देने वाला और खतरनाक काम था जो ऐसी अंधेरी जगहों पर किया जाता था जहां रोशनी के नाम पर केवल आग की लपटों की चमक होती थी। लश्कर और सीधी की कहानी औद्योगिकरण और विस्थापन की कहानी है, जबकि स्टीमशिप को अक्सर प्रगति के प्रतीक के रूप में सराहा जाता है। जिसने मानसून के अत्याचार पर विजय प्राप्त की वो प्रगति एक विविध बहुजातीय कार्यबल के कंधों पर बनी थी। ये लोग एक नई प्रकार की अफ्रो एशियाई पहचान का प्रतिनिधित्व करते थे, एक ऐसी पहचान जो सुहाली तट के बाजारों या गुजरात के संघों में नहीं बल्कि वैश्विक पूंजीवाद के इंजन के रूप में गढ़ी गई थी। वे पाल वाली प्राचीन दुनिया और कंटेनर जहाजों वाली आधुनिक दुनिया के बीच के सेतु थे। लश्करों और सीधियों के बिना ब्रिटिश झील सूख जाती और 19वीं सदी के हिंद महासागर का आपस में जुड़ा जाल रुक जाता। वे शांत और कालिक से सने हुए नायक थे जिन्होंने उस वैश्वीकृत दुनिया को ऊर्जा दी जिसे हम आज पहचानते हैं।

0: ये प्रस्तुति उन्होंने दी भोपाल में आयोजित लोक रंग समारोह में। ये इस कार्यक्रम का पहला भाग है।
1: सुश्री वंदना सिन्हा,
2: आज की ये प्रस्तुति में सर्वप्रथम भगवती वंदना, जिसे हम गोसौनिक गीत कहते हैं, उससे शुरू करूंगी। ये मैथिली

दूसरा गीत मैं एक लोक भजन जो शिव जी का है, बड़ा ही सरल लोक जो कि हमेशा से सरल ही होता है, तो शिव जी को क्या लेके मनाएं। ये भोजपुरी भजन है, लोक भजन है कि शिव तो कुछ भी मानते नहीं, तो क्या लेके मनाएं उनको। ये वो भजन है, आपको याद आ जाएगा।

का के रस्म में विवाह का ये गीत है जिसमें उठंगर कहते हैं, जो धान कूटने का वक्त जब आता है, जब श्री राम विवाह के लिए आए थे तो भगवान श्री राम जब आए तो उन्हें भी ये रस्म निभाना पड़ा मिथिला के आंगन में।

देश के वीर जवानों को समर्पित शौर्य स्मारक की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर संगीत संध्या का आयोजन। सुनिए मिलिट्री बैंड की सांगीतिक प्रस्तुति। इसके साथ ही आप देख सकते हैं शस्त्र प्रदर्शनी 14 अक्टूबर शाम 6 बजे शौर्य स्मारक अरेरा हिल्स भोपाल, स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन का प्रतिष्ठा आयोजन। आप सभी सादर आमंत्रित हैं।

नमस्कार, मैं हूं अभिजीत दा, अभिजीत भट्टाचार्य, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। देश को आजादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराया। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

रेडियो रिपोर्ट में हम आपको लिए चल रहे हैं रविंद्र भवन के मुक्ताकाश मंच पर, जहां सोमवार से 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्री रामलीला उत्सव की शुरुआत हुई। पहले दिन मणिपुर के कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी।

0: आइए चलते हैं कुछ पलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्री रामलीला उत्सव में।
1: करतल ध्वनि से आइए इस प्रस्तुति का हम सब मिलकर स्वागत करें, अभिनंदन करें।

0: अमल कमल नेत्र जानकी सुप्रेम पात्र कुबलय जल दित्यम चारु चंद्र मुखाज दशरथ नेत्र पुत्र राम चंद्र नटुस
1: जय प्रभु राम चंद्र की जय।

0: कैकेनी कौशल्यागी मचानु पारामना अजोध्यागी निंथौ हाखिगे दौरे हायरिबसे तारब्र नंगबु
1: करीगी कनाना कमदौना
0: कानरोय कानरोय अदुंगई ममांगई बोर अनीदो निज हौरुचो दशरथ निंथौदगी चलो चलो थिनथरगनु

देश के वीर जवानों को समर्पित शौर्य स्मारक की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर संगीत संध्या का आयोजन। सुनिए मिलिट्री बैंड की सांगीतिक प्रस्तुति। इसके साथ ही आप देख सकते हैं शस्त्र प्रदर्शनी 14 अक्टूबर शाम 6 बजे शौर्य स्मारक अरेरा हिल्स भोपाल, स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन का प्रतिष्ठा आयोजन। आप सभी सादर आमंत्रित हैं।

भयानक महीना जब शराब का बिल मुनाफे से ज्यादा हो गया। क्या आप जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की एक अकेली फैक्ट्री ने एक बार शराब का इतना भयानक बिल बना दिया था कि वह उसके पूरे साल के निर्यात मूल्यों से भी अधिक हो गया। कंपनी के अभिलेखागार में अत्यधिक फिजूल खर्ची के इस दौर को द मॉन्स्टर्स मंथ यानी भयानक महीने के रूप में दर्ज किया गया है। इस राजकोषीय और शारीरिक अय्याशी का दृश्य सुमात्रा के अलग थलग पश्चिमी तट पर स्थित बैनकुलन, जिसे यॉर्क फोर्ट या फोर्ट मालबोरो के नाम से भी जाना जाता था। 18वीं सदी की शुरुआत में बैनकुलन अपनी जहरीली जलवायु और नगण्य व्यापार के लिए बदनाम था, जहां केवल अपमानित दिवालिया या वास्तव में हताश लोगों को ही भेजा जाता था। इस मलेरिया वाले क्षेत्र से जीवित बचने वालों में जोसेफ कॉलेट भी शामिल थे, जो एक दिवालिया थे लेकिन अपने कार्यकाल के बाद अंततः मद्रास की काउंसिल के प्रेसिडेंट बने। हालांकि हर कोई कॉलेट की तरह इस उष्णकटिबंधीय कष्ट को सहन नहीं कर पाया। जुलाई 1716 में कॉलेट के कार्यकाल के अंतिम महीने में केवल 19 अनुबंधित कर्मचारियों अर्थात वह व्यापारी जिन्हें कंपनी के खर्च पर भोजन करने का अधिकार था के एक छोटे से समूह ने सुमात्रा की कथित उदासी और तकलीफों को मिटाने के लिए भारी मात्रा में शराब का सहारा लिया। क्या आप जानते कि उन्होंने वास्तव में क्या पिया था? लंदन के डरे हुए निदेशकों के अनुसार, जिन्होंने बाद में खातों की बारीकी से जांच की, उनके अनुसार इन 19 पुरुषों ने 75 दर्जन महंगी वाइन बोतलें, जिनमें ज्यादातर महंगी क्लैरेट थी, बियर की 24 दर्जन बोतलें जिनमें खासकर बर्टन एलिस और पेल बियर, 164 गैलन गोवा ताड़ी, लगभग विशाल बैरल बटाविया अराक के साथ ही साथ मदिरा और शिराज वाइन की अतिरिक्त मात्रा शामिल थी। जब लिडेन हॉल स्ट्रीट के ऑडिटर्स ने आंकड़ों की गणना की तो वे दंग रह गए। केवल उस एक महीने में पी गई शराब की लागत पूरी फैक्ट्री द्वारा साल भर में निर्यात की गई काली मिर्च के कुल मूल्य से भी अधिक थी। निदेशकों ने एक तीखा पत्र भेजा, यह आश्चर्य जताते हुए कि इनमें से कोई भी कर्मचारी अब तक जीवित कैसे है। उन्होंने लिखा, हमें आश्चर्य है कि आप में से कोई भी 6 महीने भी जीवित रहता है और आप लोगों के बीच और अधिक झगड़े और द्वंद्व नहीं होते यदि इस शराब का आधा हिस्सा भी आपने कटक लिया हो। उन्होंने सख्ती से आदेश दिया कि भविष्य में कर्मचारी अपनी मौज मस्ती का भुगतान स्वयं करें और कंपनी अब उनके स्वाद के लिए सब्सिडी नहीं देगी। लेकिन यहां एक अंतिम और विडंबनापूर्ण मोड़ है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उन कर्मचारियों को यह फटकार कभी मिली ही नहीं। जब तक पत्र सुमात्रा के तट पर पहुंचा, फोर्ट मालबोरो जलकर खाक हो चुका था। कर्मचारियों द्वारा वर्षों के उकसावे वाले व्यवहार और उत्पीड़न के कारण एक विशाल स्थानीय विद्रोह भड़क उठा था, जिसने जीवित बचे लोगों को अपनी जान बचाने के लिए समुद्र की लहरों के पार भागने पर मजबूर कर दिया। मॉन्स्टर्स मंथ इस बात की याद दिलाता है कि भले ही कंपनी व्यापारियों की एक संस्था थी, लेकिन इसके दुरुस्त ठिकाने अक्सर अय्याशी के विक्षुब्ध अड्डे थे, जहां पुरुष अपने निर्वासन की सड़ांध भरी वास्तविकता से बचने के लिए शाब्दिक रूप से कंपनी के मुनाफे को पी जाते थे।

0: कि मैं हूँ मुकेश खन्ना आपका शक्तिमान, या आप कह लो भीष्म पितामह, और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आज़ाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आज का हमारा कार्यक्रम है काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा। काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा। इस गुच्छे में आज हम आपके लिए ऐसा काव्य विन्यास लेकर आए हैं जहां पंखुड़ियां रण की चमक से नहीं, तप की शांति से दमकती हैं। यहां कविताएं केवल सुनाई नहीं जाती, वे समय के बंद कपाट खोलकर मनुष्य को उसके भीतर छिपे सत्य से मिला देती हैं।
2: श्रोताओं, पिछले भाग में आपने सुना वह हृदय स्पर्शी प्रसंग जहां भीष्म और कर्ण आमने सामने थे। एक ओर थे कुरुकुल के वृद्ध पितामह, जिनकी आंखों में आने वाले विनाश की छाया थी, और दूसरी ओर था राधेय कर्ण, जिसके हृदय में मित्रता का ऋण और अपने वचन की ज्वाला प्रज्वलित थी। भीष्म ने उसे युद्ध की अग्नि से दूर शांति का मार्ग दिखाया, परंतु कर्ण का जीवन जिस प्रतिज्ञा की डोर से बंधा था, वह उसे रणभूमि की ओर आखिरकार खींच ही ले गई।
1: कहते हैं, समय जब अपने सबसे कठिन प्रश्न सामने रखता है, तब मनुष्य का वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है। कर्ण भी उसी परीक्षा की घड़ी में खड़ा है, जहां एक ओर करुणा की पुकार है और दूसरी ओर कर्तव्य का कठोर पथ। दिनकर जी ने रश्मिरथी में केवल युद्ध का वर्णन नहीं किया, उन्होंने उस मनुष्य की कथा कही है जिसके भीतर प्रेम भी है, पीड़ा भी है, और अपने निर्णयों की कीमत चुकाने का साहस भी। दोस्तों, कभी कभी जीवन भी कितना विचित्र खेल खेलता है। जिन दो व्यक्तियों को संसार जीवन भर विरोधी समझता रहा, विदा की घड़ी में वही एक दूसरे के लिए सम्मान और स्नेह से भर उठते हैं। अभी अभी भीष्म ने कर्ण को आशीर्वाद दिया और कर्ण ने झुककर उनके चरणों की धूल अपने मस्तक पर रख ली। युद्ध अपनी जगह था, मतभेद अपनी जगह थे, लेकिन भारतीय संस्कृति का ये सौंदर्य देखिए, विचार अलग हो सकते हैं, संस्कार नहीं। अब कथा वहां से आगे बढ़ती है जहां शब्दों का स्थान शौर्य लेने वाला है। सूर्य पुत्र कर्ण अपने रथ की ओर बढ़ चुके हैं। दूर कहीं रणभेरी बज उठी है, घोड़ों की टापें धरती को जगा रही हैं, और कुरुक्षेत्र जैसे अपनी सांस रोककर किसी असाधारण क्षण की प्रतीक्षा कर रहा है। आइए सुनते हैं रश्मिरथी के षष्ठ सर्ग के भाग 7 और 8, जहां कर्ण का तेज केवल रणभूमि को ही नहीं, श्रोताओं के हृदय को भी आलोकित करने वाला है।
2: पाकर प्रसन्न आलोक नया, कौरव सेना का शोक गया, आशा की नवल तरंग उठी, जन जन में नई उमंग उठी, मानो वाणों को छोड़ शयन, आ गए स्वयं गंगा नंदन, सेना समग्र हुंकार उठी, जय जय राधेय पुकार उठी, उल्लास मुक्त हो छहर उठा, रण जलधि घोष में घर उठा, बज रही समर भेरी भीषण, हो गया शुरू संग्राम गहन, सागर सागर जित क्षुभित घोर, विकराल दंड धर सा कठोर, अरिदल पर कुपित कर्ण टूटा, धनु पर चढ़ महामरण छूटा, ऐसी पहली ही आग चली, पांडव की सेना भाग चली, झंझा की घोर झकोर चली, डालों को तोड़ मरोड़ चली, पेड़ों की जड़ टूटने लगी, हिम्मत सबकी छूटने लगी, ऐसा प्रचंड तूफान उठा, पर्वत का भी हिल प्राण उठा, प्लावन का पा दुर्जय प्रहार, जिस तरह कांपती है कगार, या चक्रवात में यथा कीर्ण, उड़ने लगते पत्ते विशीर्ण, त्यों उठा कांप थर थर अरिदल, मच गई बड़ी भीषण हलचल, सब रथी व्यग्र बिलबिलाते थे, कोलाहल रोक न पाते थे, सेना को यूं बेहाल देख, सामने उपस्थित काल देख, गर्जे अधीर हो मधुसूदन, बोले पार्थ से निगूढ़ वचन, दे अचिर सैन्य का अभय दान।
1: श्रोताओं, शस्त्र सर्ग का ये प्रसंग युद्ध भूमि के उस निर्णायक क्षण को हमारे सामने सजीव कर देता है, जब कर्ण के रण में उतरते ही मानो कौरव सेना की बुझी हुई आशा फिर से प्रज्वलित होती है। अभी तक जो सेना निराशा के बोझ तले झुकी हुई थी, वही अब जय जय राधे के घोष से आकाश गुंजायमान कर देती है। दिनकर जी ने कर्ण को केवल एक योद्धा के रूप में नहीं, बल्कि पराजय के अंधकार में आशा का दीप बनाकर चित्रित किया है। उनके रण में उतरते ही ऐसा प्रतीत होता है मानो किसी प्रचंड तूफान ने युद्ध भूमि को अपने आगोश में ले लिया हो। उनके बाण केवल शत्रु के कवच को नहीं, उनके साहस को भी भेदने लगते हैं। कवि ने प्रकृति के विराट बिंबों, झंझावात, समुद्र चक्रवात और प्रलयंकारी बाढ़ के माध्यम से कर्ण के पराक्रम को ऐसी ऊंचाई दी है कि उनका व्यक्तित्व किसी साधारण मनुष्य का नहीं, बल्कि प्रकृति की अनियंत्रित शक्ति का प्रतीक बन जाता है। यही कारण है कि पांडवों जैसी विशाल और प्रशिक्षित सेना भी एक क्षण के लिए विचलित हो उठती है।
2: यहाँ दिनकर जी हमें ये भी बताते हैं कि एक महान सेना नायक केवल शस्त्रों से नहीं लड़ता, वह अपने साहस से पूरी सेना में प्राण फूंक देता है। सच ही कहा गया है, जहाँ सिंह अग्रसर होता है वहाँ वन के प्राणी भी निर्भय हो उठते हैं। कर्ण का रण प्रवेश उसी सिंहनाद की भांति है, जिसने कौरवों के मन में नव जीवन भर दिया और शत्रु पक्ष को पहली बार ये अनुभव करा दिया कि अब उनके सामने कोई साधारण धनुर्धर नहीं, बल्कि सूर्य के समान तेजस्वी और प्रलय के समान प्रचंड राधेय खड़ा है। उधर भगवान कृष्ण अर्जुन को सावधान करते हुए कह रहे हैं,
1: अर्जुन अर्जुन हो सावधान, तू नहीं जानता है यह क्या करता ना शत्रु पर कर्ण दया, दाहक प्रचंड इसका बल है, यह मनुज नहीं कालानल है, बलवानल यम या काल पवन, करते जब कभी कोप भीषण, सारा सर्वस्व न लेते हैं, उच्छिष्ट छोड़ कुछ देते हैं, पर इसे क्रोध जब आता है कुछ भी ना शेष रह पाता है, बाणों का अप्रतिहत प्रहार, अप्रतिम तेज पौरुष अपार, क्यों गर्जन पर गर्जन निर्भय, आ गया स्वयं सामने प्रलय, तू इसे रोक भी पाएगा या खड़ा मूक रह जाएगा, या महामत मानव कुंजर कैसे अशंक हो रहा विचर, कर को जिस ओर बढ़ाता है पथ उधर स्वयं बन जाता है, तू नहीं शरासन तानेगा अंकुश किसका यह मानेगा।
2: जिसे संसार शत्रु समझ कर देखता है कभी कभी वही हृदय में सम्मान का स्थान बना लेता है। इस प्रसंग में श्री कृष्ण के शब्दों में केवल एक योद्धा के प्रति सावधानी नहीं है, बल्कि एक महान आत्मा को पहचान लेने की पीड़ा भी छिपी हुई है। कृष्ण जानते हैं कि सामने खड़ा कर्ण कोई साधारण धनुर्धर नहीं है, वह वही पुरुष है जिसके भीतर सूर्य का तेज, तपस्वी का धैर्य और दानवीर का हृदय बसता है। इसीलिए जब वे अर्जुन को सावधान कर

0: की हर पीड़ा को पुरुषार्थ में बदल दिया।
1: दिनकर जी ने इस प्रसंग में कृष्ण के माध्यम से कर्ण की महत्ता को और ऊंचा कर दिया है, क्योंकि महानता की पहचान यही है कि विरोधी भी जिसके गुणों को नकार ना सके। कृष्ण के मुख से निकला कर्ण का वर्णन मानो स्वयं समय की वाणी है, एक ऐसा योद्धा जो गलत पक्ष में खड़ा होकर भी अपने तेज से छोटा नहीं होता।
0: कर्ण जब रण में उतरता है तो उसके हाथों में केवल धनुष नहीं होता, उसके साथ उसका पूरा जीवन जलता है। राधा का स्नेह, दुर्योधन के उपकार, कुंती का सत्य और अपने वचन की वह अग्नि जिसे उसने अंतिम श्वास तक निभाने का प्रण लिया था। यही कारण है कि रश्मिरथी का कर्ण केवल युद्ध का पात्र नहीं, मानव हृदय की सबसे जटिल और करुण गाथाओं में से एक बन जाता है। आइए अब सुनते हैं इसी सर्ग से भाग 8 का काव्य पाठ।
2: अर्जुन, विलंब पातक होगा, शैथिल्य प्राण घातक होगा। उठ जाग वीर, मूर्ता छोड़, धर धनुष बाण अपना कठोर। तू नहीं जोश में आएगा, आज ही समर चुक जाएगा।
0: केशव का सिंह दहाड़ उठा, मानो चिघार पहाड़ उठा। बाणों की फिर लग गई झड़ी, भागती फौज हो गई खड़ी। जूझने लगे कौंतेय कर्ण, जो लड़े परस्पर दो सुपर्ण। एक ही ब्रह्मत के दो कुम्मल, एक ही कुक्षी के दो कुमार। एक ही वंश के दो भूषण, विभ्राट वीर पर्वताकार। बेधने परस्पर लगे सहज सोदर शरीर में प्रखर बाण। दोनों की किंक्षुक देह हुई, दोनों के पावक हुए प्राण। अंधड़ बनकर उन्माद उठा, दोनों दिशि जय जयकार हुई। दोनों पक्षों के वीरों पर मानो भैरवी सवार हुई। कट कट कर गिरने लगे क्षिप्र, रुंडों से मुंड अलग होकर। बह चली मनुज के शोणित की धारा, पशुओं के पग धोकर। लेकिन था कौन हृदय जिसका कुछ भी यह देख दहलता था? था कौन नरों की लाशों पर जो नहीं पांव धर चलता था? तन्वी करुणा की झलक झीन किसको दिखलाई पड़ती थी? किसको कटकर मरने वालों की चीख सुनाई पड़ती थी? केवल अलात का घूर्ण चक्र, केवल वज्रायुध का प्रहार, केवल विनाशकारी नर्तन, केवल गर्जन, केवल पुकार, केवल गर्जन, केवल पुकार।
1: है कथा द्रोण की छाया में, यूं 5 दिनों तक युद्ध चला। क्या कहें धर्म पर कौन रहा, या उसके कौन विरुद्ध चला? था किया भीष्म पर पांडव ने जैसे छल छंदों से प्रहार, कुछ उसी तरह निष्ठुरता से हत हुआ वीर अर्जुन कुमार। फिर भी भावुक कुरुवृद्ध भीष्म थे युग पक्षों के लिए शरण। कहते हैं होकर विकल मृत्यु का किया उन्होंने स्वयं वरण। अर्जुन कुमार की कथा किंतु अब तक भी हृदय हिलाती है, सभ्यता नाम लेकर उसका अब भी रोती पछताती है। पर हाय युद्ध अंतक स्वरूप, अंतक साही दारुण कठोर। देखता नहीं ज्यायान युवा, देखता नहीं बालक किशोर। सुत के वध की सुन कथा पार्थ का, दहक उठा शोकांत हृदय। फिर किया क्रुद्ध होकर उसने तब महा लोम हर्षक निश्चय। कल अस्त काल के पूर्व जयद्रथ को ना मार पाऊं यदि मैं, सौगंध धर्म की मुझे आग में स्वयं कूद जल जाऊं मैं, स्वयं कूद जल जाऊं मैं।
0: श्रोताओं, छठवें सर्ग का यह प्रसंग केवल दो महारथियों का युद्ध नहीं, बल्कि नियति द्वारा एक ही मां की कोख से जन्मे दो वीरों की सबसे करुण परीक्षा है। श्री कृष्ण के उद्बोधन से अर्जुन का सुप्त तेज जाग उठता है। और फिर रणभूमि पर दो ऐसे धनुर्धर आमने सामने आते हैं जिनकी तुलना स्वयं दिनकर जी आकाश में उड़ते दो महाबलशाली सुपर्णों से करते हैं। एक ही वंश के दो गौरव, एक ही रक्त की दो धाराएं अब एक दूसरे पर बाण चला रही हैं। यह दृश्य केवल शौर्य का नहीं बल्कि उस विडंबना का भी है जहां जब घर के दीपक एक दूसरे को जलाने लगे तब अंधेरा बाहर से नहीं आता। युद्ध की उन्मत्त गति ऐसी हो उठती है कि मनुष्य की करुणा, संवेदना और रिश्तों की पहचान सब कुछ धूल में दब जाती है। दिनकर जी बार बार हमें ये सोचने के लिए विवश करते हैं कि युद्ध का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है, वह शत्रु का चेहरा नहीं देखता, केवल लक्ष्य देखता है।
1: मित्रों, इसीलिए कवि आगे युद्ध की विभीषिका का ऐसा चित्र उपस्थित करते हैं कि वीरता भी मौन हो जाती है। रक्त की धाराएं बह रही हैं, मस्तक धड़ों से अलग हो रहे हैं, चीखें आकाश में विलीन हो रही हैं, पर किसी के पास ठहर कर शोक मनाने का समय नहीं। युद्ध में तलवारें नहीं रोती, केवल माताओं की गोद सूनी होती है। यही कारण है कि दिनकर जी कहते हैं उस समय किसी को न करुणा दिखाई देती है, न किसी की अंतिम पुकार सुनाई देती है, ये केवल विनाश का नृत्य रह जाता है। और इसी विनाश के बीच अभिमन्यु का वध मानवता के हृदय पर सबसे गहरा घाव बनकर उभरता है। एक किशोर जिसने अद्भुत साहस दिखाया छल पूर्वक मार दिया जाता है। दिनकर जी यहां स्पष्ट संकेत करते हैं, जहां युद्ध में नीति मर जाती है वहां विजय भी कलंकित हो जाती है। सच ही कहा गया है, अन्याय से प्राप्त विजय पराजय से भी अधिक पीड़ादायक होती है। मानो कर्ण के मन की टीस हम तक पहुंच रही हो, वो हमसे कह रही हो।
3: हे वीर अभिमन्यु, तेरी वीरता को सादर प्रणाम। धन्य है तेरी माता जिसने तुझ जैसे महावीर को जन्म दिया। आज कुरुक्षेत्र की धूल केवल रक्त से नहीं, एक अधखिले जीवन की असमय विदाई से भी लाल हो गई है। युद्ध में शत्रु और मित्र के बीच भेद करना सरल होता है, किंतु जब सामने यौवन का प्रथम उषाकाल खड़ा हो तब धनुष उठाने से पहले हृदय भी एक क्षण के लिए कांप उठता है। वीरता का अर्थ कभी असहाय का अंत नहीं होता, वो तो समर भूमि में समान पराक्रम का सम्मान है। पर आज नियति ने ऐसा जाल बुना कि धर्म, नीति और युद्ध तीनों एक दूसरे से उलझ गए। मैं जानता हूं कल जब ये समाचार अर्जुन तक पहुंचेगा तब एक पिता का हृदय धनुर्धर से कहीं अधिक आहत होगा, और शायद यही युद्ध का सबसे बड़ा अभिशाप है। यह विजय का मार्ग दिखाते दिखाते मनुष्य से उसकी करुणा भी छीन लेता है। हाय, काश रणभूमि केवल वीरों के शौर्य की साक्षी होती, किसी मां की सूनी गोद और किसी पिता के टूटे हुए हृदय की नहीं।
0: अभिमन्यु के वध का समाचार सुनकर अर्जुन का हृदय केवल एक पिता का हृदय रह जाता है। उस क्षण ना तो वह महाधनुर्धर है ना विजेता, वह अपने पुत्र के वियोग में तड़पता हुआ पिता है। उसी पीड़ा से जन्म लेती है जयद्रथ वध की वह भयंकर प्रतिज्ञा जो महाभारत के युद्ध को एक नया मोड़ देती है। दिनकर जी इस प्रसंग के माध्यम से ये बताते हैं कि प्रतिशोध की अग्नि कभी अकेले नहीं जलती, वह एक पीड़ा से जन्म लेकर अनेक जीवनों को अपनी लपटों में समेट लेती है। यही कारण है कि छठवें सर्ग का यह भाग केवल युद्ध का वर्णन नहीं करता बल्कि यह चेतावनी भी देता है कि जब क्रोध विवेक पर अधिकार कर लेता है तब इतिहास वीरों की गाथा से अधिक अपनों के बिछोह की कथा बन जाता है।
1: जहाँ वीरता की अग्नि प्रज्वलित होती है वहां स्वयं समय भी कुछ क्षण ठहर कर उस तेज का दर्शन करता है। रश्मिरथी का यह प्रसंग उसी महाक्षण का चित्र है जहां रणभूमि केवल शस्त्रों का क्षेत्र नहीं रहती बल्कि पुरुषार्थ संकल्प और नियति का विराट मंच बन जाती है। केशव की दृष्टि अत्यंत गहरी है। वे जानते हैं कि सामने खड़ा राधे कोई साधारण धनुर्धर नहीं। वो वर्षों के अपमान तप साधना और आत्मसम्मान से निर्मित वो महायोद्धा है जिसकी भुजाओं में केवल बल नहीं एक जीवन भर का संघर्ष धड़क रहा है। इसलिए कृष्ण अर्जुन को केवल युद्ध के लिए प्रेरित नहीं करते बल्कि उसे उस विराट शक्ति का बोध कराते हैं जो उसके सामने खड़ी है। उनकी चेतावनी में भय नहीं बल्कि सत्य का उद्घोष है क्योंकि जब कर्ण का धनुष उठता है तो मानो रणभूमि में प्रलय की आहट सुनाई देने लगती है।
0: और दूसरी ओर कर्ण वह योद्धा जिसके लिए रणभूमि केवल विजय का स्थान नहीं अपने अस्तित्व की अंतिम परीक्षा है। दिनकर जी कर्ण के माध्यम से दिखाते हैं कि मनुष्य जब अपने संकल्प के साथ खड़ा होता है तो उसके सामने देवताओं का वैभव भी छोटा पड़ जाता है। श्री कृष्ण जानते हैं कि अर्जुन के सामने केवल कौरव सेना नहीं बल्कि एक ऐसा पुरुष खड़ा है जिसने जीवन भर परिस्थितियों से युद्ध किया है। यही कारण है कि यह द्वंद्व केवल दो धनुषों का टकराव नहीं दो महाशक्तियों और दो महान जीवन यात्राओं का संग्राम बन जाता है। श्रोताओं रश्मि रथी का यही सौंदर्य है कि यहाँ शत्रु भी सम्मान के योग्य है। दिनकर जी ने कर्ण के तेज को इस ऊंचाई तक पहुँचाया है कि स्वयं माधव की वाणी में भी उसके पराक्रम की गंभीरता दिखाई देती है। ये प्रसंग हमें बताता है कि सच्चा वीर वही है जो विपत्ति के महासागर में भी अपने आत्म सम्मान और धर्म की नौका को डूबने नहीं देता। कर्ण का पराक्रम और अर्जुन का संकल्प दोनों महान है पर दोनों के पीछे एक ऐसी नियति खड़ी है जो रिश्तों को युद्ध की अग्नि में झोंक देती है।
1: मित्रों कहते हैं सूर्य चाहे अस्त हो जाए पर उसका प्रकाश आकाश में अपनी छाप छोड़ जाता है। ठीक वैसे ही कर्ण का तेज भी समय की सीमाओं से परे है। दिनकर जी ने जिस अद्भुत भाव भूमि पर इस चरित्र को रचा है वहां कर्ण केवल एक योद्धा नहीं रह जाता वो उस मनुष्य का प्रतीक बन जाता है जो टूट कर भी झुकता नहीं जो हार की छाया में भी अपने स्वाभिमान का दीप जलाए रखता है। श्रोताओं अब हम साहित्य जगत में रश्मि रथी की हुंकार और दिनकर जी की कलम को सम्मान देते हुए कई शीर्ष कवियों ने काव्य पंक्तियां जो लिखी हैं वो भी आपसे साझा करना चाहेंगे।
0: जी हाँ महाकवि हरिवंश राय बच्चन जी ने दिनकर जी की मृत्यु पर और उनके काव्य विशेषकर रश्मि रथी और कुरुक्षेत्र जैसी वीर रस की रचनाओं के प्रभाव को याद करते हुए लिखा था कि दिनकर के ओज की जो आग थी वह देश के दिल की धड़कन और राग थी। उनकी लेखनी से जो अंगारे बरसे थे उन्हें सुनने को तो सदियों से कान तरसे थे।
1: और डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन का काव्यात्मक नमन कुछ इस प्रकार है। जब जब देश की सोई आत्मा को जगाना होगा तब तब दिनकर की पंक्तियों को दोहराना होगा। वह सूर्य का सारथी रश्मि रथी बन जो आलोक दे गया हिंदी साहित्य का मस्तक हमेशा के लिए ऊंचा कर गया। शब्दों को अंगारा कर दे ऐसी तासीर कहां लाओगे दिनकर जैसा महामानव तुम ढूंढे से ना ढूंढ पाओगे। कर्ण की पीड़ा को जिसने रश्मि रथी में अमर किया उस राष्ट्र कवि के चरणों में साहित्य ने शत शत नमन किया।
0: और राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त उम्र और अनुभव में दिनकर जी से काफी बड़े थे। जब दिनकर जी की रश्मि रथी और कुरुक्षेत्र जैसी रचनाओं ने देश में धूम मचाई तो गुप्त जी ने बड़े भाई और एक वरिष्ठ कवि के रूप में दिनकर जी के ओज का स्वागत करते हुए ये कहा था कि मुझसे भी आगे बढ़कर जो गाता है वह देश के यौवन का स्वर बन जाता है। जिसकी वाणी में कुरुक्षेत्र और रश्मि रथी की हुंकार है उस दिनकर की लेखनी को मेरा बार बार नमस्कार है।
4: और श्रोताओं आधुनिक हिंदी कविता के पुरोधा और तार सप्तक के संपादक अज्ञे जी ने रश्मि रथी के शिल्प और दिनकर जी की भाषा पर टिप्पणी करते हुए लिखा था दिनकर जी ने रश्मि रथी में शब्दों को केवल पिरोया नहीं है बल्कि उन्हें दहकाया है। कर्ण के चरित्र को उन्होंने जिस ओज और सामाजिक विद्रोह के साथ प्रस्तुत किया है वो हिंदी साहित्य में अप्रतिम है। दिनकर जी की कविता पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे पाठक स्वयं युद्ध भूमि में खड़ा होकर सत्य और न्याय का साक्षात्कार कर रहा हो।
0: और श्रोताओं, ये कथा अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां रण का स्वर और अधिक तीव्र होगा, जहां शौर्य की अग्नि और प्रचंड होगी। जी हाँ, अगले भाग में अब हम सुनेंगे छठवें सर्ग के भाग 9 और 10 का काव्य पाठ, जहाँ कर्ण और अर्जुन के इस महासंग्राम की गाथा और भी विराट रूप धारण करेगी। और अब जाते जाते हम आपको बताना चाहेंगे, इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना थी अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग मिला सतीश बाथम से, मूल रचना राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की, रेडियो प्रस्तुति लेखन दीपक नेमा का। आपके साथ मैं थी भगवती सक्सेना,
1: मैं संदीप शर्मा
4: और मैं दीपक नेमा।
0: तो श्रोताओं, इसी के साथ शब्दों और संवेदनाओं की ये यात्रा अब यहीं पर लेती है विराम। हम फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए हमें दीजिए आज्ञा, नमस्कार।
1: काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा।
5: देश के वीर जवानों को समर्पित शौर्य स्मारक की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर संगीत संध्या का आयोजन, सुनिए मिलिट्री बैंड की सांगीतिक प्रस्तुति। इसके साथ ही आप देख सकते हैं शस्त्र प्रदर्शनी 14 अक्टूबर शाम 6 बजे, शौर्य स्मारक अरेरा हिल्स भोपाल, स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन का प्रतिष्ठा आयोजन। आप सभी सादर आमंत्रित हैं।

0: नमस्कार श्रोताओं, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमारे महान वैज्ञानिक। श्रोताओं, मैं हूं आपकी दोस्त कंचन।
1: और मैं दीपक।
0: स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: श्रोताओं, हम अपने इस कार्यक्रम में हर हफ्ते आपको बताते हैं हमारे देश के एक महान वैज्ञानिक के जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातें। तो आज के हमारे वैज्ञानिक हैं जिन्हें पूरा देश और ये दुनिया ही मिसाइल मैन के नाम से जानती है। जी हाँ श्रोताओं, उन्होंने भारत देश के राष्ट्रपति पद को भी विभूषित किया है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। सही अर्थों में वे एक महान वैज्ञानिक हैं और मिसाइलों के सृजक के रूप में विख्यात हैं।
1: श्रोताओं, डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में प्रसिद्ध तीर्थ स्थान रामेश्वरम में 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। उनका पूरा नाम अबुल पाकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। वे APJ अब्दुल कलाम के नाम से विख्यात हैं। उनका जन्म एक गरीब पर ईमानदार और सुसंस्कृत परिवार में हुआ था। वे रामेश्वरम की मस्जिद गली में अपने पुरखों के पुराने मकान में रहते थे। उनके पिता अधिक पढ़े लिखे नहीं थे, पर अत्यंत कुशल, दक्ष और व्यवहारिक व्यक्ति थे। उनके पिता के लिए अपने बड़े परिवार का भरण पोषण करना आसान काम नहीं था, पर वे विनम्र और परिश्रमी व्यक्ति थे। वे अपनी नाव पर तीर्थयात्रियों को एक किनारे से दूसरे किनारे पर ले जाने और लाने का काम करते थे। आर्थिक परेशानियों के बावजूद उन्होंने प्रतिभाशाली बालक अब्दुल कलाम को रामेश्वरम के प्राइमरी स्कूल में भर्ती करा दिया।
0: डॉक्टर अब्दुल कलाम के एक लेख के अनुसार उनके घर के पास कुछ सुसंस्कृत हिंदू परिवार रहते थे। इन्हीं में रामेश्वरम के मुख्य मंदिर के पुजारी का परिवार भी था। इस पुजारी परिवार के मानवीय मूल्यों ने कुछ हद तक कलाम साहब को प्रभावित किया। भगवद गीता में कही गई गूढ़ बातों और उनके संदर्भ को उन्होंने समझा। वे आज भी शुद्ध शाकाहारी और गीता से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। बाल्यावस्था में उन्हें इस सुसंस्कृत पड़ोसी से बहुत प्रेम और स्नेह मिला। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद 13 वर्ष के अब्दुल कलाम ने रामेश्वरम जिला मुख्यालय के सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने के लिए अपने पिता से अनुमति मांगी। पिता ने उन्हें अनुमति दे दी और उन्हें छोड़ने के लिए स्टेशन तक उनके साथ भी गए। उन्होंने कलाम को आशीर्वाद दिया और उन्हें आगे बढ़ने की शुभकामनाएं दी।
1: डॉक्टर कलाम ने शॉर्ट्स हाई स्कूल में प्रवेश लिया। इस स्कूल का संचालन रामेश्वरम के ईसाई मिशनरी द्वारा किया जाता था। वहां वे छात्रावास में रहे। आर्थिक परेशानियों के बावजूद अब्दुल कलाम के माता पिता ने उनकी इच्छाओं का ध्यान रखा। पढ़ाई करने के लिए वे उन्हें हमेशा प्रोत्साहित करते रहे। प्रतिभाशाली और बुद्धिमान होने के कारण उन्होंने अपने अध्यापकों का भी दिल जीत लिया था। हाई स्कूल के बाद आगे पढ़ाई के लिए सन 1950 में वे समीप के नगर तिरुचरापल्ली गए और वहां सेंट जोसेफ कॉलेज में प्रवेश लिया। अब उनका आत्मविश्वास बढ़ गया था। डॉक्टर कलाम वहां 4 वर्ष तक रहे। अपने कॉलेज के आखिरी दिनों में उनकी रुचि भौतिकी में हो गई। BSc उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने मद्रास प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रवेश लिया और वैमानिक अभियांत्रिकी पाठ्यक्रम यानी एविएशन इंजीनियरिंग कोर्स का चुनाव किया। उन्होंने मनी मन ठान लिया था कि वे विमान चालक बनेंगे। 3 वर्ष पढ़ाई करने के बाद अंत में परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर उन्होंने DMIT की डिग्री प्राप्त की।
0: मद्रास का DMIT कोर्स पूरा करने के बाद डॉक्टर कलाम ने प्रशिक्षणार्थी के रूप में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलुरु में प्रवेश लिया। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन और प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त कर लेने के बाद उनके सामने 2 अवसर थे। दोनों उनकी पसंद के थे। पहला था वायुसेना में भर्ती होकर पायलट के रूप में आगे बढ़ना और दूसरा था रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत तकनीकी विकास और उत्पादन निदेशालय यानी डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन यानी DTDAP में निदेशक का कार्यभार संभालना। उन्होंने दोनों पदों के लिए आवेदन पत्र भेजे और दोनों ही स्थानों पर उन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। दिल्ली पहुंचने के बाद वे समय पर वायुसेना के साक्षात्कार के लिए गए और साक्षात्कार उनकी आशा के अनुकूल हुआ। इस साक्षात्कार के एक सप्ताह बाद उन्हें देहरादून में वायुसेना चयन समिति के समक्ष स्वयं उपस्थित होना था। यहाँ शारीरिक योग्यता के साथ साथ अन्य अनेक पहलुओं को भी ध्यान में रखा जाना था। ये थोड़ा सा अलग तरह का साक्षात्कार था। 25 उम्मीदवारों में से 8 उम्मीदवारों का चयन किया जाना था और डॉक्टर कलाम 9वें स्थान पर थे। उन्हें लगा कि वे वायुसेना में जाने का अवसर गंवा चुके हैं। उन्हें दुख भी था। फिर उसके बाद वहां से वे ऋषिकेश गए। पावन गंगा में डुबकी लगाने के बाद उन्हें आत्म शांति का अनुभव हुआ। उसके बाद वे पास ही स्थित शिवानंद आश्रम में गए। स्वामी जी के दर्शन कर वे बेहद प्रभावित हुए। वे स्वामी शिवानंद जी से मिले। स्वामी जी ने उनसे उनकी उदासी का कारण पूछा तो उन्होंने स्वामी जी को बताया कि वायुसेना में काम करने का अवसर खो देने के कारण वे दुखी हैं। तब स्वामी जी ने उनसे कहा, भाग्य को कोई भी नहीं बदल सकता। जो कुछ तुम्हारे भाग्य में होना था वो हो चुका है, इसलिए निराश मत हो। हो सकता है कि ये बेहतरी और उत्तम काम के लिए हुआ है। अपने आप को ईश्वर की इच्छा पर छोड़ दो। स्वामी जी की ये बातें सुनकर डॉक्टर कलाम जी को शांति मिली। इसके बाद वो वहां से चल दिए और दिल्ली आ गए।
1: कुछ समय पश्चात ही उन्हें 250 रुपए मासिक वेतन पर वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक के रूप में कार्यभार संभालने के लिए नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ। शायद उनके भाग्य में यही काम करना लिखा था। वे 3 वर्ष उत्तर भारत में ही रहे। इस दौरान 1 वर्ष तक वे औद्योगिक नगरी कानपुर में भी रहे। अलग अलग लोगों से उनका संपर्क हुआ, पर उनका मन हमेशा रामेश्वरम की शांति के लिए लालायित रहता था।
0: इसके बाद उनका स्थानांतरण बेंगलुरु में नव स्थापित वैमानिक विकास प्रतिष्ठान यानी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट में हुआ। डॉक्टर कलाम कार्यभार संभालने के लिए बेंगलुरु गए। कुछ समय बाद उनके अधीन 4 वैज्ञानिकों का एक दल बनाया गया। इस दल को 3 वर्ष में पूर्ण रूप से स्वदेशी हॉवरक्राफ्ट बनाने का दायित्व सौंपा गया। तत्कालीन रक्षा मंत्री V.K. कृष्ण मेनन ये काम शीघ्र अतिशीघ्र पूरा कराना चाहते थे। वे जब भी बेंगलुरु का दौरा करते तब इस परियोजना की प्रगति को अवश्य देखते थे। हॉवरक्राफ्ट का नाम भगवान शिव के वाहन के नाम पर नंदी रखा गया था।
1: उसके बाद कृष्ण मेनन ने रक्षा मंत्रालय छोड़ दिया और यह परियोजना भी ताक पर रख दी गई। एक बार वैमानिक विकास प्रतिष्ठान के प्रमुख ने कलाम से कहा कि एक उच्चाधिकारी इस परियोजना को देखने आ रहे हैं। वे उच्चाधिकारी नियत दिन आए। उन्होंने परियोजना और उसकी प्रगति के विषय में पूछताछ की और कई सवाल भी किए। डॉक्टर कलाम को यह पता नहीं था कि वे सज्जन कौन हैं। वास्तव में वे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यानी TIFR के निदेशक प्रोफेसर M.G. के मेनन थे।
0: कुछ समय बाद अंतरिक्ष अनुसंधान संबंधी भारतीय समिति ने डॉक्टर कलाम को रॉकेट इंजीनियर के पद हेतु एक साक्षात्कार के लिए मुंबई बुलाया। डॉक्टर विक्रम साराभाई और प्रोफेसर मेनन ने कलाम का साक्षात्कार लिया और फिर उनको अंतरिक्ष अनुसंधान विभाग में कार्य करने के लिए आमंत्रित किया। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने जिस तरीके से साक्षात्कार किया, डॉक्टर कलाम उनसे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अंतरिक्ष अनुसंधान विभाग का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उन्हें बताया गया कि उन्हें अंतरिक्ष अनुसंधान विभाग में रॉकेट इंजीनियर के रूप में चुन लिया गया है। अगले दिन से TIFR यानी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के कंप्यूटर विभाग में उनका प्रशिक्षण प्रारंभ हो गया। उनके अनुसार अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का माहौल बहुत ही अच्छा और अनुकूल था और सरकार के अन्य विभागों से पूरी तरह से अलग।
1: सन 1962 में भारत सरकार ने केरल के थुम्बा नामक स्थान में एक रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर स्थापित करने का निर्णय किया। इसके लिए डॉक्टर कलाम को रॉकेट लॉन्चिंग में 6 महीने के प्रशिक्षण के लिए अमेरिका के नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर में जाने के लिए चुना गया। पूरे परिवार को यह सुनकर बहुत खुशी हुई कि डॉक्टर कलाम को विदेश जाने का अवसर मिला है। 6 महीने बाद कलाम भारत लौटे। देश का प्रथम रॉकेट नाइक अपाशे विदेश से उपहार में मिला। इसे 21 नवंबर 1963 को अंतरिक्ष में भेजने का निर्णय किया गया। डॉक्टर कलाम ने इसके तमाम तकनीकी दायित्वों को संभाला था। उसकी सफलता के बाद वैज्ञानिक और तकनीशियनों का मनोबल बहुत ऊंचा हो गया। इसके बाद डॉक्टर साराभाई द्वारा बुलाई गई एक बैठक में यह निर्णय किया गया कि उपग्रह विमोचन यान यानी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल SLV और कृत्रिम उपग्रहों के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ा जाए। उसके बाद 20 नवंबर 1967 को रोहिणी 75 नामक रॉकेट थुम्बा स्टेशन से अंतरिक्ष में भेजा गया।
0: और इसी बीच सन 1968 में भारतीय रॉकेट समिति यानी इंडियन रॉकेट सोसाइटी की स्थापना की गई। भारत के पूर्वी किनारे पर मद्रास से लगभग 100 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में श्री हरिकोटा द्वीप में देश का दूसरा रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर स्थापित किया गया। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति यानी इंडियन नेशनल रिसर्च कमेटी का पुनर्गठन किया गया और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो नामक एक नई सरकारी एजेंसी की स्थापना की गई। इसके बाद फरवरी 1969 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए थुम्बा में विषुवतीय यानी इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग केंद्र का उद्घाटन किया। इससे किसी भी देश के वैज्ञानिक के लिए इस प्रयोगात्मक स्टेशन की सुविधा का उपयोग करना और उसका लाभ उठाना सुनिश्चित हो गया।
1: स्वतंत्रता प्राप्ति के शुरुआती 15-20 वर्षों के दौरान हमारी सेना को अतिरिक्त पुर्जे और अन्य रक्षा सामग्री के लिए पूरी तरह से विदेशी सहायता पर निर्भर रहना पड़ता था। विदेशी शक्तियां अपनी पुरानी और अप्रचलित सैन्य सामग्री हमारे जैसे विकासशील देशों को देकर यह जताती थी जैसे वे हम पर कृपा कर रही हों। विदेशी इन उपकरणों की आपूर्ति कर विकासशील देशों से बहुत अधिक धन कमाते थे। इस कमी को दूर करने और इस पर काबू पाने के लिए एकीकृत नियंत्रित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम यानी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रारंभ किया गया। इसका पूरा उत्तरदायित्व डॉक्टर कलाम को सौंपा गया। प्रोग्राम के सामने आने वाली आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद 12 से 15 घंटे तक प्रतिदिन काम करके डॉक्टर कलाम ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। इसके लिए उन्होंने मिसाइलों का जब गहन और विस्तृत अध्ययन शुरू किया तब उन्हें पता चला कि 4 प्रकार की मिसाइलें बहुत ही आवश्यक हैं।
0: पहली है जमीन से जमीन पर मार करने वाली और दुश्मन के टैंकों जहाजों और सैन्य सामग्रियों को नष्ट करने वाली मिसाइल।
1: दूसरी है जमीन से आकाश में निर्धारित स्थल पर वार करने वाली मिसाइल। इस प्रकार की मिसाइल दुश्मन के हवाई हमलों का कारगर ढंग से सामना कर सकती है।
0: और तीसरी है आकाश से आकाश में मार करने वाली ऐसी मिसाइल जो आकाश में आने वाले दुश्मन के बम वर्षक विमानों और मिसाइलों की टोह लगाकर उन्हें रास्ते में ही नष्ट कर सके। और चौथी मिसाइल है श्रोताओं ऐसी मिसाइल जिन्हें लड़ाकू विमानों से दाग कर दुश्मन के ठिकानों और उनकी सैन्य सामग्रियों का सफाया किया जा सके।
1: इसके बाद रोहिणी परियोजना के प्रमुख के रूप में डॉक्टर कलाम ने प्रशंसनीय कार्य किया। इस कार्यक्रम के दौरान उन्हें अलग अलग विषयों के विशेषज्ञों से विचार विमर्श करने और मिलने जुलने का अवसर मिला। इसरो में उन्होंने उपग्रह प्रमोचन यान यानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के निर्माण का कार्य किया और SLV-3 की सफल उड़ान में कामयाब रहे। डॉक्टर कलाम को महसूस हुआ कि प्रौद्योगिकी का उपयोग मिसाइलों के विकास को और आगे बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। डॉक्टर विक्रम साराभाई द्वारा किए गए मार्गदर्शन और सहयोग के लिए डॉक्टर कलाम आज भी उनके कृतज्ञ हैं।
0: अंतरिक्ष विभाग में कार्यभार संभाल लेने के बाद भी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने डॉक्टर कलाम की सेवाओं का लाभ उठाया। वे संगठन के निकट संपर्क में रहे। वहां पर वैज्ञानिकों के समूह ने मिसाइलों को विकसित करने में उनकी सहायता की थी। मिसाइलों के विकास में डॉक्टर कलाम ने सबसे अधिक योगदान दिया था। उनके अनुसार अग्रभाग यानी कि सामने के हिस्से पर बम लगे रॉकेट को मिसाइल कहते हैं। मिसाइल वास्तव में एक विध्वंसक हथियार है। अंतरिक्ष उड़ान में प्रयोग किए जाने वाले रॉकेट से इसका कोई संबंध नहीं है। मिसाइलों को वायुयानों, पनडुब्बियों और भूमि से दागा जा सकता है। जिन मिसाइलों को रेडियो तरंगों द्वारा या किसी आंतरिक क्रिया या यंत्र विधि के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है, उन्हें नियंत्रित मिसाइल कहते हैं। ये मिसाइल निश्चित स्थान पर अपने निर्धारित लक्ष्य का पता लगा सकती हैं। मिसाइल भेदी मिसाइलों का प्रयोग दागी गई मिसाइलों को उनके मार्ग में ही रोककर नष्ट करने के लिए किया जाता है। प्रारंभ में जर्मनी, अमेरिका, रूस और चीन देश मिसाइलों का उत्पादन करते थे। भारत ने पृथ्वी, आकाश, नाग, अग्नि जैसी अलग अलग मिसाइलों के उत्पादन और निर्माण का कार्य आरंभ कर दिया है। श्रोताओं, भारत विश्व में छठा मिसाइल उत्पादक देश है।
1: एक दिन 30 दिसंबर 1971 को दिल्ली में एक विशिष्ट समिति की बैठक में भाग लेने के बाद डॉक्टर कलाम थुम्बा वापस लौट रहे थे। उस दिन डॉक्टर विक्रम साराभाई थुम्बा में ही थे। डॉक्टर कलाम ने दिल्ली से उन्हें टेलीफोन कर बैठक के बारे में जानकारी दी। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने उनसे कहा कि वे मुंबई जा रहे हैं। डॉक्टर कलाम ने डॉक्टर साराभाई से थुम्बा हवाई अड्डे पर मिलने की इच्छा जाहिर की, परंतु डॉक्टर कलाम जब थुम्बा पहुंचे तो उन्हें पता चला कि कुछ घंटे पहले डॉक्टर साराभाई का स्वर्गवास हो गया है। इस घटना से डॉक्टर कलाम को बहुत गहरा दुख पहुंचा। इसके बाद अंतरिक्ष विभाग का कार्यभार डॉक्टर सतीश धवन को सौंपा गया। डॉक्टर धवन ने SLV-3 की व्यवस्था डॉक्टर कलाम के हाथों सौंप दी।
0: इसके बाद सन 1975 में इसरो एक सरकारी संगठन बन गया और उसे अंतरिक्ष विभाग के अधीन कर दिया गया। सन 1976 में 102 वर्ष की आयु में डॉक्टर कलाम के पिता का निधन हो गया और कुछ समय बाद ही उनकी माता जी का भी देहांत हो गया। इन विपरीत परिस्थितियों में भी डॉक्टर कलाम ने अपने आप को संभाले रखा। इसके बाद एक बार फिर डॉक्टर कलाम को इसरो से रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला यानी DRDL में ले जाने की योजना शुरू हो गई। इसी बीच 18 जुलाई 1980 को 8:03 पर भारतीय उपग्रह प्रमोचन यान यानी SLV-3 श्रीहरिकोटा रेंज से सफलतापूर्वक छोड़ा गया। समस्त चरणों को सही ढंग से कार्यान्वित किया गया और रोहिणी उपग्रह को निर्धारित समय पर कक्षा में स्थापित कर दिया गया। जब डॉक्टर कलाम केंद्र के परिसर से बाहर आए तो लाश से भरे उनके सहकर्मियों ने उन्हें कंधों पर उठा लिया। प्रोजेक्ट की सफलता की घोषणा तत्काल रेडियो और टीवी पर कर दी गई।
1: तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने सफलता पर पूरे दल को बधाई दी। भारत इस प्रकार की असाधारण सफलता प्राप्त करने वाला विश्व में 5वां देश बन गया। 26 जनवरी 1981 को डॉक्टर कलाम को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके बाद जून 1982 से डॉक्टर कलाम ने अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला DRDL के निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। कुछ समय पश्चात उनकी सेवाओं के लिए चेन्नई के अन्ना विश्वविद्यालय ने उन्हें डॉक्टरेट की मानद डिग्री प्रदान की। इसके बाद संशोधित ASLV का निर्माण किया गया, जिसमें पेलोड 40 किलोग्राम से बढ़ाकर 150 किलोग्राम कर दिया गया। 26 जून 1984 को डॉक्टर कलाम के नेतृत्व में विशेष रूप से सेना के लिए विकसित डेविल मिशन का सफल परीक्षण किया गया।
0: इसकी प्रगति देखने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी परीक्षण स्थल पर गए थे। अगस्त 1985 में डॉक्टर कलाम को अमेरिकी वायुसेना ने अपनी निपुणताओं का परीक्षण करने के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया। उनके साथ उनके 3 अन्य सहकर्मियों को भी आमंत्रित किया गया। इसी बीच 16 सितंबर 1985 को श्रीहरिकोटा परीक्षण रेंज से त्रिशूल मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। इसके बाद 25 फरवरी 1988 को सुबह 11:23 पर श्रीहरिकोटा रेंज से पृथ्वी मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। ये मिसाइल 1000 किलोग्राम भार वाले बम ले जा सकती है और इसकी मारक क्षमता 150 किलोमीटर है। पश्चिमी राष्ट्रों ने सफलता पर चिंता प्रकट की और 7 देशों ने भारत को आवश्यक कच्चा माल नहीं देने का निर्णय किया। परंतु इसके बाद भी अपनी क्षमता को सिद्ध करते हुए भारत ने 22 मई 1989 को सुबह 7:10 पर अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। इसके बाद 26 जनवरी 1990 को गणतंत्र दिवस पर डॉक्टर कलाम को पद्म विभूषण प्रदान किया गया। साथ ही जादवपुर विश्वविद्यालय और उसके बाद आईआईटी मुंबई ने उनको डॉक्टरेट की मानद डिग्रियां प्रदान की। इसके बाद उन्हें रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया और 25 नवंबर 1999 को उन्हें केंद्र सरकार का प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। इसके कुछ वर्षों बाद उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया और उसके बाद डॉक्टर कलाम प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार बने। वे प्रधानमंत्री को अलग अलग विभागों के लिए अलग अलग वैज्ञानिक और तकनीकी नीतियों और साथ ही वैज्ञानिक विकास के संबंध में परामर्श देते और उनका मार्गदर्शन करते रहते।
1: केंद्र सरकार ने डॉक्टर कलाम की सेवाओं के लिए उन्हें भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया। उन्होंने भारतीय नौसेना के लिए सतह से सतह तक मार करने वाली पृथ्वी मिसाइल विकसित की। ये 250 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है और इसकी माल वाहन क्षमता 1000 किलोग्राम है। इसका प्रयोग एक युद्ध अस्त्र के रूप में किया जा सकता है। डॉक्टर कलाम ने पराध्वनि प्रणाली यानी सुपरसोनिक सिस्टम विकसित किया जो शत्रु के युद्धपोतों को नष्ट कर सकती है। वायुसेना के लिए भी डॉक्टर कलाम ने एक शक्तिशाली मिसाइल विकसित की है। यह मिसाइल आकाश से जमीन पर मार कर सकती है। अब वे इसे राडार प्रणाली से जोड़कर और अधिक प्रभावी बना रहे हैं। इस प्रकार चालक रहित विमान स्वयं ही शत्रु के विमानों का पता लगाकर उन्हें निशाना बना सकते हैं।
0: श्रोता, सन 2020 तक की योजना बनाकर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने इंडिया 2020 नामक एक पुस्तक भी प्रकाशित की है और इसके बाद डॉक्टर कलाम ने कुछ वर्षों बाद प्रधानमंत्री के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के पद से त्याग पत्र दे दिया और विज्ञान की सेवा करने की योजना बनाई। उन्होंने तमिलनाडु के अन्ना विश्वविद्यालय में कार्यभार संभाला और इसी बीच नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी NDA ने उनसे राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने का अनुरोध किया। 15 जुलाई 2002 को काफी बहुमत से डॉक्टर कलाम हमारे देश के राष्ट्रपति चुने गए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश BN कृपाल द्वारा उन्हें भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। और इस प्रकार श्रोताओं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमारे देश के 12वें राष्ट्रपति बने। उन्होंने सन 2020 तक की योजना बनाकर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने इंडिया 2020 नामक एक पुस्तक भी प्रकाशित की है। श्रोताओं,
1: सदैव मुस्कुराते रहने वाले डॉक्टर कलाम सरल, विनम्र और मृदुभाषी व्यक्ति हैं। वे मित्रों और सहकर्मियों की बात शांतिपूर्वक सुनते हैं और उन्हें सरल ढंग से समझाते हैं। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि ऐसे सरल और महान वैज्ञानिक अपने प्रयासों में प्रगति करते हुए अपेक्षित सफलता प्राप्त करें।
0: श्रोताओं, इसी के साथ अब हमारे ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारे वैज्ञानिक, जो आज केंद्रित था हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइलमैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवन पर। अब ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।
2: देश के वीर जवानों को समर्पित शौर्य स्मारक की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर संगीत संध्या का आयोजन। सुनिए मिलिट्री बैंड की सांगीतिक प्रस्तुति। इसके साथ ही आप देख सकते हैं शस्त्र प्रदर्शनी 14 अक्टूबर शाम 6 बजे शौर्य स्मारक अरेरा हिल्स भोपाल, स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन का प्रतिष्ठा आयोजन। आप सभी सादर आमंत्रित हैं।

0: आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया एफएम 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।
1: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: विभिन्न विषयों पर स्वामी विवेकानंद जी के व्याख्यानों से हमें पता चलता है कि उनके ज्ञान भंडार का कोई छोर नहीं था। सभी विषयों पर वे धारा प्रवाह बोल सकते थे और उनकी बातें हमेशा सारगर्भित होती थीं। बड़े बड़े विद्वान एवं मनीषियों के साथ बैठकर बिना हिचक वे बातें किया करते थे। केवल अपने देश में ही नहीं, विदेशों में उनके दिए गए भाषणों की सराहना होती थी। वहां वे विद्वानों के सम्मुख भारत की एक नई छवि प्रस्तुत करने में सक्षम हुए थे। सभी चिंताशील श्रोता उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुना करते थे। उनके आंखों के सामने एक नया जगत, नई सोच और नया दृष्टिकोण उन्मोचित होता था।
1: ऐसी ही कुछ बातचीतों के अंश हमें अमेरिका की श्रीमती राइट के संस्मरणों से प्राप्त होते हैं। वहाँ वे अंग्रेजों की बर्बरता की कहानी सुना रहे थे, उनकी राज्य लिप्सा और दमन की कथा कह रहे थे। अमेरिका वासी स्तंभित होकर इन इतिहासों को सुन रहे थे।
0: सन 1893 के अगस्त मास के अंत में स्वामी विवेकानंद अमेरिका के एनिस्क्वाम में जे एच राइट के मकान पर ठहरे। न्यू इंग्लैंड के इस शांत ग्राम में स्वामी जी को देखकर वहां के निवासियों को इतना आश्चर्य हुआ कि तुरंत लोगों में इस बात की अटकलबाजी होने लगी कि ये भव्य और आकर्षक व्यक्ति है कौन, ये कहां से आया है। पहले वे इस निश्चय पर पहुंचे कि ये भारत का कोई ब्राह्मण होगा, किंतु उनका व्यवहार उनकी धारणाओं से पूर्ण रूपेण मेल नहीं खाता था। ये ऐसी बात थी जिसका समाधान आवश्यक था और वे एकमत होकर भोजन के पश्चात इस विचित्र नवागंतुक के प्रवचन को सुनने के लिए उस कुटीर की ओर चले।
2: अभी कल की ही बात है, सिर्फ कल की, 400 वर्ष से अधिक पूर्व की नहीं।
1: फिर उन्होंने एक धीर जाति और उत्पीड़ित राष्ट्र यानी अमेरिका के ऊपर की गई निर्दयता और दमन की कहानियां सुनाई और भविष्य में इसका न्याय निर्णय होगा ये भी बताया।
2: ओह, अंग्रेज केवल कुछ समय पूर्व वे बर्बर थे, स्त्रियों के शरीर पर कीड़े रेंगते थे और अपने शरीर की घिनौनी दुर्गंध छिपाने के लिए वे सुगंध लगाती थी, अत्यंत विभत्स। अब भी वे केवल उस बर्बरता से बाहर निकल भर रहे हैं।
1: उन श्रोताओं में से एक ने कहा,
3: गलत, ये तो कम से कम 500 वर्ष पहले की बात है।
2: और क्या, मैंने नहीं कहा जरा देर पहले, यानी 400-500 साल पहले। मनुष्य की आत्मा की प्राचीनता को दृष्टि में रखने पर इन कुछ 100 वर्षों की क्या गिनती है।
1: उन्होंने कुछ अधिक भावना के साथ तेजी से कहा,
2: वे नितांत बर्बर हैं। वो भयानक शीत और वे उत्तरी जलवायु जन्य भाव और कष्ट, इस परिस्थिति ने उन्हें जंगली बना डाला है। वे केवल मार डालने की बात सोचते हैं, उनका धर्म कहाँ है। वे उस पवित्र पुरुष का नाम लेते हैं, वे अपने मनुष्य भाइयों से प्रेम करने का दावा करते हैं, फिर वे सभ्य बनते हैं, क्या इसी धर्म के द्वारा? नहीं, ये तो उनकी भूख है जिसने उन्हें सभ्य बनाया है, उनके ईश्वर ने नहीं। मानव प्रेम तो केवल उनकी जिह्वा पर है, उनके हृदय में और कुछ नहीं, केवल बुराई और हर प्रकार की हिंसा ही हिंसा है। मेरे भाई, मैं तुमको प्यार करता हूं, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, और निरंतर वे उसका गला काटते रहते हैं, उनके हाथ खून से लाल हैं।
1: धीरे धीरे उनका स्वर और गंभीर होता गया और वे ईश्वर और प्रकृति की प्रतिशोध की बातें करने लगे।
2: किंतु उन्हें ईश्वर के दंड का भागी बनना पड़ेगा। प्रभु कहते हैं कि प्रतिशोध मेरा है, मैं उसे चुकाऊंगा, और विनाश आ रहा है। तुम्हारे ईसाई कितने हैं? दुनिया के एक तिहाई भी नहीं। उन कोटि कोटि चीनियों को देखो, वे ईश्वर का प्रतिशोध हैं जो तुम्हारे ऊपर उद्दीप्त हो उठेगा। हूणों का एक और आक्रमण होगा, वे समस्त यूरोप को पद दलित कर देंगे। वे एक भी ईंट साबुत नहीं छोड़ेंगे, पुरुष स्त्रियां और बच्चे सभी चल बसेंगे और अंध युग फिर आएगा।
0: उनका स्वर करुणापूर्ण हो गया, उनकी आंखें जैसे भविष्य को निहार रही थीं।
2: मुझे कोई चिंता नहीं है, दुनिया इससे और अच्छी होकर निकलेगी, किंतु ये सब आ रहा है, ईश्वर का वो प्रतिशोध शीघ्र आ रहा है।
1: शीघ्र? उन सब लोगों ने पूछा।
2: हाँ, इसके होने में 1000 वर्ष भी ना लगेंगे।
0: ओह, 1000 साल। लोगों ने निश्चिंतता की सांस ली। ये सब अभी निकट भविष्य में नहीं होगा, वे कहते गए।
2: ईश्वर प्रतिशोध अवश्य लेगा। तुम्हें ये बात धर्म और राजनीति में भले ही ना दिखाई पड़े, किंतु इतिहास में अवश्य ही दृष्टिगत होगी, और जैसा होता रहा है वैसा ही होगा। यदि तुम लोगों को पीसोगे तो तुम्हें भी भुगतना पड़ेगा। भारत में हम लोग ईश्वर के प्रतिशोध को भोग रहे हैं। उन घटनाओं को देखो, उन लोगों ने अपने निजी लाभ के लिए गरीबों को पीसा। उन्होंने उनकी कातर ध्वनि नहीं सुनी। जब जनता रोटी के लिए पुकार रही थी, तब वे सोने और चांदी के पात्रों में खाते थे, और इसके बाद ही आक्रांताओं ने वध और हत्या करते हुए आक्रमण किया, वध और हत्या करते हुए उन्हें पराभूत कर दिया।
1: श्रोतागण अवाक होकर स्वामी जी की बातों को सुन रहे थे। वे भावावेग में बोलते गए।
2: वर्षों तक भारत बार बार पराजित होता रहा, और उन सब के अंत में तथा सबसे बुरे अंग्रेज आए। तुम भारत में देखो, हिंदुओं ने क्या छोड़ा? चारों ओर आश्चर्यजनक मंदिर। मुस्लिमों ने क्या छोड़ा? भव्य भवन। अंग्रेजों ने क्या छोड़ा? शराब की टूटी बोतलों के टीलों के अतिरिक्त और कुछ नहीं। ईश्वर ने मेरे देशवासियों के ऊपर दया नहीं की, क्योंकि स्वयं उनमें दया नहीं थी। अपनी निष्ठुरता से उन्होंने जनता को नीचे गिराया, और जब उन्हें उनकी आवश्यकता पड़ी, तब उस जनता में उनकी सहायता करने के निमित्त कुछ भी शेष नहीं रह गया था। मनुष्य को ईश्वर के प्रतिशोध में भले ही विश्वास ना हो सके, किंतु वो इतिहास के प्रतिशोध को कदापि अस्वीकार नहीं कर सकता।
0: स्वामी जी भावुक हो चले। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे।
2: यही अंग्रेजों के ऊपर भी बीतेगा। वे हमारी गर्दन पर सवार हैं। उन्होंने अपने सुख भोगों के लिए हमारे रक्त की अंतिम बूंद भी चूस ली है। हमारी करोड़ों की संपत्ति अपहरण कर ले गए, जबकि गांव और प्रांत के प्रांत भूखों मर रहे थे। अब उनके ऊपर चीनियों के प्रतिशोध की बौछार होगी। यदि आज चीनी उठें और अंग्रेजों को समुद्र में डुबो दें, जिसके की वे पात्र हैं, तो ये न्याय के अतिरिक्त और कुछ ना होगा।
1: इसके पश्चात अपने कथन को समाप्त कर स्वामी जी चुप हो गए। धीमे स्वर में उनके संबंध में लोगों की बड़बड़ाहट शुरू हो गई। वे बाहर से उदासीन से सुनते रहे। कभी कभी वे ऊपर छत की ओर दृष्टि निक्षेप

0: ठहराया करती, दूसरों की सफलता को देखकर उसे कोसती और उसकी समस्त असफलताओं के कारण उसे ही बताया करती थी। उसने अपने पति से कहा,
1: तुमने इतने वर्षों से ईश्वर की सेवा की है, उसके निमित्त तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारे लिए यही किया है।
2: क्या मैं धर्म का व्यापारी हूं? उस पर्वत को देखो, वो मेरे लिए क्या करता है और मैंने उसके लिए क्या किया है? तो भी तुझे उससे प्रेम है, क्योंकि मेरी रचना ही सुंदरता से प्रेम करने के लिए हुई है। इसी प्रकार मैं ईश्वर से प्रेम करता हूं।
3: एक दूसरी कहानी उन्होंने एक राजा की सुनाई, जिसने एक ऋषि को एक भेंट देने की इच्छा प्रकट की। ऋषि ने अस्वीकार कर दिया, किंतु राजा ने आग्रह किया और साथ चलने की प्रार्थना की। जब वे महल में आए तो ऋषि ने राजा को प्रार्थना करते हुए सुना। राजा ने ईश्वर से धन, शक्ति और दीर्घायु की याचना की। ऋषि ने आश्चर्य से सुना और अंत में अपना आसन उठाकर चल देने को तत्पर हुए। उसी समय राजा ने अपनी प्रार्थना समाप्त कर आंखें खोली और उन्हें देखा। उसने पूछा, आप क्यों जा रहे हैं? आपने अपनी भेंट के लिए नहीं कहा?
4: मैं एक भिखारी से क्या भेंट मांगूं? आप तो खुद ही याचना कर रहे हैं।
0: स्वामी जी राइट महोदय के घर पर कुछ मिलने वालों से बात कर रहे थे। उनमें से किसी ने कहा,
2: आप कुछ भी कहें, ईसाई धर्म महान है, वह पीड़ितों का उद्धार करता है।
0: स्वामी जी ने उसकी ओर देखा और शांत भाव से बोले,
5: अंग्रेज तो ईसाई हैं, वो अफ्रीका के अबिसिनिया वासियों पर क्या अत्याचार कर रहे हैं आपको नहीं मालूम? अगर ईसाई धर्म में उद्धारक शक्ति है तो उन्होंने वहां के लोगों का उद्धार क्यों नहीं किया?
3: उक्त श्रोता जवाब सुनकर चुप हो गए। फिर स्वामी जी ने भारत में अंग्रेज द्वारा किए जाने वाले अत्याचार की कहानियां सुनाई। अंत में उन्होंने कहा,
5: पर वे मेरे जैसे सन्यासी के साथ ऐसा अन्याय करने का साहस नहीं कर पाएंगे। मैं तो चाहता हूं कि अंग्रेज सरकार मुझे पकड़कर गोली मार दे, ये उनकी ताबूत की पहली कील होगी। मेरी मृत्यु भारत भूमि पर एक भीषण आग के समान फैल जाएगी।
3: उनकी आदर्श भारतीय सिपाही विद्रोह की वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, जिन्होंने स्वयं अपनी सेना का संचालन किया था। उन्होंने बताया,
5: बहुत से विद्रोही अपने को छिपाने के लिए साधु हो गए थे, और इसलिए जो भी साधु हो वही उग्र विचारों वाला होगा, ये धारणा फैल गई थी। उन विद्रोहियों में से एक था जो अपने चार पुत्रों को खोकर भी उनके संबंध में संयत होकर बात कर सकता था, किंतु जब कभी वो रानी का नाम लेता तो रोने लगता, उसके मुख पर आंसुओं की धारा प्रवाहित हो जाती। वे कहते वो स्त्री देवी थी, जब हार गई तो अपनी तलवार के घाट उतर गई और एक पुरुष की भांति मरी।
0: स्वामी जी ने सिपाही विद्रोह के बारे में अनेकों अनजाने तथ्यों से अमेरिका वासियों को अवगत कराया। उनके सामने विद्रोह का एक दूसरा पक्ष उजागर हुआ।
3: अमेरिका वासियों को भारत के बारे में अनेक भ्रांत धारणाएं थीं। उन बैठकों में वे स्वामी जी से अनेकों प्रश्न करते और स्वामी जी अपने जवाबों से उन्हें नई नई जानकारी देकर संतुष्ट करते थे। अक्सर इन सभाओं में पत्रकार भी उपस्थित रहते थे और दूसरे ही दिन अमेरिकी अखबारों में स्वामी जी के वक्तव्य प्रकाशित होते। ऐसी ही एक रपट 21 जनवरी 1894 ईस्वी को प्रकाशित हुई। ये बैठक लॉ सेलेट एकेडमी मेम्फिस नगर में हुई थी। वहां स्वामी जी ने कहा था,
5: मैं सन्यासी हूँ, पुरोहित नहीं। अपने देश में जगह जगह घूमता हूँ, जिन गांव और शहरों से होकर निकलता हूँ वहां के लोगों को उपदेश देता हूँ। अपने भरण पोषण के लिए मैं उनके ऊपर निर्भर हूँ, क्योंकि मुझे पैसा स्पर्श करने की आज्ञा नहीं है।
0: एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा,
5: मेरा जन्म बंगाल में हुआ था और मैंने अपनी इच्छा से अविवाहित रहकर सन्यासी का जीवन स्वीकार किया। मेरे जन्म पर मेरे पिता ने मेरी जन्म पत्री बनवाई थी, किंतु उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया कि उसमें क्या था। अपने पिता की मृत्यु के कुछ दिन बाद जब मैं अपने घर गया तब मैंने अपनी माँ के पास रखे हुए कागजों में वो पत्री देखी। उसमें मैंने जाना कि मेरे भाग्य में पृथ्वी पर विचरण करना लिखा था।
0: एक श्रोता ने प्रश्न किया,
4: यदि आपका धर्म जो कुछ आप दावा करते हैं वैसा ही है, यदि वो सच्चा धर्म है तो क्या कारण है कि आपके देशवासी जितने सभ्य हैं उससे अधिक सभ्य नहीं हो सके? उस धर्म ने दुनिया के राष्ट्रों के बीच उनको ऊंचा क्यों नहीं उठा दिया?
5: क्योंकि वो किसी भी धर्म का क्षेत्र नहीं है। मेरे देशवासी दुनिया में सबसे अधिक या किसी भी जाति के समतुल्य नैतिक हैं। वे अपने मानव भाइयों के अधिकारों के प्रति, मूक पशुओं तक के प्रति कहीं अधिक ध्यान देते हैं, परंतु वे भौतिकवादी नहीं हैं। किसी भी धर्म ने कभी किसी राष्ट्र या जाति के विचार या प्रेरणा को आगे नहीं बढ़ाया। वास्तव में इतिहास में कभी भी ऐसी कोई महान सफलता प्राप्त नहीं की गई जिसको धर्म ने बाधा नहीं पहुंचाई हो। आपके ईसाई धर्म ने भी अपने को इसका अपवाद सिद्ध नहीं किया। आपके डार्विन, मिल, हूम आदि को आपके धर्माधिकारियों का समर्थन नहीं प्राप्त था, तब इसके लिए मेरे धर्म की आलोचना क्यों?
4: परंतु आप कुछ भी कहें, मैं उस धर्म को एक कानी कौड़ी भी नहीं दूंगा जो मानव जाति के भौतिक जीवन और आध्यात्मिक दशा दोनों के उत्थान के लिए सचेष्ट न हो, और इसी कारण मैं आपके वक्तव्यों की सत्यता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं। ईसाई धर्म ने कॉलेज और अस्पतालों की स्थापना की और पतितों को उठाया, उसने दलितों का उत्थान किया और अपने अनुयायियों को जीवन बसर करने में मदद की।
3: सन्यासी ने शांत भाव से कहा,
5: कुछ हद तक तो आप ठीक कहते हैं,

0: भागते हुए तुम अध्यात्म को भूल रहे हो और अंततः तुम भौतिकता परायण बन गए हो। अपनी जाति के इतिहास में एक भी ऐसा व्यक्ति बताओ जिसने वैसा आध्यात्मिक जीवन बिताया हो जैसे हमारे देश में लोगों ने बिताया और जिनके की मैं नाम गिना सकता हूं। ऐसे लोग कहां हैं जो मृत्यु के आने पर कह सकते हो, ओ बंधु मृत्यु, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं। तुम्हारा धर्म फेरिस चक्रों और आडफेल मीनारों के निर्माण में मदद देता है, पर क्या वो तुम्हारे आंतरिक जीवन के विकास में भी तुम्हारी सहायता करता है?
1: सन्यासी गंभीरता पूर्वक बोल रहे थे और उनका मधुर तथा सुनियंत्रित स्वर उस कमरे में छाए हुए धुंधलेपन से छन कर आ रहा था और कुछ आरोप युक्त। 6000 वर्ष पुराने इतिहास वाले देश के इस नवागंतुक के द्वारा की गई 19वीं शताब्दी के अमेरिका की समालोचना में कुछ अलौकिकता थी।
2: किंतु आध्यात्म की साधना में आप वर्तमान की मांगों के प्रति आंखें बंद कर लेते हैं। आपका सिद्धांत मनुष्य को अच्छी तरह जीवित रहने में सहायता नहीं देता।
0: वो उन्हें अच्छी तरह मरने में सहायता देता है।
3: हम वर्तमान के प्रति विश्वस्त नहीं हैं।
0: आप किसी चीज के प्रति विश्वस्त नहीं हैं। मेरा विश्वास है कि हिंदू धर्म ने भौतिक मूल्य चुकाकर अपने साधकों में अध्यात्म का विकास किया है और मैं सोचता हूं कि पश्चिमी दुनिया में सत्य इसके विपरीत है। मेरा विश्वास है कि पश्चिम के भौतिकवाद और पूर्व के समन्वय से बहुत कुछ किया जा सकता है। ये हो सकता है कि इस प्रयत्न में हिंदू धर्म अपने वैशिष्ट्य को बहुत कुछ खो देगा।
3: जो कुछ आप करने की आशा करते हैं क्या उससे भारत के समस्त सामाजिक व्यवस्था में क्रांति न करनी होगी?
0: हाँ शायद, फिर भी धर्म अक्षुण्य बना रहेगा।
4: अब बातचीत का रुख हिंदुओं की उपासना विधि की ओर बदला और विवेकानंद ने इस विषय पर बहुत सी बातें बतलाई। भारत में तथा अन्यत्र सभी जगह अज्ञेयवादी और नास्तिक हैं। ब्रह्म के अनुयायियों के जीवन में अनुभूति एक आवश्यक वस्तु है, श्रद्धा आवश्यक नहीं है। थियोसॉफी एक ऐसा विषय है जिसमें विवेकानंद की रुचि नहीं है, वो अलग अध्ययन का विषय है।
1: विवेकानंद कभी मैडम ब्लॉवस्की से नहीं मिले, किंतु अमेरिकन थियोसॉफिक सोसाइटी के कर्नल ऑलकट से उनकी भेंट हुई थी। वे एनी बेसन से भी परिचित हैं। भारत के फकीरों, प्रसिद्ध मदारियों अथवा जादूगरों जिनके चमत्कारों की विश्व में प्रसिद्धि है, उनकी चर्चा करते हुए विवेकानंद ने कुछ ऐसी घटनाएं सुनाई जो उन्होंने स्वयं देखी थी और जो विश्वास से परे थी।
4: इस विषय पर प्रश्न पूछे गए तो उन्होंने कहा,
0: 5 मास पूर्व और इस देश के लिए भारत से प्रस्थान करने के ठीक 1 मास पूर्व मुझे 25 व्यक्तियों के दल के साथ देश के भीतर स्थित एक नगर में कुछ समय तक ठहरना पड़ा। वहां पर हमने इन भ्रमणशील जादूगरों में से एक के आश्चर्यजनक चमत्कारों के विषय में सुना और उसे अपने सामने बुलाया। उसने हमें बताया कि हम जिस वस्तु की इच्छा करें वो उसे उपस्थित कर देगा। हमने उसके कहने के अनुसार उसके वस्त्रों को उतारा, यहां तक कि वो बिल्कुल नग्न हो गया और उसे कमरे के कोने में बैठा दिया। मैंने अपनी यात्रा के कंबल को उसके ऊपर डाल दिया और तब हमने उससे अपने वादे के अनुसार कार्य करने को कहा। उसने पूछा कि आप लोग क्या चाहते हैं। मैंने काबुली अंगूरों का एक गुच्छा देने के लिए कहा और तुरंत उस व्यक्ति ने उन्हें कंबल के नीचे से बाहर निकाला। संतरे और दूसरे फल निकाले और अंत में निकाली गरम भात की बड़ी बड़ी थालियां।
1: अपना वक्तव्य जारी रखते हुए सन्यासी ने कहा,
0: मेरी 1/6 इंद्रिय में और सुदूर अवस्थित 2 व्यक्तियों के मन में एक साथ एक ही विचार का उदय हो सकता है, मुझे इस बात में विश्वास है।
4: उन्होंने फकीरों के चमत्कारों की व्याख्या नहीं की, केवल यही कहा कि वे अत्यंत आश्चर्यजनक थे। मूर्ति पूजा के विषय में भी चर्चा हुई और सन्यासी ने बताया कि केवल प्रतीक के रूप में ही मूर्ति हमारे धर्म का अंग है।
0: आप किसकी उपासना करते हैं? ईश्वर के संबंध में आपकी क्या धारणा है?
1: आत्मा, एक महिला ने धीरे से कहा।
0: आत्मा क्या है? तुम प्रोटेस्टेंट लोग बाइबल के शब्दों की उपासना करते हो अथवा उनके परे किसी और चीज की उपासना करते हो। हम लोग प्रतिमा द्वारा ईश्वर की उपासना करते हैं।
5: अर्थात आप अंतरस्थित वस्तु को ब्रह्म सहायता द्वारा प्राप्त करते हैं।
0: हाँ ठीक यही।
4: विवेकानंद उसी स्वर में आगे बात करते रहे और उनके भाषण का समय समीप होने के कारण इस गोष्ठी का अंत हुआ। इसी तरह की एक सभा में स्वामी जी ने अमेरिकी जनता को सम्राट अशोक के बारे में बताया, उनके शिलालेखों का वर्णन किया, कहा,
0: उसी बुद्धिमान राजा ने जिसने ये राजाज्ञा खुदवाई थी युद्ध करने से मना किया था, क्योंकि इसकी विभीषिकाएं सभी महान सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों के प्रतिकूल होती हैं। इसी कारण भारत ने भौतिक पक्ष में हानि उठाई है, जहां पाशविक शक्ति और रक्तपात ने दूसरे राष्ट्रों को आगे बढ़ाया है। भारत ने इस प्रकार के पाशविक प्रदर्शन का प्रत्याख्यान किया है और योग्यतम की विजय के नियम के अनुसार जो राष्ट्रों और व्यक्तियों दोनों के लिए लागू होता है वो भौतिक अर्थ में दुनिया की एक शक्ति के रूप में बहुत पीछे रह गया है।
1: इसी क्रम में उन्होंने कहा कि संभवतः भविष्य में पूर्व और पश्चिम का समन्वय होने को है, एक ऐसा समन्वय जिसके परिणाम अद्भुत होंगे। पश्चिमी राष्ट्रों की प्रकृति को प्रशंसा का पात्र बनाने वाला उनका एक गुण है और वो है स्त्रियों के प्रति अत्यंत आदर भाव तथा उनके साथ सहृदयतापूर्ण व्यवहार।
4: विभिन्न मतवादों की दोषान्वेषण की प्रवृत्ति के संबंध में उन्होंने जो कहानी कही वो ऐसी थी।
0: एक कुएं में एक मेंढक रहता था। वो वहां बहुत दिन से रहता था, वहीं पैदा हुआ और वहीं बड़ा हुआ। वो एक छोटा नन्हा सा मेंढक था। एक दिन एक दूसरा मेंढक जो समुद्र में रहता था आया और कुएं में गिर पड़ा। तुम कहां से आए हो? समुद्र से। समुद्र? वो कितना बड़ा है? क्या वो मेरे कुएं के बराबर है? और उसने कुएं के एक किनारे से दूसरे किनारे तक छलांग मारी। मेरे मित्र, समुद्र के मेंढक ने कहा, तुम अपने छोटे से कुएं से समुद्र की तुलना कैसे कर सकते हो? तब मेंढक ने दूसरी छलांग मारी और पूछा, क्या तुम्हारा समुद्र इतना बड़ा है? समुद्र से अपने कुएं की तुलना करके तुम कैसे मूर्खता की बात कर रहे हो? कुएं के मेंढक ने कहा, अच्छा तब क्या तुम कहते हो कि तुम्हारा समुद्र मेरे कुएं से बड़ा है? ये हो ही नहीं सकता, ये झूठा है, इसे बाहर निकालो। यही कठिनाई सदा से चली आ रही है। मैं हिंदू हूं, मैं अपने छोटे से कुएं में बैठा हूं और मैं सोचता हूं कि मेरा कुआं ही दुनिया है। ईसाई अपने छोटे से कुएं में बैठा है और वो कुआं उसकी दुनिया है। मुसलमान अपने कुएं में बैठा है और उसी को संपूर्ण दुनिया समझता है। मैं तुम अमेरिकनों को धन्यवाद देता हूं कि तुम हमारी इस छोटी दुनिया की दीवारों को तोड़ने का प्रयत्न कर रहे हो और आशा करता हूं कि भविष्य में प्रभु तुम्हें इस उद्देश्य की पूर्ति में सहायता प्रदान करेंगे।
1: इसी कहानी के साथ उस दिन सभा का अंत हुआ।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

तो ये था कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। आपने ट्यून किया अपने रेडियो सेट पर 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रारंभिक आधुनिक समुद्रों की भयावहता, डच ईस्ट इंडिया कंपनी वीओसी का क्रूर अनुशासन, प्रारंभिक आधुनिक समुद्रों की यात्रा अकल्पनीय आतंक की दुनिया में उतरने जैसी थी, जहां मृत्यु अपने सबसे विभत्स और भयानक रूपों में आती थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों में जैसे कि एंक्यूजेन या फॉर्च्यून, जो जापान के मार्गों पर चलते थे, वहां का वातावरण पेचिश, अत्यधिक भीड़ और उल्टी की निरंतर दुर्गंध का एक अस्थिर मिश्रण था। इन तैरते हुए नरक तुल्य जहाजों में व्यवस्था बनाए रखने के लिए कंपनी अनुशासन की एक ऐसी प्रणाली पर निर्भर थी जो औसत नाविक को पूर्ण समर्पण के लिए डराने के लिए डिजाइन की गई थी। वीओसी के लिए एक नाविक आज्ञाकारी दास से अधिक कुछ नहीं था। किसी श्रेष्ठ के आदेश के प्रति थोड़ी सी भी अनिच्छा या बुदबुदाहट के संकेत पर एक नाविक को नियमित रूप से रस्सी से पीटा और धमकाया जाता था। हालांकि जो लोग अधिक गंभीर अपराध करते थे, उनके लिए डच नौसैनिक कानून की भीषण रचनात्मकता ने कहीं अधिक विभत्स रूप ले लिया था। गंभीर दंडों में सबसे आम था यार्ड आर्म से गिराना। उदाहरण के लिए एंक्विजिन पर यदि कोई व्यक्ति अनधिकृत शराब लेते पकड़ा जाता, तो उसे उसके हाथ बांधकर रिंगिंग में ऊपर खींच लिया जाता और फिर 40 या 50 फीट नीचे गिरा दिया जाता था। रस्सी के अंत में लगने वाला अचानक झटका पीड़ित के कंधों को उखाड़ने या तोड़ने के लिए काफी था, जिसके बाद उसे कोड़े मारने के लिए मस्तूल से बांध दिया जाता था। चाकूबाजी या झगड़े में शामिल लोगों के लिए सजा और भी रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। अपराधी को अपना हाथ जहाज के मस्तूल के खिलाफ रखने के लिए मजबूर किया जाता था और उसकी हथेली के केंद्र से एक तेज चाकू पार कर दिया जाता था, जिससे वह लकड़ी से चिपक जाता था। अपनी स्वतंत्रता पाने के लिए नाविक को चाकू को अपने ही हाथ में खींचकर बाहर निकालना पड़ता था, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें उसे अपने ही मांस को काटना और टेंडन को अलग करना होता था। नौसैनिक अनुशासन की सबसे निचला स्तर कील हॉलिंग था। दोषी व्यक्ति को वजन से बांधकर ओवरबोर्ड फेंक दिया जाता था और एक रस्सी द्वारा जहाज के नीचे से दूसरी तरफ खींच लिया जाता था। अंधेरे पानी के नीचे खींचे जाते समय नाविक को दोहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ता था, डूबने की उच्च संभावना और जहाज के तल पर जमे सत राग्र और तीखे शंख जो आरी की तरह काम करते थे। इसका परिणाम अक्सर पीड़ित के शरीर से मांस का खून से लथपथ पट्टियों के रूप में उखड़ जाना होता था। जापान में भर्ती किए गए सैनिकों और भाड़े के लड़ाकों के लिए यह तलवार की दवा ही एकमात्र ऐसा अधिकार था जिसका वीओसी का मानना था कि वे सम्मान करते हैं। सतर्कता में मामूली चूक का अंत भी अंतिम होता था। पेड्रो नामक एक सैनिक को केवल इसलिए फायरिंग स्क्वाड द्वारा मार दिया गया क्योंकि वह किले की दीवारों पर पहरा देते समय सोता हुआ पाया गया था। टॉर्चर और जुर्माने की इस व्यापक प्रणाली ने सुनिश्चित किया कि चाहे वह एम्स्टर्डम का कोई गरीब नाविक हो या हीरोडो का कोई साहसी व्यक्ति, वह कंपनी राज्य का एक आज्ञाकारी सेवक बना रहे जो रस्सियों ब्लेड के निरंतर प्रत्यक्ष भय से बंधा हुआ था। अभी आप सुन रहे थे 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हमारी आज की सभा यहीं समाप्त होती है। कल सुबह फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक दीजिए अनुमति। जय हिंद।